जैसे गाय के साथ बछड़ा घूमता है वैसे ही भगवान भक्तों के साथ घूमते हैं, डोलते हैं पीछे पीछे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे मेरे पागलो, और जोर से बोलो। एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था विप्र हरिपाल, बड़े भगवत भक्त हुए महाराज। विप्र हरिपाल साधु सेवी थे, साधुओं की नित्य सेवा करते थे। ध्यान से सुनना, रोज संतों को प्रणाम करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे। और श्री विप्र हरिपाल जी, आहाहा, जितनी संपत्ति थी साधुओं में लुटाते थे खबा खबा कर। उनसे कोई पूछता था अरे अमीरी मत मिटा लो, तो वो कहते थे

भक्कड़पन में जीते थे। इनका भाव बड़ा दृढ़ था, बड़ा कठोर था इनका भाव, बहुत कठोर। कुछ करते धरते थे नहीं तो पिताजी ने निकाल दिया। जितनी संपत्ति थी रोज चकाचक भंडारा करवाए, रोज दे दबा दे, गांठी बंधन बेकरे जिनके राम ना होए। हाँ, जितने साधु आवे पाओ महात्मा, राम की गैया राम को खेत, खाओ गैया भर भर पेट। साधुओं को ही अपनी संपत्ति मानते थे ये। अच्छा, कोई कमाए ना एकदम खर्च करे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी संपत्ति स्वाहा। हाँ जी अना जी बोलो। यही इनके साथ हुआ, जितनी संपत्ति थी सब स्वाहा हो गई। अब क्या करें, भंडारा तो करवाना ही है। भंडारा, बैलगाड़ी और कुआं, इनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, असीमित, कोई सीमा नहीं, असीमित। तो भंडारा तो करना ही है। अब उधार उठाने लगे, अमीर घराने के लड़का तो कोई भी उधार दे दे, जो उधार मिले सोई भंडारो चकाचक चलवा दे, रबड़ी माल बुआ चकाचक खाओ, संतो पाओ पाओ पाओ, जयकारा लगावे, उधार लावे और खबा दे। अच्छा, उधारी भी कब तक मिले, एक सीमा होती है, ले ले दे ना वापस। और लोग मांगने आए कि लाओ, तो बोले हम कहां से लाइए, तुम्हारे नाम को भंडारो होगा। लोग कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं। बोले तुमने नहीं करवाया, हमने करवा दिया, तुम्हें करवा नहीं पाना था तो हमने करवा दिया। तो बड़े बड़े नगर सेठ बोले भाई बड़े पागल हो, रुपया हमारा लगा। तो बोले हम थोड़ी ये कह रहे कि हमारा लगा, भंडारा भी तो तुम्हारे ही हुआ। नगर सेठ बोले हमारी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। बोले इच्छा नहीं भी थी तो हमने करवा दिया। लोगों ने मांगना ही बंद कर दिया, ये पागल आदमी है, देना बंद करो मांगना बंद करो। अब करें क्या, धीरे धीरे संपत्ति शून्य फिर हो गई। अब तो एक दिन रात को विचार आया कि मांगने से मिलना नहीं है, संपत्ति है नहीं है, भंडारा कल करवाना है, तो एक काम किया जाए, चोरी की जाए। साधु भंडारे के लिए चोरी शुरू कर दी। रात को जाए, एक तो जो भारी क्विंटल को शरीर, 2.5-3 क्विंटल को इनको शरीर चोरी में। लेकिन एक इनका ईमान था, चोरी में ये संपत्ति नहीं चुराते थे, सोना चांदी नहीं चुराते थे, हट्टा कट्टा भारी शरीर, तो दाल चावल घी शक्कर गुड़ नमक मिर्चा जो उस भंडारे में काम आवे सोई चुरा ले आवे, और चोरी कर कर लावे और चकाचक फिर रबड़ी मालपुआ दबा करके बनावे और संतों को खूब चकाचक झूम झूम करके खिलावे। गांव के एक नगर सेठ के यहां एक रात को चोरी करने गए। एक और ईमान थी इनमें, चोरी भी उसी के घर पर करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। हाँ, अमीर तो था पर कुछ दानमान नहीं देता था, और जो दानमान नहीं देता उनकी बुराई दुर्दशा हो। लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। हमारे दादाजी सुनाया करते थे, हमारे लावर जानते हो, लावर यानी झूठा। लोभी का धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसकी संपत्ति झूठ वाला व्यक्ति बढ़िया से निकाल लेता है। जो ज्यादा झूठ बोल के जानता हो तो एकदम घिस घिस करके, अरे तुम्हारा क्या कहना, तुम तो ऊपर या इंद्र है या नीचे तुम, फिर देखो तुम। तो जो झूठ वाला व्यक्ति होता है, और साधु जी कंजूस आदमी बड़ा खतरनाक होता, चमड़ी चाहे चली जाए पर दमड़ी ना जाए, लोभी आदमी बड़े खतरनाक। तो ऐसे लोभियों की संपत्ति का ही हरण करते थे श्री प्रहरपाल जी, जो भगवत भक्त नहीं है। बुरा ना माने तो एक बात सुन लो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ तुलसी।

विप्र हरिपाल जी उसी के घर पर चोरी करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। संपत्ति बची नहीं, उधारी मिलना बंद हो गई तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े नगर सेठों के यहां चोरी करने लगे। चोरी में कुछ ना चुरावे, चावल आटा दाल सब्जी नमक मिर्चा घी गुड़ ये सामग्री चुरावे। एक बार एक नगर सेठ के घर ये चोरी करने गए तो खटर पटर हुआ। नगर सेठ तो सो रहा था, नगर सेठ की बेटी जग गई। अरे पिताजी उठिए उठिए, देखो कोई चोर आ गया। उठ बैठो, कोई चोर चोरी कर रहा। नगर सेठ ने दबकार करके पीट करके सुला दिया, चुप हो जा लेट जा, कोई चोर नहीं आया है, ये अपने गांव के परम वैष्णव श्री विप्र हरपाल जी अपना धन शुद्ध करने के लिए अपने घर पर आए। इनकी इतनी ख्याति हो गई और जहां कानों में इन्होंने सुना कि ये तो भगवत भक्त है, सोई पूरी और आसन फासन छोड़ करके खाली हाथ घर चले गए। उसी समय एक ब्राह्मण की कन्या शादी नहीं करवा रही थी, उसका संकल्प था कि हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे जो वर प्रतिदिन 1000 साधुओं का भंडारा करवाएगा। अच्छा अब एक दो दिन तो कोई भी लड़की के चक्कर में करवा दे, लुगाई के चक्कर में दो चार दिन तो पूजा पाठ सबको कर ले, और रोज कौन करवाए, रोज तो बड़ी आफत, बोलो सीताराम। तो विप्र हरिपाल जी को एक ब्राह्मण देवता ने बताया कि ऐसी ऐसी कन्या है और आप उसके साथ विवाह करो। संत आज्ञा मानकर विप्र हरिपाल जी ने सोचा कि चलो ये और बढ़िया, कम से कम पत्नी ऐसी मिली कि साधु भंडारा वो भी करवाती है तो हमारा तो पहले से ही चल रहा, 1000 क्या 1500 हो जाएंगे, और अच्छा रहा, अब तो और आनंद आएगा, वो भी सेवा करेगी हम भी सेवा करेंगे। अभी हमें रसोई बनवाने के लिए साधुओं का सहारा लेना पड़ता, फिर हम और हमारी धर्म पत्नी दोनों मिलकर बढ़िया टिक्कड़ बनाएंगे और बढ़िया चकाचक संतों को पवाएंगे, आनंद झूमेगा, संतों का संत कीर्तन सुनाएंगे, भगवत सत्संग सुनाएंगे, संतों की सेवा होगी, घर शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, और पत्नी का हमारा दोनों का बढ़िया जोड़ा जुड़ेगा और हम दोनों आत्म कल्याण कर लेंगे। शादी कर ली। अब शादी करी तो संकल्प तो 1000 साधुओं का था विप्र हरपाल की पत्नी का, लेकिन अब मूर्तियां कभी कभी 2000 आ जाए, कभी 5000 आ जाए, और घर पर संपत्ति इतनी नहीं, रोज का काम था चोरी करना। अब तो आसपास के गांवन में चोरी पूरी बढ़ा गई, इतनी चोरी कर ली, आदमी स्वयं सावधान हो गए। और एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन इकट्ठी 2-3 हजार मूर्तियां संतों की घर पर आ गईं। घर पर आईं तो संतों को देख करके अब मन में इनके बड़ा चिंता हो गई कि क्या करें। घर पर पत्नी के पास जाकर श्री विप्र हरिपाल जी बोले, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे बड़े भाग जो संत घर पर पधारे हैं, तुम इनके भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, नाथ घर में एक दाना नहीं अन्न का, निवाला तक नहीं बन सकता, 2-3 हजार मूर्तियों को भोजन बनना तो दूर की बात, बाल भोग नहीं बन सकता। हरपाल जी ने कहा, तो आस पड़ोस से मांग लाओ। पत्नी बोली, महाराज इतना मांग लिया कि देने वालों ने भी बंद कर दिया देना, कोई देते ही नहीं है, हमारा मुंह देखते ही अगर राम राम भी करने जाओ तो दरवाजा बंद कर लेती, कहीं फिर से कुछ ना मांगने लगे। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी रोने लगे, श्री विप्र हरिपाल जी और उनकी धर्म पत्नी रोने लगी। अब तो भगवान का ही सहारा है,
मन ही मन भगवान की शरण का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, हमने आपसे बहुतों की बिगड़ती बनाते हुए देखी है, आप हमारी भी बिगड़ी बनाओ। आज हमारे घर पर साधु पधार गए, अगर भूखे चले जाएंगे तो भगवान हम आज ही दोनों पति पत्नी आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे, दोनों मर जाएंगे। या तो व्यवस्था करो या संतों का मत फेरो। निष्किंचन भक्त श्री हरपाल जी की ये दशा देखकर भगवान भी अपनी दशा भूल गए, भगवान से रहा नहीं गया। द्वारका में बैठे बैठे श्री जगदीश द्वारकाधीश भगवान तैयार होने लगे, सजने लगे। भगवान एक सेठ का रूप बनाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, सरकार कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जरूरी है बताना, शुभ काम के लिए टोका मत करो। नाथ आप जा रहे तो हमें भी बताओ कहां जा रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी बोले, देवी एक हमारा भक्त है विप्र हरिपाल, हम उसके पास जा रहे हैं। साधु आए हैं, वो बड़ी दुविधा में फंस गया है। अच्छा, हाँ। तो रुक्मणी जी बोली, सरकार हम भी चलेंगे। ठीक है, चलना, पर नाराज नहीं होना, हमें वहां लीला करनी है। और सुनो, ऐसा रूप धारण मत करके चलो, तुम हमारी सेठानी बन जाओ। तो श्री ठाकुर जी बन गए सेठ, रुक्मणी मैया बन गई सेठानी। माताओं को गहने पहनने का बड़ा शौक होता है, ऊपर से पति देव अगर कह दें कि जरा सद्धज कर आओ, तो फिर तो क्या कहना, नक्शिक सिंगार करती हैं पैरों से लेकर के सिर तक। तो ठाकुर जी ने तो करे दो ही चार सिंगार, हमारी श्री रुक्मणी मैया ने पूरा शरीर आभूषणों से लाद लिया। इधर विप्र हरिपाल अपनी पत्नी से बोला, देवी जब तक साधु नित्य क्रिया कर रहे तुम जल पिलाओ, तब तक हम किसी को लूट कर आते हैं, लूटेंगे आज। अब तक हमने चोरी करी, अब डकैती डालेंगे, लूटेंगे। तो हाथ में एक भारी बड़ा लठ लिया, डंडा, और जंगल के रास्ते में खड़े हो गए कि कोई यहां से निकले और हम तो मार लठ लाल कर देंगे। जो भी उसके पास होगा, कम से कम आज मूर्तियों का भोजन तो हो जाएगा साधुओं का, बस आनंद। आहा, जिस गली में

देखो कितनी करुणा नहीं हमारे सरकार की, धन्य है हमारे गोविंद, धन्य है हमारे माधव। आज तक इनको लूटते बहुत देखा, कभी गोपियों का चित्त लूट रहे, कभी माखन लूट रहे, कभी भक्तों का चित्त लूट रहे, कभी भक्तों के मन को लूट रहे। आज पहली बार ऐसे भक्त से पाला पड़ा कि ठाकुर उस भक्त के पास लुटने स्वयं चले आए हैं। विप्र हरपाल जी रस्ते में खड़े, हाथ में लाठी लिए, यहां पर लाठी लगाए हैं थोड़ी पर, ऐसे लाठी लेकर के चिंता में है, आंखें भरी हैं कि हे नाथ, साधु मूर्तियां घर पर हैं, अन्न का एक दाना नहीं है, कहीं कोई साधु भूखा ना भग जाए, हम जीते जी प्राण दे देंगे, हम रह नहीं पाएंगे।

0: हमारी साधुओं के संग प्रीत लगी, अब और मन में नहीं भाता कोई। रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, ऊपर की तरफ बार बार निहारे, लाठी यहाँ लगाए, हे ठाकुर आज लाज बचा दो, आपने गज ग्राह गज की लाज बचाई, ग्राह का वध किया, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आपने सबरी की लाज बचाई, आपने भैया विदुर की लाज बचाई, हे प्रभु अब इस दास निष्किंचन भक्त की भी लाज बचा दो, संत भूखे ना चले जाएं। और ये इतना सोच ही रहे थे तब तक श्री ठाकुर जी सेठ बन।
1: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कल मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पावन त्योहार से पहले देशभर के बाजारों में रौनक, बहनों को लुभा रही है रंग बिरंगी राखियां। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात, नोएडा में मुफ्त ई बस यात्रा का ऐलान, आज सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक मिलेगा लाभ। देश के कई हिस्सों में आज भी सक्रिय रहेगा मॉनसून, दिल्ली यूपी बिहार में बादल छाए रहने के अनुमान, बारिश होने की भी है संभावना। जापान में दिखा अनोखा नजारा, 400 टन के किले को लोगों ने रस्सियों से खींचकर 3 मीटर आगे खिसकाया, भूकंप के बाद मरम्मत के लिए अपनी जगह से हटाया गया था किला। चीन में 30वें रिवर लालटेन फेस्टिवल का भव्य आयोजन, हजारों लालटेन से जगमग उठी चीन की जिजियांग नदी, लोगों ने लालटेन छोड़कर मांगी मन्नतें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें।
2: कल है रक्षाबंधन का त्योहार, रंग बिरंगी राखियों से पटे देश भर के बाजार, रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं प्रयागराज के बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ रही है बहनों की भीड़। कार्टून से लेकर डिजाइनर राखियों तक हर उम्र के लिए नई नई वैरायटी दुकानों पर मौजूद, धार्मिक राखियों की जबरदस्त डिमांड। गाजियाबाद की डासना जेल में रक्षाबंधन की खास तैयारियां, रक्षाबंधन से पहले कैदी राखी बनाने में जुटे। जेल में बहनों के लिए भी राखी बांधने के किए गए हैं खास इंतजाम, मुलाकात के दौरान सुरक्षा के साथ त्योहार मनाने की सुविधा दी गई। देशभर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियों से सजे बाजार, बड़ी रौनक। पुरी में भी रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारी, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के लिए तैयार की जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी राखी। छोटे भाई बहन जगन्नाथ के लिए लाल और पीले रंग की होती है राखी, जबकि बड़े भाई भगवान बलभद्र के लिए नीले और बैंगनी रंग की राखी बनाई जाती है। विशेष रेशमी वस्त्र से तैयार की जाती है ये राखी, देवी सुभद्रा की ओर से उनके भाइयों को बांधी जाती है खास राखी। पूरी मंदिर के विशेष पटारा बिसोई सेवक तैयार करते हैं ये राखी, मंदिर प्रशासन द्वारा इसके लिए उपलब्ध कराया जाता है बासुंगा पाटा नामक विशेष कपड़ा। पंजाब के पठानकोट में महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों को बांधी राखी, लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की प्रार्थना की। महिलाओं ने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी बांधी राखी, ट्रैफिक पुलिस ने महिलाओं को गिफ्ट में बांटे हेलमेट, सुरक्षित ड्राइविंग का दिया संदेश। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात, नोएडा में मुफ्त ई बस यात्रा का ऐलान, 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक मिलेगा लाभ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान, नई बसों के मामले में देश के यूपी नंबर वन, महिलाओं के लिए पैनिक बटन से लेकर हेल्पलाइन की कनेक्टिविटी। पवित्र सावन के बचे हुए कुछ दिनों में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उजाला के श्री क्षेत्र शंभू महादेव मंदिर में गूंजे महादेव के जयकारे। भारत चीन सीमा पर देखी भाई बहन के प्रेम और देशभक्ति की अनोखी मिसाल, नीति घाटी की महिलाओं ने बॉर्डर कैंप में सेना के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। पंजाब पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची नीति घाटी के जुम्मा और कागा गांव की महिलाएं, कलाई पर राखी बंधवाते हुए जवान हुए भावुक। यूपी के मेरठ में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी, एसएसपी को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की कामना की। इंदौर में रक्षाबंधन पर खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी, करीब ढाई महीने से गजानन के लिए बनाई जा रही है राखी। राखी को आकर्षक स्वरूप देने के लिए कोलकाता, जयपुर, मुंबई, सूरत से मंगाए गए सलमा सितारे, नग, मोती और जरी। राखी में दिखेगी राष्ट्र गौरव और सनातन संस्कृति की झलक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं ने सुरक्षा बलों के जवानों को बांधी राखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हुए शामिल, महिलाओं ने सीएम साय को बांधी राखी, मुख्यमंत्री ने महिला को दिया उपहार। वाराणसी के जूनियर साइंटिस्ट श्याम चौरसिया ने सैनिकों के लिए बनाई स्पेशल एआई राखी, सैनिकों को संचार और सुरक्षा में मदद मिलने का दावा। श्याम चौरसिया ने एक निजी स्कूल की छात्राओं के साथ मिलकर बनाई अनोखी राखी, सैनिकों के लिए पहले भी कई उपकरण बनाए चुके हैं श्याम चौरसिया। यूपी की 50,000 बेटियों को मिलेगी स्कूटी, सीएम योगी का ऐलान, अक्टूबर या नवंबर में शुरू होगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। गणपति उत्सव को लेकर देशभर में तैयारियां शुरू, अमरावती में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। अमरावती में मूर्तिकार नरेश जोहरे की कलाकारी मोह रही है सबका मन, एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं लोगों को कर रही हैं आकर्षित, ज्वेलरी से किया जा रहा है श्रृंगार। मूर्ति कलाकार नरेश जोहरे ने बनाई लालबाग के राजा के स्वरूप वाली गणेश प्रतिमाएं, भोलेनाथ के स्वरूप वाले गणपति की प्रतिमाएं की तैयार। मूर्ति कलाकार नरेश जोहरे ने तैयार की मां पार्वती की गोद में बैठे बप्पा की प्रतिमा, तो कहीं शिवलिंग पर जलाभिषेक करते दिखे बप्पा। नरेश जोहरे के मूर्ति केंद्र में गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक अद्भुत प्रतिमाएं, कहीं नारियल पर विराजे बप्पा तो कहीं भगवान परशुराम के अवतार में दिखे। मुंबई में खेतवाड़ी की गली नंबर 11 में लगी गणपति बप्पा की सबसे ऊंची प्रतिमा, इस साल नरसिम्हा अवतार में दिख रहे हैं गणपति बप्पा। सैतालीस फीट ऊंची है मुंबई के महाराजा बप्पा की ये मूर्ति, 14 सितंबर से शुरू हो रहे गणपति उत्सव की तैयारियां जारी, इस मंडल को मिल चुके हैं कई अवार्ड। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर, ईद के मौके पर हिंदू समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों को मिठाई खिलाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार में सवार लोगों का रेस्क्यू, बाइक सवार को बचाने के दौरान गड्ढे में गिरी कार। मौके पर मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर कार में सवार लोगों की बचाई जान, एम्बुलेंस बुलाकर भेजा अस्पताल। श्रावण मास के दौरान फतेहपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में पारंपरिक झूलनोत्सव की रौनक, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूले पर किया गया विराजमान। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नगर सेठ श्री ठाकुर जी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया, कमल पुष्प के बीच सजा श्री लक्ष्मीनाथ महाराज का दरबार। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक झांकियां भी की गई पेश, इनमें श्री कृष्ण लीला और राम वनवास की कथा का किया गया चित्रण। मंदिर को भी रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजाया गया, बेहद सुंदर नजर आया, दूधिया रंग से रोशनी से नहाया मंदिर। मेले के दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क, भगवान के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे हैं भक्त। यूपी के संभल में जल्द शुरू होगा 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण, फाइनल ब्लू प्रिंट तैयार करने में जुटे अफसर, परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले तीर्थों का किया सर्वे। बाबा बैद्यनाथ धाम के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शन निःशुल्क कर सकेंगे स्थानीय श्रद्धालु, जिला प्रशासन का फैसला। शीघ्र दर्शन के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं को नहीं देनी होगी 600 रुपए की फीस, वैध लोकल पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे दर्शन, फैसले से स्थानीय श्रद्धालु खुश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये बदल रही युवाओं की जिंदगी, फिरोजाबाद के सतीश ने नौकरी छोड़कर शुरू किया अपना काम। अब हर महीने 20 से 25 हजार कमाते हैं फिरोजाबाद के सतीश, रोजाना योजना के तहत 21 से 40 साल की उम्र तक के युवाओं को मिलता है 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी गुड न्यूज, गुजरात के बनासकांठा में बायो सीएनजी मॉडल प्लांट का लोकार्पण, कोड 100 मीट्रिक टन गोबर प्रोसेस की क्षमता। सुजुकी मोटर्स और एनडीडीबी ने किया तैयार, कार्यक्रम के दौरान बायो सीएनजी फिलिंग स्टेशन का भी किया गया उद्घाटन, गाड़ियों को मिलेगी बायो सीएनजी। बायो सीएनजी मॉडल प्लांट से निकलने वाली स्लरी से बनेगी भूमि अमृत नाम की जैविक खाद, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में इससे मिलेगी मदद। देश में कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ की लागत वाली गोबर धन योजना को दी है मंजूरी। कार्यक्रम में सहकारी मॉडल पर आधारित ग्रामीण भारत टैक्सी की हुई शुरुआत, शुरुआती तौर पर 9 टैक्सियों को दिखाई गई हरी झंडी। नोएडा की सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी 17 साल की रोहिणी, महिलाओं को देती हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को काम भी उपलब्ध कराती हैं रोहिणी, कपड़ा उद्योग से निकले कतरन से उपयोगी चीजें तैयार कराती हैं रोहिणी। कतरन से उपयोगी चीजें बनाकर पर्यावरण की भी सुरक्षा करती हैं रोहिणी। 2024 में 6 महिलाओं से शुरू हुआ था काम, अब 250 से ज्यादा महिलाएं तक पहुंचा। काम की ट्रेनिंग मिलने और फिर रोजगार मिलने से सशक्त हो रही हैं महिलाएं, महिलाओं की जिंदगी में आ रहा है बदलाव, 4 से 25,000 रुपए महीने तक कमाई। यहां काम करने वाली महिलाओं को हुनर और रोजगार मिलने के साथ साथ होने वाली आमदनी से सुधर रहा है जीवन स्तर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन महोत्सव का आयोजन, 12 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए नीम जामुन करज और केशिया के 3,500 पौधे। वन महोत्सव में मंत्री सांसद विधायक और अफसरों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी हुए शामिल। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी लगाए गए पौधे, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया प्रेरित। वन महोत्सव अभियान में शामिल अफसरों और छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, पौधों को बांधा रक्षा सूत्र। पौधारोपण को लेकर स्टूडेंट्स में देखा जबरदस्त उत्साह, अलग अलग संस्थाओं के स्टूडेंट्स हुए शामिल, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी खिंचवाई। स्पेन में दुनिया के सबसे बड़े टोमाटिनो फेस्टिवल का आयोजन है, सनोखे फेस्टिवल में हजारों लोग शामिल, फेस्टिवल का जमकर उठाया लुत्फ। बुनोल शहर में आज टोमाटिनो फेस्टिवल में लोगों ने एक घंटे तक एक दूसरे पर जमकर फेंके टमाटर, चोट ना लगे इसलिए मसल कर फेंके जाते हैं टमाटर। टोमाटिनो फेस्टिवल में स्पेन के अलावा कई दूसरे देशों से भी यहां लोग हुए शामिल, ब्रिटेन से पहुंचे प्रतिभागी ने कहा बेहद शानदार रहा अनुभव। टोमाटिनो फेस्टिवल में करीब 1500 क्विंटल पके टमाटर का हुआ इस्तेमाल, टोमाटिनो फेस्टिवल में करीब 22,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। हर साल अगस्त के अंतिम बुधवार को आयोजित किया जाता है ये फेस्टिवल, साल 1945 में गांव वालों की एक लड़ाई के बाद शुरू हुआ था ये फेस्टिवल।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा क्या उपाय करें, ऐसे किन बातों का ध्यान रखें कि आपका तालमेल आपके बॉस के साथ, आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर रहे। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो उच्चाधिकारी होता है वो उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह से संबंध रखता है, क्योंकि अगर मुख्य ग्रह प्रबल नहीं होता तो वो व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बनता। इसके अलावा जो आपसे ऑफिस में ऊंचाई पर बैठा है, जो आपसे उच्च स्थान पर बैठा है, वो सूर्य और मंगल से भी संबंध रखता है। तो आप अपने करियर के मुख्य ग्रह को, सूर्य और मंगल को मजबूत करके अपने संबंध अपने बॉस के साथ बेहतर कर सकते हैं। और आपको अपने संबंध अगर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग, अपने सहयोगियों के साथ बेहतर करने हैं तो अपने कुंडली के कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आप नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी जाएगी या नौकरी में समस्या पैदा होगी। अगर आप प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, या अगर आप सेना में हैं, तो बॉस के साथ संबंध कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र मंगल और सूर्य से मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। यहां पर अपने उच्चाधिकारी के साथ अगर आप तालमेल चाहते हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और कार्यालय निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, तो काले रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए। अब अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा करेंगे? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है, बृहस्पति और चंद्रमा। मुख्य रूप से अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, आप शिक्षा क्षेत्र में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, बॉस के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। क्या करेंगे? सफेद और पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा, और जब भी ऑफिस जाएंगे जरा सी मिश्री खाकर जाइएगा, चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा बेहतर होगा तो बॉस के साथ तालमेल बेहतर हो जाएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तकनीक में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, परिवहन के क्षेत्र में हैं, तो बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा बनेगा? टेक्नोलॉजी का क्षेत्र राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं बुध से संबंध रखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को बेहतर करना होगा। कपड़ा पहनने में अधिक से अधिक हल्के नीले रंग का प्रयोग करिए और बॉस के साथ तालमेल आपका ठीक रहे, कार्यालय जाते समय लौंग खाकर जाइए, कोई मीठी चीज मत खाइए और मंगलवार को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, इसका प्रयोग करने से परहेज करिए। अगर आप मीडिया, ग्लैमर या फैशन के क्षेत्र में हैं और यहां पर बॉस के साथ अच्छा तालमेल चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये क्षेत्र शुद्ध रूप से शुक्र का क्षेत्र है और शुक्र को मजबूत करके आप बॉस को खुश रख सकते हैं और बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं। जब भी ऑफिस जाएं, जरा सी दही और चीनी खाकर जाएं और रेगुलरली नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अगर मीडिया, फैशन, ग्लैमर, फिल्म इन क्षेत्रों में हैं तो खाली पेट घर से ना निकलें, शुक्र कमजोर होगा और तालमेल ऑफिस में खराब होगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कॉरपोरेट में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो क्या करें कि बॉस के साथ तालमेल ठीक हो? ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है ये अलग अलग ग्रहों से कंट्रोल होता है। जैसे फाइनेंस यानी वित्त बृहस्पति से, सलाहकारिता कंसल्टेंसी बुध से, मैनेजमेंट बुध और बृहस्पति दोनों से मैनेज होता है। इस क्षेत्र में अगर आप बॉस को खुश रखना चाहते हैं, बेहतर तालमेल चाहते हैं, तो सारे ग्रहों पर संतुलन आवश्यक है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को सादे जल से, प्लेन वाटर से अर्घ दीजिए। घर से निकलते समय इलायची खाइए, हरी इलायची, और अपनी जेब में एक इलायची जरूर रख लीजिए। देखिए, सबसे मुश्किल क्षेत्र है मार्केटिंग का। यहां पर बॉस के साथ तालमेल बैठा पाना या बॉस को प्रसन्न कर पाना सबसे कठिन काम है। तो अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं और बॉस के साथ तालमेल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से बुध का अधिकार होता है और इस क्षेत्र में बॉस को खुश रखना और बॉस के साथ तालमेल रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो बॉस के साथ तालमेल के लिए और इस क्षेत्र में सफलता के लिए रोज सवेरे नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। घर से निकलते समय सौंफ खाकर निकलिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग से परहेज करिए और बृहस्पतिवार के दिन बॉस के साथ रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑफिस में कभी भी गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए। फैशन में भी फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए, अन्यथा आपका शनि खराब होगा और जीवन में हमेशा आपको नौकरी को लेकर के समस्याएं परेशान करेंगी। कि अगर आपका रिश्ता या प्रेम संबंध टूट रहा है, आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे गुलाबी कपड़ा पहन करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और मधुराष्टक का पाठ करने के बाद प्रेम संबंध बचाने की प्रार्थना करिए। आपके रिश्ते, आपका प्रेम संबंध बच जाएंगे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: कल मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पावन त्योहार से पहले देशभर के बाजारों में रौनक, बहनों को लुभा रही हैं रंग बिरंगी राखियां। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात, नोएडा में मुफ्त ई बस यात्रा का ऐलान, आज सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक मिलेगा लाभ। देश के कई हिस्सों में आज भी सक्रिय रहेगा मॉनसून, दिल्ली यूपी बिहार में बादल छाए रहने के अनुमान, बारिश होने की भी संभावना। जापान में दिखा अनोखा नजारा, 400 टन के किले को लोगों ने रस्सियों से खींचकर 3 मीटर आगे खिसकाया, भूकंप के बाद मरम्मत के लिए अपनी जगह से हटाया गया था किला। चीन में 30वें रिवर लैटिन फेस्टिवल का आयोजन, हजारों लालटेन से जगमगाया चीन की जिजियांग की नदी, लोगों ने लालटेन छोड़कर मांगी मन्नतें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर।
5: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
5: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ चर्चा होने वाली है बॉस के साथ आपके कोऑर्डिनेशन के बारे में। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपके तालमेल में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप उपाय चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी और बॉस की बात बन जाए, आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपके रिश्ते जो हैं वो सुधर जाए, तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए? बेहतर तालमेल बनाने के लिए आपको कौन कौन से अचूक उपाय करने हैं, पंडित जी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: गुड देखिए, ऑफिस में कभी भी गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए। फैशन में भी फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए, अन्यथा आपका शनि खराब होगा और जीवन में हमेशा आपको नौकरी को लेकर के समस्याएं परेशान करेंगी। तो ऑफिस में गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर जाने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 27 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 9:08 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं 1:35 तक। राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी, हम बात कर रहे हैं बॉस के साथ आपके तालमेल के बारे में। बॉस के साथ जो तालमेल होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होता है, किन ग्रहों से संबंध होता है पंडित जी, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं।
0: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा क्या उपाय करें, ऐसे किन बातों का ध्यान रखें कि आपका तालमेल आपके बॉस के साथ, आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर रहे। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो उच्चाधिकारी होता है वो उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह से संबंध रखता है, क्योंकि अगर मुख्य ग्रह प्रबल नहीं होता तो वो व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बनता। इसके अलावा जो आपसे ऑफिस में ऊंचाई पर बैठा है, जो आपसे उच्च स्थान पर बैठा है, वो सूर्य और मंगल से भी संबंध रखता है। तो आप अपने करियर के मुख्य ग्रह को सूर्य और मंगल को मजबूत करके अपने संबंध अपने बॉस के साथ बेहतर कर सकते हैं। और आपको अपने संबंध अगर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग अपने सहयोगियों के साथ बेहतर करने हैं तो अपने कुंडली के कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आप नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी जाएगी या नौकरी में समस्या पैदा होगी।
5: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। प्रश्न ये है पंडित जी आपसे कि अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, वहां पर काम करते हैं, तो बॉस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं तो कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो किए जा सकते हैं?
0: अगर आप प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं या अगर आप सेना में हैं तो बॉस के साथ संबंध कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र मंगल और सूर्य से मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। यहां पर अपने उच्चाधिकारी के साथ अगर आप तालमेल चाहते हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और कार्यालय निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, तो काले रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए।
5: चलिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से आगे जाकर पूछेंगे, महावाई के बारे में बताएंगे, आपके सवाल भी इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बारी है पहली तीन राशियों की, नाम है इनका मेष, वृष और मिथुन।
0: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
5: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं, इसी मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ। पंडित जी, सवाल यह है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं, यहां पर अपने बॉस के साथ तालमेल को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो सुधर जाए, तो फिर कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
0: अब अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा करेंगे? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है, बृहस्पति और चंद्रमा। मुख्य रूप से अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, आप शिक्षा क्षेत्र में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, बॉस के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। क्या करेंगे? सफेद और पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा और जब भी ऑफिस जाएंगे जरा सी मिश्री खाकर जाइएगा, चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा बेहतर होगा तो बॉस के साथ तालमेल बेहतर हो जाएगा।
5: चलिए इसी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके कंफ्यूजन्स को भी दूर करेंगे, लेकिन आते हैं वापस राशिफल को। अगली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी आप दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, इससे पहले आपको सूचित कर देते हैं, कोई भी प्रश्न है आपकी, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो पंडित जी आपको बताएंगे तमाम उपाय। लेकिन सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है वो जान लीजिए। आपको ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजने हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी।
0: जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 2008, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है भोपाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहता है, तो क्या मेरा बेटा अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर पाएगा? अर्चना जी, आपके पुत्र की कुंडली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता कमजोर है, मेहनत नहीं करना चाहते, दिमाग अच्छा है जिस वजह से सफलताएं पा जाते हैं। वैसे कुंडली इनकी कहती है कि आगे किसी एवरेज संस्थान से ये इंजीनियरिंग कर लेंगे, ये संभावना इनकी कुंडली में बन रही है। इतना जरूर ध्यान दीजिए कि इंजीनियरिंग के दौरान ये भटके नहीं, गलत संगति वगैरह में ना पड़ जाएं। इनको अभी से एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में बुधवार की शाम को इनको गले में धारण करवाएं और आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा।
5: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का। दूसरे दर्शक का कौन सा सवाल पंडित जी ने इस शो में लिया है वो जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: जी अगला प्रश्न दीपक गुप्ता जी ने हमें लिखा है और दीपक जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1975। जन्म का समय सुबह के 8:15। जन्म स्थान है आगरा। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं पहले नौकरी कर रहा था बेंगलोर में और अब मैं नौकरी छोड़ करके आगरा वापस आ गया हूँ। अपना कोई व्यापार करना चाहता हूँ तो क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? दीपक जी आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए। अभी आपके लिए नौकरी करना ज़्यादा बेहतर होगा। 2028 के जुलाई के बाद

0: पहन लें 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए अगला प्रश्न ये है पंडित जी आपसे कि अगर कोई शख्स तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत है, परिवहन के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तालमेल बिठाने के जद्दोजहद में वो लगा है, बॉस के साथ किसी वजह से तालमेल बैठ नहीं पा रहा, तो फिर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
0: अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तकनीक में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, परिवहन के क्षेत्र में हैं, तो बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा बनेगा? टेक्नोलॉजी का क्षेत्र राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं बुध से संबंध रखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को बेहतर करना होगा। कपड़ा पहनने में अधिक से अधिक हल्के नीले रंग का प्रयोग करिए और बॉस के साथ तालमेल आपका ठीक रहे, कार्यालय जाते समय लौंग खाकर जाइए, कोई मीठी चीज मत खाइए और मंगलवार को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, इसका प्रयोग करने से परहेज करिए।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी जो क्षेत्र हमारा है, मीडिया की हम बात कर लेते हैं, ग्लैमर क्षेत्र की बात करते हैं और फैशन क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अगर आप बॉस के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर कौन कौन से उपाय आप बताएंगे?
0: अगर आप मीडिया, ग्लैमर या फैशन के क्षेत्र में हैं और यहाँ पर बॉस के साथ अच्छा तालमेल चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये क्षेत्र शुद्ध रूप से शुक्र का क्षेत्र है और शुक्र को मजबूत करके आप बॉस को खुश रख सकते हैं और बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं। जब भी ऑफिस जाएं, जरा सी दही और चीनी खाकर जाएं और रेगुलरली नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अगर मीडिया, फैशन, ग्लैमर, फिल्म इन क्षेत्रों में हैं तो खाली पेट घर से ना निकलें, शुक्र कमजोर होगा और तालमेल ऑफिस में खराब होगा।
1: चलिए राशिफल पर वापस आते हुए बात करते हैं अगली तीन राशियों की। अब बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70।

0: प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। सवाल यह है कि बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर भी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके काम करने में, या फिर बॉस के साथ रिश्ते जो हैं वो सही नहीं हैं, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं पंडित जी आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं।
0: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो क्या करें कि बॉस के साथ तालमेल ठीक हो। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये अलग अलग ग्रहों से कंट्रोल होता है, जैसे फाइनेंस यानी वित्त बृहस्पति से, सलाहकारिता कंसल्टेंसी बुध से, मैनेजमेंट बुध और बृहस्पति दोनों से मैनेज होता है। इस क्षेत्र में अगर आप बॉस को खुश रखना चाहते हैं, बेहतर तालमेल चाहते हैं, तो सारे ग्रहों पर संतुलन आवश्यक है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को सादे जल से, प्लेन वाटर से अर्घ दीजिए। घर से निकलते समय इलायची खाइए, हरी इलायची, और अपनी जेब में एक इलायची जरूर रख लीजिए।
1: चलिए अगला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ। पंडित जी अब ये बताइए कि मार्केटिंग क्षेत्र वालों के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं कि वो अपने रिश्तों को बेहतर कर लें बॉस के साथ।
0: देखिए सबसे मुश्किल क्षेत्र है मार्केटिंग का। यहां पर बॉस के साथ तालमेल बैठा पाना या बॉस को प्रसन्न कर पाना सबसे कठिन काम है। तो अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं और बॉस के साथ तालमेल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे। इस क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से बुध का अधिकार होता है और इस क्षेत्र में बॉस को खुश रखना और बॉस के साथ तालमेल रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो बॉस के साथ तालमेल के लिए और इस क्षेत्र में सफलता के लिए रोज सवेरे नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। घर से निकलते समय सौंफ खाकर निकलिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग से परहेज करिए और बृहस्पतिवार के दिन बॉस के साथ रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
1: चलिए अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर होगी, काम की रुकावट दूर होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।

0: नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का अगला सवाल, और जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सा है अगला प्रश्न। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न विनीता ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। विनीता की जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1994। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है उरई, उत्तर प्रदेश। विनीता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? विनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और जून 2026 से जून 2027 का जो समय है इसमें आपकी शादी हो जाएगी आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा है, लेकिन विवाह के बाद आपको लखनऊ से दूर जाना पड़ेगा, हो सकता है विदेश भी जाना पड़े, तो स्थान परिवर्तन की संभावना आपकी विवाह के बाद बन रही है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए वक्त हो चला है अगला प्रश्न इस शो में शामिल करने का, यानी दर्शकों का, आप सबका अंतिम सवाल। तो पंडित जी, कौन सा अंतिम सवाल आप तक आया है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न दीप्ति ने हमें लिखा है, और दीप्ति जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1979। जन्म का समय रात में 10:55। जन्म स्थान है जयपुर। दीप्ति कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफी समय से अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे लगातार लगी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए? दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपनी आंखों का और केवल अपने डाइजेशन का ध्यान देने की जरूरत है। अगर अपनी आंखों का और डाइजेशन का ध्यान रखें तो बाकी मामले में कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। बीमारियों को लेकर के बेवजह का वहम, बेवजह का तनाव मत पालिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 14-15 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन लोगों का जन्मदिन है 27 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 27 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य का मामला बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है, क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा करने का कोई निश्चित समय है? देखिए, शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। वैसे शिव जी की पूजा सूर्यास्त के आसपास यानी प्रदोष काल में करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है।
1: चलिए पंडित जी आपको बताएंगे 27 अगस्त 2026 यानी बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करिएगा, स्वास्थ्य की समस्या से निकलने का आपको रास्ता मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 27 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं आज के शो की गुडलक राशि यानी आपकी गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कमियां क्या हैं, कहां सुधार करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कन्या। आपको बेवजह की चालाकी और स्वार्थ दिखाने से बचना चाहिए। जीवन में संतोष रखेंगे, संतोष का भाव रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: चले तमाम उपाय जानकारियां इस शो से जुड़े हुए तमाम प्रश्न और आपके प्रश्न हमने शामिल कर लिए हैं। अब बारी आती है खास उपाय के ऊपर आने की, तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय जिसका आपको भी इंतजार रहता है खास उपाय कौन सा है। पंडित जी
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका रिश्ता या प्रेम संबंध टूट रहा है, आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे गुलाबी कपड़ा पहन करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और मधुराष्टक का पाठ करने के बाद प्रेम संबंध बचाने की प्रार्थना करिए। आपके रिश्ते आपका प्रेम संबंध बच जाएंगे।
1: तो पंडित जी, इस जानकारी के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए और महा उपाय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और अब बात रक्षाबंधन की तैयारियों की कर लेते हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर बाजार राखियों से गुलजार हो गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सज गई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। 28 अगस्त यानी शुक्रवार को राखी का पावन पर्व है, जिसके लिए बाजार सज चुके हैं और सबसे ज्यादा डिमांड डिजाइनर राखियों की है।

0: भाई बहनों के बीच अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन में अब चंद दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में बाजारों में रौनक और चहल पहल पड़ गई है। अलग अलग रंग और डिजाइनों की राखियों से मार्केट गुलजार है। दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर नए डिजाइन वाली राखियां बहनों को लुभा रही हैं। रक्षाबंधन से पहले जहां बाजार पारंपरिक और डिजाइनर राखियों से गुलजार हैं, वहीं आगरा में कारीगरों ने पहली बार प्राकृतिक रत्नों का इस्तेमाल कर राखियां तैयार की हैं, जो अपने अनूठे और आकर्षक रूप के लिए पसंद की जा रही हैं। ये राखियां आगरा ताजगंज इलाके में बनाई जा रही हैं। इन्हें तैयार करने वाले कारीगर प्राकृतिक रत्नों के टुकड़ों को तराश कर उनकी चमक और सुंदरता निखार रहे हैं। ताजमहल की पच्चीकारी की तर्ज पर ये कारीगर इन पत्थरों को अपने हाथों से तराशते और पॉलिश करते हैं। प्राकृतिक और रंग बिरंगे नेचुरल सेमी प्रेशस स्टोन से बनी बेहद खूबसूरत और प्रीमियम राखियां खूब पसंद की जा रही हैं।
1: हम लोग फोर्थ जनरेशन से जो हैंडीक्राफ्ट के कारोबार को करते आ रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर हम लोगों के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करा गया, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक की राखी, ब्रास की राखी, सिल्वर की राखी आती थी, जो आदमी कुछ वक्त के लिए यूज करता था, फिर उसको उठा के रख दिया करता था, और फिर हर नए त्यौहार पे एक नई चीज़ को खरीदने की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने ये सब चीज़ें सोचते हुए इस बार मार्केट के अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया। हमने नेचुरल सेमी प्रेशर स्टोन्स की राखियों को तैयार कराया, जो कि कारीगरों के द्वारा तैयार करा गया है। हमने इसके अंदर न्यूजीलैंड से मदर ऑफ पर्ल को मंगाया, अफ्रीका से जो है मलाकाइट स्टोन को मंगाया, और ब्राज़ील से हमने एगेट्स को मंगाया, और उसके बाद एक आर्ट वर्क तैयार करके एक राखी बनाई गई है।
0: महाराष्ट्र में अकोला के बाजार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी पसंद करने के लिए दुकानों पर बहनों की भीड़ जुट रही है। यहाँ के दुकानों पर पारंपरिक राखियों से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियाँ मौजूद हैं।
2: रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो है बाजारों में जो है दुकान यहाँ पर लग चुके हैं राखियों के। एक सुंदर सुंदर राखियां जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है संपूर्ण दुकान में लगी हुई है, और इस दुकान में ये सिंपल राखियां, लेकिन ये धागे वाली राखियां जो अपने भाई को बहन बड़े प्यार से और बड़े श्रद्धा के साथ बांधती है, और ये पवित्र बंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सनातन धर्म में। यहाँ पर बहुत ही वैरायटी वाली राखियाँ है। हम फिलहाल अकोला के एक ऐसे दुकान में हैं जहाँ पर जो है लगभग 500 रुपए से लेकर तो 10 रुपए तक की राखी है, और ये जो राखी है ये जो है मोतियों की राखी है, कोई रुद्राक्ष वाली है, कोई माला वाली यहाँ पर राखी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
0: बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ तो भाई भाभी के लिए कपल राखी, इन सब के अलावा डायमंड लुक वाली राखी, रिंग राखी और ज्वेलरी डिजाइन की राखियों की डिमांड है। बहनें इस बाजार में अपने भाई के लिए राखियां पसंद कर रही हैं।
2: क्या चॉइस है अपने भैया के लिए, क्योंकि एक ही बार त्योहार आता है, कितनी खुशी है। देखिए हंसकर तो आप बता रहे हैं कि भाई के लिए बहुत ही वैरायटी वाली खरीदनी है, क्या प्लान करके आई हो?
3: अभी तो बहुत बढ़िया राखी लेने का इरादा है, लेकिन अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कौन सी लेनी है, क्या करना है, तो देख रहे अभी।
2: भाई खास हो तो बहन भी उसके लिए खास राखी सोचती है।
3: हाँ, वो तो है, अभी देख रहे हैं जो अच्छे से अच्छी राखी मिलेंगी वो ले लेंगे।
4: रक्षाबंधन ये बहुत स्पेशल ओकेशन होता है, सबके लिए होता है, जिनके भाई होते भी है जिनके नहीं भी होते हैं उनके लिए भी बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि सबके पास एक ऐसा भाई तो जरूर होता है कि जो उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे, और जो जब भी कभी अड़चन आ जाए तो उसके उसके लिए आप जल्दी से आ जाए। मैंने अपने भाई के लिए बहुत हीरे जैसी राखी ली है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार हीरा लगा हुआ है, मेरा भाई भी हीरे जैसा ही है।
0: राजस्थान के अलवर की राखियों की डिमांड विदेश तक में है। यहाँ के बाजार में 1 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियाँ मिल रहे हैं। इस बार खासकर बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ही पतली डोरे वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
5: देश विदेश में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, तो अलवर की राखियां देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है। करीब 4 से 5 हजार डिजाइनों में तैयार होने वाली अलवर की राखियां देश के अलावा करीब 15 देशों में सप्लाई होती है। मैं इस समय एक गोदाम पर मौजूद हूं जहां पर तरह तरह की राखियां हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये कार्टून कैरेक्टर की राखियां हैं। ये राखियों के साथ ही इरेजर का भी काम करती हैं। छोटे बच्चों को ये राखियां खास पसंद आ रही हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डिजाइंस, एस्ट्रोनॉट तरह के जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के रूप में इनको तैयार किया गया है। और इन राखियों को रक्षाबंधन के बाद बच्चे अपने बैग, स्कूल बैग में भी काम में ले सकते हैं। इरेजर का ये काम करेंगी। इसके अलावा तरह तरह की राखियां कार्टून कैरेक्टर के रूप में, लाइट वाली राखियां, म्यूजिक वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है।
0: ये परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए है, बल्कि हजारों परिवारों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी बन चुकी है। यहां की बनी राखियां देखने में सुंदर तो होती ही है, साथ ही सस्ती भी मिलती है।
6: पूरे अलवर में जब माल यहीं से सप्लाई होता है तो आप सोच लीजिए, वैरायटी तो सबसे ज्यादा यहीं पे है और यहीं से ही हर जगह माल सप्लाई होता है, तो वैरायटी जितनी यहाँ मिलते हैं शायद ही कहीं मिलती होंगी राखियों में।
5: महिलाओं के लिए कुछ अलग से डिजाइन की डिमांड?
6: हाँ, बहुत टाइप्स के डिजाइन है। आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने टाइप्स के डिजाइन लगे हुए हैं।
7: बहुत उत्साह होता है रक्षाबंधन पे, तो बहनों में तो इतना उत्साह होता है, भाइयों के राखी बांधती है, बहुत उत्साह होता है।
5: शॉपिंग करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है, किस किस तरह की राखियाँ पसंद कर रहे हैं?
7: देखो, मुझे पसंद आ जाए तो आए हैं, जैसे जैसे पसंद आएंगे वैसे वैसे ले लेंगे।
5: कोई खास डिजाइन या ऐसा भी अब समय के साथ साथ चेंज होने लगा है?
7: ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे जो पसंद आएगा वैसे ले लेंगे।
8: भैया भाभी का जोड़ा है,
7: जो भैया भाभी का जोड़ा भी है वैसे भी ले सकते हैं, सादा भी ले सकते हैं, जैसे रास में आ रही वो भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं।
0: अलवर के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में राखी बनाई जाती है, जिसकी वजह से इस कारोबार में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रक्षाबंधन के अवसर पर भगवान खजराना गणेश को विशाल 40 इंच लंबी और 40 इंच चौड़ी भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। ये राखी करीब 2.5 महीने की मेहनत से तैयार की गई है और इसमें देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों से मंगाई गई विशेष सामग्री का उपयोग किया गया है। पिछले 24 सालों से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहा पालरेचा परिवार ने इस राखी को तैयार किया है। इस विशेष राखी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक संदेशों को पिरोया गया है।
9: 10 से 15 लोग मिलके हम ये राखी बनाते हैं और करीबन हमको 1 से 2 महीना लगता है इस राखी को कंप्लीट करने में। और इसमें आप देखें कि सूरत के मोती और जयपुर कलकत्ता का बारीक काम किया है, पूरा हैंडवर्क की राखी है और हैंडमेड राखी है।
0: इस साल राखी की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर आधारित है। राखी में भगवान जगन्नाथ, बाबा महाकाल, माँ वाग्देवी, महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूपों के माध्यम से राष्ट्र गौरव, सनातन संस्कृति, समृद्धि, शक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया है।
9: 25 सालों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त के दिन अर्पित की जाएगी। यह 40x40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है। हम लोग हर साल एक थीम बेस्ड राखी बनाते हैं और वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको हमने दर्शाते हुए एक सनातन धर्म पर राखी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कमल के अंदर विराजित जगन्नाथ जी, और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो बाबा महाकाल, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सभी का हमने इसमें वो किया है। खजराना गणेश जी को यह राखी सिर्फ चिंतामण गणेश जी, महाकालेश्वर, वीर बगीचे, हनुमान मंदिर ऐसे कई मंदिरों में अर्पित की जाएगी।
0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए विशाल राखी तैयार की गई है, जिसे उन्हें रक्षाबंधन के दिन पहनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए विशेष पारंपरिक और भव्य राखियां तैयार की गई हैं। ये विशेष राखियां बासुंगा पाट नाम की पवित्र रेशमी कपड़े और पारंपरिक प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं।
10: जगन्नाथ जी महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे और बलभद्र महाप्रभु 2 राखी परिधान करेंगे। इसका साथ में 2 माला भी, सुपारी माला भी परिधान करेंगे। ये हम इसको चिताला की अमावस्या से शुरू करते हैं। इसमें हम बनाने के लिए 10-12 दिन लगता है ये अभी काम कंप्लीट हो गया है।
0: इस बार धार्मिक राखियों की भी खूब डिमांड है, जैसे राधा कृष्ण, गणेश, शिव पार्वती और श्री राम की आकृति वाली राखियां। स्टोन वर्क, डायमंड लुक और फैंसी राखियां भी युवतियों और स्टाइलिश राखियों की चाह रखने वालों को खूब पसंद आ रही हैं। हर बजट और पसंद के मुताबिक राखियों की ये अनगिनत वैरायटी रक्षाबंधन को और भी खास बना रही है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, अकोला से धनंजय साबले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: मध्य प्रदेश में रामगंज मंडी और भोपाल रूट पर ट्रेनों को बहुत जल्द नई रफ्तार मिलने वाली है। नए ट्रैक पर कल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन संचालन का सफल ट्रायल हुआ। जी हां, इस परियोजना में इस रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को खासा सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही इस रूट पर माल ढुलाई में भी कम वक्त लगेगा।

0: के रेल मुसाफिरों को एक नई सौगात दे दी है। रामगंज मंडी और भोपाल के बीच नई रेल परियोजना के तहत ब्यावरा और सोनकच के बीच पहली बार ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इस नए ट्रैक के सफल ट्रायल के बाद बहुत जल्द इस रूट पर पैसेंजर और माल गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी मिल जाएगी। रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना के तहत 276 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना है। इसमें से 226 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। व्यावरा और सोनकच के बीच 24.5 किलोमीटर के नए ट्रैक का ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन संचालन का ट्रायल सफल।
1: आज इसकी
0: मुंबई से आए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम ने इस नए ट्रैक का जायजा लिया और इसकी सुरक्षा जांच पर मुहर भी लगा दी। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस पूरे रूट का काम तय वक्त पर ही पूरा कर लिया जाएगा। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ा मन्ना धाम पहुंची छड़ी मुबारक, भगवान भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं, कल रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी यात्रा। कर्नाटका में गणेश उत्सव की तैयारियां, बनाई जा रही है इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण का दे रही है संदेश। रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से जारी, बाजारों में छाई रौनक, जमकर हो रही है राखी और तोहफों की खरीदारी। जर्मनी में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत, 1700 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हुए शरीक, लोगों में दिखा खासा उत्साह।

0: लैंटर्न फेस्टिवल का भव्य आयोजन, हजारों लालटेन से जगमगा उठी चीन की जिजियांग नदी, लोगों ने लालटेन छोड़कर मांगी मन्नतें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: शुभ समाचार की शुरुआत रक्षाबंधन के साथ। रक्षाबंधन का त्योहार कल है और इसके लिए देश भर के बाजार राखियों की रंग बिरंगी रौनक से गुलजार हैं। राजधानी दिल्ली के बाजारों में सोने चांदी की राखियां लोगों को खूब लुभा रही हैं, यानी देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
2: कल शुक्रवार को बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और इससे पहले देश के वीर जवानों की कलाई पर भी राखी से शोभा बढ़ा रही है। राखी के हर रंग में भाई बहन के रिश्ते के साथ देश के वीर जवानों के लिए सम्मान और स्नेह भी नजर आ रहा है।
0: तो वही रक्षाबंधन के बाद कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित स्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी भव्य रूप से मनाई जाती है, जिसको लेकर वहां तैयारियां भी भव्य रूप से चल रही हैं। तो ये सब भी आगे आपको दिखाएंगे।
2: कोलंबो टेस्ट का आज पांचवा और आखिरी दिन है। मेजबान टीम दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेल रही है और उसने 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं, लेकिन उसके पास बढ़त महज 16 रनों की ही है और ऐसे में टीम इंडिया वहां जीत के बेहद करीब है। तो आज जीत के लिए शुभमन एंड कंपनी ने कैसे बनाई है रणनीति, बताएंगे आगे।
0: इसके अलावा आपको चीन भी लिए चलेंगे, जहां 30वें रिवर लैटिन फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लालटेन से चीन की जिजियांग नदी जगमगा उठी, लोगों ने लालटेन छोड़कर मन्नतें भी मांगी। तो ये रंग भी आगे होंगे आपके सामने, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
2: भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए नीति घाटी की महिलाओं ने इस रक्षाबंधन को बेहद खास बना दिया। नीति घाटी के जुम्मा और कागा गांव की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में अब गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची और वहां पर सीमा की रक्षा में तैनात जवानों की कलाई पर राखी बांधी और इस पवित्र त्योहार पर वो अकेले नहीं है ये व्यक्त किया।
0: प्रयागराज के बाजार में रक्षाबंधन पर्व नजदीक आने के साथ ही त्योहार की रौनक बढ़ गई है। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक इस पर्व के लिए दुकानों के आसपास रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से सजी दुकानें ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही हैं। कई स्थानों पर महिलाओं ने स्थायी स्टॉल लगाकर भी राखियों की बिक्री की।
2: देशभर में गणपति उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अमरावती में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में कलाकार जुट गए हैं। अमरावती में मूर्तिकार नरेश जोहरे एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं ज्वेलरी से श्रृंगार किया जा रहा है।
0: मुंबई के खेतवाड़ी की 11वीं गली में इस वर्ष गणपति बप्पा की प्रतिमा नरसिम्हा के अवतार में स्थापित की गई, जो लगभग 47 फीट ऊंची है। आपको बता दें कि 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत होगी।
2: केरल में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर जहां एक ओर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं हर तरफ लोक संस्कृति की अद्भुत छटा भी बिखरी हुई है। जहां त्रिक्काकारा मंदिर में ओणम साधे और चेंडा मेलम की परंपरा निभाई गई, ओणम साधे जहां बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ बैठकर पारंपरिक तरीके से सामूहिक भोज का आनंद लिया।
0: देवघर के बैद्यनाथ धाम में अब स्थानीय श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक जिन स्थानीय लोगों के पास वैध लोकल आईडी प्रूफ है, उन्हें अब बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शनम के लिए निर्धारित 600 रुपए का शुल्क नहीं देना होगा। जिला प्रशासन के इस फैसले पर स्थानीय लोगों में खुशी जताई है।
2: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया गया। 12 हेक्टेयर क्षेत्र के नीम लगाए गए और इसके साथ ही जामुन, करज और केशिया के 3500 पौधे लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में सांसद विधायक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
0: लंदन के एक फूड हॉल में नेशनल डॉग डे के मौके पर डॉग्स के लिए खास फूड फेस्टिवल शुरू किया गया। यहां डॉग्स को इंसानों की तरह अलग अलग डिश चखने का मौका मिला। मेन्यू में चिकन राइस, सेलमन, डक नूडल्स, चिकन टाकोस, मिनी स्टेक और फ्राइज शामिल रहे। इतना ही नहीं, डॉग्स के लिए पिज्जा और संडे रोस्ट भी तैयार किया गया।
2: हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए डर और रोमांच से भरपूर फिल्म बोक्शी का ट्रेलर सामने आ गया है। सिक्किम के जंगलों की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म नारीवादी लोक कथाओं से प्रेरित है और इस फिल्म में चिराया, प्रसन्न बिष्ट और सिद्धार्थ शॉ मुख्य भूमिका में हैं। आपको बता दें, कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराहना पाने के बाद फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होगी।

और शुभ समाचार में सबसे पहले बात रक्षाबंधन की करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है और देश भर के बाजार राखियों की रंग बिरंगी रौनक से गुलजार हैं। कहीं बहनों की ओर से खास राखियां तैयार की जा रही हैं, तो कहीं देश के जवानों के लिए राखी में टेक्निक और भावनाओं का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। वाराणसी में जवानों के लिए AI वाली राखी तैयार की गई, जिसमें कई खास खूबियां हैं। पठानकोट में जवानों की कलाई पर बहनों के स्नेह की डोर बांधी गई, तो रायपुर में सुरक्षा बलों के लिए स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधर पुरी में दुनिया की सबसे बड़ी राखी तैयार कर रहे इसे खास आकर्षण जो है उससे बनाया गया। और राजधानी दिल्ली के बाजारों में सोने चांदी की राखियां लोगों को खूब लुभा रही है। यानी देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर है और राखी के हर रंग में भाई बहन के रिश्ते के साथ देश के वीर जवानों के लिए सम्मान और स्नेह भी नजर आ रहा है।

0: त्योहारों की उमंग के साथ आधुनिक तकनीक की जुगलबंदी हो जाए तो नतीजा कुछ ऐसे ही खास डिजाइन की शक्ल में सामने आता है। पूरे देश में इन दिनों रक्षाबंधन पर्व का उल्लास है। भाई बहन के अटूट बंधन के इस त्योहार पर वाराणसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने देश के वीर जवानों के लिए एक अनोखी राखी तैयार की है। वाराणसी के युवा इनोवेटर श्याम चौरसिया के साथ मिलकर छात्राओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये राखी बनाई है। उनका दावा है कि सोलर पावर से चलने वाली ये राखी बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है।
1: मेरी टीम के साथ मिलकर एक राखी तैयार किया है जो कि इस वीर जवानों के सुरक्षा में भी काम आएगा। हम बहनों की तरफ से अपने वीर जवान भाइयों के लिए एक उपहार है। ये राखी उनकी सेफ्टी भी करेगा और उनकी बहुत काम आएगा। बिना नेटवर्क के इस राखी से वो वीडियो कॉल पे बात भी कर पाएंगे और इससे अपने गन का ट्रिगर भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें SOS की भी सुविधा उपलब्ध है और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भी ये काम करता है। हमने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए ये राखी बनाया है।
0: इस सोलर सोल्जर राखी के प्रोटोटाइप को इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। इस राखी में 2.1 इंच का डिस्प्ले लगा है। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें माइक्रोफोन और कैमरा मौजूद है। ये सोलर एनर्जी खुद ही चार्ज हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी ये कनेक्ट हो सकता है। इसमें ऑडियो वीडियो संचार की सुविधा भी दी गई है। इसका वजन करीब 70 ग्राम है।
2: हम लोगों ने जो राखी डिजाइन किया है वो स्पेशली इस राखी के जरिए जो हमारे सोल्जर्स है वो बॉर्डर पे अपने हथियारों को संचालित कर सकते हैं। कभी भी आप सपोज की हमारे जो सोल्जर्स है बॉर्डर पे कहीं घायल हो गए या उनको अपने हथियारों को ऑपरेट करना है तो अपने राखी के जरिए ही वो उन गन को ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसी परिस्थिति में अगर हमारे जवान को गोली लग जाती है तो राखी के जरिए कंट्रोल रूम को सूचना भी भेज सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये भी है कि वीडियो कॉल के जरिए अगर कोई हमारे जवान घायल हो जाते हैं तो वो कंट्रोल रूम को संपर्क साध सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हमने अपने ITM कॉलेज के इनोवेशन सेल में अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर के तैयार किया है।
0: इस सोलर राखी को तैयार करने में करीब 3 महीने का वक्त लगा और इसे बनाने में करीब 1.25 लाख रुपए की लागत आई। इसे तैयार करने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज अब इस राखी को देश के जवानों तक पहुंचाना चाहता है ताकि जवानों को इस रक्षाबंधन पर हिफाजत की एक नई सौगात मिल सके। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश भर में रक्षाबंधन की रौनक छाई हुई है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को लेकर बाजार गुलजार हैं। बहनें राखियों की खरीदारी में जुटी हुई हैं, जिसे वो अब एक दिन बाद यानी शुक्रवार को अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी और उससे पहले देश के वीर जवानों की कलाई की शोभा राखी बढ़ा रही है।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करने में जुटी हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार भले ही शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन देश की सीमा पर तैनात सेना के जवानों से लेकर पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी सजने लगी है। देश की रक्षा में तैनात जो जवान इस त्योहार अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से राखियां भेजी जा रही हैं। वहीं लड़कियां और महिलाएं इन जवानों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां बांटती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन से लगती सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए नीति घाटी की महिलाओं ने रक्षाबंधन को खास बना दिया। पारंपरिक नृत्य करते हुए महिलाएं केलांग मंडी होते हुए गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजी थजी जुम्मा और कागा गांव की इन महिलाओं ने गोटिंग आर्मी कैंप पहुंचकर जवानों की कलाई पर राखी बांधी। ये पल सरहद के इन सुरमाओं के साथ ही सीमांत बहनों के लिए भी बेहद खास बन गया। रक्षाबंधन के त्योहार का ऐसा ही रंग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली, जहां स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी बहनें सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और उनकी सलामती की कामना की। यहां आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान का भाव भी जाहिर किया, तो जवानों ने भी बहनों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लिया।
1: हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियाँ हैं, लखपति दीदियाँ हैं, बिहान की दीदियाँ हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियाँ हैं, ड्रोन दीदियाँ हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है।
0: पंजाब के पठानकोट में भी भाई बहन के पवित्र रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिली। यहाँ भी बहनें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां बांटती नजर आईं। बहनों ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। बहनों ने अपने इन भाइयों की लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना की, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन्हें बतौर गिफ्ट हेलमेट देकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। इस पावन अवसर पर पैरामिलिट्री फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ ही बहनें भी अपनी खुशी जताती दिखी।
2: रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, मेरा कि बहुत बढ़िया तरीके नाल जड़ा है मनाया गया।
0: चमोली से कमल नैन सिलोरी, रायपुर से महेंद्र नामदेव और पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और कल रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान मांगलिक, नए या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो क्या बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकेंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।

रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजारों में रौनक है। तो इस त्योहार को मनाने के लिए बहनें भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करने से लेकर बाकी सभी तैयारियां करने में जुटी हैं। शुक्रवार 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। इस बार इस पर्व पर कई संयोग एक साथ बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस त्योहार पर चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा भी रहेगा। सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:09 से शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर इसका समापन होगा, जबकि भद्रा 27 अगस्त को सुबह 8:31 से रात 8:54 तक है और रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त को है। तो साफ है कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा के प्रवाह से दूर रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर पंचक भी लगने वाला है जो 27 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगा। ये पंचक गुरुवार से शुरू हो रहा है जो अग्नि पंचक कहा जाएगा, इसीलिए इस पंचक की वजह से राखी बांधने पर कोई रोक टोक नहीं है। अब बात रही चंद्र ग्रहण की, रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसको लेकर सबसे अहम सवाल ये है कि तो क्या ग्रहण के समय राखी बांधी जा सकती है। ये चंद्र ग्रहण सुबह 6:53 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहने वाला है, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। इसी

0: नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के लिए ग्रहण संबंधी पारंपरिक नियम उसी तरह लागू नहीं होंगे जैसे किसी दृश्य ग्रहण के समय होते हैं। इसलिए इसे भय की दृष्टि से नहीं देखें, बल्कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के रूप में समझिए।
1: रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा, इसीलिए बहनें 28 अगस्त को दिन भर शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त में 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी बहन अपने भाइयों को राखी बांध सकती है, बस ध्यान राहु काल का रखना होगा, इस समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए।
2: सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो इस बार राखी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है।
1: कुल मिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार बेफिक्र होकर मना सकते हैं, क्योंकि ना तो चंद्र ग्रहण, ना ही पंचक और ना ही भद्रा का कोई प्रभाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करते हैं आस्था और श्रद्धा से जुड़ी उस तस्वीर की। पुंछ के प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार और भव्य स्वागत के साथ पवित्र छड़ी मुबारक मंदिर पहुंच गई है। छड़ी मुबारक के पहुंचने पर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और साधु संतों ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। वहीं बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कल यानी 28 अगस्त को बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन होगा। यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति का भाव देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए और यहां पर दर्शन किए हैं। कल इसका समापन होने जा रहा है, रक्षाबंधन के त्योहार के दिन कल समापन होगा। किस तरह से भक्तिमय माहौल देखने को मिला है, हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई दिए हैं। हर ओर कुछ इस तरह से भक्ति में डूबे हुए लोग जयकारों की गूंज सुनाई दी है। और सितंबर की शुरुआत में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी भव्य रूप से मनाई जाती है, जिसको लेकर वहां तैयारियां भी भव्य रूप से चल रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं।

0: जन्माष्टमी को लेकर देश भर में भव्य तैयारी चल रही है। 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर स्कॉन मंदिरों में भव्य आयोजन होता है। रोशनी से सराबोर ये दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित स्कॉन मंदिर है, जहाँ कृष्ण भक्ति की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस मंदिर की सजावट बेहद आकर्षक लग रही है और जन्माष्टमी पर तो यहाँ की छटा देखने वाली होती है। देश विदेश से मंगाए गए फूलों से मंदिर को और आकर्षित तरीके से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर को लेकर इस मंदिर में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। एक तरफ रंग रोगन का काम चल रहा है तो दूसरी ओर टेंट भी लगाए जा रहे हैं।
1: हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह लगाया जा रहा है अलग अलग कपड़ों से। जो फोटो है वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें

0: 4 सितंबर 4 AM टू 12 मिडनाइट का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज प्रोविडेड रहेगा, ये सब तमाम चीजें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
1: जन्माष्टमी को लेकर यहाँ करीब 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस मंदिर में वैसे तो हर दिन भक्त आते रहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचकर भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए उनकी सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से इसको लेकर विशेष व्यवस्था की जाती है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नेपाल में मिशन जिंदगी की बात करेंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं रहता? किसी भी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों की दिक्कत हो जाती है? कौन से ग्रह बैठाते हैं सामंजस्य, बनाते हैं तालमेल, जानिए मेरे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंची छड़ी मुबारक, भगवान भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं, कल रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी यात्रा। कर्नाटक और तमिलनाडु में गणेश उत्सव की तैयारियां, बनाई जा रही है इको फ्रेंडली पपा की मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से जारी, बाजारों में छाई रौनक, जमकर हो रही है राखी और तोहफों की खरीदारी। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत, 1700 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हुए शरीक, लोगों में दिखा खासा उत्साह।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात मिशन जिंदगी की करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं नेपाल में बाढ़ और तबाही के बीच अब जिंदगी बचाने के लिए मिशन तेज हो गया है। राहत बचाव और लापता लोगों की तलाश के लिए नेपाल में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के साथ साथ जरूरी सामान उपलब्ध भी कराया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए काठमांडू के अस्पतालों में करीब 100 बेड रिजर्व रखे गए हैं। प्रभावित इलाकों में अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि बेघर हुए लोगों को तत्काल सुरक्षित ठिकाना मिल सके। तो ये तस्वीर है नेपाल से, देखिए किस तरह से मिशन जिंदगी जो है यहाँ चलाया जा रहा है और तमाम सेना के जवान वहां पहुंचे हैं। रेस्क्यू मिशन लगातार जारी है और हर तरह की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा रही है। और प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के साथ साथ उनके लिए जरूरी सामान भी यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: दरअसल ये हादसा तब पेश आया जब कल नेपाल और चाइना की तिब्बत की हिमालयी सीमा पर मिट्टी और चट्टानों की एक विशाल दीवार नदी में गिर गई, जिससे नेपाल की तरफ भयानक बाढ़ आ गई। ये इलाका तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, जहां हर साल भारत और दूसरी जगहों से सैकड़ों हिंदू तीर्थयात्री यहां पर पहुंचते हैं। भारत की ओर से भी संकट की इस घड़ी में नेपाल को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां नेपाल भेजी गई हैं। राहत सामग्री में अस्थाई शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप, आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। यानी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सिर्फ भोजन और दवाइयां ही नहीं बल्कि सिर छिपाने की जगह से लेकर स्वच्छता और रोशनी तक का इंतजाम भी किया जा रहा है। भारत की भेजी गई राहत सामग्री नेपाल के प्रभावित इलाकों में तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। भारत की ओर से ह्यूमन एड भेज दिया गया है, ये राहत सामग्री भेजी गई है। अस्थाई शेल्टर भी इसके साथ वहां पर भेजे गए हैं ताकि वहां पर लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस मुश्किल वक्त में दुनिया भर से नेपाल की ओर मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बाढ़ प्रभावित इलाके में घर की छत से कैसे एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल में आई भयानक बाढ़ में 1000 के करीब लोग लापता हैं, इनमें 133 भारतीय हैं और राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
0: राहत कर्मी खराब मौसम के बीच टूटे फूटे रास्तों से होकर पीड़ितों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। साथ ही मलबे में दबे लोगों की तलाश भी लगातार की जा रही है। कई भारतीय भी इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। भारत की ओर से नेपाल तक राहत मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। तो देखिए किस तरह से भारत की ओर से नेपाल के लिए राहत और मदद दोनों पहुंचाई जा रही है। और इस दुर्घटना में भारत से भी कई लोग हैं जो फंसे हैं, जो घायल हुए हैं, क्योंकि वो मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नेपाल से किस तरह से राहत की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार रेस्क्यू मिशन जारी है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं, साथ ही मलबे में दबे लोगों की तलाश भी जारी है। तो कई भारतीय भी इस त्रासदी का शिकार हुए, जैसे कि हमने आपको बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर वो लोग निकले थे और श्रद्धालु भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो भारत की ओर से नेपाल तक राहत मदद लगातार पहुंचाई जा रही है।
1: तो नेपाल में इस मुश्किल वक्त में राहत और बचाव के लिए जवान पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं। जवान आधुनिक मशीनों और अपने अनुभव के सहारे मलबे में जिंदगी तलाश रहे हैं। जहां हाथों से मलबा हटाना मुश्किल है, वहां JCB जैसे भारी मशीनों की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह यहाँ पर एक बुजुर्ग को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। JCB का सहारा इसके लिए लिया जा रहा है। बाढ़ की वजह से प्रभावित ये लोग, जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें जवान यहाँ पर मदद के लिए लिए पहुंचे हुए हैं, उम्मीद की किरण बनकर पहुंचे हैं। ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया जहां पर मलबे में फंसी एक महिला को बचाने के लिए जवानों ने जेसीबी की मदद ली है। बेहद सावधानी के साथ मलबे को हटाया गया और महिला को सुरक्षित बाहर लाया गया। महिला की हालत को देखते हुए बिना वक्त गंवाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें बताती हैं नेपाल में राहत और बचाव का ऑपरेशन किस चुनौती के बीच चल रहा है। एक तरफ भारी मलबा है, दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, लेकिन जवानों का हौसला बुलंद है, उनका जज्बा बरकरार है और यहाँ पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत की यहाँ पर सुविधा पहुंचाई जा रही है, मदद की किरण बनकर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बुजुर्ग महिला को जेसीबी पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग फंस गए थे बाढ़ की वजह से, जो चट्टान ढही उसकी वजह से बाढ़ आ गई और नेपाल में कुछ इस तरह से त्रासदी का सामना करना पड़ा है लोगों को।
0: और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश ने गर्मी और उमस से राहत भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।
2: मानसूनी बादलों की आवाजाही ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत की सौगात दी है। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश की वजह से दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है और लोगों को उमस से भी राहत मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसी का असर यूपी एमपी के साथ साथ दिल्ली पर भी दिख रहा है। दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद कुछ इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए, लेकिन अगले एक दो दिन तक राजधानी में तेज बारिश के आसार नहीं है।
3: हमारा अनुमान है कि आज साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। मेन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहने का अनुमान है और कल से जो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी।
2: मैदानों के साथ ही पहाड़ों पर भी मानसून अपने तेवर दिखा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहां और ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम का ये बदला रुख पहाड़ों में कुछ नई चुनौतियां लेकर भी आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी आने वाले पूरे हफ्ते में तेज बारिश का असर दिख सकता है।
3: हिमालयन रीजन में एक दो दिन के बाद वहाँ स्पेसिफिकली उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में आज भी हमारा येलो अलर्ट है। हमारा अनुमान है कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में लाइट मॉडरेट रेनफॉल रह सकती है और कल वेरी लाइट लाइट रेनफॉल रह सकती है। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल हम अनुमान नहीं लगा रहे। केरला लक्षद्वीप में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 6 से 7 दिन कंटिन्यू रहेगी।
2: पहाड़ी राज्यों में भले ही आने वाले दिन चुनौतियों से भरे हो सकते हैं, लेकिन मैदानी राज्यों में अब बारिश की रफ्तार धीमे धीमे थमने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों में ज्यादा बारिश के आसार कम ही हैं। अगस्त का पूरा महीना तो बारिश के लिहाज से बहुत अच्छा रहा, लेकिन सितंबर से बारिश का सिलसिला थमना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे सर्द मौसम की आहट भी मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन यहां ये जटाशंकर धाम पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सावन में शिव के इस धाम में प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ इस तरह जटाशंकर धाम की कुदरती खूबसूरती में भोले की भक्ति की महक भी खुल गई है और ये खूबसूरती देखते ही बन रही है, जो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। शिव के धाम में भक्तों का उत्साह किस कदर है तस्वीरें आपके सामने हैं। जटाशंकर धाम की एक खूबसूरत तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। भोले की भक्ति में डूबे हुए नीन लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर ये प्रकृति की खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं।
0: और मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम देखने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इसी बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या गणेशोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही है। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानन भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब जापान से आई एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर सैकड़ों लोग मिलकर करीब 400 टन वजनी एक ऐतिहासिक किले को हाथों से खींचते हुए नजर आए। आपको बता दें, मामला जापान के उत्तरी शहर हिरोसाकी का है। यहां पर लॉटरी के जरिए चुने गए वॉलंटियर्स ने रस्सियों के सहारे किले के मुख्य हिस्से को करीब 3 मीटर तक खींचा। दरअसल भूकंप से क्षतिग्रस्त किले की दीवार की मरम्मत के लिए साल 2015 में किले के मुख्य हिस्से को उसकी मूल जगह से हटाया गया था और अब करीब 70 मीटर दूर स्थित उसकी पुरानी जगह पर इसे वापस पहुंचाया जा रहा है। जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 1611 में बने इस ऐतिहासिक किले को वापस उसकी जगह पहुंचाने के इस अनोखे प्रयास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए दिखे। और चीन से आई इन खूबसूरत तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजारों रोशन लालटेन से नदी का पूरा इलाका जगमगा उठा। गुआंगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र के जीवान काउंटी में तीसवा पारंपरिक रिवर लालटेन और लोकगीत उत्सव अपने चरम पर पहुंचा। 6 दिनों तक चले इस उत्सव में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने हजारों लालटेन जलाकर नदी में प्रवाहित किए। लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और पूर्वजों की पूजा के लिए लालटेन जलाए। खास बात यह रही कि इस बार पहली बार उत्सव को 3 से बढ़ाकर 6 दिनों तक किया गया। लोक संस्कृति, खेल प्रतियोगिताओं और पारंपरिक व्यंजनों से जुड़ी कई गतिविधियों ने उत्सव की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और अब बात करते हैं कोलंबो टेस्ट की। आज कोलंबो टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन है। मेजबान टीम दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेल रही है और उसने 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं, लेकिन उसके पास बढ़त महज 16 रनों की ही है। ऐसे में टीम इंडिया वहां जीत के बेहद करीब है। भारत की कोशिश जल्द से जल्द मेजबान टीम को समेटने पर है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे, जिसके बाद श्रीलंका की टीम पहली पारी में महज 290 रनों पर ही ढेर हो गई थी। प्लास्टिक कचरे को लेकर आमतौर पर हमारे दिमाग में सिर्फ प्रदूषण और गंदगी की तस्वीर आती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जिस प्लास्टिक को हम इस्तेमाल के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी से अब पार्क्स की बेंच, डस्टबिन और रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें तैयार हो रही हैं। यानी प्लास्टिक से मुक्ति का रास्ता सिर्फ उसे हटाने में नहीं है, बल्कि उसे नए इस्तेमाल में लाने की सोच में छिपा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्लास्टिक वाला ये खास स्टार्टअप आखिर है क्या।
4: ये जो खूबसूरत टेबल, बेंच और रंग बिरंगे गमले आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि इनका सफर प्लास्टिक के कचरे से शुरू हुआ है। बेकार समझे जाने वाले प्लास्टिक को ऐसा रूप दिया गया कि अब ये बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं।
5: पीछे भी और जिसपे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है, जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नजर आ जाएगी, आपको टेबल नजर आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीजें नजर आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है।
4: आम सोच यही है कि इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक हमारे लिए कचरा बन जाता है, लेकिन सही तरीके से रिसाइकिल किया जाए तो यही कचरा दोबारा उपयोगी भी बन सकता है। दिल्ली की रहने वाली सोनल और उनके पति ने इसी सोच को अपना मिशन बनाया हुआ है।
6: हमारा थॉट था इनिशियली कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे घरों को ब्यूटिफाई कर सकें, बट फिर हमें समझ में आया कि हम सिर्फ प्लास्टिक को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोगों में एक ऐसी हैबिट लेके आना चाहते हैं जो नॉट जस्ट रिसाइकिलिंग बस रीड्यूस और रीयूज के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके आए। सो हमने ई कॉन्शियस लिया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको कॉन्शियस जो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, फेंकना हो, हम उसको कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस के साथ में लेके चलें।
4: दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिससे प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर उसे दोबारा उपयोगी बनाया जा सके। इसी सोच के तहत प्लास्टिक कचरे से ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।
7: इसके पीछे का हमारा थॉट था कि अब जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या इस टाइप के कोई और इवेंट है जहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अब वो उसको हम मतलब किसी तरीके के वो इकट्ठा करके उनको ही कन्वर्ट करके हम कुछ स्कूल के बेंचेस हम बनाएं, वहाँ के लिए पार्कों के लिए बेंचेस बनाएं, तो इस पे हम काम कर रहे हैं।
4: इनके बनाए प्लास्टिक के कचरे से पार्कों और स्कूलों के लिए बेंच तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा डस्टबिन और कई तरह के दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं।
5: पीछे आप डस्टबिन देख सकते हैं कि इसी प्लास्टिक के कचरे से जो है ये डस्टबिन जो है वो तैयार किया गया है, वेट वेस्ट के लिए अलग और ड्राई वेस्ट के लिए अलग। और ऐसी भी तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग जो है बनाते हैं रिसाइकल प्लास्टिक से।
4: खास बात यह है कि इस काम के लिए घरों और हाउसिंग सोसाइटी से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है, यानी जिस प्लास्टिक को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं वही आगे चलकर किसी सार्वजनिक जगह की जरूरत पूरी करता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने नेपाल में आई आपदा को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही बाबा बागेश्वर ने कहा कि उन्होंने भगवान बालाजी से सभी के लिए प्रार्थनाएं की हैं। इसके अलावा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुयायियों से भी प्रभावितों की मदद करने के लिए कहा।
8: हमने जैसे ही अभी भारत आए और हमने देखा हृदय हमारा छन्नी छन्नी हो गया, उस स्थिति को देखकर भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान दादा सबकी रक्षा करें और पूरे नेपाल के बागेश्वर धाम मंडल से हमारी प्रार्थना है कि आप तुरंत सेवा कार्य में लग जाएं। बागेश्वर धाम से भी कुछ लोग सेवा के लिए पहुंच रहे हैं, आप चिंता मत करो। परिस्थितियां तो भगवान योग के कारण विचित्र हुई हैं, जो बाढ़ आई हजारों घर बेघर हो गए, कईयों के घर पर कई घर के सदस्य बह गए, वह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे भगवान सबको सबल दें, संबल दें। नेपाल में जो यह विचित्र त्रासदी,
3: इस मुश्किल वक्त में दुनिया भर से नेपाल की ओर से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बाढ़ प्रभावित इलाके में एक घर की छत से कैसे एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल में आई भयानक बाढ़ में 1000 के करीब लोग लापता हैं, जिनमें 133 भारतीय भी हैं। और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए सुदेश लहरी की फनी इंस्टा स्टोरी।
9: दोस्तों कोई भी इंसान अच्छी बात कर सकता है, वक्त अच्छा होना चाहिए। आज मेरी वाइफ ने खूब कहा है, तुम खुद ही कहो।
10: खूब
9: बहुत अच्छा, खूब कहा।
3: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब लोगों का हो रहा है रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश में बड़े स्तर पर चल रहा है अभियान, घायलों के लिए तैयार किया जा रहा है अस्पताल। कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंची छड़ी मुबारक, भगवान भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं, कल रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी यात्रा। पटना में स्कूली छात्राओं ने दानापुर रेजिमेंट सेंटर में फौजी भाइयों को बांधी राखी, सेना के बैंड ने देशभक्ति के मनमोहक धुनों की प्रस्तुति दी।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 27 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 9:08 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं 1:35 तक। राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा क्या उपाय करें, ऐसे किन बातों का ध्यान रखें कि आपका तालमेल आपके बॉस के साथ, आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर रहे। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो उच्चाधिकारी होता है वो उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह से संबंध रखता है, क्योंकि अगर मुख्य ग्रह प्रबल नहीं होता तो वो व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बनता। इसके अलावा जो आपसे ऑफिस में ऊंचाई पर बैठा है, जो आपसे उच्च स्थान पर बैठा है, वो सूर्य और मंगल से भी संबंध रखता है। तो आप अपने करियर के मुख्य ग्रह को, सूर्य और मंगल को मजबूत करके अपने संबंध अपने बॉस के साथ बेहतर कर सकते हैं। और आपको अपने संबंध अगर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग, अपने सहयोगियों के साथ बेहतर करने हैं तो अपने कुंडली के कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आप नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी जाएगी या नौकरी में समस्या पैदा होगी। अगर आप प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, या अगर आप सेना में हैं, तो बॉस के साथ संबंध कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र मंगल और सूर्य से मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। यहां पर अपने उच्चाधिकारी के साथ अगर आप तालमेल चाहते हैं तो आपको इन्हीं ग्रहों को मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और कार्यालय निकलते समय अगर आप गुड़ खा करके निकलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, सेना में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, तो काले रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में हैं, तो आप अपने बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा करेंगे? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दो ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है, बृहस्पति और चंद्रमा। मुख्य रूप से अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, आप शिक्षा क्षेत्र में हो या चिकित्सा क्षेत्र में हो, बॉस के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। क्या करेंगे? सफेद और पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा, और जब भी ऑफिस जाएंगे जरा सी मिश्री खाकर जाइएगा। चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा बेहतर होगा तो बॉस के साथ तालमेल बेहतर हो जाएगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तकनीक में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, परिवहन के क्षेत्र में हैं, तो बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा बनेगा? टेक्नोलॉजी का क्षेत्र राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं बुध से संबंध रखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं तो आप आपको इन्हीं ग्रहों को बेहतर करना होगा। कपड़ा पहनने में अधिक से अधिक हल्के नीले रंग का प्रयोग करिए और बॉस के साथ तालमेल आपका ठीक रहे, कार्यालय जाते समय लौंग खाकर जाइए, कोई मीठी चीज मत खाइए और मंगलवार को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, इसका प्रयोग करने से परहेज करिए। अगर आप मीडिया, ग्लैमर या फैशन के क्षेत्र में हैं और यहां पर बॉस के साथ अच्छा तालमेल चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये क्षेत्र शुद्ध रूप से शुक्र का क्षेत्र है और शुक्र को मजबूत करके आप बॉस को खुश रख सकते हैं और बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं। जब भी ऑफिस जाएं, जरा सी दही और चीनी खाकर जाएं और रेगुलरली नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अगर मीडिया, फैशन, ग्लैमर, फिल्म इन क्षेत्रों में हैं तो खाली पेट घर से ना निकलें, शुक्र कमजोर होगा और तालमेल ऑफिस में खराब होगा। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर होगी, काम की रुकावट दूर होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कॉरपोरेट में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, तो क्या करें कि बॉस के साथ तालमेल ठीक हो? ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है, ये अलग अलग ग्रहों से कंट्रोल होता है। जैसे फाइनेंस यानी वित्त बृहस्पति से, सलाहकारिता कंसल्टेंसी बुध से, मैनेजमेंट बुध और बृहस्पति दोनों से मैनेज होता है। इस क्षेत्र में अगर आप बॉस को खुश रखना चाहते हैं, बेहतर तालमेल चाहते हैं, तो सारे ग्रहों पर संतुलन आवश्यक है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को सादे जल से, प्लेन वाटर से अर्घ दीजिए। घर से निकलते समय इलायची खाइए, हरी इलायची, और अपनी जेब में एक इलायची जरूर रख लीजिए। देखिए सबसे मुश्किल क्षेत्र है मार्केटिंग का। यहां पर बॉस के साथ तालमेल बैठा पाना या बॉस को प्रसन्न कर पाना सबसे कठिन काम है। तो अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं और बॉस के साथ तालमेल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से बुद्ध का अधिकार होता है और इस क्षेत्र में बॉस को खुश रखना और बॉस के साथ तालमेल रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो बॉस के साथ तालमेल के लिए और इस क्षेत्र में सफलता के लिए रोज सवेरे नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। घर से निकलते समय सौंफ खाकर निकलिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग से परहेज करिए और बृहस्पतिवार के दिन बॉस के साथ रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑफिस में कभी भी गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए। फैशन में भी फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाइए, अन्यथा आपका शनि खराब होगा और जीवन में हमेशा आपको नौकरी को लेकर के समस्याएं परेशान करेंगी। कि अगर आपका रिश्ता या प्रेम संबंध टूट रहा है, आप उसे बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे गुलाबी कपड़ा पहन करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और मधुराष्टक का पाठ करने के बाद प्रेम संबंध बचाने की प्रार्थना करिए। आपके रिश्ते आपका प्रेम संबंध बच जाएंगे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

अद्भुत संत सेवी महात्मा हुए श्री विप्र हरिपाल जी। साधु सेवा से विप्र हरिपाल जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। साधु सेवा से भगवान मिल गए कलयुग में। आप सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा, क्या किसी चोर को भगवान मिले? जो चोरी करता रहा हो उसे भगवान मिले? और जो हम तुम्हें कथा सुनाने जा रहे हैं, इनने जिंदगी भर चोरी की, डकैती की, और इन्हें भगवान मिले जिंदगी भर। साधु, चोरी करना बुरा नहीं है, पर चोरी करके उसका कर क्या रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चोरी करके उन्होंने साधु सेवा की तो भगवान को भी आना पड़ा। सुनिए, बड़ा प्यारा चरित्र है विप्र हरिपाल का। अद्भुत भक्त हुए श्री हरिपाल जी, क्या कहना, निष्किंचन भक्त हुए हरिपाल जी। भगवान अपने प्यारे भक्तों के साथ साथ पीछे

जैसे गाय के साथ बछड़ा घूमता है वैसे ही भगवान भक्तों के साथ घूमते हैं, डोलते हैं पीछे पीछे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे मेरे पागलो, और जोर से बोलो। एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था विप्र हरिपाल, बड़े भगवत भक्त हुए महाराज। विप्र हरिपाल साधु सेवी थे, साधुओं की नित्य सेवा करते थे। ध्यान से सुनना, रोज संतों को प्रणाम करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे। और श्री विप्र हरिपाल जी, आहाहा, जितनी संपत्ति थी साधुओं में लुटाते थे खबा खबा कर। उनसे कोई पूछता था अरे अमीरी मत मिटा लो, तो वो कहते थे

कुछ करते धरते थे नहीं तो पिताजी ने निकाल दिया। जितनी संपत्ति थी रोज चकाचक भंडारा करवाएं, रोज दे दबा दे गांठी बंधन बेकरें जिनके राम न होए। हाँ, जितने साधु आवे पाओ महात्मा, राम की गैया राम को खेत, खाओ गैया भर भर पेट। साधुओं को ही अपनी संपत्ति मानते थे ये। अच्छा, कोई कमाए ना एकदम खर्च करे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी संपत्ति स्वाहा। हाँ जी अना जी बोलो। यही इनके साथ हुआ, जितनी संपत्ति थी सब स्वाहा हो गई। अब क्या करें, भंडारा तो करवाना ही है। भंडारा, बैलगाड़ी और कुआं, इनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, असीमित, कोई सीमा नहीं, असीमित। तो भंडारा तो करना ही है, तो अब उधार उठाने लगे। अमीर घराने के लड़का तो कोई भी उधार दे दे, और जो उधार मिले सोई भंडारो चकाचक चलवा दे। रबड़ी माल बुआ चकाचक खाओ संतो, पाओ पाओ पाओ, जयकारा लगावे, उधार लावे और खवा दे। अच्छा, उधारी भी कब तक मिले, एक सीमा होती है, ले ले दे ना वापस। और लोग मांगने आए कि लाओ, तो बोले हम कहां से लाइए, तुम्हारे नाम को भंडारो होगा। लोग कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं। बोले तुमने नहीं करवाया, हमने करवा दिया, तुम्हें करवा नहीं पाना था तो हमने करवा दिया। तो बड़े बड़े नगर सेठ बोले भाई बड़े पागल हो, रुपया हमारा लगा। तो बोले हम थोड़ी ये कह रहे कि हमारा लगा, भंडारा भी तो तुम्हारे ही हुआ। नगर सेठ बोले हमारी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। बोले इच्छा नहीं भी थी तो हमने करवा दिया। लोगों ने मांगना ही बंद कर दिया, ये पागल आदमी है, देना बंद करो मांगना बंद करो। अब करें क्या, धीरे धीरे संपत्ति शून्य फिर हो गई। अब तो एक दिन रात को विचार आया कि मांगने से मिलना नहीं है, संपत्ति है नहीं है, भंडारा कल करवाना है, तो एक काम किया जाए, चोरी की जाए। साधु भंडारे के लिए चोरी शुरू कर दी। रात को जाए, एक तो जो भारी कौंटल को शरीर, ढाई तीन कौंटल को इनको शरीर चोरी में। लेकिन एक इनका ईमान था, चोरी में ये संपत्ति नहीं चुराते थे, सोना चांदी नहीं चुराते थे, हट्टा कट्टा भारी शरीर, तो दाल चावल घी शक्कर गुड़ नमक मिर्चा जो भंडारे में काम आवे सोई चुरा ले आवे, और चोरी कर कर लावे और चकाचक फिर रबड़ी मालपुआ दबा करके बनावे और संतों को खूब चकाचक झूम झूम करके खिलावे। गांव के एक नगर सेठ के यहां एक रात को चोरी करने गए। एक और ईमान थी इनमें, चोरी भी उसी के घर पर करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। हाँ, अमीर तो था पर कुछ दानमान नहीं देता था, और जो दानमान नहीं देता उनकी बुराई दुर्दशा हो। लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। हमारे दादाजी सुनाया करते थे, हमारे लावर जानते हो, लावर यानी झूठा। लोभी का धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसकी संपत्ति झूठ वाला व्यक्ति बढ़िया से निकाल लेता है। जो ज्यादा झूठ बोल के जानता हो तो एकदम घिस घिस करके, अरे तुम्हारा क्या कहना, तुम तो ऊपर या इंद्र है या नीचे तुम, फिर देखो तुम। तो जो झूठ वाला व्यक्ति होता है, और साधु जी कंजूस आदमी बड़ा खतरनाक होता, चमड़ी चाहे चली जाए पर दमड़ी ना जाए, लोभी आदमी बड़े खतरनाक। तो ऐसे लोभियों की संपत्ति का ही हरण करते थे श्री प्रहरपाल जी, जो भगवत भक्त नहीं है। बुरा ना माने तो एक बात सुन लो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ तुलसी।

विप्र हरिपाल जी उसी के घर पर चोरी करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। संपत्ति बची रही, उधारी मिलना बंद हो गई तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े नगर सेठों के यहां चोरी करने लगे। चोरी में कुछ ना चुरावे, चावल आटा दाल सब्जी नमक मिर्चा घी गुड़ ये सामग्री चुरावे। एक बार एक नगर सेठ के घर ये चोरी करने गए तो खटर पटर हुआ। नगर सेठ तो सो रहा था, नगर सेठ की बेटी जग गई। अरे पिताजी उठिए उठिए, देखो कोई चोर आ गया। उठ बैठो, कोई चोर चोरी कर रहा। नगर सेठ ने दबकार करके पीट करके सुला दिया, चुप हो जा लेट जा, कोई चोर नहीं आया है, ये अपने गांव के परम वैष्णव श्री विप्र हरपाल जी अपना धन शुद्ध करने के लिए अपने घर पर आए। इनकी इतनी ख्याति हो गई और जहां कानों में इन्होंने सुना कि ये तो भगवत भक्त है, सोई पूरी और आसन फासन छोड़ करके खाली हाथ घर चले गए। उसी समय एक ब्राह्मण की कन्या शादी नहीं करवा रही थी, उसका संकल्प था कि हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे जो वर प्रतिदिन 1000 साधुओं का भंडारा करवाएगा। अच्छा अब एक दो दिन तो कोई भी लड़की के चक्कर में करवा दे, लुगाई के चक्कर में दो चार दिन तो पूजा पाठ सबको कर ले, और रोज कौन करवाए, रोज तो बड़ी आफत। बोलो सीताराम। तो विप्र हरिपाल जी को एक ब्राह्मण देवता ने बताया कि ऐसी ऐसी कन्या है और आप उसके साथ विवाह करो। संत आज्ञा मानकर विप्र हरिपाल जी ने सोचा कि चलो ये और बढ़िया, कम से कम पत्नी ऐसी मिली कि साधु भंडारा वो भी करवाती है तो हमारा तो पहले से ही चल रहा, 1000 क्या 1500 हो जाएंगे, और अच्छा रहा, अब तो और आनंद आएगा, वो भी सेवा करेगी हम भी सेवा करेंगे। अभी हमें रसोई बनवाने के लिए साधुओं का सहारा लेना पड़ता, फिर हम और हमारी धर्म पत्नी दोनों मिलकर बढ़िया टिक्कड़ बनाएंगे और बढ़िया चकाचक संतों को पवाएंगे, आनंद झूमेगा, संतों का संत कीर्तन सुनाएंगे, भगवत सत्संग सुनाएंगे, संतों की सेवा होगी, घर शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, और पत्नी का हमारा दोनों का बढ़िया जोड़ा जुड़ेगा और हम दोनों आत्म कल्याण कर लेंगे। शादी कर ली। अब शादी करी तो संकल्प तो 1000 साधुओं का था विप्र हरिपाल की पत्नी का, लेकिन अब मूर्तियां कभी कभी 2000 आ जाए, कभी 5000 आ जाए, और घर पर संपत्ति इतनी नहीं, रोज का काम था चोरी करना। अब तो आसपास के गांवन में चोरी पूरी बढ़ा गई, इतनी चोरी कर ली, आदमी स्वयं सावधान हो गए। और एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन इकट्ठी 2-3 हजार मूर्तियां संतों की घर पर आ गईं। घर पर आईं तो संतों को देख करके अब मन में इनके बड़ा चिंता हो गई कि क्या करें। घर पर पत्नी के पास जाकर श्री विप्र हरिपाल जी बोले, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे बड़े भाग जो संत घर पर पधारे हैं, तुम इनके भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, नाथ घर में एक दाना नहीं अन्न का, निवाला तक नहीं बन सकता, 2-3 हजार मूर्तियों को भोजन बनना तो दूर की बात, बाल भोग नहीं बन सकता। हरपाल जी ने कहा, तो आस पड़ोस से मांग लाओ। पत्नी बोली, महाराज इतना मांग लिया कि देने वालों ने भी बंद कर दिया देना, कोई देते ही नहीं है, हमारा मुंह देखते ही अगर राम राम भी करने जाओ तो दरवाजा बंद कर लेती, कहीं फिर से कुछ ना मांगने लगे। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी रोने लगे, श्री विप्र हरिपाल जी और उनकी धर्म पत्नी रोने लगी। अब तो भगवान का ही सहारा है,
मन ही मन भगवान की शरण का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, हमने आपसे बहुतों की बिगड़ती बनाते हुए देखी है, आप हमारी भी बिगड़ी बनाओ। आज हमारे घर पर साधु पधार गए, अगर भूखे चले जाएंगे तो भगवान हम आज ही दोनों पति पत्नी आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे, दोनों मर जाएंगे। या तो व्यवस्था करो या संतों का मत फेरो। निष्किंचन भक्त श्री हरपाल जी की ये दशा देखकर भगवान भी अपनी दशा भूल गए, भगवान से रहा नहीं गया। द्वारका में बैठे बैठे श्री जगदीश द्वारकाधीश भगवान तैयार होने लगे, सजने लगे। भगवान एक सेठ का रूप बनाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, सरकार कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जरूरी है बताना, शुभ काम के लिए टोका मत करो। नाथ आप जा रहे तो हमें भी बताओ कहां जा रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी बोले, देवी एक हमारा भक्त है विप्र हरिपाल, हम उसके पास जा रहे हैं। साधु आए हैं, वो बड़ी दुविधा में फंस गया है। अच्छा, हाँ। तो रुक्मणी जी बोली, सरकार हम भी चलेंगे। ठीक है, चलना, पर नाराज नहीं होना, हमें वहां लीला करनी है। और सुनो, ऐसा रूप धारण मत करके चलो, तुम हमारी सेठानी बन जाओ। तो श्री ठाकुर जी बन गए सेठ, रुक्मणी मैया बन गई सेठानी। माताओं को गहने पहनने का बड़ा शौक होता है, ऊपर से पति देव अगर कह दें कि जरा सद्धज कर आओ, तो फिर तो क्या कहना, नक्शिक सिंगार करती हैं पैरों से लेकर के सिर तक। तो ठाकुर जी ने तो करे दो ही चार सिंगार, हमारी श्री रुक्मणी मैया ने पूरा शरीर आभूषणों से लाद लिया। इधर विप्र हरिपाल अपनी पत्नी से बोला, देवी जब तक साधु नित्य क्रिया कर रहे तुम जल पिलाओ, तब तक हम किसी को लूट कर आते हैं, लूटेंगे आज। अब तक हमने चोरी करी, अब डकैती डालेंगे, लूटेंगे। तो हाथ में एक भारी बड़ा लठ लिया, डंडा, और जंगल के रास्ते में खड़े हो गए कि कोई यहां से निकले और हम तो मार लठ लाल कर देंगे। जो भी उसके पास होगा, कम से कम आज मूर्तियों का भोजन तो हो जाएगा साधुओं का, बस आनंद। आहा हा, जिस गली में विप्र हरपाल जी लूटने के लिए खड़े थे संतों के भंडारे के लिए, उसी गली में भगवान श्री द्वारकाधीश प्रकट भए, रुक्मणी मैया को दे करके लूटने के लिए उसी रास्ते पर आ गए। आहा, आज तो हम लुटेंगे। और देखो कितनी करुणा नहीं हमारे सरकार की, धन्य है हमारे गोविंद, धन्य है हमारे माधव। आज तक इनको लूटते बहुत देखा, कभी गोपियों का चित्त लूट रहे, कभी माखन लूट रहे, कभी भक्तों का चित्त लूट रहे, कभी भक्तों के मन को लूट रहे। आज पहली बार ऐसे भक्त से पाला पड़ा कि ठाकुर उस भक्त के पास लुटने स्वयं चले आए हैं। विप्र हरपाल जी रस्ते में खड़े, हाथ में लाठी लिए, यहां पर लाठी लगाए हैं थोड़ी पर, ऐसे लाठी लेकर के चिंता में है, आंखें भरी हैं कि हे नाथ, साधु मूर्तियां घर पर हैं, अन्न का एक दाना नहीं है, कहीं कोई साधु भूखा ना भग जाए, हम जीते जी प्राण दे देंगे, हम रह नहीं पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे।

हमारी साधुओं के संग प्रीत लगी, अब और मन में नहीं भाता कोई। रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, ऊपर की तरफ बार बार निहारे, लाठी यहाँ लगाए, हे ठाकुर आज लाज बचा दो, आपने गज ग्राह गज की लाज बचाई, ग्राह का वध किया आपने, द्रौपदी की लाज बचाई आपने, सबरी की लाज बचाई आपने, भैया विदुर की लाज बचाई, हे प्रभु अब इस दास निष्किंचन भक्त की भी लाज बचा दो, संत भूखे ना चले जाएं। और ये इतना सोच ही रहे थे, तब तक श्री ठाकुर जी सेठ बनकर के और सेठानी श्री रुक्मणी मैया बनकर के प्रकट हो गई। सोने चांदी से लदा हुआ देखा सो मनी मन मुस्कुरा गए, भगवान ने दे दिया, अब तो जय जय है, अब तो गदगद हो गए, अब तो इनके पास जय जय हो गई। और भगवान भी कम कौत की नहीं, विप्र हरपाल जी ने दूर से किया, भैया राम राम सेठ जी, ए भैया राम राम मत करो, हमें ये राम राम पसंद नहीं। भगवान चिल्ला कर दौड़े, हरपाल जी मनी मन समझ गए ये पक्का जो है भगवान का विरोधी है, नास्तिक है नास्तिक, इससे तो बढ़िया रहेगा संपत्ति लेना। सेठ जी ने कहा भाई एक बात बताओ, भगवान ने कहा विप्र हरिपाल से एक बात बताओ सेठ रूप में, हाँ हमने सुना है इस गली में जंगल के रास्ते में एक डकैत रहता है। विप्र हरिपाल जी बोले कौन, अरे बोले तुमने नहीं सुना विप्र हरिपाल, तो बड़ा नंबर एक का डकैत है। मनीमन हरपाल जी बोले ये तो बढ़िया रहा, ये तो डरते भी हैं हमें, तो जोर से बोले बिल्कुल सही सुना तुमने, बचकर रहना वो बहुत खतरनाक खूंखार है। तो सेठ रूप में भगवान बोले भाई हमें जंगल पार जाना है, आप हमें पार ले जाओ। विप्र हरपाल जी बोले हमें क्या मिलेगा, बोले अगर आप हमें पार करा दोगे तो दो मुहरें देंगे, हमारे पास संपत्ति बहुत है। विप्र हरपाल जी बोले चार मुहरें दे दो हम तुम्हें पार करा देंगे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
5: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
4: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
8: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
4: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
4: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड कर खरे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
11: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
4: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
12: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
12: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
4: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
4: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
8: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
16: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
17: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
4: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
18: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
4: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
19: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
4: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है, अंदर से जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
20: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर उन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
6: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
4: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
21: टीवी पे फौजी के बारे में देखा,
1: तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पर निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
21: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब लोगों का हो रहा रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश में बड़े स्तर पर चल रहा है अभियान, घायलों के लिए तैयार किए जा रहे हैं अस्पताल। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, 37.5 टन राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए हुए रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंची छड़ी मुबारक, भगवान भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं, कल रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी यात्रा। पटना में स्कूली छात्राओं ने दानापुर रेजिमेंट सेंटर में फौजी भाइयों को बांधी राखी, सेना के बैंड ने दी देशभक्ति के मनमोहक धुनों की प्रस्तुति।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: अपने अंतिम चरण में है अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ अमरनाथ धाम में पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक। स्वामी विश्वत्मानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में बूढ़ अमरनाथ मंदिर पहुंचा पवित्र जुलूस, हुआ भव्य स्वागत। विधि विधान और वैदिक का मंत्रोच्चार के साथ छड़ी को स्वयंभू शिवलिंग पर किया गया स्थापित, पुलिस द्वारा किया दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इस पवित्र यात्रा में हजारों की संख्या में देशभर से आए शिवभक्त हुए शामिल, भगवान भोले के जयकारों से गूंजा पूरा वातावरण। कल रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी, जहां अंतिम पूजा और अनुष्ठान होंगे संपन्न। भुवनेश्वर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारी तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियों से सजे बाजार, बड़ी रौनक। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में देखने को मिली देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की बेहद खूबसूरत तस्वीर, छात्राओं ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी भेंट किए, जवानों के माथे पर लगाया तिलक। दानापुर रेजिमेंट सेंटर के मौर्य पार्क में आयोजित किया गया है सुंदर कार्यक्रम, छात्राओं के हाथों रक्षा सूत्र बंधवाते हुए जवानों के चेहरे पर नजर आई खुशी और भावुकता। कार्यक्रम में सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजा के राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया पूरा माहौल, भारत माता के जयकारों से गूंज उठा पूरा कैंटोनमेंट परिसर। अमृतसर के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही है बहनों की भीड़, अपने भाइयों की कलाई राखी से सजाने के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीद रही हैं महिलाएं। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और रंगों की राखियां महिलाओं को कर रही हैं अपनी ओर आकर्षित, रक्षाबंधन को लेकर बाजार में खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों में भी काफी खुशी। रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं प्रयागराज के बाजार, कार्टून से लेकर डिजाइनर राखियों तक की राखियों पर मौजूद धार्मिक राखियों की जबरदस्त डिमांड। गाजियाबाद की डासना जेल में रक्षाबंधन की खास तैयारी, रक्षाबंधन से पहले कैदी राखी बनाने में जुटे। जेल में बहनों के लिए भी राखी बांधने के किए गए हैं खास इंतजाम, मुलाकात के दौरान सुरक्षा के साथ त्योहार मनाने की सुविधा दी गई। देशभर में बप्पा के आगमन को लेकर भी तैयारियां तेज, कर्नाटक के तेनकाशी जिले में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय प्राकृतिक मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों का उपयोग कर रहे हैं कारीगर ताकि विसर्जन के दौरान प्रदूषण न हो। महीनों पहले से पारंपरिक कला के जरिए मनमोहक और सुंदर मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं स्थानीय कारीगर, बप्पा के हर आकार और स्वरूप की बना रहे हैं प्रतिमाएं। तमिलनाडु के वेल्लूर में भी बनाई जा रही है विघ्नहर्ता की रंग बिरंगी मूर्तियां, 14 सितंबर के गणेश उत्सव के लिए तैयारियां तेज। आकर्षित रंगों और बारीक नक्काशी से किया जा रहा है प्रतिमाओं का श्रृंगार, गणेश उत्सव से कई महीने पहले से शुरू है मूर्ति निर्माण। गणपति उत्सव को लेकर देशभर में तैयारियां शुरू, अमरावती में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। अमरावती में मूर्तिकार नरेश जोहरे की कलाकारी मोह रही है सभी का मन, एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं लोगों को कर रही है अपनी ओर आकर्षित, ज्वेलरी से किया जा रहा है श्रृंगार। मूर्ति कलाकार नरेश जोहरे ने बनाई लाल बाघ के राजा के स्वरूप वाली गणेश प्रतिमाएं, भोलेनाथ के स्वरूप वाले गणपति की प्रतिमाएं भी की तैयार। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दिखा आस्था और परंपरा का संगम, अवनी अवित्तम यज्ञो पवित समारोह किया गया आयोजित। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है पारंपरिक और पवित्र अनुष्ठान, शुभ अवसर पर पुरुष सदस्य पवित्र स्नान के बाद धारण करते हैं जनेऊ। सिलीगुड़ी में न्याय संहिता प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, आपराधिक न्याय व्यवस्था और 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने का इसका उद्देश्य। अलग अलग स्टॉल और प्रस्तुतियों के जरिए नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाने की कोशिश, युवाओं ने खासतौर पर दिखाई इसमें रुचि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन 1930 साइबर अवेयरनेस फिल्म का ट्रेलर किया लॉन्च, कई जानी मानी हस्तियां उसमें शामिल। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ये पहल। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सीजन 2025-2026 के अवार्ड समारोह के आयोजित, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ हुए इसमें शामिल। गणेश उत्सव को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अहम मीटिंग, सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के कामकाज और तैयारियों को लेकर अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से करेंगे खास संवाद। खेल और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। हर जिले के दो कॉलेजों के युवा होंगे इसमें शामिल। ओलंपिक सपनों से विकसित भारत तक खेलो इंडिया डायलॉग में 5 प्रमुख विषयों पर होगा युवा संवाद। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के साथ नशा मुक्त युवा अभियान पर भी फोकस। एथलीट सीधे बातचीत करेंगे युवा। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के तहत होगा खेलो इंडिया डायलॉग। माय भारत के जरिए देश भर में जुटेंगे युवा। अमित शाह आज गुजरात दौरे पे। गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी रहेंगे मौजूद। आज से यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026। योगी सरकार का जेन जी को बड़ा तोहफा। 24,243 स्टार्टअप्स के साथ यूपी बनेगा इनोवेशन हब। यूपी में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगी नई रफ्तार। लखनऊ नोएडा में यू हब से बढ़ेगा डीप टेक फोकस। 120 से 24,243 हुआ यूपी में स्टार्टअप्स का आंकड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लॉन्च करेंगे उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल। स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 107 स्टार्टअप को बांटी जाएगी इंसेंटिव राशि। यूपी टेट 2026 का रिजल्ट हुआ जारी। प्राथमिक के 93,000 और उच्च प्राथमिक के 1.13 लाख अभ्यर्थी पास।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों

औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर

0: काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब लोगों का हो रहा है रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश में बड़े स्तर पर चल रहा है अभियान, घायलों के लिए तैयार किया जा रहे हैं अस्पताल। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, 47.5 टन राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए हुए रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंची छड़ी मुबारक, भगवान भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं, कल रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी यात्रा।

0: तो पूरे देश में रक्षाबंधन की रौनक दिखने लगी है। पावन अवसर पर देश भर के बाजार गुलजार हैं। जगह जगह पर राखी की दुकानें सज गई हैं। पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन वाली राखियों से पूरी तरह से बाजार पटे पड़े हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ध्यान में रखते हुए इस बार राखियां बनाई गई। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों पर खरीदारी की जा रही है और अच्छी खासी लाइनें वहां पर देखी जा रही हैं। खास बात यह है कि इस बार सराफा बाजार में भी राखी की रौनक देखने को मिल रही है। चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, जयपुर, मुंबई, हर जगह पर इस बार डिमांड सोने और चांदी की राखियों की भी है। राखी से पहले बहनें भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीद रहे हैं और भाई बहनों के लिए उपहार। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व आ रहा है। शुक्रवार यानी कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन सुबह चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक है। और अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 28 अगस्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 पर यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और रक्षाबंधन का पर्व सावन पूर्णिमा पर आता है। 27 अगस्त की रात 8:54 से भद्रा समाप्त हो जाएगी। और इसी रक्षाबंधन पर बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। जैसे शतदिशा नक्षत्र में यह रक्षाबंधन है। शतदिशा नक्षत्र का वरुण देव से खास संबंध माना जाता है। इसमें पूजा पाठ दान का बहुत खास महत्व है और साथ ही साथ रक्षाबंधन पर सुकर्मा योग भी बन रहा है। ये बाधा रहित शुभ काम की शुभ घड़ी मानी जाती है। वहीं त्रिपुष्कर का शुभ संयोग भी बन रहा है और इसका अर्थ सीधे तौर पर यह है कि जो भी कार्य इस दिन किया जाता है उसका 3 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ फल देने वाला योग ये भी है। बुधादित्य राजयोग भी रक्षाबंधन पर है तो इस दौरान रवि योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। ये भी बताते चलें कि कर्क राशि में गुरु की स्थिति को भी शुभ माना जाता है और इस बीच देश भर में राखी के पर्व की तैयारियां तेज है। रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज चुके हैं। बहनें राखी खरीद रही हैं, भाई अपनी बहनों के लिए उपहार ले रहे हैं।
1: अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो राखी वाले दिन सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है। और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो इस बार राखी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है।
0: तो चलिए, बहुत सारे शुभ संयोगों के साथ इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ खास है इस बार रक्षाबंधन पर। क्या खास है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बताने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है। वाने आरा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माने जी, जब हम शुभ योगों संयोगों की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा हेडर है वो भी यही कि 7 बड़े और शुभ योग संयोग बन रहे हैं, सबसे पहले गुड न्यूज कौन सी इस बार राखी पे मिल रही है ग्रह नक्षत्रों की तरफ से, ये बताइए।
2: थैंक यू नवजोत जी। जैसे हम गुड न्यूज टुडे पर बैठे हैं तो गुड न्यूज देनी बहुत जरूरी है, तो इसमें इस बार की गुड न्यूज ये है कि राखी जो है इस बार बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस बार राखी में कोई भी भद्रा का साया नहीं है और राखी पर बहुत सारे खास योग और संयोग जो है वो बन रहे हैं। राखी पर हंस महापुरुष योग बन रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में है। इसके अलावा सूर्य देव जो है वो अपनी सिंह राशि में है और साथ ही जो है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। सिंह राशि में 3 जो है एक ग्रह एक साथ हैं, सूर्य, बुध और केतु। इसके अलावा जो है आपका जो है इस टाइम पर सुकर्मा योग जो है वो भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है इस दिन पर वो भी बन रहा है और पूर्णिमा तिथि जो है आपकी, आपको ये चीज जो है बहुत खास ध्यान रखनी है कि पूर्णिमा तिथि जो है 28 अगस्त को 9:48 AM पर खत्म हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपनी राखी को जो है 9:48 से पहले अपना राखी का जो भी सेरेमनी है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये टाइम बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, शतभिषा नक्षत्र है इस टाइम पर, और इस टाइम पर जो है चंद्रग्रहण का भी आप देखिए कि भारत में जो है कोई सूतक माने नहीं है और भारत में जो है उसका कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने राखी को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, ऑस्पिशियसनेस के साथ मनाएं। राखी एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल फेस्टिवल है, तो जो भी उसके आपके रिचुअल्स हैं, जैसे आपकी जो पूजा की थाली है, जैसे एक एक चीज को जो है आप बहुत ही अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ आप जल्दी उठें और सुबह जो है आप नहा धो के अच्छे से साफ कलरफुल ब्राइट कलर्स पहने। शुक्रवार का दिन है और इस दिन माता लक्ष्मी का भी दिन होता है, अपने भाइयों के लिए इस दिन आप खीर जो है वो जरूर बनाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज के दिन, राखी के दिन, हमेशा जब आप अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो उससे पहले आप राखी जो है अपने इष्ट देव, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, उन अपने देवी देवताओं को जो है, देवियों को नहीं देवताओं को आप राखी जरूर बांधे, और कई जगह भाभियों को भी राखी बांधने का चलन होता है, तो आप अपनी देवियों को भी राखी बांध कर सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष को भी राखी बांध सकते हैं, ताकि आप अपने पूर्वजों से जो है कनेक्ट करें। और जब भी आप अपने भाइयों को राखी बांधे तो पहले उनके हाथ पर कलावा जरूर बांधे, उसके बाद जो है आपको रक्षा सूत्र बांधना है, और उस टाइम पर आपकी जो भाइयों की फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए वो टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, और आपकी प्लेट में जो राखी होनी चाहिए वो कोशिश करें कि आप इवन नंबर में हो, जैसे 2 की संख्या, 4 की संख्या, इस तरह से। और आप एक चीज और ध्यान रखें कि राखी के टाइम पर आपके भाइयों का सिर जो है हमेशा ढका होना चाहिए और बहनों का सिर भी ढका होना चाहिए। जब आप अपने भाई की आरती करते हैं तो वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें और अक्षत जो है थोड़े से उसके ऊपर जरूर छिड़कें। गायत्री मंत्र का 3 बार जो है जाप जरूर करें, याद रखें अपने भाई, और अगर आप व्रत भी रख सकते हैं इस दिन तो बहुत अच्छा है। और इस बार आपको पूरा दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो आपकी 9:48 AM पर जो है 28 अगस्त को वो भी ओवर हो जाएगी।
0: डॉक्टर नितिशा, मैं आपके पास आती हूँ, सारी बातें लगातार हो रही हैं, बहुत से शुभ योग संयोग है, इस पर तो आप अपनी बात रखिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब ग्रहण शब्द आ जाता है ना, ग्रहण वैसे भी चंद्र ग्रहण है, भले ही भारत में ना तो सूतक मान्य है ना भारत में लग रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक तरह का डर भय रहता है, इसको भी क्लियर करते चलिए, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है और इस बीच ग्रहण क्या असर होगा नहीं होगा, हमें डरना चाहिए नहीं, सावधानी रखनी चाहिए नहीं, और अगर हाँ तो क्या किया जा सकता है।
3: थैंक यू नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा, और आने वाली नावली पूर्णिमा की, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो पूर्णमासी है ये अपने आप में वैसे भी बहुत स्पेशल है, हर पूर्णमासी पे हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूर्णमासी पर हम समुद्र देव और वरुण देव की भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मानसून को एक ग्रैटिट्यूड देते हैं कि वो हमारे जीवन में आया और वो हमारे जीवन को जो कल है, जो दुर्घटनाएं हो सकती थी उससे मुक्त करते हुए हमारे जीवन को उसने आगे बढ़ाया, तो हम वरुण देव को ग्रैटिट्यूड देंगे। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है जो 18 इयर्स के बाद सावन में पड़ने जा रहा है, तो ये चंद्र ग्रहण जो हमारे मन पर कंट्रोल करने का ग्रह है चंद्रमा, देखिए चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ, यानी हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, शिव जी हमें ये दिखाते हैं। और सावन में शिव भक्तों ने शिव भक्ति करके अपने चंद्रमा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, इसलिए जीएनटी के दर्शकों को इस चंद्र ग्रहण पर डरने की कोई जरूरत नहीं बनती है, बल्कि मैं कहूंगी इस चंद्र ग्रहण पर जितना आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, चांदी का, चावल का, चंद्रमा से संबंधित चीजों का, मंगल की से संबंधित चीजों का, उतना आपकी मानसिक ऊर्जाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और इस दिन इतने निराले सहयोग बन रहे हैं, जैसे कि आपने भी त्रिपुष्कर योग के बारे में बताया, सुकर्मा योग, रवि पुष्कर योग, सर्वात सिद्ध योग, हंस नामक राजयोग, बुद्ध आदित्य राजयोग, इतने सारे राजयोग बनने के साथ साथ ये दिन अपने आप में बेहद शुभ हो जाता है। सबसे पहले भद्रामुक्त है ये दिन, इसलिए भद्रामुक्त होने के कारण शुभ स्थितियों का सहयोग सावन की इस पूर्णमासी रक्षाबंधन पर बन रहा है। सुकर्मा योग कहा जाता है कि रक्षाबंधन के सुबह ही सुकर्मा योग लग रहा है जो पूरा दिन रहेगा, इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं उससे ग्रेटिट्यूड दें और अपने जीवन को और भी ज्यादा सफल बनाएं। शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, जो कुंभ राशि शनि की राशि है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो 100 तारों का समूह है, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरी तरह से मनुष्य जीवन में एक तरह से बढ़ना। तो इस समय जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उसकी ऊर्जाएं भी बढ़ जाती है। बुद्धादित राजयोग, इससे हमारी वाक्पटुता, व्यापार सिद्धि, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है। गुरु का हंस नामक राजयोग, ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगी, जिस समय आप अपने भाई को तिलक करें उस समय दूध और रोली का तिलक बनाएं या हल्दी और दूध का तिलक बनाएं, ताकि आप गज केसरी राजयोग को वहां पे स्थापित कर सके। अगर आप कुमकुम या केसर से तिलक कर रहे हैं तो उसमें हल्दी मिलाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपके भाई के जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़े। पूरणमासी पे खीर बनाने का हमारे घर में बहुत बड़ा सहयोग होता है, तो खीर जरूर बनाएं, लेकिन खीर में इस बार केसर और गुड़ डालना बिल्कुल ना भूले, ताकि मंगल और गुरु की स्थिति चंद्रमा को सपोर्ट दे। और जो चंद्र ग्रहण का साया है, जो भारत में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी, इसलिए अपने भाई को जब खीर खिलाएं तो उसमें गुड़ और थोड़ी सी हल्दी या केसर जरूर मिला दें। इससे ऊर्जाएं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। गज केसरी राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और त्रिपुष्कर योग में तो जो भी किया जाता है उसका हमें 3 गुना फल मिलता है। तो इस दिन जो भी हम रेमेडी कर रहे हैं, अपने भाई की झोली में नारियल रखते हैं, उनको तिलक लगाते हैं ताकि वो सुख समृद्धि से भरे रहे, उनको मुंह मीठा करते हैं ताकि उनका जीवन मिठास से भरा रहे, तो वो जो भी त्रिपुष्कर योग में हम करेंगे उसका हमें 3 गुना फल मिलेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग में तो, रवि पुष्कर योग में तो हम जानते ही हैं कि जो भी कार्य करते हैं वो शुभ ही फल को लेकर के आता है। तो ये दिन, ये सावन की आखिरी दिन जिस दिन रक्षाबंधन हम मना रहे हैं पूरणमासी, वो बहुत ही स्पेशल है 2026।
0: चलिए, कुल मिलाकर इस बार कम से कम ग्रहण से तो डरने की किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री होके एंजॉय करते हुए रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकते हैं। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। अगर हम, मैं देखिए, शुभ योग नक्षत्र क्या है ये तो हमने वान्या जी और नितिशा जी से जान लिया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब पूजा की थाली सजाई जाती है कौन सी अहम चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनका ख्याल खास तौर पर रखना है?
4: बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जीएनटी के माध्यम से जो है, मैं सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थाली में क्या रखें क्या ना रखें, ये समझने से पहले मुझे लगता है कि हमें रक्षाबंधन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये लूनर फेस्टिवल है जो कि चंद्रमा की स्थिति को देखकर मनाया जाता है। जैसे नेपाल में जनई पूर्णिमा कहते हैं, महाराष्ट्र में जो है इसको तटीय इलाकों में कई बार नारियल पूर्णिमा कहते हैं, तो यहाँ नारियल का बहुत ज्यादा महत्व आ जाता है। और जो रक्षाबंधन है, यानी सूत्र जिसको बांधा जाता है, वो क्योंकि रक्षा का सूत्र है तो उसमें लाल पीला रंग वो होना जरूरी है, उसका कलावा जैसे बना लेते हैं, क्योंकि लाल जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, रक्षा का प्रतीक है, और जो पीला रंग है वो शुभता का प्रतीक है। तो यही हम ध्यान में रखते हुए जो है अपनी थाली सजाते हैं कि उसमें जो है रोली हो, कुमकुम जिसे कहते हैं, साथ में अक्षत, बिना टूटा हुआ अक्षत हो, मिठास हो, शुक्र का प्रतीक है। इस तरह की कुछ चीजें जो है अगर हम अपनी थाली में सजा लेते हैं भाई को राखी बांधते समय, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वो बहनें जो नहीं जा सकती हैं तो वो पहले ही राखी भिजवा सकती हैं, तो भाई जो भी बहन समान महिलाओं के जीवन में हो उनसे वो सूत्र जो है वो बंधवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, देखें रक्षाबंधन जो है बहुत पुराना त्योहार है, हमें द्रौपदी और कृष्ण की कथा यहाँ पर सुनने को मिलती है, हमें इंद्राणी की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि वॉरियर्स को बांधा जाता था तो इंद्राणी ने भी इंद्र को बांधा था, ये रक्षा के लिए बांधा जाता है। और बहुत लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 में जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस त्योहार को हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए जो है यूज किया था। तो ये जो पहले के जमाने में अगर हम देखें तो ये बहुत ओपन और होलिस्टिक रहता था, और अब जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भाई बहन का मात्र बन के रह गया। तो ये है वैसे रक्षा सूत्र का। और थाली जब भी सजाएं तो मैं ये चाहूंगी कि बहनें हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई सपोर्ट करेगा, देखिए म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, भाई की रक्षा के लिए आप कामना कर रही हैं, और भाई भी जब बहन से राखी बंधवाए, अगर बड़ी बहन हो तो उनके पांव छुए, और अगर छोटी हो तो उनको आशीर्वाद दें। और
2: बिल्कुल
4: थाली में गिफ्ट रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर नटखट और आपका रिलेशनशिप है तो आप मांग भी सकती हैं।
2: अच्छा मैं आपको ये बता दूं, स्क्रीन पे सिर्फ आपकी तस्वीर थी और हमारे ग्राफिक्स चल रहे थे। गिफ्ट रखना कंपलसरी नहीं है, वान्या जी जोर से हंसी हैं क्योंकि वो इस बात को मानती हैं कि गिफ्ट देना जरूरी है। नितिशा जी गिफ्ट दिया जाए कि नहीं?
4: हो जाता है पहले लड़ जाते हैं,
5: एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है।
4: कि रियल लाइफ में जब भाई की शादी हो जाती है तो भाई भाभी कभी कभी जिंदगी की जो दौड़ है उसमें वो एक बर्डन सा बन जाता है।
5: पर गिफ्ट बहनों को भी भाइयों को देना चाहिए।
2: एक बार नितिशा जी से भी पूछ लेते हैं, वो भी कुछ उम्मीदें लगा के बैठी होगी।
3: नहीं नहीं मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गिफ्ट मिलना चाहिए। और नवजोत जी मेरा तो खैर भाई नहीं, मैं तो ठाकुर जी को और बजरंग बली को राखी बांधती हूँ और उन्हीं से गिफ्ट की अपेक्षा करती हूँ, वो मुझे गिफ्ट हर साल देते हैं। लेकिन गिफ्ट मिलना चाहिए, गिफ्ट महंगा हो या सस्ता हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिफ्ट होना चाहिए,
2: होना
3: उससे
2: बहुत
3: आपका खुद भी
2: जरूरी है।
3: मजबूत होता है।
2: बिल्कुल सब बहनों को गिफ्ट मिलना चाहिए। संजय जी बहुत जेब ढीली करनी पड़ेगी इस बार आपको। जी बताइए इस बार का रक्षाबंधन किन मायनों में बहुत खास है?
6: जी देखो ये रक्षाबंधन जो है बड़ा ही शुभ है, क्योंकि कहा जाता है कि इस वर्ष जो योग बन रहे हैं बड़े शुभ योग बन रहे हैं। बड़ा अच्छी तरीके से नितेशा जी ने भी और वान्या जी ने भी बड़े अच्छे से विस्तार से बताया कि देखो सुकर्मा योग बन रहा है और एक ना त्रियोग जिसको त्रिपुष्कर योग भी बोलते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको बड़े अच्छे से, कहते हैं कि गांठ जो है जैसे रक्षा का जो सूत्र होता है उसका एक मंत्र है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदनामी रक्षेशु माचले माचले। कहते हैं कि जब भी हम कोई भी राखी बंधवाएं या कोई भी धागा कलावा बंधवाएं तो हमारे हाथ में अक्षत अन्न रुपया धन कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी बहन से रक्षा का सूत्र बंधवाएं या किसी ब्राह्मण से ही बंधवाएं, किसी से बंधवाएं, क्योंकि हमारा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और उसमें तीन सूत्र की जो बात की गई है, तीन धागे हैं। पहला जो धागा होता है वो भाई की लंबी आयु के लिए होता है, पहली गांठ भी बोल सकते हो आप उसको एक धागा, और दूसरी गांठ जो होती है बहन की लंबी आयु, और तीसरा जो धागा है या गांठ है वो दोनों के प्रेम और स्नेह और समर्पण को आपस में बना करके रखे और भाई बहन में सदा प्रेम रहे। कहते कि रक्षा सूत्र किसी को भी बांधा जा सकता है। और आपने जो है कथाएं कई सुनी, इंद्राणी वाली जो बताई इन्होंने और दूसरी यमराज और यमुना की कहानी है, कृष्ण और द्रौपदी की। जब भगवान कृष्ण को जो है चक्र से आघात हो गए थे तो द्रौपदी जी ने जो है अपना जो है पल्लू फाड़ करके जो है भगवान कृष्ण को बांध दिया था और उसी से भगवान ने आगे जाकर के उनकी रक्षा करी। तो इस प्रकार से जो कहानी है पौराणिक कथाएं हैं और राजा बलि वाली जो कहानी है कि लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु जो है चले गए और पाताल लोक में, तो लक्ष्मी जी जो है उनको जो है कहते हैं कि अपना भाई बना करके जो है और लेकर के आई वापस पति को। और कहा जाता है कि जब वामन अवतार हुए थे तब जो है वामन अवतार में उन्होंने पूरी पृथ्वी मांग ली और तीन पद में वो भी प्रसन्न हो गए भगवान, फिर उनको वो जो है पृथ्वी लोक के अंदर चले गए। तो भगवान नारद ने कहा कि अपने पति को लाने के लिए आप जो है एक रक्षा सूत्र बांध दें उनको। तो कहा जाता है कि जब आप रक्षा सूत्र किसी को बांध देते हैं तो सोच लें कि आपका वो हो गया। और भाई बहन का जो ये त्योहार है हमारे जीवन में सुख को देने वाला है और ये त्योहार जो प्रारंभ हो रहा है इसमें जो समय है 3 घंटे और 51 मिनट का समय रहेगा और इसमें रक्षा सूत्र जो है सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग भी बांध सकते हैं। और जो लोग नहीं बांध सकते अर्ली मॉर्निंग उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, वो 9:48 से पहले पहले ही रक्षा सूत्र बांध दें। और सूर्य भी जो है सब सिंह राशि में रहेंगे, गुरु भी उक्त राशि में रहेंगे, तो इतने बढ़िया योगों में जब ये आ रहा है त्योहार और सद्विशा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र पर चंद्रमा राहु का ग्रहण भी है यहाँ पर, क्योंकि ग्रहण क्या है मानसिक पीड़ा देता है, मन को अशांत करता है। तो इस वक्त जो है घर के उत्तर के कोने में आप चाहें तो एक जल का पात्र भर करके रख लें जिससे कि आपको मानसिक अशांति ना हो। और कहते हैं कि घर के अंदर पूरे घर के अंदर चांदी के गिलास में जल लेकर के और छींटा दे दें जिससे कि आपके जीवन में उस दिन विषयोग बन रहा है। कहा जाता है कि सुबह 8:04 से लेकर के और 11:12 तक ग्रहण भी पड़ेगा, पर भारत में प्रदर्शित नहीं है, परंतु क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ग्रहण होता है तो उसका प्रकृति और नेचर के ऊपर जो है जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण ही है, क्योंकि राशि के अंदर जब आता है किसी भी राशि में तो उस राशि को इफेक्ट करता है। कुंभ राशि के अंदर जो है ये विश्व योग बन रहा है और राहु का नक्षत्र भी है वहां पर सप्तदिशा, तो आपको मानसिक संतुलन की जरूरत है और ध्यान मग्न हो और इस वक्त भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें।
0: क्योंकि संजय जी ने ग्रहण की बात की, मैं वही एक जवाब आपसे लेना चाहूंगी। नितिशा जी बता रही थी कि ग्रहण का कोई असर नहीं है भारत में, क्योंकि न सूतक मान्य है, तो तमाम जो नियम है वो मायने नहीं रखते हैं भारत में खास तौर पर, लेकिन विदेशों में जहां जहां ग्रहण लग रहा है वहां पर भी सनातन को मानने वाले बहुत से लोग हैं और वहां भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, तो उनके लिए प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए?
2: जी, तो जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से हमें ऑल ओवर दी ग्लोब देख रहे हैं, तो उन जिन भी देशों में जहां पर ये जो ग्रहण का सूतक जो है वो मान्य है, तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी, आप ओम सोम सोमाय नमः का जो है आप जाप करते रहिए, ओम चंद्रमसे नमः का जो है आप लोग जो है जाप करते रहिए। इसके अलावा जैसे जो आपकी टाइम जोन के हिसाब से जो पूर्णिमा तिथि है उस हिसाब से आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप राखी जो है मना सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, कुछ मेंटल एग्जॉशन आ रहा है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो वहां पर जो है आप अपनी माता के सानिध्य में रहिए, और अगर ग्रहण आपकी कंट्री में विजिबल है तो प्लीज आप उस टाइम पर आप घर से बाहर ना निकलिए और मानसिक जाप और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ब्रेक, और रक्षाबंधन पर कौन सा शुभ योग संयोग बन रहे, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। सात शुभ योगों वाला रक्षाबंधन, योग संयोग कौन से अच्छे बन रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर निशा आपके पास आना चाहूंगी। जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं, शुभ योगों संयोगों की बात कर रहे हैं, ग्रह गोचर भी बताते चलिए साथ ही साथ कि इस बार कैसा है, किसके लिए ज्यादा फेवरेबल है इस बार ग्रह गोचर।
5: जी बिल्कुल नवजोत जी, तो देखिए हंस नामक राजयोग बन रहा है जो कर्क राशि में जब गुरु उच्च की स्थिति में होता है उसी समय बनता है। तो जो हंस नामक राजयोग है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह को ही इस समय चंद्र ग्रह लग रहा है, जो सुबह 6:00 शुरू हो रहा है 6:53 से, और इसका जो पीक टाइम रहेगा वो 9:30 के लगभग रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण समाप्त होते होते 12:30 लगभग बज जाएगा। इसलिए 12:30 के साथ जो हमें अभिजीत नक्षत्र का 12:15 से योग मिल रहा है वो बेहद शुभ रहेगा, जिस समय हम रक्षाबंधन कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी, इसके साथ साथ सूर्य और बुध का बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। शुक्र महाराज नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए भी यह समय अच्छा है और बुरा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का कन्या राशि से गोचर करना भी कन्या राशि को कहीं ना कहीं सेफेस्ट पॉइंट पे रख रहा है। इस समय जो सबसे ज्यादा थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं वो रह सकती हैं वृश्चिक राशि पे, मीन राशि पर और कर्क राशि पर, लेकिन कर्क राशि को तो देव गुरु बृहस्पति ने पूरा प्रोटेक्शन अपनी छतरी दी हुई है, तो मुझे लगता है कि कर्क राशि सिर्फ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके अपनी पूरी वो संवेदनता जो निगेटिविटी है जो ब्रह्मांड में होगी उसको समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी को चंद्र ग्रहण का पूरा लाभ उठाना चाहिए, अपने मंत्र जाप करने चाहिए, अपनी मालाओं को, अपनी अंगूठियों को, अपने क्रिस्टल्स को इस समय पूरी तरह एक्टिवेट करिए और अपनी ऊर्जाओं को इस समय जितना आप एक सीध पे कमर को एक सीध में रखते हुए बैठते हैं, क्योंकि सुबह का समय है नवजोत जी, किसी के लिए ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि छुट्टी का दिन नहीं था या टाइम नहीं था, सुबह का समय है, अपने आप को मौन धारण करके थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ये दिन सच में ग्रहण को चीजों को ग्रहण करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है कि आप कैसे समाज को दुनिया को अपनी इच्छाओं को कैसे एक्सेप्ट करते हो। तो शिव जी से हमें सीखने को मिलना चाहिए कि जब विष कोई धारण नहीं कर पा रहा तो हम विष धारण कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए।
1: बिल्कुल। एक बार अब संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जब रक्षाबंधन की बात आती है, बहनें राखी बांधती हैं भाई की कलाई पर, तो उस नॉट का कितना महत्व हो जाता है, उस गांठ का कितना महत्व होता है, क्या उसकी भी कोई काउंटिंग होती है?
6: जी बिल्कुल काउंटिंग होती है। मैं भी यही समझा रहा था कि हमेशा जो गांठ से बांधते हैं, पहला जो धागा होता है, पहली गांठ जो होती है वो क्या है कि भाई की लंबी आयु, क्योंकि दीर्घ आयु रहे भाई की। जो भी अक्षत रखते हैं, चावल रखते हैं, धन रखते हैं मुट्ठी के अंदर, कि हमारा हाथ सदा के लिए जो है धन से भरा रहे, हमारे जीवन में कभी भी खाली ना हो हमारा। पहला रक्षा सूत्र जब बांधते हैं वो इसीलिए बांधते हैं कि भाई की लंबी आयु हो। दूसरी जो गांठ बांधी जाती है वो इसलिए कि बहन की लंबी आयु हो, क्योंकि बहन और भाई का जो प्रेम है वो सदा बना रहे। तीसरी जो है कि दोनों में प्रेम अटूट रहे और जीवन पर्यंत रहे। कहते हैं कि जिस प्रकार से त्रिदेव है उसी प्रकार से बहन भाई के अंदर सदा प्यार मोहब्बत बनी रहे और दोनों का प्रेम युग युगों तक रहे, क्योंकि भाई और बहन का प्रेम अटूट होता है और उसमें क्या है कि गिफ्ट वाली बात आपने बड़ी अच्छी बोली है, परंतु क्या है बहन भाई के बीच में कभी गिफ्ट की बात नहीं होती, कभी उनके भाई जो श्रद्धा अनुसार जो भी गिफ्ट दे देता है वो बहन एक्सेप्ट कर लेती है, और बहन अगर कुछ अपने भाई को दे देती है तो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है, रक्षाबंधन जो है प्रेम का बंधन है, अटूट बंधन है, जो हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं में भी यही आया है कि आप देखें कि बिना किसी उसके जो है भगवान कृष्ण की उंगली, जब उंगली कटी चक्र से तो सीधा उन्होंने जो है टुकड़ा बांध दिया राखी का, तो वो क्या है कि राखी नहीं है, वो बैंड, एक तरीके से आप बैंड समझे, राखी समझे या धागा समझे या फिर जो है एक कपड़ा समझे, क्योंकि एक मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ जब भी आप किसी को पूरे प्रेम के साथ जब बांध देते हैं वो अटूट विश्वास हो जाता है और वो प्रेम का सहयोग होता है। तो इसलिए तीन धागों की बात कही गई है, तीन गांठों की बात कही गई है, जो हमारे त्रिदेवों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, कहा कहते हैं कि आकाश पृथ्वी और जल तीनों को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो तत्व है, हमारा बैलेंसिंग तत्व जो मन का तत्व है, हमारा शरीर भी तीन भागों में ही डिवाइड है, पहला जो हमारा जो सर के ऊपर का, दूसरा मिड पार्ट, तीसरा निचला पार्ट, तो ऐसी तीन जो चीजें हैं उनको जोड़ करके जो है हमारी हमारे शरीर की भी संरचना हुई है, उसी प्रकार से
1: जी जी बिल्कुल जी। इसके पीछे की कथा बानी जी जरा संक्षेप में बता दीजिए।
4: जी, राखी के पीछे की बहुत सारी डिफरेंट पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ पर जो है द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो फाड़ के जो है भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर बांधा था और उन्होंने चीरहरण के टाइम पर उनकी जो है रक्षा की थी। इसके अलावा जो है माँ यमुना ने यम जी को भी जो है ये रक्षा सूत्र बांधा था और यम ने जो है उन्हें जो है कि उनके जीवन में, उनके लाइफ में कभी भी जो है अकाल मृत्यु का कुछ भी ऐसा ना बने, तो इस तरह की भी चीज़ें। और माता लक्ष्मी ने भी बलि, राजा बलि को जो है रक्षा सूत्र बांधा था और वो जो है बैटल को जो है जीत के आए थे और माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के लिए जो है बैकुंठ लोक जो है वो भी गई थी। तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस हैं, बट एक जस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी बहनें अपने भाइयों को, आप लोग जब राखी बांधते हो तो अपने भाइयों को इतना ज्यादा आप ब्लेस करो और अपने भाइयों को लाइफ में कैसे हम अपनी लाइफ में इंटेग्रिटी प्रिंसिपल्स और ऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। और भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप टाइम टू टाइम अपने बहनों से कन्वर्स करते रहें कि उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि हमारे देश में जैसे जो सिया जैसी और ये सब चीजें, इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं वो ना बने, ताकि पहले से आपके भाई बहन एक दूसरे के साथ थिक्स एंड थिन्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहें और टाइम टू एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहे। और आज के दिन आपके अपने भाई बहनों के बीच में कोई भी मन मुटाव हो तो उसको आप जरूर अपनी लाइफ में क्लियर कर,
1: कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर निशा, आपके पास पहले आऊंगी। हम तमाम चीजें तो बात कर ही रहे हैं, हर चीज का जिक्र हो गया, क्या करना चाहिए, लेकिन डोंट्स की बात हमने नहीं की। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल बहुत खास ख्याल रखना है कि ये बातें तो इस दिन नहीं होनी चाहिए।
5: जी नवजोत जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी आपने नॉट्स की भी बात की थी संजय जी से, तो मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए भाइयों को, क्योंकि मनुस्मृति में भी हमें मिलता है कि अगर हम अपने भाई को रक्षाबंधन का सूत्र बांध रहे तो उसमें त्रिशक्ति को, ये हमारी आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति की ऊर्जा को भी दिखाता है। तो तीन गांठे मांगनी चाहिए। पहली गांठ ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए, ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे हैं, रचयिता है, तो हमारे जीवन में वो रचने वाली जो कला है, हम चीज घर बनाए, प्रॉपर्टी बनाए, गाड़ी बनाए, तो हम अपने भाई को ब्लेस करते हैं कि तुम भी अपने जीवन में वंश वृद्धि करो, चीजों को बनाओ, और ब्रह्मा जी का नाम लेके उसके बाजू पर वो कला गांठ पहली बांधते हैं। दूसरी गांठ विष्णु जी के नाम से बांधते हैं, सुख समृद्धि की आस्था रखते हुए कि मेरे भाई के जीवन में श्री हरि विष्णु के नाम से सुख समृद्धि बढ़े। और तीसरी शिव जी के नाम से त्रिशक्ति को मेंटेन करते हुए कि जो नकारात्मक शक्तियां वो उससे दूर रहे और उसकी आयु लंबी रहे, वो तीन गांठे बांधते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हनुमान जी को या ठाकुर जी को राखी बांध रहे हैं तो तीन गांठे नहीं बांधी जाती नवजोत जी, वहां पे आठ गांठियां बांधी जाती।
1: ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। साथ शुभ संयोग कौन से बन रहे, इसी को लेकर आज हमने चर्चा किया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: युवाओं के साथ PM का विशेष संवाद, ओलंपिक्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर, कहा सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध।
6: नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब लोगों का हो रहा रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश में बड़े स्तर पर चल रहा है अभियान।
5: बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए हुआ रवाना।
6: राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हिंडोला उत्सव की धूम, मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार, 100 साल पुराने 50 किलो चांदी के झूले में विराजते हैं भगवान।
5: फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को छात्रों ने बांधी राखी, पटना में भी फौजी भाइयों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर बांटी, त्योहार की खुशी।
6: केरल के गुरुपुरम श्री महाविष्णु मंदिर को उपहार में मिला रोबोटिक हाथी, पेटा इंडिया और साथ ही अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भेंट, असली हाथियों के प्रति होने वाली क्रूरता को रोकना मकसद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अपने अंतिम चरण में है अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ धाम में पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक। कल रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी मुबारक, जहां अंतिम पूजा और अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में जारी 500 सालों से चली आ रही झूलोत्सव की परंपरा, 50 किलो चांदी का झूला पर विराजमान भगवान के मनमोहक विग्रह। देशभर में बप्पा के आगमन को लेकर तैयारियां तेज, कर्नाटक के तेनकाशी जिले में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दिखा आसव परंपरा का संगम, अवनी अवित्तम यज्ञोपवित समारोह का आयोजित किया गया।
6: बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में देखने को मिली देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, छात्राओं ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी।
5: भारत पाकिस्तान सीमा पर मुस्तैद रहने वाले बीएसएफ जवानों के लिए फिरोजपुर के स्कूली विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बना दिया खास, सैनिकों की कलाई पर बांधी गई राखी। अमृतसर के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही है बहनों की भीड़, अपने भाइयों की कलाई राखी से सजाने के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीद रही हैं महिलाएं। गाजियाबाद के डासना जेल में रक्षाबंधन की खास तैयारी, रक्षाबंधन से पहले कैदी राखी बनाने में जुटे। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, 37.5 टन राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए हुआ रवाना। पीएम मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से, उन्होंने संवाद किया, खेल और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा की, हर जिले के 2 कॉलेजों के युवा शामिल। यूपी टीईटी 2026 का रिजल्ट जारी, प्राथमिक के 93,000 और उच्च प्राथमिक के 1.13 लाख अभ्यर्थी पास हुए। यूपी के संबंध में जल्द शुरू होगा 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण, फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे अफसर, परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले तीर्थों का किया सर्वे। बाबा बैद्यनाथ धाम के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आई है, बाबा बैद्यनाथ के शीघ्र दर्शन निःशुल्क कर सकेंगे स्थानीय श्रद्धालु, जिला प्रशासन का फैसला। यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से बदल रही युवाओं की जिंदगी, फिरोजाबाद के सतीश ने नौकरी छोड़कर शुरू किया अपना काम। कल अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला 2 हो रही है रिलीज, लगभग 20 साल बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर रिलीज होगी, कल से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बंदर, कल से Z5 पर स्ट्रीम होगी अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी कल से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी, सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देवेन भोजानी और साथ ही अमायरा दस्तूर का अहम रोल। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल, 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर हो रही है रिलीज। चीन के ग्वांगची में 6 दिन चला नदी का पारंपरिक उत्सव हुआ खत्म, हजारों लोगों ने नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नत भी मांगी। चीन में कांच से फूलों का बनाया गया खूबसूरत बागीचा, ये फूल 1400 डिग्री तापमान पर होते हैं तैयार। जापान के हिरोशिमा शहर में किले को पुरानी जगह पहुंचाने की कोशिश, सैकड़ों लोगों ने रस्सियों से 400 टन का किला हाथ से खींचा। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्स कॉम की शुरुआत, इस बार 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स की शानदार शुरुआत, सर्फिंग पर हासिल किए परफेक्ट 10।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: अच्छे से अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। कल मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पावन त्योहार से पहले देश भर के बाजारों में रौनक, बहनों को लुभा रही है रंग बिरंगी राखियां। कड़ी सुरक्षा के बीच में बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंची छड़ी मुबारक, भगवान भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं, कल रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी यात्रा। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां, बनाई जा रही है इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश। नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब लोगों का हो रहा रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा अभियान, घायलों के लिए तैयार किए जा रहे अस्पताल। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर गेम्स कॉम की शुरुआत, 1700 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हुए शरीक और लोगों में दिखा उत्साह।

0: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कल त्योहार जो है उसके बारे में, रक्षाबंधन का त्योहार। पूरे देश में रक्षाबंधन की रौनक दिखाई दे रही है। इस पावन अवसर पर देश भर के बाजार भी गुलजार हैं, जगह जगह राखी की दुकानें भी सज गई हैं। पूजा, आपने राखी खरीद ली?
1: हाँ शगुफ्ता, मैंने राखी खरीद ली। देखिए जगह जगह पर अलग अलग राखियां देखने को मिल रही है। कहीं पर सिल्वर की राखी है, गोल्ड की है, कार्टून राखियां भी नजर आ रही हैं दुकानों में। तो वही उसी का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियों के एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को ध्यान में रखकर ये राखियां बनाई गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों में खरीदारों की लाइन लग रही है। खास बात यह है कि इस बार सरफा बाजार में भी राखी की खास रौनक देखने को मिल रही है।
0: देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई में सोने चांदी की राखी की चमक देखने को मिल रही है। राखी से पहले बहनें भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीद रही हैं, भाई बहनों के लिए उपहार। लेकिन क्या इस राखी और तोहफे का राशि से कोई कनेक्शन हो सकता है? इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन और भी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन को लेकर। उससे पहले राखी पर जो चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं।
1: दरअसल कल रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान मांगलिक, नए या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है।
0: तो देखिए क्या बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकेंगी इस दौरान? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
2: रंग बिरंगी ट्रेंडी राखियों से देश भर के बाजार गुलजार है। दुकानों में राखियों की रौनक है तो बहनों और भाइयों को इंतजार है रक्षाबंधन का, जब बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई बहनों को प्यार के साथ उपहार देकर इस त्योहार की रस्म निभाएंगे। 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार इस त्योहार पर कई संयोग एक साथ बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस त्योहार पर चंद्र ग्रहण पंचक के साथ भद्रा भी रहेगी। सावन पूर्णिमा तिथि आज सुबह 9:09 से शुरू हो चुकी है। कल 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर इसका समापन होगा, जबकि भद्रा आज सुबह 8:31 से लग चुकी है और आज रात 8:54 तक है। रक्षाबंधन का त्योहार कल 28 अगस्त को है तो साफ है कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा के प्रभाव से दूर रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर पंचक भी लगने वाला है जो आज से 1 सितंबर तक रहेगा। ये पंचक आज से शुरू हो रहा है जो अग्नि पंचक कहा जाएगा, इसलिए इस पंचक की वजह से राखी बांधने पर कोई रोक टोक नहीं है। अब बात रही चंद्र ग्रहण की। रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो इसको लेकर सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ग्रहण के साए में राखी बांधी जा सकेगी। चंद्र ग्रहण शुक्रवार सुबह 6:53 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहने वाला है, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा, इसलिए चंद्र ग्रहण को लेकर भी चिंता करने की जैसी कोई बात नहीं है।
3: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वही ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इससे भारत के लिए ग्रहण संबंधी पारंपरिक नियम उसी तरह लागू नहीं होंगे जैसे किसी दृश्य ग्रहण के समय होते हैं। इसलिए इसे भय की दृष्टि से नहीं देखें, बल्कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के रूप में समझिए।
2: रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं मारा जाएगा, इसलिए बहनें 28 अगस्त को दिन भर शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:58 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से शुरू होकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। बस ध्यान राहु काल का रखना होगा, इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए।
3: सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो इस बार राखी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है।
2: मिलाकर रक्षाबंधन का त्यौहार बेफिक्र होकर मना सकते हैं, क्योंकि ना तो चंद्र ग्रहण, ना ही पंचक और ना ही भद्रा का कोई प्रभाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। राज जी, सवाल आपसे यही है कि कल देखिए देशभर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन डर इस बात का है कि कल चंद्र ग्रहण भी है, हालांकि भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग कन्फ्यूजन में है, जो लोग भय में है, पहले तो उसको दूर कर दीजिए, और कल के दिन की विशेषता क्या रहेगी, किस मुहूर्त में बांधी जाए राखी, ये भी बता दीजिए।
4: देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल का रक्षाबंधन वास्तविक रक्षाबंधन है। कल ग्रहों के लिए भी देखा जाए तो कल ग्रह भाई के रूप में सबसे पहला सपोर्ट करने जा रहे हैं, और मैं उसका कारण बताना चाहता हूं। मंगल को भाई का कारक प्लैनेट कहा गया है, मंगल थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और पहली बार शायद रक्षाबंधन में ऐसा होने जा रहा है कि जब मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, यानी उसी स्थान पर गोचर करेंगे जो भाई के लिए कहा जाता है या बहन के लिए कहा जाता है, उस स्थान पर मंगल का गोचर करना वास्तविकता में इस रक्षाबंधन को सबसे खास बना देता है। बृहस्पति का एग्जॉल्टेड होना इस रक्षाबंधन को सबसे खास बना देता है, बहुत शानदार है। अब बात आ रही है ग्रहण को लेकर के, यस मैं ये जानता हूं कि जीएनटी के बहुत सारे दर्शक पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया से, कई बार अलग जगह से, हम आपको जीएनटी पर देख रहे थे। हमें भी थोड़ी खुशी होती है कि जब लोग जीएनटी पर देखते हैं तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो लोग मतलब थोड़ा अच्छा समझते हैं। डिबेट उबेट में जब लोग देखते हैं तो थोड़ा अजीब होता है, वो कहते हैं वहां आप गुस्सा कर रहे थे आप ऐसा, तो हम उनको बताते हैं कि जीएनटी एक ऐसा चैनल है जो शायद गुस्से को कंट्रोल करके व्यक्ति के ब्रेन को क्लीन करके उसको एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है, तो वहां पर डिस्कस करने में मजा आता है। तो क्योंकि ये जो ग्रहण घटित होने जा रहा है भारत के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपके दर्शक जो है अमेरिका के अंदर है तो अमेरिका में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, सऊदी अरेबिया में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, ईरान में होने जा रहा है, अफ्रीका में होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंतर्गत होने जा रहा है, क्योंकि ये ग्रहण जो भारतीय समय होगा उसके अनुसार 8:22 पर शुरू होगा। तो जो लोग इन कंट्रीज में रहते हैं जहां का मैंने नाम लिया है, वहां पर सिर्फ आपको सावधानी की आवश्यकता है, वहां आपको आपके समय के अनुसार ग्रहण क्या है उससे 9 घंटे पहले सूतक स्टार्ट हो जाता है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो ग्रहण खत्म होने के बाद ही भगवान का स्मरण इत्यादि करके और आप सूत्र बांधना, लेकिन अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो भारत के अंदर रहने पर आपको किसी प्रकार से कोई सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। भारत के अंदर ग्रहण का किसी प्रकार का, भारत के अंदर आप आराम से अपना जो रक्षाबंधन का जो कार्य है उसको

0: क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि रहने वाली है वो 9:48 पर खत्म हो जाएगी। कोशिश करें कि 7:30 के बाद से लेकर के 9:48 के बीच में अगर पॉसिबल है तो प्लीज रक्षाबंधन मना लें। अगर इस समय पर कारणवश नहीं पॉसिबल होता है, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि अगले 7 दिन तक रक्षाबंधन मनाया जाता था, और मुझे लगता है जब भी कोई बहन अपने भाई के हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांध देना, वो समय अपने आप ब्रह्मांड अनुकूल बना देता है, वो समय अपने आप शुभ हो जाता है। अगर इस समय पर आप नहीं बांध सकती हैं, तो भगवान को इस समय पर राखी चढ़ा दें, और फिर जब समय आपको मिले तो फिर राखी, वो जो रक्षा सूत्र है वो अपने भाई को बांध दें।
1: चलिए, सही समय तो आपने समझा दिया राजी। आगे और भी जानकारी दीजिएगा, एक रिपोर्ट, तब तक हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, ऐसे में भाई अपनी बहनों को प्यार से कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं, लेकिन क्या इस राखी और तोहफे का राशि से कोई कनेक्शन हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है।
2: और देखिए, भाई के लिए सौभाग्य भी ये चीज ला सकती है, तो वहीं अगर बहन के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात होती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं।
3: बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं, आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, आप सिल्वर कलर के क्लोथ्स गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रांग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधें, और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कुछ स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमरल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें

0: रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं। साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी दे के दे सकते हैं। आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वही अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की है तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो ये हमने समझा राशि के हिसाब से क्या आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। राजजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजजी, गिफ्ट के बारे में तो हमने समझ लिया कि बहनों को इस राखी पर क्या उपहार राशि के हिसाब से देना चाहिए। अगर हम राखी की बात करें तो वो कौन सी राखी है, किस तरीके की राखी भाई को बांधने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और किस तरीके की राखी बिल्कुल ना बांधी जाए, कुछ ऐसा भी है?
2: देखिए, अगर मैं शास्त्रोक्त परंपरा को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि लाल रंग जो है वो ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग आपको मानसिक शक्ति प्रदान करता है, चीजों से लड़ने की, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। पीले रंग की अगर बात की जाए तो वास्तविकता में पीला रंग आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करके आपको मानसिक शक्ति इत्यादि देता है, जिससे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं और रिश्ते के इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हरा रंग आपको जीवन को शुरुआत करने की एक कला देता है। ब्लैक इत्यादि के प्रयोग के लिए शास्त्र में निषेध कहा गया है कि काले रंग इत्यादि का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, या जिसमें, हाँ, स्पेशली अगर काले रंग की बात की जाए या ग्रे कलर की बात की जाए, इन दोनों रंगों को अवॉइड करने की बात कही गई है शास्त्र में। अगर देखा जाए तो लाल या पीले रंग की अगर आप राखी बांध रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। काले रंग और उसके साथ भूरे रंग का प्रयोग जो है, मुझे लगता है वो राखी पर नहीं करना चाहिए, जो कि शास्त्र भी कहता है, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और धर्म शास्त्र भी इसी समय को किसी चीज को सूचित करता है। इस प्रकार के रंगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी,
1: चलिए राजी, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खास पेशकश लगातार जारी है, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का विशेष संवाद, ओलंपिक्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर, कहा सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब लोगों का हो रहा रेस्क्यू, लापता लोगों की तलाश में बड़े स्तर पर चल रहा अभियान। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए हुआ रवाना। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हड़ियोला उत्सव की धूम, मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार, 100 साल पुराने 50 किलो चांदी के झूले में विराजते हैं भगवान। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों को छात्रों ने बांधी राखी, पटना में भी फौजी भाइयों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर बांटी, त्योहार की खुशी। केरलम के गुरुपुरम में श्री महाविष्णु मंदिर को उपहार में मिला रोबोटिक हाथी पेटा इंडिया, और साथ ही अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भेंट, असली हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने का मकसद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लंच टाइम में। वही रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है, उसी की करेंगे बात, क्योंकि देश भर के बाजार राखियों की रंग बिरंगी रौनक से गुलजार हैं। कहीं बहनों की ओर से खास राखियां तैयार की जा रही हैं, तो कहीं पर देश के जवानों के लिए राखी में तकनीक और भावनाओं का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। वाराणसी में जवानों के लिए एआई वाली राखी तैयार की गई है, जिसमें कई खास खूबियां हैं।
2: और देखिए पठानकोट में भी ऐसे ही तस्वीरें सामने आई हैं, जवानों की कलाई पर बहनों के स्नेह की डोर बांधी गई। रायपुर में सुरक्षा बलों के लिए स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधर पुरी में दुनिया की सबसे बड़ी राखी तैयार कर इसे खास आकर्षण बनाया गया। और राजधानी दिल्ली के बाजारों में सोने चांदी की राखियां लोगों को खूब लुभा रही हैं, यानी देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। राखी के हर रंग में भाई बहन के रिश्ते के साथ देश के वीर जवानों के लिए सम्मान और स्नेह साफ देखा जा सकता है। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कल देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, उसकी तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन ये भी आपको बता दें कि सुबह 2 घंटे और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होगा, जिस वक्त में आप अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध सकते हैं। चलिए राज्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज्य एक बात से तो आप भी अग्री करेंगे, याद है आपको जब हम बचपन में राखी का त्योहार मनाया करते थे पेरेंट्स के साथ, तो कहा जाता था कि मोली जो लाल रंग का धागा होता है, सिर्फ अगर आप वही बांध देते हैं वही चीज बहुत होती है। ये डिजाइनर राखी और एमरल्ड वाली राखी, सोने चांदी की राखी का क्या महत्व है, किसको बांधनी चाहिए, वो भी जरा बता दीजिए।
3: देखिए सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो प्रेम है ना वो हृदय से होता है, और अगर हृदय से सच्चे प्रेम के साथ बहन सिर्फ अपना आशीर्वाद दे दे तो वो भाई के जीवन के लिए अमृत तुल्य साबित होता है। एक्चुअल जो रक्षा सूत्र है जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया, सबसे पहले एक चीज हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि रक्षा सूत्र का कोई ऐसा विधान नहीं है कि इसी चीज का होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए या रंग बिरंगी ही होना चाहिए या फिर रेशम का ही बना होना चाहिए या फिर कोई, अरे ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं उसके थोड़ा सा पुराने विषय पर जाऊंगा, जहां पर एक मंत्र जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो प्रारंभ होता है एन बद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेनेत्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल, जहां पर बहन अपने भाई के हाथ में जब रक्षा सूत्र बांधती है तो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे भाई को जन्म जन्मांतर तक उसकी सुरक्षा करना, उसके जीवन में वृद्धि प्रदान करना। कहां से प्रारंभ हुआ, राजा बलि के पास माता लक्ष्मी जाती हैं, भगवान विष्णु जो कि उनके द्वारपाल बन गए थे, वामन अवतार के अंतर्गत जो भागवत में कथा आती है कि भगवान विष्णु बलि को छलने गए थे लेकिन बलि ने कहा कि आप मेरे यहाँ द्वारपाल बन करके रहेंगे, बस इतना मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, भगवान वहां द्वारपाल बन जाते हैं। माता लक्ष्मी फिर अपने पति को प्राप्त करने के लिए जाती है, बलि को अपना भाई बना लेती है और सबसे पहले उसको रक्षा सूत्र बांध देती, तो वहां पर कोई रंग बिरंगी राखियों का कोई वर्णन नहीं है, जस्ट एक मोली का धागा जो है वो माता लक्ष्मी ने बांध दिया, वही उतना है। दूसरा कथा आप सब लोगों ने सुना होगा, जहां पर शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उससे उनकी उंगली कट जाती है, और वहां पर जो द्रौपदी जी हैं वो अपने साड़ी को चीर करके और भगवान विष्णु को बांध देती हैं, और वो भी भगवान कृष्ण को बांधती हैं, और वो एक प्रकार से रक्षा सूत्र माना जाता है, और उसी के एवज में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जो है जब अश्वत्थामा द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास करता है तो फिर वो साड़ी खींचता रह जाता है द्रौपदी की, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होती है, और अश्वत्थामा कहता है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही ये नारी है, कि नारी ही ये साड़ी है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का जो पारंपरिक तरीका था वहां पर प्रयोग किया गया, क्योंकि आज के समय में सबसे जो सुंदर है वो आप मोली अपने भाई के हाथ में बांध दें, वो सबसे सुंदर रक्षा सूत्र है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर गुप्ता जी, मैं ये पर्सनली मानता हूं सेलिब्रेशन के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ भी प्रयोग किया जाए, अगर हृदय में भाव है तो जो राखी आपको सुंदर लगती है, जो मुझे लगता है बहन को सुंदर लग सकती है, अपने भाई के लिए बहन से ज्यादा बेहतर और कोई कुछ सेलेक्ट कर ही नहीं सकता है। तो जो बहन को लगता है कि ये मेरे भाई की कलाई पर अच्छी लगेगी, वो ले जाकर अगर बहन बांध देती है तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि वो उसके लिए अमृत ही साबित होगा, और वो उसके लिए एक प्रकार का सुरक्षा करने वाला ही साबित होगा।
2: जी राजी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि तोहफे में बहन को क्या दिया जाए, क्योंकि भाइयों का कहना है राखी तो इतनी आप सस्ती सी हमें बांध दे रहे हो और तोहफा आपको चाहिए महंगा, और छोटे भाई जो हैं वो गिफ्ट देना पसंद नहीं करते राजी, उनको उल्टा देना पड़ जाता है, आपको क्या किया जाए?
3: पूजा जी, आपको क्या मिल रहा है, आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया?
2: राजी मेरा भाई तो छोटा है, मैं उसको तोहफा देने वाली हूँ।
3: करेक्ट, बहुत सुंदर है और ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आपके आशीर्वाद का तोहफा उसके जीवन के लिए सबसे सुंदर होगा। खैर, मुझे लगता है कि संसार में ना कोई भी बहन को या बेटी को कुछ दे नहीं सकता। किसी का ये शब्द था कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, किसी का एक बड़ा वो शब्द आया था कि लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बेटियों के बिना ही कोई घर नहीं होता। जिस घर में बेटियां ना हो मुझे लगता है वो घर नहीं होता। तो खैर, कोई भाई बहन, कोई भाई बहन को कोई तोहफा दे पाए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी श्रद्धापूर्वक प्रसन्नता से दिया जा सके वो तोहफा देना चाहिए। एक मेरा और विषय रहता है, मुझे लगता है कि इस समय तोहफे में क्या मांगना चाहिए, एक बहन को तोहफे में क्या मांगना चाहिए और एक भाई को क्या मांगना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस विचार से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार को रखना चाहता हूं। मुझे लगता है एक बहन भाई से ये मांगे कि आपके कारण इस संसार की किसी भी स्त्री को डर का सामना ना करना पड़े। जब आपको इस संसार की कोई स्त्री देखे ना तो उसको प्राउड फील हो, वो सेफ महसूस करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक बहन को अपने भाई से ये प्रार्थना करना चाहिए कि अपने पत्नी को भरपूर प्रेम दीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसने आपके लिए अपना घर छोड़ा है, लेकिन उसी के साथ कभी भी मेरे माता पिता को किसी प्रकार की पीड़ा ना होने पाए, ये तोहफा सबसे इंपॉर्टेंट है। और भाई को भी ये मांगना चाहिए, भाई को भी बहन से ये मांगना चाहिए कि बहन बस इतना ध्यान रखना कि जिस प्रकार आपने मेरी सुरक्षा के लिए धागा बांधा है, इसी प्रकार अपने पति के माता पिता की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखना, और आपके कारण कभी आपके पति के, आपके सास ससुर को, आपके पति के माता पिता को कभी वृद्ध आश्रम इत्यादि ना जाना पड़े और किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा ना हो। हर वर्ष मुझे लगता है अगर इस तोहफे को हम दोहराते रहें तो इससे बेहतरीन कोई तोहफा हो नहीं सकता है, और हर घर में मुझे लगता है प्रसन्नता रहेगी। और गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा था कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां पर एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का प्रेम होगा, स्नेह होगा, वहां अनेकों तोहफे हर दिन आते ही रहेंगे। और बाकी तो इस संसार में जितने भी हम मटेरियलिस्टिक तोहफे एक दूसरे को दे दें, मुझे लगता है वो तोहफे कम ही होते हैं, वो बहुत बड़े नहीं।
2: राजी, एक और चीज, किसी ने ये सवाल पूछा है आपसे, वही सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ कि कल जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा तो बहनों को कोई पर्टिकुलर रंग भी पहनना होता है, या इसमें कोई साइंस है?
3: आपके स्क्रीन पर बार बार एक शब्द आ रहा था कि वरुण का नक्षत्र है सब निशान, दैट इज करेक्ट। सब निशान नक्षत्र जो है वो वरुण का नक्षत्र है, और वरुण जो है वो जल के देवता, जल के जो देवता है उनको वरुण कहा जाता है। सब निशान नक्षत्र के जो स्वामी है वो राहु है, और जो देवता है वो वरुण देवता है। कल एक चीज बहुत सुंदर रहने वाली है, और वो चीज है कि बृहस्पति हंस नामक जो पंच महापुरुष योग है उस एक योग के अंतर्गत जाकर के विद्यमान होंगे, उच्चस्थ है बृहस्पति, मंगल थर्ड हाउस के अंतर्गत विद्यमान होंगे। अगर बहने पीले रंग का कोई वस्त्र पहनती हैं, या पीले रंग से कनेक्टेड अगर किसी वस्त्र को पहनती हैं, या फिर क्रीम कलर के कोई रंग के कोई रंग का वस्त्र पहनती हैं, या फिर क्योंकि जल को जो है वो नीला माना जाता है, आसमानी रंग का कोई वस्त्र पहनती हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे सुंदर होगा। लेकिन अगर मैं भाई के विषय को लेकर के बात करूं, क्योंकि चंद्रमा इलेवंथ हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे कल काल पुरुष के अंतर्गत, तो भाई लाल रंग का अगर कोई वस्त्र पहनता है या उसके साथ क्रीम कलर का अगर कोई वस्त्र पहनता है तो उसके लिए बहुत शानदार होगा ये दो वस्त्र। स्पेशली अगर मैं कहूं क्योंकि शुक्रवार का भी दिन है और शुक्र जो है वो माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र को सफेद वस्तुओं का या क्रीम कलर के वस्तुओं का कारक प्लैनेट माना जाता है, तो इस प्रकार से अगर क्रीम कलर का कोई कपड़ा इत्यादि आप पहनते हैं तो वो बेहतर होगा। और उसी प्रकार से जो बहने हैं वो अगर ड्रेस क्रीम कलर की है उसको अगर पहनती हैं तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, लाल रंग की या पीले रंग की पहनती हैं तो बेहतर होगा। जी
0: चलिए ठीक है राज जी, आपके पास लौटेंगे, आप और भी जानकारी साझा कीजिएगा। वहीं एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वाराणसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने जवानों के लिए रक्षाबंधन पर अनोखा उपहार तैयार किया है। इन छात्राओं ने एक हाईटेक राखी बनाई और एक इनोवेटर की मदद से इन छात्राओं ने ऐसी राखी बनाई है जो कि जवानों की हिफाजत में मददगार साबित हो सकती है।
4: त्योहारों की उमंग के साथ आधुनिक तकनीक की जुगलबंदी हो जाए तो नतीजा कुछ ऐसे ही खास डिजाइन की शक्ल में सामने आता है। पूरे देश में इन दिनों रक्षाबंधन पर्व का उल्लास है। भाई बहन के अटूट बंधन के इस त्योहार पर वाराणसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने देश के वीर जवानों के लिए एक अनोखी राखी तैयार की है। वाराणसी के युवा इनोवेटर श्याम चौरसिया के साथ मिलकर छात्राओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये राखी बनाई है। उनका दावा है कि सोलर पावर से चलने वाली ये राखी बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है।
5: मेरी टीम के साथ मिलकर एक राखी तैयार किया है जो कि इस वीर जवानों के सुरक्षा में भी काम आएगा। हम बहनों की तरफ से अपने वीर जवान भाइयों के लिए एक उपहार है। ये राखी उनकी सेफ्टी भी करेगा और उनकी बहुत काम आएगा। बिना नेटवर्क के इस राखी से वो वीडियो कॉल पे बात भी कर पाएंगे और इससे अपने गन का ट्रिगर भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें SOS की भी सुविधा उपलब्ध है और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भी ये काम करता है। हमने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए ये राखी बनाया है।
4: इस सोलर सोल्जर राखी के प्रोटोटाइप को इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। इस राखी में 2.1 इंच का डिस्प्ले लगा है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें माइक्रोफोन और कैमरा मौजूद है। ये सोलर एनर्जी खुद ही चार्ज हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी ये कनेक्ट हो सकता है। इसमें ऑडियो वीडियो संचार की सुविधा भी दी गई है। इसका वजन करीब 70 ग्राम है।
6: हम लोगों ने जो राखी डिजाइन किया है वो स्पेशली इस राखी के जरिए जो हमारे सोल्जर्स है वो बॉर्डर पे अपने हथियारों को संचालित कर सकते हैं। कभी भी आप सपोज कि हमारे जो सोल्जर्स है बॉर्डर पे कहीं घायल हो गए या उनको अपने हथियारों को ऑपरेट करना है तो अपने राखी के जरिए ही वो उन गन को ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसी परिस्थिति में अगर हमारे जवान को गोली लग जाती है तो राखी के जरिए वो कंट्रोल रूम को सूचना भी भेज सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये भी है कि वीडियो कॉल के जरिए अगर कोई हमारे जवान घायल हो जाते हैं तो वो कंट्रोल रूम को संपर्क साध सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हमने अपने ITM कॉलेज के इनोवेशन सेल में अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर के तैयार किया है।
4: इस सोलर राखी को तैयार करने में करीब 3 महीने का वक्त लगा और इसे बनाने में करीब 1.25 लाख रुपए की लागत आई। इसे तैयार करने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज अब इस राखी को देश के जवानों तक पहुंचाना चाहता है ताकि जवानों को इस रक्षाबंधन पर हिफाजत की एक नई सौगात मिल सके। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए इस बातचीत को राज्य के साथ आगे बढ़ाते हैं। राज्य
2: अगेन सेम प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, किसी दर्शक ने ये सवाल आपसे पूछा है कि चूंकि चंद्र ग्रहण का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि उनकी संतुष्टि के लिए आप एक बार फिर से बता दें कि कोई डरने की आवश्यकता तो नहीं है, अभिजीत मुहूर्त है और सुबह का मुहूर्त है जब राखी बांधी जा सकती है, वो टाइम भी एक बार मैं चाहूंगी कि दोबारा से आप रिपीट कर दें जरा।
3: बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो मैं वास्तविकता में कहूंगा कि डरने की वैसे भी आवश्यकता नहीं होती। आप गुड न्यूज टुडे देख रहे होते हैं तो फिर डरने वाला तो विषय ही नहीं होता, क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर आप भगवान के दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं, अच्छी अच्छी न्यूज देखते हैं, डरने वाला वैसे विषय नहीं रहता है। क्योंकि ग्रहण भारत के अंदर नहीं है, इस बात को हम सबको ध्यान रखना होगा। भारत में ग्रहण का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए भारत के अंदर आप जो त्योहार मना रहे हैं उसको खुल करके मनाइए, आनंद से मनाइए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान की आराधना श्रद्धा से करते हैं, मैंने क्यों इस शब्द को यूज किया कि आप गुड न्यूज देख रहे हैं इसलिए आपको गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइक शास्त्र ने एक बात कहा है, जब भगवान का अवतरण होता है या भगवान का जन्म हुआ तो लिखा कि जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, यानी परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा के स्मरण से ग्रह वार तिथि जो खराब है वो भी अनुकूल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई एक घंटा होता होगा जब हम किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी देवालय, किसी न किसी शुभ स्थान का दर्शन जीएनटी पर नहीं करते होंगे, तो इसलिए परिस्थितियां वैसे भी अनुकूल हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी प्रकार से भी आपको भारत के अंदर ग्रहण को लेकर के चिंतित होकर के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी तिथि, मैंने दोबारा मैं रिपीट कर दूं, 9:49 पर समाप्त हो जाएगी। 7:30 के बाद कन्या लग्न प्रारंभ होगी जो इस समय की सबसे शुभ लग्न है, और उस समय पर अगर देखा जाए तो क्योंकि उस समय के अंतर्गत कन्या लग्न जब प्रारंभ होगी तो मंगल दशम भाव के अंतर्गत होंगे, बृहस्पति लाभ भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, ये समय रक्षाबंधन के लिए सबसे शुभ समय है। सुबह 7:30 से लेकर के और 9:48 तक आप बिल्कुल रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अभिजीत मुहूर्त का जो प्रारंभ होगा वो अभिजीत मुहूर्त वैसे तो 11:48 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आपको करीब 12:52 से लेकर के और 12:55 का जो स्पेशली समय होगा उस समय पर अभिजीत मुहूर्त का पूरा पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। इस समय पर आप रक्षा सूत्र आराम से बांध सकते हैं अगर सुबह आप नहीं बांध पाएंगे। अब चलिए दोनों विषय हटा देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नई छुट्टी मिली है या रास्ते में है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर इन मुहूर्तों में रक्षा सूत्र भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान को चढ़ा करके फिर किसी भी समय में वो भगवान का प्रसाद है अपने भाई के हाथ पर बांध सकते हैं। अगर इस समय आप घर से निकल भी गए हैं तो कार्य का प्रारंभ माना जाएगा और उस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। जी सर,
2: चलिए ठीक है। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे बॉर्डर पर तैनात जवानों की राखी की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो देखिए, देश भर में रक्षाबंधन की रौनक छाई है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को लेकर बाजार गुलजार हैं। बहनें राखियों की खरीदारी में जुटे हैं, जिससे वो अब एक दिन बाद यानी शुक्रवार को अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगे। उससे पहले देश के वीर जवानों की कलाई की शोभा भी ये राखियां बढ़ा रही हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करने में जुटी हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार भले ही शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन देश की सीमा पर तैनात सेना के जवानों से लेकर पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी सजने लगी है। देश की रक्षा में तैनात जो जवान इस त्योहार अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से राखियां भेजी जा रही हैं। वहीं लड़कियां और महिलाएं इन जवानों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां बांटती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन से लगती सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए नीति घाटी की महिलाओं ने रक्षाबंधन को खास बना दिया। पारंपरिक नृत्य करते हुए महिलाएं केलांग मंडी होते हुए गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी जुम्मा और कागा गांव की इन महिलाओं ने गोटिंग आर्मी कैंप पहुंचकर जवानों की कलाई पर राखी बांधी। ये पल सरहद के इन सुरमाओं के साथ ही सीमांत बहनों के लिए भी बेहद खास बन गया। रक्षाबंधन के त्योहार का ऐसा ही रंग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली, जहां स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी बहनें सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और उनकी सलामती की कामना की। यहां आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान का भाव भी जाहिर किया, तो जवानों ने भी बहनों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लिया।
1: हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियाँ हैं, लखपति दीदियाँ हैं, बिहान की दीदियाँ हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियाँ हैं, ड्रोन दीदियाँ हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है।
0: पंजाब के पठानकोट में भी भाई बहन के पवित्र रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिली। यहाँ भी बहनें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां बांटती नजर आईं। बहनों ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। बहनों ने अपने इन भाइयों की लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना की, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन्हें बतौर गिफ्ट हेलमेट देकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। इस पावन अवसर पर पैरामिलिट्री फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ ही बहनें भी अपनी खुशी जताती दिखी।
2: रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, मेरा कि बहुत बढ़िया तरीके नाल जड़ा है मनाया गया।
0: चमोली से कमल नैन सिलोरी, रायपुर से महेंद्र नामदेव और पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आजकल बस इतना ही।
4: और चलिए राखी से जुड़े हुए तमाम शोज आपको जीएनटी पर लगातार दिखते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: युवाओं के साथ पीएम का विशेष संवाद, कहा जो खेलेगा वो खेलेगा, 2036 ओलंपिक की तैयारी आज से शुरू करें। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए हुए रवाना। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हिंडोलोत्सव की धूम देखने को मिली, मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों को छात्रों ने बांधी राखी, पटना में भी फौजी भाइयों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर बांटी त्योहार की खुशी। केरलम के गुरुपुरम श्री महाविष्णु मंदिर में उपहार में मिला रोबोटिक हाथी, पेटा इंडिया और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भेंट, असली हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकना है इसका मकसद। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ वनडे और मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सहवाग, द्रविड़ के बेटों को मिली जगह।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: देशभर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारी तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियों सजे बाजार, बढ़ी रौनक। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में देखने को मिली देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की बेहद खूबसूरत तस्वीर, छात्राओं ने इन जवानों की कलाई पर बांधी राखी। छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी भेंट किए, जवानों के माथे पर लगाया तिलक। दानापुर रेजिमेंट सेंटर के मौर्य पार्क में आयोजित किया गया है सुंदर कार्यक्रम, छात्राओं के हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाते हुए जवानों के चेहरों पर नजर आई खुशी और भावुकता। कार्यक्रम में सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाकर राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया पूरा माहौल, भारत माता के जयकारों से गूंज उठा पूरा कैंटोनमेंट परिसर। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखे रक्षाबंधन का त्योहार, स्कूली बच्चों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाया त्योहार। फिरोजपुर के स्कूली विद्यार्थियों ने जवानों के लिए बना दिया खास रक्षाबंधन का त्योहार, सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों ने कहा, देश की रक्षा करने वाले जवान भी हमारे लिए परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ रक्षाबंधन मनाना बेहद खुशी और गर्व की बात है। राजधानी के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिली, हर तरफ रंग बिरंगी राखियों की ढेरों वैरायटी उपलब्ध। राखी की दुकान पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली, रक्षाबंधन से पहले हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आईं। अमृतसर के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही है बहनों की भीड़, अपने भाइयों की कलाई राखी से सजाने के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीद रही हैं महिलाएं। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और रंगों की राखियां महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों में भी उत्साह। रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं प्रयागराज के बाजार, कार्टून से लेकर डिजाइनर राखियों तक की राखियां मौजूद हैं, धार्मिक राखियों की जबरदस्त डिमांड है। गाजियाबाद की डासना जेल में रक्षाबंधन की खास तैयारी, रक्षाबंधन से पहले कैदी राखी बनाने में जुटे। जेल में बहनों के लिए भी राखी बांधने के लिए गए हैं खास इंतजाम किए गए हैं, मुलाकात के दौरान सुरक्षा के साथ त्योहार मनाने की सुविधा दी गई। अपने अंतिम चरण में है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ धाम में पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक। स्वामी विश्वतानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंचा पवित्र जुलूस, हुआ भव्य स्वागत। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ छड़ी को स्वयंभू शिवलिंग पर किया गया स्थापित, पुलिस द्वारा किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इस पवित्र यात्रा में हजारों की संख्या में देशभर से आए शिव भक्त शामिल हुए, भगवान भोले के जयकारों से गूंजा वातावरण। कल रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी, अंतिम पूजा और अनुष्ठान संपन्न होंगे। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हिंडोला उत्सव का शानदार समापन दिखा, आस्था और परंपरा का अनोखा मेल। 100 साल पुराने 50 किलो चांदी के झूले में विराजते हैं भगवान, अलग अलग प्रकार के फलों से सजावट। 500 सालों से चली आ रही है झूलनोत्सव की परंपरा, शहर में झूलनोत्सव को लेकर विशेष धार्मिक चहल पहल। रंग बिरंगी लाइटों से हुआ मंदिर का भव्य श्रृंगार, भजन कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में उमड़े भक्त, लाखों श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। देश भर में बप्पा के आगमन को लेकर भी तैयारियां तेज, कर्नाटक के तेनकाशी जिले में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय प्राकृतिक मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों का उपयोग कर रहे हैं कारीगर, तो वहीं विसर्जन के दौरान ना फैले जल प्रदूषण है लक्ष्य। महीनों पहले से पारंपरिक कला के जरिए मनमोहक और सुंदर मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं स्थानीय कारीगर, बापा के हर आकार और स्वरूप की बन रही हैं प्रतिमाएं। तमिलनाडु के वेल्लूर में भी बनाई जा रही है विघ्नहर्ता की रंग बिरंगी मूर्तियां, 14 सितंबर के गणेशोत्सव के लिए तैयारियां तेज। आकर्षक रंगों और बारीक नक्काशी से किया जा रहा है प्रतिमाओं का श्रृंगार, गणेशोत्सव से कई महीनों पहले से शुरू है मूर्ति निर्माण। गणेशोत्सव को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अहम मीटिंग, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के कामकाज और तैयारियों को लेकर अहम बैठक। गणेशोत्सव को लेकर मुंबई में बनाई जा रही हैं बप्पा की विशाल मूर्तियां, परेल इलाके में स्थित खास गणपति पंडालों के लिए विशाल मूर्ति बनाने वाले सबसे बड़े कारखाने। इस बार शिवजी के अवतार वाली मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग, बप्पा के अलग अलग रूप स्वरूप हो रहे हैं तैयार। केरला के गुरुपुरम श्री महाविष्णु मंदिर को उपहार में मिला रोबोटिक हाथी, पेटा इंडिया और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भेंट। 11 फीट ऊंचा है और 800 किलोग्राम वजन का है गुरुपुरम अर्जुनन नाम का ये हाथी, मोटर की मदद से हिलाए जा सकते हैं इसके सिर, पूंछ, आंख, मुंह और कान। कोटा में बड़केश्वर महादेव मंदिर में आस्था का मेला, भगवान शिव की पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन में भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, दिन भर पूजा अर्चना के साथ चलता रहता है भजन कीर्तन का दौर। हजारों साल पुराने बड़ के पेड़ के कारण पड़ा है बड़केश्वर महादेव मंदिर का नाम, स्थानीय लोगों के बीच इसका खास महत्व है। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में दिखा आस्था और परंपरा का संगम, तो वहीं अवनि अवित्तम यज्ञों पवित्र समारोह किया गया आयोजन। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है ये पारंपरिक और पवित्र अनुष्ठान, इस शुभ अवसर पर पुरुष समुदाय सदस्य पवित्र स्नान के बाद धारण करते हैं जनेऊ। कोटा का एक दंपति 116 सरकारी स्कूलों में 15,500 बच्चों को दे चुका है मुफ्त हेयर कट, सप्ताह में 4 दिन अलग अलग सरकारी स्कूलों में लगाते हैं कैंप। 11 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है इस दंपति का अनोखा सफर, जरूरतमंद बच्चों को आत्मविश्वास के साथ स्वच्छता का संदेश देना उद्देश्य है। पीएम मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित नन्हे लक्ष्य ने रचा इतिहास, आम की गुठलियों से लगाए कई पेड़। लक्ष्य ने 5 जून 2026 को मिशन 1008 आम के पेड़ की शुरुआत की। पेड़ लगाने के लिए 12 दिन में जुटाई 1008 गुठलियां। लक्ष्य का कहना है कि उनकी इस मुहिम का उद्देश्य कोई रिकॉर्ड बनाना या पुरस्कार हासिल करना नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाना है। सिलीगुड़ी में न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन। आपराधिक न्याय व्यवस्था और 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना है उद्देश्य। अलग अलग स्टॉल और प्रस्तुतियों के जरिए नए आपराधिक कानूनों के अलग अलग पहलुओं को सरल तरीके से समझाने की कोशिश। युवाओं ने खास तौर पर दिखाई रुचि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन 1930 साइबर अवेयरनेस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया, कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ये पहल। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सीजन 2025-26 के अवार्ड समारोह आयोजित किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ शामिल। पीएम मोदी का खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से किया संवाद, खेल और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा की। हर जिले के 2 कॉलेजेस के युवा हुए शामिल, खेल फिटनेस और नागरिक जिम्मेदारी पर रखे अपने विचार। ओलंपिक सपनों से विकसित भारत तक, खेलो इंडिया डायलॉग में 5 प्रमुख विषयों पर हुआ युवा संवाद। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के साथ नशा मुक्त युवा अभियान पर भी फोकस, एथलीट्स ने की से खास बातचीत। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के तहत खेलो इंडिया डायलॉग माई भारत के जरिए देश भर में जुटे युवा। अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर, गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी रहेंगे मौजूद। आज से यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026, योगी सरकार का जेन जी को बड़ा तोहफा, 24,243 स्टार्टअप के साथ यूपी बनेगा इनोवेशन हब। सीएम योगी ने आज लॉन्च किया उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल, स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, 107 स्टार्टअप्स को बांटी जाएंगी इंसेंटिव राशि। यूपी में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई रफ्तार दी गई। लखनऊ नोएडा में यू हब से बढ़ेगा डीप टेक फोकस, 120 से 24,243 हुआ यूपी में स्टार्टअप्स का आंकड़ा। यूपी टीईटी 2026 रिजल्ट जारी, प्राथमिक के 93,000 और उच्च प्राथमिक के 1,13,000 अभ्यर्थी पास हुए। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, 37 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए रवाना हुए। नेपाल में बाढ़ के बीच यूपी सरकार ने तेज किया राहत बचाओ अभियान, नेपाल भेजे गए एसडीआरएफ और पीएसी के जवान। नेपाल में बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू तेज किया गया, सेना और निजी हेलीकॉप्टर्स की मदद से बचाव अभियान जारी। बाढ़ में नेपाल आर्मी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से 123 लोगों को बचाया गया। नेपाल में बाढ़ के बीच 21 भारतीय पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू, सेना ने हेलीकॉप्टर से निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जटाशंकर धाम में भारी बारिश, उफान पर नदियां और नाले। धाम की सीढ़ियों पर तेज पानी की धार देखने को मिली, भारी बरसात के बीच नजर आया धाम का सुंदर रूप। खगड़िया में उफान पर गंगा और गंडक नदी, जलस्तर में वृद्धि से कई पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। राजौरी में लगातार बारिश, भूस्खलन के कारण कोटरांका खवास सड़क क्षतिग्रस्त हुई, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। चमोली में भारी भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद, सड़कों पर आया मलबा, ट्रैफिक बहाल करने में लगाए प्रशासन। कल अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला 2 हो रही है रिलीज, लगभग 20 सालों के बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर रिलीज होगी, कल से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बंदर, कल से Z5 पर स्ट्रीम होगी अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी कल से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। तो वहीं सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देवेन भोजानी और अमायरा दस्तूर का अहम रोल है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल, 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर हो रही है रिलीज। चाइना के गुआंगशी में 6 दिन चला नदी का पारंपरिक उत्सव हुआ खत्म, हजारों लोगों ने नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नत मांगी। ज़ेजियांग नदी में हजारों लालटेन तैरती हुई नजर आई, लोगों ने रोशनी के साथ लोकगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। करीब 30 साल पहले हुई थी इस उत्सव की शुरुआत, तैरती लालटेन देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक। इस साल उत्सव को पहली बार 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन किया गया, इसमें खेल, लोक संस्कृति और अलग अलग तरह के खाने के कार्यक्रम भी हुए। इस उत्सव की परंपरा चाइना के तांग और सोंग राजवंशों के समय से जुड़ी हुई बताई जाती है, आज भी लोग उसी परंपरा को रोशनी, गीत और पूजा के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना में कांच से फूलों को बनाया गया है, खूबसूरत बगीचा बनाया गया है, ये फूल 1400 डिग्री तापमान पर तैयार होते हैं। कारीगरों को पिघले हुए कांच को आकार देने में मिलते हैं सिर्फ 5 सेकेंड, तो वहीं जरा सी देरी हुई तो जम जाता है कांच। कांच के गुलदाउदी फूल में होती हैं 300 तक पंखुड़ियां, हर पंखुड़ी को हाथ से जोड़ना पड़ता है। कुछ फूल बनाने में कांच को 100 बार तक करना पड़ता है गर्म, एक गलती से खराब हो सकती है पूरी मेहनत। चाइना में ये कला करीब 2000 साल पुरानी है, इस साल 6 महीने में इससे करीब 100 करोड़ रुपए की हुई कमाई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हुई, इस बार 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। गेम्सकॉम में नए वीडियो गेम्स की देखने के लिए मिल रही है झलक, गेम पसंद करने वालों के लिए यहां कई मजेदार इवेंट्स भी रखे गए हैं। मेले में कॉस्प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर खींच रहे हैं सभी का ध्यान। गेमिंग इंडस्ट्री में AI के सही इस्तेमाल पर दिया जा रहा है जोर, छोटी गेमिंग कंपनियों ने के बनाए इंडी गेम्स भी तेजी से हो रहे हैं लोकप्रिय। 30 अगस्त तक चलेगा ये गेमिंग मेला, लोगों की भीड़ बता रही है गेमिंग इंडस्ट्री की बढ़ती लोकप्रियता।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

दरअसल भूकंप से क्षतिग्रस्त किले की दीवार की मरम्मत के लिए साल 2015 में किले के मुख्य हिस्से को उसकी मूल जगह से हटाया गया था। अब करीब 70 मीटर दूर स्थित उसकी पुरानी जगह पर इसे वापस पहुंचाया जा रहा है। जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 1611 में बने इस ऐतिहासिक किले को वापस उसकी जगह पहुंचाने के इस अनोखे प्रयास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: युवाओं के साथ पीएम का विशेष संवाद, कहा जो खेलेगा वो खेलेगा, 2036 ओलंपिक की तैयारी आज से शुरू करें। बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की ओर से भेजी गई मदद की दूसरी खेप, राहत सामग्री लेकर विमान काठमांडू के लिए रवाना हुआ। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हिंडोला उत्सव की धूम देखने को मिली, मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार, 100 साल पुराने 50 किलो चांदी के झूले में विराजते हैं भगवान। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों को छात्रों ने बांधी राखी, पटना में भी फौजी भाइयों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर बांटी त्योहार की खुशी। केरलम के गुरुपुरम में श्री महाविष्णु मंदिर को उपहार में मिला रोबोटिक हाथी, पेटा इंडिया और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भेंट किया, असली हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकना है इसका मकसद। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ वनडे और मल्टी डे मैचेस के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सहवाग, द्रविड़ के बेटों को मिली जगह।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
8: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी, और लेकर आई हूँ मनोरंजन की दुनिया की सारी न्यूज और अपडेट जो है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
9: के रंग में रंगे सास बहू और बेटियां की गुड न्यूज में आज देखिए, काव्या और बंटी की शादी में झूम कर नाचेंगे सूरज और ईशा।
10: मेरे यार की शादी है।
11: मेरा सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारा बाबा भी है। उस इंसान पे तुम बहुत भरोसा करती थी, इतना भरोसा कि एक पॉइंट पे तुम विक्रांत से ज्यादा उस पे भरोसा करती थी, उसकी बात मानती थी।

हिम्मत और विक्रांत का साथ देगी याशिका। तीनों मिलकर करेंगे धैर्य का पर्दाफाश। जाने अनजाने वृंदा का हुआ अपने ससुराल में गृह प्रवेश।

0: अपने भाई के लिए ईशा यानी प्राप्ति शुक्ला बना रही हैं अपने हाथों से ये स्पेशल वाली राखी।
1: सीरियल पति ब्रह्मचारी में चल रही हैं काव्या और बंटी की शादी रस्में, जहां इन रस्मों के बीच झूमकर नाचे घरवाले। लेकिन सीरियल की दुनिया में बिना बवाल के कोई शादी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
0: झूम कर नाचे भैया और भाभी, हो रही है बंटी और काव्या की शादी। ये है बनते और टूटते रिश्तों की कहानी दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में। आज होने जा रही है काव्या और बंटी की शादी। ऐसे में घर पर मंडप भी सज गया है और सारी जिम्मेदारी ली है सूरज ने। ऐसे में घर वाले भी बेहद खुश हैं और देखिए कैसे मंडप के बाहर सभी नाच गा रहे हैं। इसी बीच पूरण सूरज को ले आता है इस नच की महफिल में। ऐसे में सूरज भी जमकर नाच रहा है और मना रहा है खुशियाँ। और तभी होती है ईशा की एंट्री, जो लेकर हाथों में आई है फूलों की थाली। ऐसे में सूरज के कहने पर वो भी नच में शामिल हो जाती है।

0: सभी खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक ईशा को आ जाता है आकाश का मैसेज, जिसे देखकर ईशा परेशान हो जाती है और सूरज उसकी परेशानी भांप लेता है। ऐसे में ईशा आकाश का मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी सूरज उस पर भरोसा जताता है।
1: जैसी आपकी इच्छा होती है।
2: काव्या की खुशी, बंटी की खुशी देख रहे हैं और नाच रहे हैं, धूम मस्ती में हैं। और कहीं ना कहीं सूरज ईशा के दिलो दिमाग में ये भी चल रहा है कि आकाश को ही अपना चाल ना चले। और हमने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि कुछ ऐसा करना है कि आकाश यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो ईशा जी कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्लानिंग किए हैं हम दोनों। तो और ईशा जी जाती हैं यहाँ से, कुछ ऐसा मतलब कि कांड करती हैं जिसमें आकाश फंस जाता है और उस फंसने की केस में उसे ईशा जी एक दिन के लिए जेल में डाल देती है।
0: भाई सूरज ने तो ईशा का मुंह मीठा कर दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ईशा जीत हासिल कर ही लेगी। ऐसे में ईशा ने भी आकाश को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली। इसी बीच सूरज भी नच की महफिल में वापस शामिल हो जाता है। और तो और तभी आती है रिया। ऐसे में सूरज रिया को भी डांस में शामिल कर लेता है।

0: इसी बीच हो जाती है दूल्हे राजा की एंट्री। ऐसे में सूरज अपना फर्ज निभाता है और अपने जीजा जी को अपने कंधे पर बिठाकर ले आता है शादी के मंडप में। ऐसे में बंटी भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए है और रिया वो तो खामोश खड़ी है, क्योंकि आज उसका प्यार किसी और के नाम हो जाएगा।
1: अरे रिया यहाँ पे दुखी है और बंटी बेचारा खुद में ही बहुत परेशान है, क्योंकि वो डेलिमा में है कि भैया की बात माननी ही है, वो ये सोच लिया है बेचारा। एंड उसे ये भी लग रहा है कि रिया का जो भी है देखा जाएगा, लेकिन काव्या ने भी अब मुझ पर भरोसा जता दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो भरोसे को तोड़ना नहीं है और ना ही भैया के भरोसे को तोड़ना।
0: शादी के मंत्र शुरू हो जाते हैं। इसी बीच दुल्हनिया काव्या की भी एंट्री हो जाती है, जो शादी के मंडप में बैठ जाती है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन तभी ताईमा अपनी परेशानी जताती है, क्योंकि वहाँ पर ईशा जो मौजूद नहीं है। इसी बीच ईशा भी आ जाती है, जो शामिल हो जाती है इस शादी में। साथ ही सूरज को वो गुड न्यूज भी सुनाती है कि एक दिन के लिए आकाश को उसने सलाखों के पीछे डाल दिया है।
1: डेफिनेटली मैं ऑडियंस को यही हिंट देना चाहता हूँ कि मतलब ये शादी एकदम अबाउट टू होने वाली रहती है। अब शादी होगी नहीं होगी प्लीज इसके लिए तो आप लोगों को देखना ही होगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि बहुत सारे रस्में जो होती है काव्या के साथ हो जाती है। तो अब आगे का टर्न एंड ट्विस्ट क्या है, आई थिंक अगर ये डिस्क्लोज मैं अभी कर दूं तो आई थिंक आप लोगों का एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा। आप लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, आप लोग नाराज भी हो जाएंगे, आप लोग शायद से बहुत खुश भी हो जाएंगे। तो बेटर पहले ना बताते हुए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग पति ब्रह्मचारी।
0: खैर सूरज ने चैन की सांस ली और शादी के फेरे भी शुरू हो गए। ऐसे में काव्या और बंटी दोनों शादी के फेरे ले रहे हैं। काव्या खुश है, लेकिन बंटी उसकी नजर बार बार रिया पर जा रही है और रिया बार बार बंटी को देख रही है और कहीं ना कहीं उसका दिल भी टूट रहा है। अब देखना होगा क्या बंटी और काव्या की शादी संपन्न हो जाएगी या फिर इसमें भी आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल तू ही रे में वृंदा का जाने अनजाने अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो चुका है, लेकिन जब उसका होगा सच से सामना तब क्या तमाशा होता है, देखना होगा, बड़ा दिलचस्प।

अपने ही ससुराल में वृंदा का हुआ गृह प्रवेश। जाने अनजाने घर आई घर की लक्ष्मी। हुई वृंदा की अपने ससुराल वालों से मुलाकात।

टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में किस्मत कनेक्शन जुड़ रहा है और ये किस्मत बार बार वृंदा को संजय और उसके घर वालों के सामने ला खड़ी करती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां स्वाति अपने ससुराल आई है और अपने साथ लेकर आई है वृंदा को। भाई ससुराल में काम चल रहा है और सभी लोग काफी बिजी है, ऐसे में स्वाति ने सोचा कि वो अपने ससुराल वालों की मदद कर सके, इस बात से अनजान कि वृंदा का ससुराल भी यही है। ऐसे में इतना बड़ा घर देखकर देखिए वृंदा की तो आंखें ही चौंधिया गई है। ऐसे में स्वाति अपनी सहेली वृंदा को अपने साथ लेकर आई है। और यहाँ पर किस्मत का खेल देखिए, कैसे अपने ही ससुराल में जाने अनजाने ही सही वृंदा ने कर लिया गृह प्रवेश। असल में घर में कलरिंग का काम चल रहा है और वृंदा का पैर लाल पेंट से रंग गया और इसी पेंट वाले पैरों के साथ वो घर में एंटर करती है, यानी कि घर की लक्ष्मी का जाने अनजाने ही सही घर में स्वागत हो गया। और जाते ही वो मिली दादू से।

0: क्या कैच पकड़ा है,
1: माल है। क्रिकेट वगैरह खेलती हो ना, है? अब भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कौन? वो अरे ये लाल, ओ तुम्हारे पैरों पर लाल रंग लगा हुआ है। अरे
2: तभी वहाँ पर पहुँचती है स्वाति और एक एक कर वृंदा और स्वाति इन सभी घर वालों से मिलते हैं और देखिए कैसे स्वाति वृंदा को सबसे इंट्रोड्यूस करा रही है।
3: दादू,
1: अरे स्वाति, अरे स्वाति जी की रो बेटा जी,
3: अरे जी, स्वाति देख अपने दादू, ना बस बस बस क्या किया दादू ने, कैसा कार्ड दिया, जीरो बैलेंस है, शॉपिंग ही नहीं कर,
1: देखो वापस
3: क्या दादू आप भी
1: हाँ।
3: ये अम्मू है मेरी दोस्त,
1: अम्मू अम्मू, अरे
2: ऐसे में दादी को लग रहा है कि नए नवेले घर में, शादी वाले घर में किसी अनजान लड़की का गृह प्रवेश हुआ है। ऐसे में दादी परेशान है, लेकिन स्वाति बड़ी ही चालाकी से इसका रीजन भी बता देती है और सभी लोग मान भी जाते हैं।
3: अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अम्मू को यहाँ पे क्यों ले गई,
1: क्यों?
3: क्योंकि संजू नहीं, अब क्योंकि संजू मुंबई में है वहाँ के लिए, तो मैंने सोचा स्वाति शाह तो खुद जाएगी और माँ की सेवा करेगी, माँ का ख्याल रखेगी और आप लोग के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूंगी।
1: अरे वाह,
3: मम्मा ने बोला स्वाति ऐसे तो बहुत समझदार है दादू
1: है?
3: नहीं है, है। शादी से पहले ससुराल में गृह प्रवेश कर सकते, तो बात है, इसलिए मैंने अम्मू का गृह प्रवेश करवाया।
2: ऐसे में आज वृंदा की मुलाकात हुई संजू की मम्मी से और देखिए इनकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो गई है। भाई यहाँ तो स्वाति, वृंदा और संजू की मम्मी बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। साथ ही वृंदा ने जब संजू की मम्मी की मदद की थी वो भी उसे आज पता चल गया है, यानी कि वृंदा तो जाने अनजाने ही सही अपने ससुराल में रम गई है।
4: सरिता को घर से निकाला जाता है संजू की एंगेजमेंट में, वो जो शौक है वो उसको अस्थमा का अटैक दे देता है, फिर वो भटक रही होती है, संजू की अच्छाई के लिए वो घर छोड़ के निकल जाती है, बाकी बातें उसे उसके दिल में घर कर जाती है कि तू मनहूस है, तू क्यों अपने बच्चे के ऊपर बुरा साया डाल रही है, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने दे, ये सोच उसे थोड़ी खा जाती है और वो घर से निकल जाती है और उसी दरमियान उसे वो बेहोश भी हो जाती है। तो ये तबीयत ख़राब होने का किस्सा संजू के एंगेजमेंट से शुरू होता है और वहाँ पे वृंदा आती है, उसे संभालती है, फिर से वृंदा उसे रेस्क्यू करती है, हॉस्पिटल तक पहुँचाती है और आज हमने वो सीन किया जहाँ पे सरिता को भी नहीं पता होता कि कौन उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, जहाँ आज पता चलता है कि वो वृंदा ही है फिर से जो सरिता को बचाती है।
2: भाई किस्मत तो बार बार इशारा कर रही है वृंदा और संजय की जोड़ी बनने का, लेकिन अब स्वाति और संजय की शादी में क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सच से सभी अनजान जो है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो सब अपने भाई और बहनों संग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान के साथ भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही हैं रुचि गुज्जर।
6: सोचे कि त्योहार के साथ साथ आपका जन्मदिन हो और त्योहार बन जाए बहुत ही स्पेशल,

0: ये है अभिनेत्री रुचि गुज्जर, जिन्होंने कांस में भारत का डंका बजाया, लेकिन रियल लाइफ में ये है जयपुर की एक संस्कारी लड़की जो मुंबई में एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रुचि के घर, जहाँ वो मनाएंगे अपना जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में। रुचि ने अपने घर पर अपने जन्मदिन और रक्षाबंधन के मौके पर रुचि ने घर पर रखा एक खास सत्संग, जहां पर आज उन्होंने बहुत ही खास अंदाज में अपने घर को सजाया है फूलों से, अपने हाथों से बना रही हैं प्रसाद, रक्षाबंधन के मौके पर भगवान को बांध रही हैं राखी, खिला रही हैं मिठाई, घर में दिए और फूलों के साथ उन्होंने स्पेशल ढंग से सजाया है। गुरु जी के लिए खास सत्संग रखा है, घर में उनके मेहमान आए हुए और एक दिव्य माहौल रुचि ने क्रिएट किया है। तो चलिए रुचि के घर चलते हैं उनके साथ उनके जन्मदिन, रक्षाबंधन और उनके सत्संग के सारे रंग दिखाने।
1: वेलकम सास बहू एंड बेटिया, सास बहू एंड बेटियों के सभी दर्शकों को मेरे घर पे स्वागत है। एंड आज मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आइए, मैं आपको मेरे घर पे बहुत अच्छा माहौल हो रखा है, सॉरी मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, बट मेरे घर पे माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं मेरे घर पे। मेरे बर्थडे के दिन मैंने गुरुजी को अपने घर पे इनवाइट किया है और अंदर बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है सबके साथ। थोड़ा एस्थेटिक रखने का ट्राई किया, तो हमने हमारे इंडियन जो फ्लावर्स हैं सब ये सारे ऑरेंज एंड येलो फ्लावर्स, थोड़ा इंडियन थीम रखने का हमने ट्राई किया, थोड़ा एस्थेटिक रखने का एंड थोड़ा डिफरेंट हमारा करने का मोटिव था। तो आइए मैं आपको और अंदर दिखाती हूँ मेरे घर की पूरी डेकोरेशन एंड स्पेशली मैं आपको गुरुजी से मिलवाऊंगी।
0: सबसे पहले चलते हैं रुचि के मंदिर में, जो आज खास ढंग से सजा हुआ है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है। तो रुचि ने भगवान को राखी बांधने वाली है, वैसे ही उनका मंदिर बहुत ही खास ढंग से सजा रहता है, लेकिन आज इस मंदिर की छटा अलग है।
1: का मंदिर आपको दिखाती हूँ, जो कि मेरे लिए सबसे स्पेशल कॉर्नर है, जहाँ पर मेरे सारे भगवान बैठे हैं। तो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा सा मंदिर है जिसमें हमने सारे भगवान बिठा के रखे। यहाँ पर गुरु जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, साईं बाबा, लक्ष्मी जी, सारे भगवान हमने रखे हुए हैं यहाँ पर, बिठा रखे हैं, जो कि हमारी रक्षा करते हैं हर जगह पे। तो और यहाँ पे हमने कुछ मंत्र बनाए हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं दीवार पर, जिससे ये सारे मंत्र हम वही सब हमारे धर्म में जो मंत्र जो हमारी रक्षा करते हैं उसके लिए हैं। तो ये था छोटा सा पार्ट हमारे मंदिर का, जो कि मेरे लिए बहुत पीसफुल है, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून इस कोने में आके मिलता है। रक्षाबंधन भी मेरे लिए उतना ही स्पेशल है जितना मेरा बर्थडे, क्योंकि सब चीज़ें बहुत साथ में आ रही हैं, चाहे वो बर्थडे है और सबसे ज़्यादा स्पेशल कि गुरुजी आ रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने। और रक्षाबंधन और भी ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए हो गया क्योंकि रक्षाबंधन भी साथ में आ रहा है और हम भगवान, जैसे हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं कि हम राखी बांधते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही मैं भगवान को भी हमेशा राखी बांधती हूँ, गुरुजी को भी राखी बांधती हूँ कि वो, वैसे हमें उनको राखी बांध के ये जताने की ज़रूरत नहीं कि वो हमारी रक्षा करें, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हर रूप में करते हैं, बट एक हमारा जो रिचुअल है राखी बांधने का, तो वो भी मैं करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है इस बार की सब चीज़ें साथ में आ रही हैं और एक साथ मुझे इतनी सारी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को अभी, क्योंकि रक्षाबंधन, बर्थडे, गुरु जी आ रहे हैं, भगवान जी, सब चीज़ें साथ में हो रही हैं, आई एम रियली ब्लेस्ड। तो ये हमने गुरुजी के लिए और मेरे सभी भगवानों के लिए हमने राखी रखी है, हम उनको राखी बांधेंगे। मैंने अपनी थाली सजाई है राखी की, तो इसमें दिया, राखी और ये मैंने फ्लावर्स से अपने हाथों से इस थाली को सजाया है, पूरे ओरिजिनल फ्लावर्स लगा के। और अब हम भगवान जी को राखी बांधेंगे ताकि वो हमारी हर सिचुएशन में रक्षा करें। तो ये प्यारी सी राखी मैं सबसे पहले रक्षाबंधन पे भगवान जी को बांधना चाहती हूँ ताकि वो हमारी हर सिचुएशन में रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। इवन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, हमेशा जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई भी फंक्शन होता है, मीठा खाना मेरा कंपलसरी। आई डोंट नो, मैं डाइट करती हूँ बट किसी फेस्टिवल पे मेरे से नहीं रोका जाता। और लड्डू तो मेरी सबसे ज़्यादा वीकनेस है, मतलब जहाँ लड्डू दिखे वहाँ पे मेरे मुँह से पानी टपका। आज मेरा फास्ट है तो मैं नहीं खा सकती हूँ, माय बैड, बट ये लड्डू और ये राखी भगवान जी को मेरी तरफ से। रक्षाबंधन का त्योहार है तो मैं मेरी सबसे पहली राखी मैं अपने भगवान जी को बांधती हूँ। चलो आओ भगवान जी को राखी बांधते हैं।
0: भाई रुचि गुज्जर ने अपना रक्षाबंधन तो बना लिया लेकिन अब उनके घर की डेकोरेशन देखते हैं। देखिए दिया जलाकर वो रियल फूलों के साथ कैसे खड़ी हैं अपने गुरुजी के स्वागत के लिए। त्योहार के और जन्म के खास मौके के लिए आज उन्होंने घर को फूलों से सजाया है, साथ साथ कुछ अन्य को डेकोरेशन भी किए हैं क्योंकि घर पर उनके गुरुजी पधारने वाले हैं।
1: ये पूरा एस्थेटिक रखने की ट्राई किया है। So, yes, come in, come inside. Swimming part हमारे गुरुजी का हमने रखा है। गुरुजी को आज मैंने अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है, आए अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे। के सभी बर्थडेज में ये बर्थडे मेरा सबसे स्पेशल रहेगा बिकॉज हर बर्थडे पे हम पार्टी करते हैं, कोई कुछ करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, बट ये टाइम मैंने गुरुजी को मेरे बर्थडे पर बुलाया कि वैसे तो गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं बट ये स्पेशल डे पर वो आए और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। तो मैंने गुरुजी को इस बार अपने घर पर इनवाइट किया है पूरे, क्योंकि बहुत टाइम्स मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना जल्दी कभी गुरुजी को गुरुजी का सत्संग रखूंगी या वो आएंगे, बट कहते ना गुरुजी की जब मर्जी होती है, जब उन्हें आना होता है तो वो अपने आप आ जाते हैं। तो देखिए आज मेरे बर्थडे पर, स्पेशली मेरे बर्थडे पर मेरे घर पे गुरुजी आए हैं। सबसे अब तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे होगा ये। डेकोरेशन करने के लिए हमें मनाली जी का पूरा सपोर्ट है, ये बताएंगे पूरे डेकोरेशन के लिए।
2: थीम सेलेक्ट की थी एज रुचिज फेवरेट कलर्स वर मैरीगोल्ड ऑफ येलो एंड ऑरेंज, तो वी हैव डिटेल्ड एवरीथिंग प्लस वी हैव एडेड ट्यूब रोजेस एज वेल। एंड यहाँ पे हमने बहुत ब्यूटीफुल सा पेटल का दरबार बनाया है। एंड जो भी ये आउटफिट्स आप देख रहे हो, गुरुजी का चोला है, दिस इज मेड इन पैठणी एंड दिस इज बीन डन बाय रूपा आंटी। एंड यू कैन सी दीज आर लाइक बनाना लीफ के जो वीव्स है, दीज आर लाइक ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल टच विथ सनफ्लावर्स, सो या इट इज लुकिंग नाइस।
1: Yes, and we all are very happy. और यहाँ का अभी जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा हो रखा है। हम बस वेट कर रहे हैं गुरु जी के आने का, जल्दी से वो आए और हम उनसे बातें करें उनके साथ। We are very excited to meet गुरु जी।
3: Wish you a very happy birthday. गुरु जी bless you more and more. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान।
1: थैंक यू सो मच। और बाकी सबकी भी विशेस बहुत अच्छी हैं।
4: गुरु जी bless you a lot.
1: Thank you.
4: Wish you a very, very, very happy birthday.
1: Thank you so much.
4: Please. So you enjoy your life.
1: Yeah.
4: Enjoy your day, enjoy your year.
1: Guruji ki blessings mere upar hamesha bani rahe.
4: Yes, bilkul bani rahengi aur sab pe bani rahengi. Aur aaj bahut special day hai aur Guruji aaye hain 25th, 7th.
1: सात नंबर पे मैं सात नंबर हूँ, गुरुजी भी सात नंबर है, तो बहुत सारी चीजें मैच हो रही है।
4: सो गुरुजी ब्लेस यू, टेक केयर।
0: अब चलते हैं रुचि की रसोई में क्योंकि आज उनके घर पर बन रहा है कड़ा प्रसाद इस खास सेलिब्रेशन के लिए। वैसे ये प्रसाद वो खुद अपने हाथों से बना रही है और साथ साथ उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो इसमें उनकी मदद कर रहे हैं।
1: गुरु जी का दरबार हमने सजाया जिसके बारे में हमने इतनी डिटेल में आपको बताया, अभी हम अब चलो आपको किचन में लेके चलते हैं। हाथों से जो घर पे एकदम शुद्ध प्रसाद हम गुरु जी के लिए बना रहे हैं, तो आओ किचन दिखाते हैं। मैं अपना हाथ लगा सकती हूँ बिकॉज मेरा बर्थडे भी है और आई विश गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे इसमें प्रसाद में मिल जाए। वैसे ये सीखना पड़ेगा मुझे अभी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं खुद गुरुजी के लिए खड़ा प्रसाद बनाऊँ और मुझे गुरुजी इस इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं बनाना सीख जाऊँ अच्छे से। मेरी इतनी आंटी है जो मेरी हेल्प कर रही है। हाँ थोड़ा बहुत मैं कुछ करवा सकती हूँ बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं प्रसाद इतना अच्छी मैं कुकिंग में अभी नहीं हूँ बट जल्दी सीखना पड़ेगा क्योंकि शादी करनी है तो सीखना तो पड़ेगा।
5: के लिए आंटी पहले उसमें हमें घी लेना होता है, फिर आटा या रवा शक्कर, फिर घी में आटा डाल के हमें अच्छे से भूनना होता है, फिर पानी में शक्कर घोल के डालनी होती है।
1: हाँ जी, तो जैसे आंटी डिटेलिंग में एकदम बता रही है खड़ा प्रसाद, और ये टेक्निक हर किसी को नहीं आती, किसी किसी को ये टेक्निक आती है, तो स्पेशली वो ही बना रही है अपने हाथों से और घर पे एकदम शुद्ध बन रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी गुरुजी को जितना भी प्रसाद जितना भी भोग लगेगा वो पूरा घर पे हमारे हाथों से बन के ही लगेगा।
0: वैसे अपने जन्मदिन के लिए रुचि गुज्जर ने आज एक खास ड्रेस पहनी है जो स्पेशली उनके होम टाउन से आई है, तो देखते हैं रुचि का ये बर्थडे वाला लुक। मटर

0: एक्टर एक्टर हैं तो अब हमें वो आदत में आ गया है कि फटाफट रेडी होना, और ऊपर से इतना सारा काम है, इतने गेस्ट आए हुए हैं, तो वो रेडी होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा. बट हाँ, ये लुक मैं आपको बता सकती हूँ कि ये स्पेशली मेरे बर्थडे पर ये गाउन मेरे रिलेटिव ने भेजा है राजस्थान से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने भेजा है. तो वो कहते हैं ना, जब ब्लेसिंग्स आ जाती हैं तो फिर उसका मोल भाव या ये सब चीज़ें काम नहीं आती, क्योंकि जब जहाँ पर ब्लेसिंग्स होती हैं उसका कोई मोल नहीं होता, वो वैसे ही अनमोल हो जाती हैं चीज़ें. एंड ये बहुत सुंदर भी लग रहा है उसके साथ में. थोड़ा इसको स्पेशल और बना दिया, इसमें हमने ये फ्लोर लगा दिया है, पूरा ट्रेल लगा दिया है, तो ये और ज़्यादा थोड़ा इसका लुक अच्छा आ गया आई थिंक. आप बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है. आई होप यू लाइक इट, राइट? यस. कुछ मैंने गुरुजी से कुछ बहुत स्पेशल चीज़ मांगी है. मैंने सुना है कि चमत्कार होते हैं, देखे नहीं है, अभी देखना चाहती हूँ चमत्कार होते हुए. तो एंड मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे को चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे लाइफ में, एंड फिर मैं जल्दी आपसे वो चीज़ शेयर करूँगी.
1: रुचि गुजर ने अपने बर्थडे के मौके पर एक खास सत्संग रखा और साथ में त्यौहार भी मना रही, इसलिए घर पर ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं, सत्संग का माहौल है. लेकिन वो अपने होम टाउन जयपुर और अपने भाई और फैमिली को बहुत मिस कर रही हैं, क्योंकि रक्षाबंधन हमेशा वो फैमिली के साथ मनाती हैं.
0: फिर हमेशा मेरी हर साल कुछ न्यू मेमोरीज बनती हैं, कभी कभी लड़ाई वाली बनती है, क्योंकि वो बहन भाई में वो लड़ाई होती है ना, वो वाली भी. लास्ट ईयर मेरे भाई से मैं नाराज़ थी तो मैं नहीं गई थी, बट हाँ वो चलती रहते भाई बहन की लड़ाई आपस में. बट ये ईयर हाँ हम बहुत अच्छे से, एक तो सबसे शुरुआत जो हमने रक्षाबंधन की है वो बहुत अच्छे इससे की है कि गुरु जी से और भगवान जी से हमने शुरुआत की है. हाँ अब मैं मेरे भाई को भी राखी बांधने आ रही हूँ इस साल, अच्छे से उसको बता रही हूँ, उसे कान पकड़ के खींचना पड़ेगा मुझे. गिफ्ट तो हम लड़कियों को जितने दे दो उतने कम होते हैं, आप कितने भी गिफ्ट दे दो हमारे लिए कम ही होते हैं. हाँ मैं भाई को बोलूँगी गिफ्ट देते जाओ बस, पूरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो.
1: तो ये थी रुचि गुज्जर, जिनके साथ आज सास बहू और बेटियां ने उनका जन्मदिन मनाया, उनका सत्संग अटेंड किया, उनका देखा कि वो प्रसाद कैसे बनाती हैं, कैसे उन्होंने फूलों से घर को सजाया, और सबसे खास भगवान को उन्होंने राखी कैसे बांधी और मिठाई के साथ एक नई चीज की शुभारंभ की. तो उम्मीद करते हैं कि रुचि गुज्जर के सपने जल्दी पूरे हों, और उनका ये संस्कारी अंदाज आपने देखा सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में.
0: तो मैंने रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट कर लिया, आप लोग के साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया, गुरुजी की और मेरे जो इमोशंस हैं वो सब मैंने आपसे शेयर कर लिया. तो मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही खुशी से लड्डुओं के साथ राखी बांधे और भगवान जी की ब्लेसिंग्स के साथ आपका सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा हो. थैंक यू.
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: एक्ट्रेस सांची तिवारी अपने भाई और एक्टर आन तिवारी संग मंदिर में सेलिब्रेट कर रही हैं रक्षाबंधन का त्योहार, और राखी सेलिब्रेशन के बाद आन ने अपनी बहन को कैसे दी त्योहार पर दावत, चलिए देखते हैं.

0: रक्षाबंधन का त्योहार। भाई बहन का अटूट नाता। साची और आन का रक्षाबंधन। अटूट नाते का। त्योहार भाई बहन के प्यार का। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है राखी और भाई हर कदम पर करता है अपनी बहन की रक्षा। और ये प्यार भरा त्योहार मना रहे हैं साची और उनके भाई आन। भाई जहां साची एक्ट्रेस है वो कई सीरियल्स में काम कर चुकी है, जैसे कि कैसा है ये रिश्ता अनजाना, प्रेम लीला, डोली अरमानों की। तो वहीं उनके छोटे भाई आन भी एक्टर हैं। आप उन्हें देख चुके हैं बाल शिव, वीर हनुमान और पंचायत में। और आज भाई बहन की ये जोड़ी मना रही है रक्षाबंधन का ये त्योहार, जिसके लिए ये सभी सजे धजे हैं। और इस खास और शुभ मौके पर साची और आन पहुंच गए हैं मंदिर लेने भगवान जी का आशीर्वाद, और इसी मंदिर में मनाएंगे ये रक्षाबंधन का त्योहार।
1: तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी टाइम बाद मैं वापस इस चैनल पर आई हूँ। और जिसको नहीं पता, मैं हूँ आप सबकी प्यारी साची तिवारी और ये हैं हमारे प्यारे
2: आन तिवारी।
1: और मुझे आप लोग जानते हैं अनमोल या लीला से, और इनको जानते हैं आप शिव जी या हनुमान जी से, है ना हनुमान जी। रक्षाबंधन और सब लोग घर पर मनाते हैं, सब लोग घर पर राखी बांधते हैं, बट हमने सोचा कुछ अलग करते हैं। कुछ अलग नहीं, जैसे हर रक्षाबंधन पे या हर त्यौहार जब शुरुआत होती है किसी भी त्यौहार की, तो सब लोग सबसे पहले जाके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को भी क्यों ना अपने साथ लेकर आएँ और इस रक्षाबंधन की शुरुआत करें। आन, आपको कैसा लगा ये आइडिया?
2: मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब तुमने ट्रीट दी है मुझे।
1: ट्रीट दी है रक्षाबंधन पे, मैंने ट्रीट दी है आन को।
3: नहीं, अभी आन भी देगा ना।
1: हाँ, अभी आन भी ट्रीट देगा।
0: तो चलिए हम भी भाई बहन की इस जोड़ी के साथ सबसे पहले करते हैं शुरुआत मंदिर से। वैसे इस खास मौके पर आज साची और आन के साथ उनकी मम्मी भी है, और ये तीनों पहुंच गए हैं महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए त्योहार के शुभ मौके पर।

भाई भगवान जी की पूजा तो हो गई, अब बारी रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाने की, जहाँ बरसाची अपने छोटे भाई आन को बड़े ही प्यार से बांध रही है राखी।

0: हमेशा मेरे लिए छोटा ही रहेगा। पिद्दी,
1: पहले तुम गाओ।
0: मैं क्या गाऊँ? नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, तुम गाओ।
1: लोरी गा देना।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले आप।
2: तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं जुझाइयों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में बसाए।

0: भाई बहन का ये रिश्ता जितना प्यार भरा होता है उतना ही खट्टा मीठा भी होता है। तो आइए जानते हैं साची और आन की भाई बहन की ये जोड़ी कैसी है। इनमें लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन प्यार भी भरपूर है।
1: मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमेशा से मुझे एक भाई चाहिए था। ऐसा नहीं, मुझे बहनें भी बहुत पसंद है, बहुत भाई बहन है मेरे, लेकिन फॉर सम रीज़न आई ऑलवेज वॉन्टेड अ ब्रदर। क्योंकि यू नो
2: ब्रदर नहीं है,
1: हाँ फैमिली में ब्रदर नहीं था ना मेरे पास, इसीलिए मुझे एक भाई चाहिए था जो हमेशा मेरे पास रहे, नहीं तो बाकी सब बहुत दूर दूर रहते हैं। तो मुझे एक वो लगता भी था एक खालीपन कि नहीं यार कंप्लीट करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर ये आ गए कंप्लीट करने के लिए और अब कुछ ज़्यादा ही कंप्लीट करते हैं, अब पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा। लेकिन नहीं मैं एक्चुअली यही चाहती थी और इसे डांटने का इसका मजाक उड़ाने का सिर्फ मुझे ही हक है और कोई भी मेरे भाई का मजाक नहीं उड़ा सकता। और
2: इनका भी नहीं
1: इनके भाई भी इनको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। जितने भी भाई हैं, एक तो बहुत सारे मामा हैं मेरे, बहुत सारे, तो
2: 8 भाई और 7 बहनें हैं।
1: हाँ देख लो इतना बड़ा खानदान तो हाँ आन भी मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। तो रक्षाबंधन हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट त्यौहार होगा। अगर मुझे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट फेस्टिवल कौन सा है तो रक्षाबंधन और होली, यही दोनों मेरे मुंह पे हमेशा आएगा। सो यस, इट्स ऑलवेज गोना बी माय फेवरेट। और आन बताओ, मेरी ज़िंदगी में आके आपको कैसा लगा या फिर मुझसे मिल के कैसा लगा, आप क्या धन्य हो गए? मुझे लगता है आन का ना, मैं इनफैक्ट मम्मी को भी बोलती हूँ कि शायद ये आप लोग का लास्ट जन्म है, मतलब मुझसे मिल चुके हैं आप लोग, अब आपको और क्या चाहिए, हो गया आप लोगों का कंप्लीट, यू कैन गो बैक, है ना?
2: हाँ
1: हाँ देखो मैं बहुत बहुत अच्छी अवतार हूँ, है ना?
2: नॉट श्योर
1: देखो, लेकिन हाँ मुझे बहुत बहुत तंग करता है ये, बहुत बहुत खिंचाई करता है, इरिटेट करता है ना।
2: पिछले बार वाला तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैं पिछली बार हनुमान कर रहा था पिछले साल ही, तो ना एकदम रात में 12 बजे जब मैं सो रहा था, मेरा पैकअप हो गया था, मैं थक के सो रहा था मैं बेड पे और मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, मेरे को दिखाई दी कि हैं, फिर मैं सो गया कि यार सपना होगा जाओ छोड़ दो।
1: मैं बहुत अप्सरा हूँ ना, तो ये देख कर मतलब रजिस्टर नहीं कर पाया क्या सच में मैं ही हूँ। और मैंने आन को बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आन इस बार राखी मैं शायद
2: नहीं,
1: मैं
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ये बोल रही थी कि हम लोग गए हैं मूवी देखने, ये और पापा गए अच्छा, मूवी देख रहे हैं
1: कि रात में हम लोग, मैं और पापा मूवी देखने चले गए और शायद मैं कल राखी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और फिर कैसा लगा?
2: फिर उठा तो रक्षाबंधन का टाइम था,
1: रक्षाबंधन का, और फिर पूरे दिन हम लोग मस्ती किए थे, हम लोग आइसक्रीम खाए, डोसा खाए और बहुत सारी चीजें, मतलब मैं और आन ने अकेले अपना ब्रदर सिस्टर डेट किया था। और वैसे तो मैं
2: पहले किया था ना वो, हाँ, हम लोग 40 में मूवी देखने, हाँ, गए,
1: फिर हम लोग कुछ दिन पहले भी 40X में मूवी देखने गए थे एंड फर्स्ट टाइम 40X देखा, है ना? कैसा लगा? नहीं नहीं, स्पाइडरमैन नहीं, ही मैन, स्पाइडरमैन तो फर्स्ट टाइम 2D में ही, मैं अभी तक आन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखा नहीं है, छोटा है ना अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए।
2: फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है।
1: क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया, यू कैन डू, आप मुंबई आ सकते हैं

0: तो देखा आपने, कुछ ऐसा है भाई बहन का ये रिश्ता। वैसे इनकी मम्मी भी बता रही है इनके बारे में कुछ और खास बातें।
1: मोस्ट ऑफ टाइम मैं और आन मैचिंग ही रहते हैं,
2: क्योंकि
1: साची के साथ पहले रहता था मेरा, बट अब थोड़ा सा पार्टी बदल गया है।
2: एक सेकेंड, बिकॉज आई एम द फेवरेट, यू नो।
1: नहीं नहीं, ये पता है सारे
3: बोल रहता ना, ये मेरे दोनों,
1: ये सारे छोटे जो भाई बहन होते हैं ना, ये सबको लगता है कि वो फेवरेट चाइल्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जितने भी बड़े हैं ना सबको पता है कौन फेवरेट है। और वैसे भी मम्मी चले गए कोई बात नहीं, मैंने पार्टी बदल ली है, पापा हैं तो मैं पापा के साथ अब मैचिंग करती हूँ।
2: ये
4: श्रावण महीने की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और रक्षाबंधन का भी। शिव जी के साथ मेरे पूरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो घर में तो हम लोग रक्षाबंधन हर साल मनाते हैं, अभी ये 8 साल के हो गए तो काफ़ी अभी, हाँ तो अभी 8 कम्प्लीट हुआ ना ये तुरंत 12 के भी हो जाएंगे, क्योंकि हाइट अच्छी खासी इनकी बढ़ रही है। तो मैंने ये सोचा कि मंदिर में शिव जी का आशीर्वाद लेने के बाद अगर हम इस बंधन को और ज़्यादा प्रगाढ़ करें, और ज़्यादा इसमें हम कहते हैं कि प्रेम मिठास और प्रेम लाएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरा ये मानना है कि दिनचर्या की शुरुआत अगर प्रभु के आशीर्वाद से होती है तो वो बहुत अलग अनुभव होता है, और पूरा दिन जो होता है वो एकदम स्फूर्ति एनर्जी सबसे भरा हुआ रहता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और आई थिंक हमारी पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगेगा ये प्यारा सा सेगमेंट लेके।
1: हाँ। कमाने वाले तो दोनों ही हैं, तो अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कम? ना ना बेबी, ना ना ना, मैं क्योंकि 18 हो गई, सो आई शुड गेट नाइस कन्विंस, यू नो। सो अभी लेट्स सी, लंच कराने आन हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अच्छी जगह है आन, या सरप्राइज है?
2: सरप्राइज है।
1: ओके, लेट्स गो।
0: वैसे त्योहार तो मना लिया, अब बारी लंच करने की। भाई त्योहार का मौका है, परिवार साथ में है, ऐसे में पार्टी तो बनती है, इसलिए आज ये तीनों साथ साथ जा रहे हैं लंच करने, और अपने इस त्योहार को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए।

0: भाई की तरफ से बहन और मम्मी को है स्पेशल ट्रीट, जिसके लिए ये लोग पहुंच गए हैं कामत्स, जहां पर है ओणम स्पेशल। और यहां इन्हें सर्व किया जाएगा साउथ इंडियन स्पेशल फूड, जिसके लिए ये सभी काफी एक्साइटेड हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कामत्स रेस्टोरेंट में, जहां पर आज त्योहार की खुशियां भी मनाई जाएंगी, पेट पूजा भी की जाएगी और ढेर सारी बातें भी होने वाली है।
1: सो गाइस, मंदिर के बाद हम आए हैं लंच करने, और लंच करने आए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पर जिसका नाम है कामत। ये है काशी गांव में, एंड ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे बिकॉज ये इतना फेमस जो है। तो आइए हम इस प्लेस के बारे में जानते हैं।
2: हाय, नमस्कार, वेलकम टू द ओणम सद्या फेस्टिवल। तो कामत्स लीगेसी में बेसिकली हम ओणम फेस्टिवल जो बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, और ये हमारा 14th साल है, और आई एम हैप्पी कि ओणम सद्या जब हमारे पास सेलिब्रेट होता है तो वो पूरी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक मैनर में होता है। तो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक मतलब क्या, तो बेसिकली हमारे पास हर एक डिश, ओणम सद्या हो या कोई और डिश, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना लीफ पे सर्व करते हैं। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ द साउथ, जो बनाना लीफ पे सर्व किया जाता है। और इस साल हमारे पास हमारे शेफ्स ने 30+ डिशेस ओणम सद्या के लिए जनरेट की हैं, बनाई हुई हैं, और वो भी आप सब गेस्ट के लिए, सब कस्टमर्स के लिए अनलिमिटेड है। सो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर आइए, ये 30+ डिशेस का आनंद लीजिए, एंड दैट टू ऑल आर ट्रेडिशनली मेड। तो आप हमारे किचन में भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से, किस सुंदरता से और किस खूबी से शेफ लोग बनाते हैं। एंड अगेन आई विल इनवाइट यू टू कम एंड ज्वाइन फॉर ओणम सद्या फेस्टिवल एट कामत्स लीगेसी। हमारे लोकेशन जो है नरीमन पॉइंट में है, वाशी में है, मलाड में है, और हम जहाँ पर खड़े हैं वो मीरा रोड। थैंक यू।
3: प्योरिटी एंड टेस्ट चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा। इन्होंने जो जानकारी देनी थी दे दी है, लेकिन वो कितनी सत्य है और कितनी प्योर है, उसके लिए आप सभी को यहाँ विजिट करना पड़ेगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज वेलकम हियर,
1: एंड आई रियली सजेस्ट एवरीवन टू कम हियर बिकॉज मुझे भी अपने गांव की बहुत याद आती है। यू नो, हम सबको अपनी रूट्स की बहुत याद आती है। सब काम करने के लिए मुंबई आ जाते हैं, लेकिन घर की याद तो सबको ही आती है, और इसीलिए मैं ये जगह रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज लाइक ही सेड कि सब कुछ नेचुरल और ऑथेंटिक बनता है, एंड यू विल रिमेंबर एज इफ आप सच में यू नो साउथ में बैठ के, अपने घर पे बैठ के आप खाना खा रहे हो। तो अगर आपको घर की याद आ रही है तो यहाँ पर आइए और प्यारा सा खाना खाइए,
3: स्वाद का आनंद उठाइए।
1: पहले तो आप लोग हमारा लुक देख लीजिए, ये आन का रहा शो। This is my mom's look. तो हाँ, इंडिया तो एक्चुअली हर ही चीज़ में सबसे बेस्ट है, बट वेन इट कम्स टू ड्रेसिंग अप हर एक ओकेजन के लिए, तो फिर तो हम अपनी जान लगा देते हैं कि हम यू नो बेस्ट लगें। तो आज हमने भी कुछ ऐसा ही किया, बट डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, तो अलग बात है। बट येस, हाँ, बट ये मैं कह सकती हूँ कि आज जो मैंने अटायर लिया है, स्पेशली द साड़ी, ये एक्चुअली क्रेडिट जाता है रेवती जी को, एंड शी स्टेज इन बैंगलोर। और आपको ये जानने में बहुत हैरानी होगी बिकॉज शी इज़ अ फैमिली मेम्बर, बट आज तक हम लोग उनसे नहीं मिले हैं बिकॉज नहीं, शूट शेड्यूल ये सब कभी मैच नहीं हो पाता, और अगर कभी जाते भी हैं तो शूट करके फिर वापस निकल जाते हैं।
3: ऐसा रिश्ता और बंधन उनके साथ है, जो वो इतनी दूर है, कोसों दूर है, उसके बावजूद भी हमारे के करीब है,
1: बहुत बहुत करीब है।
3: तो
1: ये उन्होंने साड़ी, शी हैज गिफ्टेड मी दिस मेरे बर्थडे पे, आन के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें गिफ्ट की हैं, सो ऑल दीज क्रेडिट गोज टू हर। एंड ये फेस जो भी है, ये तो मेरे मॉम डैड के जेनेटिक्स हैं, थैंक गॉड दे डिसाइडेड टू मैरी, एंड आई एम हियर, आन इज हियर,
3: बेटा पेरेंट्स ने डिसाइड किया था।
1: हाँ भाई, तो इसीलिए ये ऑल जेनेटिक्स है, एक्चुअली हेरिडिटी भी है, सभी बहुत खूबसूरत है परिवार में, वो अलग बात है, मैं ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जलने जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, ये हैंडसम है, ये हैंडसम है, मैं खूबसूरत हूँ। सो या नाउ लेट्स गो ईट, भोजन पानी होता है।

चुपचाप ट्रीट के लिए आए हैं, तो ऐसे में सेल्फीज खींचना तो बनता ही है। त्योहार का मौका है और परिवार भी साथ है, तो खुशियाँ तो होंगी अनलिमिटेड।

तो भाई सज चुकी है थाली, यानी कि ये बनाना लीफ, जिस पर अब एक एक कर खाना परोसा जाएगा, यानी कि स्पेशल डिशेस। और यहाँ है डिशेस की ढेर सारी वैरायटीज। तो भाई शुरुआत हुई अलग अलग तरह की चटनियों से, और उसके बाद एक एक कर बाकी का खाना सर्व किया जाएगा, जो कि है कामत्स का स्पेशल।

0: for Uttayam, basically it's made with onions. Onion ka achcha, basically.
1: उत्तयम तो ये सॉल्ट जो है कभी भी खाना परोसते हैं तो सॉल्ट पहले देते हैं ये बहुत अच्छी बात है हमें डांट मिलती है तब हम सॉल्ट ला के बाद में देते हैं वाओ वेरी नाइस हमें भी इस चीज को अपनाना चाहिए ताकि हम डांट से बचें
0: This is basically a spicy vegetable raita only.
1: Okay.
0: Made with like a lady fingers, you know, bhindi, everything.

0: तो भाई अलग अलग डिशेस परोसी जा रही हैं और इसी के साथ साथ आन साची और उनकी मम्मी के मुंह में पानी भी आ रहा है। भाई अब तो इनसे इंतजार नहीं हो रहा कब ये स्वादिष्ट खाना चखे।
1: This is a steamed rice we serve.
2: Okay.
1: And this is called red rice. In basically South Indian cuisines,
2: okay.
1: Red rice and we have like lots of rice combinations we use.
2: Mm-hmm.
1: So red rice is one of the most easy way to digest.
2: Okay.
1: This is
2: it's
1: your
2: a boiled rice?
1: It's a boiled rice only.
2: Okay. Oh.
1: Iska flavor alag rehta hai.
2: Okay.
1: And this is ka parupu curry, basically known as dal.
2: Okay.
3: Oh wow.
2: तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमारा एक तो बिहार का डिश दिखा अभी हमें दाल और चावल।
4: आप लोग बिहार से हैं?
2: यस
4: जी। लर्निंग्स वी आर नेबर्स।
5: यस वी आर नेबर्स।

0: दिस इज कॉल्ड कोकोनट स्पाइसी पोड़ी।
1: या मैंने इसका नाम बहुत सुना था।
0: पोड़ी में सर मैम चावल में के साथ बहुत अच्छा जाएगा।
1: ओह वाओ, इसमें क्या मिक्स किया है?
0: दिस इज मेड विद लाइक गन पाउडर। So I didn't go in top and mix it together. And trust me, you will love it.

0: सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, मैं तो
1: तो गाइज यहाँ पे अगर आना है तो पूरी तरीके से पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि हाँ, नहीं हम सबका है वैसे। कुणाल थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा सरप्राइज वाला ये डिश है, मतलब सब अभी खाने के बाद हम टेस्ट बता सकते हैं, बिकॉज देख के तो बहुत बहुत बहुत प्यारा लग रहा है।
2: नहीं बहुत है, मैं दो तीन टेस्ट कर लिया मैंने।
1: हाँ दो तीन खत्म भी हो गए हैं, कंट्रोल नहीं किया गया इनसे।
2: ऐसी हैं मेरे में से खा रही हैं, बोल रही साची मत खत्म करो यार।
1: मैं ऐसी हूँ तभी ऐसी है, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं होती तो फिर गाइस आपको ये कहाँ से मिलती।
3: मजीका
1: क्या है ये?
3: छास।

0: This is the South Indian kheer.
1: Wow.
0: This is called Adha Padam. Basically, it's made of Adha rice.
2: तो भाई खाने की शुरुआत तो हो चुकी है। जहां आन और साची ने खाना शुरू कर दिया है तो वहीं उनकी मम्मी खींच रही हैं तस्वीरें। भाई यादें समेटना भी तो जरूरी है ना।

0: तक पहुंची हूँ अभी बस टेस्ट करने पे. मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. ये बचा है, ये बचा है, ये टेस्ट करते हैं.
1: अच्छा
0: कमाल.
1: No ever
0: मैंने फिकर नहीं किया, मैंने फिकर किया मेरी आंख बंद हो गई सारी. मतलब अच्छा
2: दो ही आते
1: हैं. No ever दाल चावल has completed without a touch of ghee.
2: दाल चावल.
3: तो फाइनली आन की इस ट्रीट को साची और उनकी मम्मी ने भरपूर एंजॉय किया, पेट भर स्वादिष्ट खाना खाया और अपने इस त्योहार को बना दिया और भी ज्यादा स्पेशल.
0: ओके गाइस, आज का दिन हो चुका है समाप्त. हम लोगों ने कर ली है पेट पूजा और बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा. जेन्युइनली सच में बहुत अच्छा लगा ये यहाँ का खाना खा के. आन आपको कैसा लगा?
1: मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, विच कॉम्बिनेशन डिड यू लव द मोस्ट?
0: अच्छा आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, आन जी हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं. हाँ आन की ट्रीट थी तो आन पूछ सकता है. कॉम्बिनेशन आई कुड से
1: दाल चावल नहीं, दाल चावल के अलावा
0: रेड राइस के साथ जो मैंने सांबर मिलाकर खाया है, ओहो वो बढ़िया था, वो मस्त था. मम्मी आपका फेवरेट?
4: मुझे सबसे ज़्यादा रसम पसंद आया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. एंड स्वीट डिश में जो सेवैयाँ हमारे यहाँ बनती हैं तो इसका डिफरेंट फ्लेवर यहाँ पर आपको खाने को मिलेगा. तो ऐसे तो सब अच्छा था लेकिन स्पेशल में मुझे ये दो बहुत अच्छा लगा.
0: पापड़ भी बहुत अच्छा था. और पापड़म राइट. और वो चिप्स, ये बनाना चिप्स के भी ना अलग अलग कुछ वेराइटी फ्लेवर्स थे तो वो भी बहुत अच्छा लगा.
4: आप सभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ विजिट किए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आपके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आएगा. तो प्लीज़ यहाँ आइएगा जरूर.
0: एंड रिमेंबर वी सेड कि देखते हैं होम का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा. सो यस आया, बहुत सच में आया.
1: साकारा उपेरी.
0: प्लीज फॉरगिव अस अगर हमने गलत प्रोनाउंस किया तो. वी मीन नो हाउ बट यस सच में घर का खाना ही लगा और बहुत बहुत बहुत अच्छा था. सो आई रियली रिकमेंड यू टू कम हियर. वी लव टुडे. राखी बहुत अच्छी रही और आन ने बहुत बहुत प्यारा मुझे ट्रीट दिया है. बहुत अच्छा ट्रीट दिया है, यूनिक ट्रीट दिया है. आज से पहले मैंने इतने सारे डिशेस कभी नहीं खाए थे, खा भी नहीं पाई.
4: ये मेरे लिए भी स्पेशल ट्रीट हुआ क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा मुझे ही खाना बनाना पड़ता था, मिठाइयाँ बनानी पड़ती थी. तो आज आन की वजह से मैं किचन से फ्री हूँ.
0: मेरी बात नहीं सुनता है तो फिर चिल्लाती हूँ मैं. अगर मेरी बात नहीं मानता है, कुछ नहीं सुनता है तो आन चिल्लाती हूँ अंदर रूम से, सुनाई नहीं देता तुम्हें. ऐसे होता है फिर मेरा कि ये मेरा भाई है, कि मुझे ये भाई के रूप में मिला. और आई रियली रियली रियली होप. जोक्स अपार्ट, आन कान बंद करो. कान बंद करो, क्यों तारीफ क्यों करो तुम्हारे सामने में तुम्हारी. बट आई रियली वॉन्ट हिम टू बी माई ब्रदर इन एवरी यूनिवर्स, इन एवरी युग, इन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ एंड हर एक जन्म में मैं इसे अपना भाई चाहती हूँ. और हमेशा छोटा ही हो, बड़ा होगा तो फिर ये मेरे ऊपर फिर ये करेगा.
3: वैसे इस खास मौके पर आज इन्हें मिला है कामत से एक स्पेशल गिफ्ट भी. तो आइए देखते हैं इन्हें क्या गिफ्ट मिला है.
5: रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम कामत्स. या सो लेट मी हेल्प यू टू ओपन दिस एंड एक्सप्लेन व्हाट इज इट. सो हियर वी हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर ऑल आवर स्पेशल गेस्ट. सो दिस इज अ थैंक यू कार्ड. ओके एंड एज बेसिकली दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो दिस इज ऑल द सीड्स ऑफ तुलसी वेयर यू कैन प्लांट इट एट इन योर होम. Okay, and this is a special gift the all ladies love. You should open it and see what it is.
1: Oh!
5: So lovely mogra gajra to all the ladies.
1: तो
3: भाई साची और आन का रक्षाबंधन का ये त्योहार तो काफी ज्यादा स्पेशल बन गया है और भाई बहन का नाता है ही कुछ ऐसा. अपने इस त्योहार को इन्होंने दिल खोल कर मनाया और अपने रिश्तों को और भी ज्यादा अटूट बना लिया.
0: फिर आज बहुत प्यारा प्यारा हमें गिफ्ट मिल गया. ट्रीट आन ने बहुत अच्छी दे दी. सो प्लीज़ गाइज डू कम हियर एंड यस हैप्पी वेरी रक्षाबंधन टू यू ऑल.
1: हमारा सिग्नेचर टाइम
0: इस बार आप लोग रक्षाबंधन पर कुछ अलग कीजिए क्योंकि हर वक्त तो मतलब सब घर पर ही राखी बांधते हैं. तो टू ऑल द सिस्टर्स इस बार कुछ

0: छलक कीजिए, ढेर सारा अपने भाइयों से पैसा मांगिए और उनकी जेब खाली कर दीजिए।
1: जेब कतरे हैं ये लोग।
0: देख लो, जेब कतरे नहीं है हम लोग, हक है आप लोगों का, तो इस बार अलग कीजिए कुछ, बहुत सारे पैसे मांगे जब तक खत्म ना हो जाए, और अगर पैसे नहीं है तो बोल दीजिए कोई बात नहीं, अच्छा गिफ्ट दिला दो। आई रियली लव यू ऑल बिकॉज आप लोग बहुत बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, आन को, एंड आई नो इट्स बिन लाइक अ टाइम कि हम लोग वापस स्क्रीन पे आए हैं, बट आन जल्दी वापस आने वाले हैं। इनकी मूवी आने वाली है नई नवेली, यामी गौतम मैम के साथ, आनंद एल रॉय सर के साथ, तो वो ज़रूर आप लोग देखेगा। मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली है, मेरी शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है, और अभी मैं एक और प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ कुछ दिनों बाद, और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, सो यस आई एम कमिंग सून।
2: तो भाई आप सभी रक्षाबंधन के त्यौहार को खुशी खुशी मनाइए, परिवार संग मनाइए, हमारी तरफ से भी आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अन्नत और विक्रांत ने धैर्य के खिलाफ अपने प्लान में अब याशिका को भी शामिल कर लिया है। अब याशिका के इस खेल में शामिल होने से क्या बदलाव आएगा, चलिए देखते हैं।
4: वैसे तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारा बाबा भी है, उस इंसान पे तुम बहुत भरोसा करती हो, इतना भरोसा कि एक पॉइंट पे तुम विक्रांत से ज्यादा उस पे भरोसा करती थी, उसकी बात मानती थी। जब तुम दोनों का रिश्ता उसने एक्सेप्ट किया,
2: याशिका बनी मन्नत और विक्रांत की ढाल।
4: दुआ का आइडल बनाया तुमने धैर्य को, रोनी अंकल उसे अपना दूसरा बेटा समझते हैं, तो ऐसे में आखिर ऐसे में हम तुम्हें सच बताते तो तुम नहीं मानती।
2: वालों के सामने मन्नत और विक्रांत का नकली बवाल। इशारों को समझती याशिका तो धैर्य हुआ गुमराह।
5: विक्रांत नहीं हो,
2: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज से भी घर वालों के सामने आ गया है मीना का सच कि उसे अंकित ने इस घर में प्लेस किया है ताकि वो मन्नत की जासूसी कर सके। ऐसे में आज धैर्य के हाथों वो रिकॉर्डिंग लग गई है जो मीना ने कैमरे से की है। ऐसे में धैर्य को लगता है कि इसी के बहाने मन्नत और विक्रांत का सच भी उसके सामने आ जाएगा, इसीलिए उसने प्रोजेक्टर लगा लिया है। और ये देख मन्नत और विक्रांत दोनों डर रहे हैं कि कहीं उनका सच का खुलासा ना हो जाए। ऐसे में जैसे ही धैर्य वो पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगाता है तो वो प्रोजेक्टर काम नहीं करता। बस फिर क्या, मन्नत वो पेन ड्राइव लेकर ले जाने का बहाना करती है लेकिन धैर्य उसे रोक लेता है। इतना ही नहीं, धैर्य तो एक टेक्नीशियन को भी बुला लेता है जो उसी वक्त घर आकर वो प्रोजेक्टर ठीक कर देता है। बस फिर क्या, प्रोजेक्टर के ठीक होते ही धैर्य फिर से वो पेन ड्राइव लगाता है और शुरू करता है वीडियो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। ऐसे में मन्नत और विक्रांत दोनों चैन की सांस लेते हैं।
1: ये तो ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है।
5: ओए यार, मैंने कहा था ना, बेकार में इस नौटंकी पे टाइम वेस्ट करो सबके सब। सेट है, सब सेट है।
1: जासूसी करी हम, इसके हिसाब कर देती हूँ। जिस दिन से यहाँ आई थी इस घर में, उस दिन से अब तक का आपका हिसाब कर देती हूँ। अभी लाने पैसे है ना।
6: सो प्रोजेक्टर पे बेसिकली वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपना अंकित ने एक वो मेड को हमारे घर में प्लांट किया था स्पाई करने के लिए, तो हम प्रोजेक्टर पे वही देखना चाहते हैं कि उसने क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ है।
2: खैर, मन्नत भी धैर्य को गुमराह कर वहाँ से निकल गई और पहुँच गई विक्रांत के पास कमरे में बात करने के लिए कि इसी बीच उस कमरे में हो गई है याशिका की एंट्री। ऐसे में मन्नत और विक्रांत दोनों ही घबरा जाते हैं और याशिका वो तो सच जानना चाहती है। इसी बीच मन्नत और विक्रांत जैसे ही सच बताते हैं तो याशिका विक्रांत के गले लग जाती है और उससे माफी मांगती है। इतना ही नहीं, वो तो मन्नत को वो मेमोरी कार्ड भी दिखाती है जिसमें मीना ने रिकॉर्डिंग की है, जिसे देखकर मन्नत हैरान है। और तो और याशिका ने उसका साथ देने का वादा किया है, ऐसे में मन्नत ने उसे गले लगा लिया। इतना ही नहीं, गले लगते ही याशिका ने धैर्य के कारनामे बताने शुरू कर दिए। बस फिर क्या, ये सुनते ही मन्नत के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे लगा था कि सच सिर्फ उसी को पता है।
4: मतलब क्या तुम जानती थी तेरे ने क्या किया है, वो क्या करना चाहता है विक्रांत के साथ, और एक बार मुझे नहीं बताया। तुम जानती थी कि तेरे तुम्हारा क्या कर रहे हैं, वो मेरे इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे बहका रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे, मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे, और एक बार मुझे आगाह करना तुमने जरूरी नहीं समझा, मुझे सच बताना तुमने जरूरी नहीं समझा। क्यों याशिका, मुझे सिर्फ उस पर शक था, मुझे उस वक्त पूरा सच नहीं पता था, मैं सिर्फ इतना जानती थी कि शक रखती है कुछ नहीं। उस दिन जब तेरे कुमार मेजबानी गए और विक्रांत गोली मारने की कोशिश की और उन्होंने अपने जुर्म कबूला, अगर उस वक्त मैं गलती से नहीं सुनती तो तुम लोग तो मुझे अंधेरे में रखने वाले थे। हाँ, मुझे अंधेरे में रखने वाले थे ना तुम लोग, एक बार कह देते ना कि मन अच्छे से इंसान पे तुम भरोसा कर रही हो, जिसे जिस पर अंधा विश्वास कर रखा है, जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रहा है, एक्चुअली दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है, वो खूनी है, वो इंसान खूनी है, एक बार बोलती ना मुझसे।
7: प्लीज मेरी बात को समझो, अगर हम तुम्हें आके सच बताते तो क्या तुम हमारी बात मानती? तुम नहीं मानना, तुम नहीं मानती, क्योंकि धैर्य से तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि दुआ का बाबा भी है। उस इंसान पे तुम बहुत भरोसा करती हो, इतना भरोसा कि एक पॉइंट पे तुम विक्रांत से ज्यादा उस पे भरोसा करती थी, उसकी बात मानती थी, और इसीलिए जब तुम दोनों का रिश्ता उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने का नाटक किया, तब भी तुम उसकी नीयत नहीं समझ पाई मन्नत, क्योंकि तुम आंख बंद करके उस पे भरोसा करती थी। दुआ का आइडल बनाया तुमने धैर्य को, रोनी अंकल उसे अपना दूसरा बेटा समझते है, तो ऐसे में आखिर ऐसे में हम तुम्हें सच बताते तो तुम नहीं मानती।
2: अब मन्नत का गुस्सा तो लाजमी था, लेकिन याशिका ने भी अपनी बात मन्नत और विक्रांत के सामने रखी, जिसे मन्नत भले ही माने न माने, लेकिन विक्रांत उसे पूरा यकीन है कि मन्नत याशिका पर भरोसा करती ही नहीं, और यही बात विक्रांत मन्नत को भी समझाता है, और मन्नत उसे भी कहीं न कहीं विक्रांत सही लगता है। बस फिर क्या, मन्नत अपने आप को ही कोसना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो फूट फूट कर रोने लगती है कि पिछले एक साल तक उसने अकेले ही ये दर्द झेला है। ऐसे में विक्रांत उसका सहारा बनता है और उसका हौसला बढ़ाता है।
5: हम उससे उसका गुनाह कबूल कर पाएंगे, हम उसे जेल भिजवाएंगे।

0: फिलहाल तो विक्रांत ने मन्नत को यकीन दिला दिया कि वो दुआ को कुछ भी होने नहीं देगा और अब तो मन्नत और विक्रांत अकेले नहीं हैं, बल्कि याशिका भी उनके साथ है। ऐसे में धैर्य घर की छानबीन करे मन्नत और विक्रांत दोनों ने ही ड्रामा करना शुरू कर दिया और देखिए कैसे बातों ही बातों में इशारों ही इशारों में वो याशिका को बताने लग गए कि उन्होंने कहां कहां कैमरे प्लेस किए हैं धैर्य का सच लाने के लिए, ताकि धैर्य से पहले याशिका उन सारे कैमरों को निकाल ले। भाई मानना पड़ेगा, मन्नत और विक्रांत के इशारे याशिका बखूबी समझ रही है। एक कैमरा तो उसके हाथों लग गया, लेकिन अब मन्नत और विक्रांत ने दूसरे कैमरे के बारे में बातें करनी शुरू कर दी और याशिका वो भी समझ गई। भाई मल्ला ही नहीं बल्कि रोनी और धैर्य भी परेशान हैं ये देखकर कि विक्रांत और मन्नत दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि वो याशिका को इशारे दे रहे हैं। ऐसे में याशिका दूसरा कैमरा भी निकाल ले आई और उसके आते ही मन्नत और विक्रांत ने तीसरे कैमरे के बारे में बताना शुरू कर दिया।
1: अब ना तेरे से बात नहीं करने वाला, इस घर में कोई जगह है जब मैं अपना सर मार सकूं।
2: ऊपर लोहे का वास है, लोहे का वास,
1: लोहे का वास,
2: जाइए उससे सर मारिए, लोहे का वास भी नहीं टूटेगा, शायद आपको याद आ जाए कि रात में
1: लोहे के कमरे में कह रही है मैं अपना,
2: मैं आपसे लड़ने नहीं चाहती।
1: अब एक और चीज गाना, तूने एक और चीज गाना।
0: याशिका की कामयाबी को देखते देखते विक्रांत ने एक कदम और बढ़ा दिया और वो कुर्सी पर खड़े होकर नौटंकी करने लगा और उसी नौटंकी में दोनों ने मिलकर चौथे कैमरे का इशारा किया।
3: मन्नत विक्रांत को याद दिलाने की कोशिश कर रही है, तो बेसिकली तो उनका प्लान ही है ये कि वो याशिका उनके साथ मिल गई है और अब याशिका उनको हेल्प कर रही है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है, मतलब रोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो रोनी तो एकदम ही शॉक्ड है कि ये दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कैसे विक्रांत बिहेव कर रहा है, कैसे मन्नत बिहेव कर रही है। रोनी को बिल्कुल कुछ भी, उसको भनक तक नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि रोनी तो धैर्य के पक्ष में ही है, तो वो तो बस एक ऑब्जर्वर है कि अभी घर में क्या चल रहा है।
0: भाई मानना पड़ेगा मन्नत और विक्रांत के इस ड्रामे को उन्होंने देखते ही देखते याशिका की मदद से वो सारे कैमरे निकलवा लिए। ऐसे में याशिका ने आखिरी कैमरा निकाल कर उनको हरी झंडी दिखा दी और कन्फर्म कर दिया अब ऑल इज वेल है। और ऐसे में मन्नत और विक्रांत ने भी अपनी लड़ाई पर लड़ते लड़ते ब्रेक लगा दिया।
1: ओए कैसे आएगा याद जब मैं विक्रांत नहीं हूँ?
2: आप विक्रांत हो और मैं आपको याद रख रहा हूँ, समझे?
1: ओए ओए उंगली नीचे कर, पहले तो तू उंगली नीचे कर और देखेंगे। ओए देखेंगे, मैं देखूंगा,
2: आप ना देखेंगे,
1: मैं देखूंगा। दिमाग खराब करके रखा यार।
0: भाई विक्रांत तो चिचियाते हुए वहाँ से निकल गया और धैर्य देखता का देखता रह गया। अब देखना होगा क्या धैर्य को ये पता चल पाएगा कि मन्नत और विक्रांत ने इस लड़ाई के जरिए क्या कारनामा किया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: रक्षाबंधन की तैयारी में जुटी सीरियल पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी की प्राप्ति शुक्ला ने तैयार की है हैंडमेड राखी। चलिए देखते हैं प्राप्ति का ये अनोखा टैलेंट।

0: प्राप्ति शुक्ला अपनी बड़ी बहन के साथ अपने भाई दिव्यम को बहुत प्यार करती हैं और दोनों बहनें मिलकर हर साल अपने भाई के लिए कुछ अलग ढंग से रक्षाबंधन मनाती हैं। तो इस बार ईशा और उनकी बहन ने प्लानिंग की है कि हैंडमेड राखी बनाई जाए और इसके लिए उन्होंने क्रोशिया ऊन वगैरह ला के रखी है, साथ में कुछ और चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रक्षाबंधन क्या है प्राप्ति की तैयारी।
1: हाय एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी ईशा यानी प्राप्ति शुक्ला। तो आज रक्षाबंधन है और मैं सेट पर हूँ, तो मैं यहीं से सोच रही हूँ कि क्रिएटिविटी तो आती ही है हमें, तो मैं राखी बनाऊंगी अपने हाथों से एंड घर पे जाके दिव्यम यानी आप सबका धाकड़ वीरा जो हम पिछले साल मिले थे, तो हम उसके लिए राखी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ। तो चलिए अपने हाथों से हम राखी बनाते हैं एंड घर पे जाके दिव्यम को मैं सरप्राइज करूंगी।
0: वैसे प्राप्ति लगातार अपने सीरियल पति भ्रमचारी की शूटिंग कर रही है, सेट पर ही वो राखी बना रही है, साथ साथ अपने मेकअप भी कर रही है, अपनी लाइनें भी याद कर रही है, लेकिन जरा देखिए उनका जोश। तो आइए सीखते हैं प्राप्ति से कि कैसे इस रक्षाबंधन अपने हाथों से बनाए अपने भाई के लिए राखी।
1: मैं दिखाती हूँ मेरे मटेरियल्स। ये है क्रोशेट का ऊन जो थोड़ा सा मेस्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इससे फ्लावर्स बनाए थे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसे ब्लू कलर बहुत पसंद है तो मैं ब्लू कलर की राखी बनाऊँ, इसलिए मैं वरना रेड और येलो भी लाई थी बट कंफ्यूज थी इसलिए, बट मैं सोच रही हूँ एक तो पहले ब्लू बना दूँ सिंपल सी, मेरे पास भी टाइम नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, तो जल्दी हम स्टार्ट करते हैं ब्लू कलर की राखी। ट्यूटोरियल है ये, ट्यूटोरियल। ये क्रोशेट का होगा, इससे मैं करूँगी ऊन, और ये है कुछ बीट्स, ये मैं राखी में लगाऊंगी, और ये है सुई धागा ये बीट्स से राखी में डालने के लिए, ये हमारी सीजर, बस यही है, इतने में मस्त राखी बन जाएगी।
0: प्राप्ति शुक्ला ने शुरू किया अपनी राखी मेकिंग, इसके लिए उन्होंने ऊन का इस्तेमाल किया और उसके बाद क्रोशिया से इस ऊन को गुथना शुरू किया। भाई क्रोशिया की टेक्निक बहुत पुरानी है लेकिन आजकल कुछ नए इंस्ट्रूमेंट के साथ आप झटपट बना भी सकते हैं। तो क्या है टेक्निक, आइए जानते हैं प्राप्ति शुक्ला से।
1: थ्री मैंने नॉट बनाया और मैंने थ्री स्टिच की, अब मैं इसमें जो क्रोशेट जानते होंगे वो जानते, मैं डबल क्रोशेट करूंगी वो भी 19 स्टिचेस के अलग अलग नाम है, जैसे डबल क्रोशेट मतलब डबल स्टिच ले रही हूँ तो डबल क्रोशेट, फिर कोई रहता है हाफ डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट, ऐसे अलग अलग स्टिचेस के नाम रखती है, स्लिप स्टिच, तो कैसे वो एक होती है ना सबकी अलग अलग भाषा, तो ये क्रोशेट भाषा में सब समझ जाते हैं कि अच्छा मतलब ये वाला स्टिच करना है, अच्छा ये वाला स्टिच करना है, तो वैसे वैसे पैटर्न्स बन जाती है।
0: वैसे ईशा का यह अंदाज काफी अलग है। भाई एक जमाना था जब घर पे औरतें क्रोशिया कढ़ाई करती थी, लगता है वही जमाना लौटा है। तो ईशा ने भी एक क्रोशिया कढ़ाई सीखी और देखिए वही आज इस्तेमाल कर रही है।
1: ये पहाड़ों वाली हॉबी है, ये पहाड़ों पे जाके मैं करूँगी, उस साइड ज्यादा करते हैं ना लोग। तो ये एक स्टिच मतलब वन, फिर ये टू, ये थ्री, ऐसे अलग अलग हमारे 9 हुए, अभी हमें और 10 करने हैं इसमें।

0: फाइनली प्रतीक की राखी रेडी है क्रोशे की इस ऊन से। देखिए उन्होंने कैसे राखी का ढांचा तैयार किया और उसके बाद उसमें बीड्स लगाकर ये फूल जैसी सुंदर सी सिंपल एलिगेंट राखी तैयार की। प्राप्ति शुक्ला की राखी रेडी है और देखते हैं कि कैसी लग रही है फाइनल हैंडमेड राखी।
1: मैंने ये 5 मिनट में बनाई है राखी तो इतने कम समय में कोई बना सकता है? पहले स्कूल में बनाते थे बट वो रेडीमेड आती थी और वो सब हम चिपका देते थे। ये थोड़ी सी मेहनत है इसमें, तो आई होप ये दिव्यम को अच्छी लगे एंड वो इसे पहने। एक्चुअली ऐसा है हमारे घर में सीन, हम उसे राखी बांधते हैं और हम ही उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि हम दो बड़ी बहन हैं। बट कोई नहीं, उस पर अभी प्रेशर है। हमने उसे कहा हमें इस बार गिफ्ट चाहिए, तो कुछ भी कर कुछ भी ला, पिछली बार तो धाकड़ वीरा कर रहा था तो हमने मान गए कि हाँ चलो चलेगा। बट इस बार हमने कहा तो ढूंढ, तो वो भी प्रेशर में है मैं क्या गिफ्ट दूँ दोनों को, तो गिफ्ट तो मैं लेके जा रही हूँ उसके लिए। ये कैसी बनी है आप सब बताना। तो मैं आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन विश करती हूँ सास बहू बेटिया की तरफ से भी। इस रक्षाबंधन मैं अपने भाई को हाथ से बनी राखी देने वाली हूँ, तो मैं भी आप सबसे कहूँगी कि आप सब भी अपने भाइयों को अपने हाथों की बनी चीज़ दीजिए, राखी दीजिए या कुछ भी अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दीजिए, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर वो हम कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में खुद एफर्ट्स डाल के उसे दे तो किसी को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत अच्छी लगती है हैंडमेड चीज़ें, इसलिए मैं भी उसे दूंगी। और मैं भी उसे कहती हूँ कि तू मुझे कार्ड भी देगा ना तो भी मुझे चलेगा। जैसे छोटी छोटी गिफ्ट, छोटी छोटी खुशियाँ में ही ज़्यादा खुशी है। तो यही कहूँगी, हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। भाई बहनों का ख्याल रखिए, उनके साथ अच्छे से रहिए क्योंकि भाई एक प्योर बॉन्ड होता है लाइफ में, राइट? थैंक यू।
0: तो प्राप्ति शुक्ला की राखी तो रेडी है, लेकिन प्राप्ति की तरह आप भी अपने हाथों से राखी बनाइए और अपने भाई के हाथे बांधिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग फीलिंग है। अपने हाथों से बनी हुई राखी अगर एक बहन एक भाई को बांधती है तो वो एक बेहद अनोखा एहसास होता है जो रिश्तों को और पक्का करता है। श्रीपति ब्रह्मचारी की ईशा यानी प्राप्ति शुक्ला की अनोखी हैंडमेड राखी आपने देखी सिर्फ और सिर्फ सात बहु और बीटिया में। मुंबई से नुपुर वाची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हम लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट शोज के सारे हाइलाइट्स एक साथ, तो हो जाइए आप भी सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर सवार और करते हैं सीरियल्स की दुनिया की सैर।
3: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में हो गई है गुरु की जुड़वा बहन आरोही की एंट्री। ऐसे में जैसे ही गुरु और रूहानी को ये बात पता चली तो दोनों पहुंच गए हैं आरोही के घर उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन उनके आते ही आरोही ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। भाई वो तो गुरु रूहानी और पूरे परिवार से बहुत नफरत करती है, तभी तो देखिए कैसे अपने भाई को चिढ़ाने के लिए वो अपने दोस्तों संग पार्टी कर रही है, नाच रही है, ठुमक रही है और अपने जलवे दिखा रही है, जता रही है कि वो कितना बिगड़ चुकी है। इतना ही नहीं, अपने भाई को देखते हुए वो अपने दोस्त को भी कॉल लगा देती है। ऐसे में उसका दोस्त भी आ जाता है, फिर तो उसकी हद पार हो जाती है। जरा देखिए कैसे वो अपने दोस्त के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही है और गुरु को चिढ़ मच रही है। भाई गुरु तो बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था लेकिन उसकी बर्दाश्त अब पार हो चुकी है। ऐसे में उसने आरोही के दोस्त को जोरदार तमाचा लगा दिया और तो और बाकी दोस्तों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बस फिर क्या, गुरु की ये हरकत देखकर आरोही को गुस्सा आ गया और वो अपने भाई पर बरस रही है।
4: तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की?
5: दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं दोस्त, चुंबक की तरह चिपक रहा था तुमसे, अरे नशे में चूर हो तुम, कैसे ना मारते, भाई है तुम्हारे, परिवार है तुम्हारे,
4: भाई हो तुम मेरे, मेरा परिवार, मेरे अपने, कुछ नहीं होते हो तुम, क्योंकि जो अपने होते हैं ना वो हर मुसीबत में साथ होते हैं, जरूरत पड़ने पे साथ खड़े होते हैं, पर मुझे जब भी जरूरत पड़ी कोई नहीं आया था मुझे बचाने के लिए, कोई नहीं। और आज जब मेरा पलड़ा भारी है तो तुम दोनों मेरे दरवाजे पर नाक रख रहे
5: हो, ऐसे में कुछ भी बक रही हो तुम।
4: हाँ मुंह में और रहूंगी, जो मन में आएगा वो करूंगी। तुम कौन थे हाँ मुझे रोकने या टोकने वाले?
5: तुम्हारा भाई।
4: भाई फिर वही बात, भाई हो तुम मेरे अपने। तोहफा दोगे मुझे? चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। जसीत ने सबर तक छोड़ रखा था।
1: ट्विंस का हिंट दे सकती हूँ मैं आप लोग को, वेल आप तो देख ही लेंगे वीडियो में। तो ये इसकी बहन है, उसकी तरह एकदम जिद्दी कहीं की, मैं बीच में फंस रही हूँ दोनों के। दोनों जुड़वा भाई बहन एग्जिस्ट के निकले यार। मैंने सोचा था कि थोड़ी तो शांत होगी, बट ये भी गुरु की तरह ही है, मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे हैं। हम बैठे हैं इसके घर के बाहर, मैं इसको मना रहा है कि मान के घर पर आ जाए, बट स्टिल नहीं मान रहे हैं।
3: अब रूहानी तो पूरी कोशिश करेगी कि आरोही अपने घर आ जाए और अपने मम्मी पापा और भाई का प्यार देखे, वो प्यार जिसे आरोही अनजान है। असल में पुष्पी ने उसे गुमराह कर रखा था। देखना होगा क्या आरोही घर आएगी

माहिर आज बड़े मूड में है और शहर का अंदाज भी अनोखा है। पूरी फैमिली एक साथ जश्न मना रही है। जी नहीं, ये कोई त्योहार का मौका नहीं बल्कि है सेलिब्रेशन का, क्योंकि कलर्स टीवी के शो शहर होने को है पूरे कर लिए हैं पूरे 200 एपिसोड्स। और इस मौके पर आज परिवार सज धज कर फोटोज खिंचा रहा है, साथ में पूरी यूनिट के साथ केक काट रहा है।

वैसे यहाँ पर माही जानी पार समतान का एक अनोखा अंदाज नजर आया। देखिए कितनी मस्ती के मूड में है, सबको केक खिला रहे हैं, बड़ी मस्ती और गपशप कर रहे हैं। भाई सीरियल जहाँ इतने दिन टिकते नहीं, वहाँ पर इस सीरियल ने तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच अपना मकाम हासिल किया है और इसलिए सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों पार्थ? वैसे पार्थ को यहाँ पर ज्वाइन किया भाविका शर्मा ने, जिन्होंने हाल ही में शहर बनकर सीरियल में एंट्री दी। आज भाविका ने एक नया लुक लिया, वह नाक की नत और ये अलग ड्रेस। भाई उन्होंने पार्थ के साथ फोटोज खिंचवाए और उसके बाद इन्हें ज्वाइन किया फूफी जान और सीरियल के बाकी कलाकारों ने। भाई सबने आके कैमरे से पोज किया, साथ में सीरियल के चार एक्टर्स ने भी और पूरे परिवार ने एक फैमिली पिक्चर खिंचवाई। भाई शहर और माहित की लव स्टोरी नई परवान चढ़ रही है और फैमिली ड्रामा भी आ रहा है, तो लगता है ये पूरी फैमिली मिलकर एक नई कहानी, एक नया ड्रामा लेकर आने वाली है। तो 200 एपिसोड के बाद देखना होगा कि कहानी में क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। तो देखते रहिए सास बहू और बेटियां।

0: आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
1: कहते हैं बिग बॉस सीजन 20 की। भाई कुछ कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ रहा है, सुनने में आ रहा है भाई सीजन में अरिश्मा खान नजर आएंगी, साथ ही नजर आ सकती हैं ईशा रिखी जो कि हैं बादशाह की सेकंड एक्स वाइफ। इसी के साथ मन्नत फेम आम्रपाली का भी नाम सामने आ रहा है बतौर कंटेस्टेंट, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

शौक है इशिता दत्ता के बर्थडे का। ऐसे में साथ साथ नजर आए इशिता दत्ता और वत्सल सेठ जो कर रहे हैं बर्थडे का सेलिब्रेशन। सलमान खान और नयनतारा की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है SVC 63 मॉन्स्टर, जिसकी कास्ट को ज्वाइन किया है रॉनित रॉय और सीमा बिस्वास ने।

काम करते नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, संदीप मोदी और करण जौहर, जो लेकर आ रहे हैं न्यू रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसकी शूटिंग 2027 में शुरू हो सकती है। एक्टर हर्षवर्धन राणे ने ये रिवील किया है कि वो जल्द ही दो फिल्मों में नजर आएंगे, जिसे दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम की कास्ट को ज्वाइन करने वाले हैं एक्टर विजय बदलानी, जो कहानी में एंट्री करेंगे और लाएंगे कई सारे ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में जल्द ही होगी जाने अनजाने हम मिले फेम एक्ट्रेस डॉली कौशिक की एंट्री, जो एक पॉजिटिव रोल में नजर आएंगी।

0: अमेजोन MX प्लेयर पर आएगा जल्द ही हार्ट बीट सीजन 2 और इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है अंकित सिवज और अदिति शर्मा ने।
1: सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: नेपाल में बाढ़ के बीच बाल बाल बचे हैदराबाद के 31 तीर्थयात्री, सोशल मीडिया पर वीडियो किया साझा, अब तिब्बत चीन के रास्ते भारत लौटने की तैयारी। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C17 ग्लोब मास्टर, नेपाल ने कहा शुक्रिया। युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संवाद, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा, साल 2036 ओलंपिक की तैयारी आज से शुरू करें। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को छात्रों ने बांधी राखी, पटना में भी फौजी भाइयों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर बांटी त्योहार की खुशी। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ वनडे और मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सहवाग द्रविड़ के बेटों को मिली जगह। स्पेन में मशहूर ला टोमेटना फूड फाइट फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, इस साल 22,000 से ज्यादा विदेशी मेहमानों के जश्न में शामिल होने की उम्मीद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
2: देशभर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां तेज, अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियों से सजे बाजार, बड़ी रौनक। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में देखने को मिली देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की बेहद खूबसूरत तस्वीर, छात्राओं ने जवानों की कलाई पे बांधी राखी। छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी भेंट किए, जवानों के माथे पे लगाया तिलक। दानापुर रेजिमेंट सेंटर के मौर्य पार्क में आयोजित किया गया है सुंदर कार्यक्रम, छात्राओं के हाथों रक्षा सूत्र बंधवाते हुए जवानों के चेहरे पर नजर आई खुशी और भावुकता। कार्यक्रम में सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजा के राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया पूरा माहौल, भारत माता के जयकारों से गूंज उठा पूरा कैंटोनमेंट परिसर। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखे रक्षाबंधन का त्योहार, स्कूली बच्चों ने BSF जवानों संग मनाया राखी का त्योहार। फिरोजपुर के स्कूली विद्यार्थियों ने जवानों के लिए बना दिया खास रक्षाबंधन का त्योहार, सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी गई और मिठाई खिला के उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। टेरी जिला कारागार में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, कैदियों को महिला उत्थान समिति की बहनों ने बांधी राखियां। बहनों ने राखी बांधकर कैदियों से सही मार्ग पर चलने, उज्जवल भविष्य की कामना की। कारागार में भंडारे का भी किया गया आयोजन। वाराणसी में रक्षाबंधन के मौके पर इस बार सोने और चांदी से बनी राखियों की है खास डिमांड, 400 से लेकर 11,000 रुपए तक की ये राखियां मार्केट में उपलब्ध हैं। राजधानी के बाजारों में रक्षाबंधन की दिख रही है रौनक, हर तरफ रंग बिरंगी राखियों की ढेरों वैरायटी उपलब्ध। राखी की दुकान पर महिलाओं की भीड़, रक्षाबंधन से पहले हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आई महिलाएं। अमृतसर के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही है बहनों की भीड़, अपने भाइयों की कलाई राखी से सजाने के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीद रही महिलाएं। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन रंगों की राखियां महिलाओं को कर रही हैं अपनी ओर आकर्षित, रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों में भी खुशी की लहर। रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं प्रयागराज के बाजार, कार्टून से लेकर डिजाइनर राखियों तक की राखियां मौजूद हैं, धार्मिक राखियों की भी है जबरदस्त डिमांड। अपने अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ धाम में पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक। स्वामी विश्वत्मानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंचे पवित्र जुलूस, हुआ भव्य स्वागत। विधि विधानों वैदिक मंत्रोच्चार के साथ छड़ी को स्वयंभू शिवलिंग पर किया गया स्थापित, पुलिस द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इस पवित्र यात्रा में हजारों की संख्या में देशभर से आए श्री भक्त हुए शामिल, भगवान भोले के जयकारों से गूंजा पूरा वातावरण। कल रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी, जहां अंतिम पूजा और अनुष्ठान संपन्न होंगे। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हिंडोला उत्सव का शानदार समापन, दिखा आस्था और परंपरा का अनोखा मेल। 100 साल पुराने 50 किलो चांदी के झूले में विराजते हैं भगवान, अलग अलग प्रकार के फलों से सजावट। 500 सालों से चली आ रही झूलनोत्सव की परंपरा, शहर में झूलनोत्सव को लेकर विशेष धार्मिक चहल पहल। रंग बिरंगी लाइटों से हुआ मंदिर का भव्य श्रृंगार, भजन कीर्तन का विशेष आयोजन। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मी नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में उमड़े भक्त, लाखों श्रद्धालुओं के भगवान के दर्शन। देशभर में बप्पा के आगमन को लेकर भी तैयारियां हुई तेज, कर्नाटक के तेनकाशी जिले में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय प्राकृतिक मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों का उपयोग कर रहे हैं कारीगर, ताकि विसर्जन के दौरान न फैले जल प्रदूषण। महीनों पहले से पारंपरिक कला के जरिए मनमोहक और सुंदर मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं स्थानीय कारीगर, बप्पा के हर आकार और स्वरूप की बना रहे हैं प्रतिमाएं। तमिलनाडु के वेल्लूर में भी बनाई जा रही है विघ्नहर्ता की रंग बिरंगी मूर्तियां, 14 सितंबर के गणेश उत्सव के लिए तैयारियां तेज। आकर्षक रंगों और बारीक नक्काशी से किया जा रहा है प्रतिमाओं का श्रृंगार, गणेश उत्सव से कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाता है मूर्ति निर्माण का कार्य। गणेश उत्सव को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अहम मीटिंग, सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों के कामकाज और तैयारियों को लेकर अहम बैठक। गणेश उत्सव के लिए मुंबई में बनाई जा रही है बप्पा की विशाल मूर्तियां, परेल इलाके में स्थित खास गणपति पंडालों के लिए विशाल मूर्ति बनाने का सबसे बड़े कारखाने। इस बार शिव जी के अवतार वाली मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड है, बप्पा के अलग अलग रूप स्वरूप हो रहे हैं तैयार। केरल के गुरुपुरम श्री महाविष्णु मंदिर को उपहार में मिला रोबोटिक हाथी पेटा इंडिया, और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भेंट। 11 फीट ऊंचा है और 800 किलोग्राम वजनी है गुरुपुरम अर्जुनन नाम का ये हाथी, मोटर की मदद से हिलाए जा सकते हैं इसके सर, पूंछ, आंख, मुंह और कान। कोटा में बड़केश्वर महादेव मंदिर में आस्था का मेला, भगवान शिव की पूजा के लिए उमड़े भक्तों की भीड़। सावन में भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते नजर आए, दिन भर पूजा अर्चना के साथ चलता रहता है भजन कीर्तन का दौर। हजारों साल पुराने बरगद के पेड़ के कारण बड़ा है बड़केश्वर महादेव मंदिर का नाम, स्थानीय लोगों के बीच उसका खास महत्व। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दिखा आस्था और परंपरा का अनूठा संगम, अवनि अवित्तम यज्ञोपवीत समारोह किया गया। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है ये पारंपरिक और पवित्र अनुष्ठान, इस शुभ अवसर पर पुरुष सदस्य पवित्र स्नान के बाद धारण करते हैं जनेऊ। कोटा का एक दंपति 116 सरकारी स्कूलों में 15,500 बच्चों को दे चुका है मुफ्त हेयर कट, सप्ताह में 4 दिन अलग अलग सरकारी स्कूलों में लगाते हैं अपना कैंप। 11 जुलाई 2024 से शुरू हुआ इस दंपति का यह अनोखा सफर, जरूरतमंद बच्चों को आत्मविश्वास के साथ स्वच्छता का संदेश देना है इसका मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित नन्हे लक्ष्य ने रच दिया इतिहास, आम की गुठलियों से लगाए कई पेड़। लक्ष्य ने 5 जून 2026 को मिशन 1008 आम के पेड़ की शुरुआत की, पेड़ लगाने के लिए 12 दिनों में जुटाई 1008 गुठलियां। लक्ष्य कहना है कि उनकी इस मुहिम का उद्देश्य कोई रिकॉर्ड बनाना या पुरस्कार हासिल करना नहीं है, बल्कि पर्यावरण बचाना है इसका मकसद। सिलीगुड़ी में न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन, आपराधिक न्याय व्यवस्था और 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। अलग अलग स्टॉल और प्रस्तुतियों के जरिए नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाने की कोशिश, युवाओं ने खासतौर पर दिखाई इसमें रुचि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन 1930 साइबर अवेयरनेस फिल्म का ट्रेलर किया लॉन्च, कई जानी मानी हस्तियां हुई इसमें शामिल। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये खास पहल। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सीजन 2025-2026 के अवार्ड समारोह किए आयोजित। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ हुए इसमें शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये

0: इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर, ये गंधपुरा पत्थर में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा? रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: नेपाल में बाढ़ के बीच बाल बाल बचे हैदराबाद के 31 तीर्थयात्री, सोशल मीडिया पर वीडियो किया साझा, अब तिब्बत चीन के रास्ते भारत लौटने की तैयारी। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर, नेपाल ने कहा शुक्रिया। युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संवाद, कहा जो खेलेगा वही खिलेगा, 2036 ओलंपिक की तैयारी आज से शुरू करें। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को छात्रों ने बांधी राखी, पटना में भी फौजी भाइयों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधकर बांटी त्योहार की खुशी। ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ वन डे और मल्टी डे मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सहवाग द्रविड़ के बेटों को मिली सजा। स्पेन में मशहूर ला टोमेटना फूड फाइट फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, इस साल 22,000 से ज्यादा विदेशी मेहमानों के जश्न में शामिल होने की उम्मीद।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए, हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। आज हम आपको बताएंगे कि भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, तब क्या करें जब आपका कोई भाई ना हो, तब आप किसे राखी बांध सकते हैं, और रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का भी साया है तो क्या इसका रक्षाबंधन पर भी कोई असर पड़ने वाला है, क्या इस बार भद्रा अपना असर दिखाएगी, ये सब कुछ विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं।

0: दुनिया का सबसे पावन त्यौहार जब भाई और बहन का दिखता है प्रेम और समर्पण, जहां विश्वास का रक्षा सूत्र बन जाता है जीवन भर का बंधन, एक ऐसा अटूट रक्षा कवच जब भाई हर संकट में बनता है अपनी प्यारी बहन की ढाल और बहन करती है अपने भाई की सदैव मंगल कामना। अद्भुत है ना रिश्तों की ऐसी पावन डोर, जिसकी महिमा धर्म ग्रंथ और पुराणों में भी गाई गई है। आज हम आपको सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला सबसे बड़े त्यौहार रक्षाबंधन की महिमा बताएंगे, साथ ही जानेंगे किस मुहूर्त में भाई की कलाई पर बांधा जाएगा रक्षा सूत्र। ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि रक्षाबंधन की तिथि पर ही चंद्र ग्रहण का भी साया है। साथ ही जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि इस साल सावन की पूर्णिमा पर भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं रहने वाला है। ये सारी प्रथाएं आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, इस पावन पर्व से कौन सी पौराणिक मान्यता जुड़ी है और इस दिन रंग बिरंगी राखी से जुड़े महाप्रयोग करने से कैसे आपका और आपके भैया का जीवन खुशहाल बनेगा, ये सब विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त।
1: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है, परंतु इस बार सुबह सुबह ही है, क्योंकि प्रतिपदा लगने के पश्चात रक्षाबंधन करना श्रेयस्कर नहीं माना जाता। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन।
0: रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:08 से आरंभ हो रही है। इसका समापन 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर होगा। 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक ही पूर्णिमा तिथि होगी। इसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। 28 अगस्त को सूर्योदय से लेकर 9:48 तक का समय रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम माना जा रहा है। ज्योतिषी बताते हैं कि राहु काल को छोड़कर पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है। राहु काल का समय सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22 तक है।
2: सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होगा। साथ ही राहु काल को छोड़कर शुभ योग में भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है।
1: सुंदर बात यह है कि भद्रा इस बार सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जा रही है, और हमारे यहाँ तिथियों का या त्योहार का वर्णन सूर्योदय के पश्चात ही गिनते हैं। तो भद्रा का आपको सुबह सुबह करने में कोई प्रकार से विचार नहीं करना, अपने भाइयों की शुभ मनाएं।
0: सनातन धर्म में शुभ मुहूर्त में ही नया कार्य करने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन पर भी अगर आप शुभ मुहूर्त और शुभ योग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे तो आपके भाई के जीवन से सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। आपने रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लिया, आपको भाई की कलाई पर राखी कब बांधनी है ये भी जान लिया। अब बताते हैं कि आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी कैसी है और कैसे मनाना है रक्षाबंधन का त्यौहार।
3: करना कैसे चाहिए, भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और भाई की आरती उतार करके उसको माला पहनाएं, फिर कुछ उसको मीठा खिलाएं, उसके बाद में उसके दाहिने हाथ के कलावे पर, दाहिने हाथ पर उसको कलावा या मोली या जो भी आप राखी लाई है, रक्षा सूत्र लाई है, उसको बांधना चाहिए। ये विधि है।
0: थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें, जिससे भाई की आरती करें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और आरती करें, फिर मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। उसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप अपने भाई को राखी बांधते समय कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करना भाई के जीवन में खुशहाली और सफलता का कारक होता है।
3: तेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम परवन्नामी रक्षे माचल माचला। इस प्रकार से अथवा कोई भी मांगलिक मंत्र बोल करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोल करके अगर मंत्र नहीं बोल सकते अपने भाई के कलावे जो है हाथ पर अपना रक्षा सूत्र बांधिए और इस प्रकार से यदि आप राखी बनाएंगे तो उसका आपको जड़ा अच्छा लाभ होगा, उसका फल मिलेगा।
0: मान्यता है कि रेशम का ये धागा सिर्फ एक रस्म भर नहीं बल्कि ये संबंधों में मधुरता और सलामती का रक्षा सूत्र है। परंपरा है कि अगर बहन भाई की कलाई में तीन गांठ बांधती है तो इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए अब आपको बताते हैं तीन गांठों का मतलब और तिलक लगाने की सही विधि। अनामिका उंगली से ललाट पर टीका लगाएं, फिर उसे अंगूठे से माथे के ऊपर तक कर दें। तिलक पर अक्षत लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करें। रक्षा सूत्र बांधते समय तीन गांठें लगाना शुभकारी होता है। पहली गांठ में बहन भाई की लंबी आयु मांगती है, दूसरी में बहन भाई से जीवन भर स्वयं की रक्षा का प्रण चाहती है, तीसरी गांठ में बहन भाई के जीवन में ताउम्र मधुरता की कामना करती है। रक्षाबंधन पर बाजार में तरह तरह की डिजाइनर राखियां मिलने लगी हैं। बहन अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी और धातुओं से बनी राखियां भी खरीद कर अपने भाई को बांधती हैं। कई बहनें अपने भाइयों को भगवान के स्वरूप वाली राखी भी बांधती हैं, जो कि सर्वोत्तम मानी गई है। लेकिन तब क्या करें जब उस राखी को कलाई से उतारना पड़े।
3: लेकिन यदि आप भगवान के स्वरूप वाली राखी लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उस रक्षा को जब आप खोल देते हैं कहीं भी यत्र यत्र स्थान पर रख देते हैं तो उससे बड़ा आपको दोष लगता है। अगर भगवान के स्वरूप राखी बांधे रक्षा सूत्र बांधे तो ये ध्यान रखें कि उसको कूड़े में न फेंके, उसको इधर उधर न रखें, उसको सही जगह पर रखें और सही जगह उसका या तो फिर जल प्रवाह कर दें तो उस राखी का आपको विशेष फल मिलेगा।
0: तो देखा आपने, रक्षाबंधन के विधान में भाई के जीवन के व्यवधान दूर करने की कामना छिपी है। आगे हम आपको रक्षाबंधन की तिथि से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं बताएंगे, साथ ही जानेंगे इस तिथि पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण का महत्व। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। रक्षाबंधन को लेकर हमारे देश में कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं हैं। कहते हैं कि राखी के इस पावन रक्षा सूत्र ने कई बार रिश्तों की मर्यादा रखी है। तो चलिए जानते हैं रक्षा सूत्र के मर्यादा की वो पावन कथाएं जो युगों युगों से हमारी आस्था बनकर सफर करती आ रही है, जिसने भाई बहन के रिश्तों को इतना प्रगाढ़ कर दिया कि वो एक वचन बन गया, एक कर्तव्य बन गया। रिश्तों की एक ऐसी अटूट डोर बन गई जो कभी भी नहीं टूट सकती।

0: एक ऐसी अद्भुत परंपरा जिसमें समाया है भाई बहन का प्यार, एक ऐसा प्यारा बंधन जिसका पालन अनादि काल से किया जा रहा है। रक्षाबंधन जिससे जुड़ी है मर्यादा, एक ऐसी पावन तिथि जो निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त करती है। अद्भुत है रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी मान्यताएं। रक्षाबंधन पर जहां बहनें अपने भाई के सुखी जीवन और लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन निभाते हैं। आपको बताते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार कितना मंगलकारी है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मान्यता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उसकी मंगल कामना की जाती है। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरम्भ करते हैं। इस दिन शिक्षा का आरम्भ करना भी अच्छा माना जाता है। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं, लेकिन जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है उसके अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे। तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था।
0: रक्षाबंधन से संबंधित इस तरह की अनेकों कथाएं कही जाती हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे और द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षा सूत्र की पहली कथा का संबंध भगवान श्री हरि और लक्ष्मी से बताया जाता है और इसके केंद्र में है राजावलि।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविका या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: माना जाता है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था और दानव विजय की ओर अग्रसर थे तो ये देखकर राजा इंद्र बेहद परेशान थे। दिन रात उन्हें परेशान देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न हो ईश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस तरह इंद्राणी ने पति को जीत दिलाने में मदद की। इस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और बाद में यही रक्षा सूत्र रक्षाबंधन हो गया। यह त्योहार तो भाई बहन को समर्पित माना जाता है, लेकिन तब क्या करें जब आपका कोई सगा भाई ना हो तो किसे भाई मानकर राखी बांधने की प्रथा शास्त्रों में बताई गई है ये भी जानिए।
1: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: माना जाता है कि ये बंधन तो विश्वास का है और जो आपकी रक्षा का दायित्व निभाता है वही आपका भाई हो सकता है। अगर आपका कोई भाई नहीं तो भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के अलावा आप किसे अपना भाई बना सकते हैं, ये जानिए।
1: किसी भी हम अपने भाई को, चाहे वो हमारा मानसिक भाई हो, शारीरिक हमारी माता का सहोदर नहीं है, तब भी जो हमें रक्षा करता है, और सबसे पहले हमारी धरती माता की रक्षा करने वाले हमारे वो भाई जो सीमाओं पर हमारे लिए गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, सबसे बड़े रक्षक हमारे वो, उनको भाई बनाया जा सकता है। लेकिन देवताओं में गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण को अपने भाई के स्वरूप में मानकर आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं।
0: तो देखा आपने कितना अद्भुत, मंगलकारी रिश्तों को अटूट बंधन में बांधने वाला त्योहार है रक्षाबंधन। पंचांग की गणना कहती है कि रक्षाबंधन की तिथि पर ही चंद्र ग्रहण का साया है। आगे ज्योतिष के नजरिए से आपको बताएंगे कि कैसा रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण।
2: ज्योतिष के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया तो नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण भी सावन की पूर्णिमा तिथि को ही पड़ रहा है। तो क्या है भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर मान्यताएं और इसका देश और दुनिया पर कैसा असर रहने वाला है, ये सब भी जान लेते हैं।
0: सावन की पूर्णिमा पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखाई देगा ये आंशिक चंद्र ग्रहण। नहीं मान्य होंगे सूतक के नियम। मंदिरों में देवगणों की होगी विधिवत आराधना। निष्कंटक मनाया जाएगा रक्षा बंधन का त्योहार। लेकिन चंद्र ग्रहण की घटना का होता है खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व। पहले आपको ये बताते हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना कितने बजे से आरंभ होगी। ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है। ये 28 अगस्त को सुबह 6:53 पर आरंभ होगा। इसका समापन पूर्ण रूप से दोपहर 12:31 पर होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ये उपछाया ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा।
3: चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा मनसो जातक कहा जाता है और भारत में विजिबल नहीं होने की वजह से इसका कोई खास इम्पैक्ट भी नहीं है। लेकिन क्योंकि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है और जब भी ग्रहण लगता है तो एक जनरल इम्पैक्ट लोगों को फील होता है, और खास करके जो शतभिषा नक्षत्र के लोग हैं और जो कुंभ राशि के लोग हैं उन पे इसका थोड़ा सा असर दिख सकता है, और साथ ही जिनकी कुंडली में ग्रहण योग की पत्रिका है उनको भी एक जनरल नेगेटिविटी या एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं।
0: माना जा रहा है कि ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। खगोल शास्त्री ये दावा कर रहे हैं कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा, लेकिन भारत में दर्शनीय नहीं होने के कारण किसी भी तरह के सूतक के पालन की आवश्यकता नहीं। इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करना होगा, ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं, ये उपछाया ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है। इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते। कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होता। अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। भोजन, विश्राम या पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। पौराणिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा जाता है। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। कहता है कि जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। भारत में इसी तिथि पर भाई और बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। ज्योतिष के जानकार दावा कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना से रक्षाबंधन के पर्व में किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहने वाला।
3: चंद्र ग्रहण की यदि हम बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण इस बार इंडिया में विजिबल नहीं है। इंडिया में विजिबल नहीं होने की वजह से उसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। तो चंद्र ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट राखी के पावन पर्व पर नहीं पड़ने वाला है। तो इस बार आप राखी जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं।
0: लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि घटना चाहे सूर्य ग्रहण की हो या चंद्र ग्रहण की, सदियों से चली आ रही शास्त्रीय मान्यताओं का हमें पालन करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि सावन की पूर्णिमा पर आप चंद्र ग्रहण से जुड़ी किन परंपराओं का पालन कर सकते हैं। ग्रहण काल में मंत्र जाप, स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान करें। ज्योतिष के जानकार इसे आंशिक या उपछाया चंद्र ग्रहण बता रहे हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण के बीच की भी एक स्थिति होती है, उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें सिर्फ पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है और इसका प्रभाव ये होता है कि चंद्रमा की सतह पर हल्का सा धुंधला और मटमैला सा नजर आता है। इसको हम आंशिक या उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए आपको चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण में अंतर बताते हैं। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का हिस्सा कट जाता है, चंद्रमा का कुछ भाग काला हो जाता है, जबकि उपछाया या आंशिक में चंद्रमा कटता नहीं, चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है, जबकि उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा वास्तविक छाया में प्रवेश नहीं करता। चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट और पूजा पाठ सब बंद कर दिए जाते हैं, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान सब सामान्य रहता है। इसमें मंदिर के कपाट भी खुले रहते हैं, साथ ही पूजा पाठ पर भी अंकुश नहीं होता। तो आप भी सावन की पूर्णिमा पर लगने वाले आंशिक चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना मानकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और अपने जीवन को अमित बंधन की डोर से बांध लें।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सितंबर की शुरुआत में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी भव्य रूप से मनाई जाती है, जिसको लेकर वहां पर तैयारी भी भव्य रूप से चल रही है।

0: जन्माष्टमी को लेकर देश भर में भव्य तैयारी चल रही है। 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर स्कॉन मंदिरों में भव्य आयोजन होता है। रोशनी से सराबोर ये दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित स्कॉन मंदिर है, जहाँ कृष्ण भक्ति की भव्य छटा देखने को मिलती है। इस मंदिर की सजावट बेहद आकर्षक लग रही है और जन्माष्टमी पर तो यहाँ की छटा देखने वाली होती है। देश विदेश से मंगाए गए फूलों से मंदिर को और आकर्षित तरीके से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर को लेकर इस मंदिर में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। एक तरफ रंग रोगन का काम चल रहा है तो दूसरी ओर टेंट भी लगाए जा रहे हैं।
1: हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह लगाया जा रहा है अलग अलग कपड़ों से। जो फोटो है वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड रहेगा, ये सब तमाम चीजें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
0: जन्माष्टमी को लेकर यहाँ करीब 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस मंदिर में वैसे तो हर दिन भक्त आते रहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचकर भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए उनकी सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से इसको लेकर विशेष व्यवस्था की जाती है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
3: भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये तस्वीरें देखकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। एक बहन ने अपने पैरों से भाई की कलाई पर राखी बांधी और फिर उसी अंदाज में मिठाई भी खिलाई। जिंदगी में चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, हौसला उससे कहीं बड़ा होना चाहिए। इस बिटिया का जज्बा हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। चेहरे पर मुस्कान और दिल में भाई के लिए बेशुमार प्यार, सच में इससे अनमोल राखी शायद ही कोई हो। इस बच्चे का टैलेंट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्लास्टिक के गुल्लक में फंसे सिक्कों को निकालने के लिए बच्चे ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। चुंबकीय तकनीक की मदद से सिक्के एक एक करके बाहर आ रहे हैं और अपनी इस कामयाबी पर बच्चा भी बेहद खुश नजर आ रहा है। छोटी सी उम्र में इतनी समझ और प्रयोग करने का जुनून देखकर इसे बचपन का विराट कोहली कहना गलत नहीं होगा। हुनर ऐसा ही रहा तो बड़ा होकर शानदार इंजीनियर बन सकता है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल में बाढ़ के बीच बाल बाल बच रहे हैदराबाद के 31 तीर्थ यात्री, सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, अब तिब्बत चीन के रास्ते भारत लौटने की तैयारी। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोबास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। गाजियाबाद जेल में रक्षाबंधन की तैयारी, कैदी कर रहे हैं राखियां, बना रहे राखियां। जेल प्रशासन की पहल से सुधार और बदलाव का संदेश। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ वनडे और मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सहवाग द्रविड़ के बेटों को मिली जगह। स्पेन में मशहूर लार्ज अमेरिकन फूड फाइट फेस्टिवल का शुभारंभ, इस साल 22,000 से ज्यादा विदेशी मेहमानों के जश्न में पहुंचने की उम्मीद।

0: रक्षाबंधन पर सबसे शुभ मुहूर्त आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ अरविंद शुक्ला जी और वान्यारा जी मौजूद हैं। तो चर्चा आज हम इसको लेकर करेंगे। दरअसल कल सावन का आखिरी दिन है, कल रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा, साथ ही साथ कल ही चंद्र ग्रहण भी है। तो राखी पर कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं, कब होगा पूर्णिमा व्रत का पारण और क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा है या नहीं है, कल कब लगेगा चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान आप क्या करें, क्या ग्रहण से पहले भारत में लगेगा कोई सूतक, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो कल है शुक्रवार का दिन, रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कल सुबह 5:57 से शुरू हो रहा है, जो कि 9:48 तक रहेगा। सुबह 9:48 तक अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो कल सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक होगा। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इस दिन मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा भी है इस दिन। आज कई लोगों ने पूर्णिमा का व्रत रखा है, हालांकि तिथि की शुरुआत आज हो चुकी है, कल इसका समापन होना है। कल जिसको हम कहें कि व्रत का पारण लोग कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा आज सुबह 9:08 से शुरू हो चुकी है, 28 तारीख यानी कि कल सुबह 9:48 तक पूर्णिमा रहेगी। साथ ही साथ आज रात 8:54 तक भद्रा भी है, लिहाजा कल भद्रा का प्रभाव रक्षाबंधन पर नहीं है, मुक्त है रक्षाबंधन भद्रा के प्रभाव से। आज रात 8:54 से भद्रा समाप्त हो जाएगी। कल सुबह आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण की शुरुआत कल सुबह 6:55 से हो जाएगी और फिर ग्रहण का समापन होगा दोपहर 12:30। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, ग्रहण का पीक जो होगा वो सुबह 9:43 के आसपास होगा। भारत में सूतक भी माने नहीं क्योंकि ग्रहण नहीं नजर आ रहा है, शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं रुकेंगे, ग्रहण का रक्षाबंधन पर कोई असर नहीं है, ऐसा ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं। ये भारत की बात हम कर रहे हैं। ग्रहण के दौरान नाम जपा जा सकता है, रक्षाबंधन पर ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये भारत की बात हो रही, लेकिन सनातन को मानने वाले क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर रक्षाबंधन का पर्व मनाएगा, तो वहां जहां पर ग्रहण होगा वहां क्या नियम फॉलो होंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे।
1: चंद्र ग्रहण की यदि हम बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण इस बार इंडिया में विजिबल नहीं है। इंडिया में विजिबल नहीं होने की वजह से उसका सूतक काल भी मान्य नहीं है, तो चंद्र ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट राखी के पावन पर्व पर नहीं पड़ने वाला है। तो इस बार आप राखी जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ अपने भाइयों के साथ अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं। साथ ही अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो राखी वाले दिन सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है, तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी।
0: चलिए अब आपको रक्षाबंधन की रौनक भी दिखा देते हैं, क्योंकि देश भर के बाजार इस वक्त रंग बिरंगी राखियों के साथ पटे हुए, रौनक है बाजारों में। वहीं बहनों की ओर से खास राखियां भी तैयार की जा रही हैं, तो कहीं देश के जवानों के लिए राखियां तैयार की गई। तकनीक और भावनाओं का एक अनोखा तालमेल इस बार देखने को मिल रहा है। वाराणसी में जवानों के लिए खास AI वाली राखी तैयार की गई है, जिसमें कई खूबियां भी हैं। पठानकोट में जवानों की कलाई पर बहनों ने स्नेह की डोर बांधी है, तो रायपुर में रक्षा बलों के लिए स्नेह की डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पूरी की तस्वीरें भी देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी राखी तैयार की गई है और ये एक तरीके से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के बाजारों में सोने और चांदी की राखियां लोगों को खूब भा रही हैं। यानी देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं, राखी के रंग हर जगह पर बिखरे हुए हैं। भाई बहन के इस पावन रिश्ते को मनाने की तैयारी हो रही है और बहनें सरहद पर तैनात वीर जवानों के लिए भी अपना प्यार और स्नेह लुटा रही हैं। तो शुभ मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन पर, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, आचार्य राजमिश्रा जी भी मौजूद है और जैसा मैंने पहले भी बताया, दो खास मेहमान अरविंद शुक्ला जी और वान्या जी दोनों मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत करूंगी पंडित दिवाकर त्रिपाठी आप ही से, इस बार किन मायनों में रक्षाबंधन बहुत खास है, शुभ मुहूर्त अगर हम देखें तो क्या बताएंगे, कौन सा शुभ मुहूर्त है इस पर?
2: जी नमस्कार और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी विद्वानों को नमस्कार। देखिए इस बार अच्छी बात यह है कि हर बार हम लोग भद्रा में फंस जाते थे कि उदयकालिक पूर्णिमा तिथि मिलती थी, उस दिन भद्रा की स्थिति बन जाती थी तो तनाव हो जाता था भद्रा के कारण कब बांधे कैसे बांधे। इस बार उदयकालिक पूर्णिमा तिथि में भद्रा नहीं होने के कारण अच्छा योग यही है कि हम निश्चिंत होकर के रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, इस साल बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विद्यमान है तो यह भी एक अच्छा वर्ष होगा क्योंकि 12 वर्षों के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं और बृहस्पति जब भी उच्च राशि में होंगे तो शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, तो इस साल यह स्थिति बनी हुई है तो बृहस्पति पर्याप्त है कि इस साल के शुभता को बढ़ाने के लिए। रही बात की जो ग्रहण की स्थिति बन रही है, चंद्र ग्रहण की स्थिति, तो भारत में दृश्य नहीं होने के कारण इसका धार्मिक दृष्टिकोण से भारत भूमि पर कोई महत्व नहीं है, इस कारण से रक्षाबंधन के मुहूर्त पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब बात आती है, एक बात में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति में रखूंगा कि काशी के पंचांगों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ आज 27 अगस्त को 8:31 सुबह से हो गया है और जो 28 तारीख को शुक्रवार को दिन में 9:18 तक रहेगा, तो इस कारण से जो पूर्णिमा तिथि का मान होगा काशी के निकट के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो पूर्णिमा तिथि रहेगी वो 9:18 तक रहेगी और सूर्योदय जो हो रहा है वो 5:42 के आसपास हो रहा है, तो वहां से लेकर के और 9:18 तक पूर्णिमा तिथि की स्थिति बनेगी, उसमें अगर रक्षाबंधन का कार्य करते हैं तो शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो जाएंगी, पूर्णिमा तिथि भी रहेगी और इसमें भद्रा की स्थिति भी नहीं रहेगी और चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो लगने वाला ही नहीं है, तो सबसे बढ़िया मुहूर्त जो काशी के निकट के लोग हैं, जैसे कुछ पंचांग जो दिल्ली के हैं या गुजरात क्षेत्र के हैं वहां पर ये 9 के निकट ले गए हैं लोग, 9:48 तक ले गए हैं, लेकिन काशी के पंचांग 9:18 तक ही बता रहे हैं पूर्णिमा तिथि का मान, तो यह समय बहुत अच्छा है। उदयकालिक स्थिति में राहु काल को छोड़ करके पूरा दिन रक्षाबंधन का काम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि का जो शुभ संयोग है जिसमें रक्षाबंधन के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है वह 9:18 तक है। अब ध्यान यही देना है कि अपने समय से सूर्योदय से लेकर के लगभग 3.5 घंटे का समय अगर ले लेते हैं, 4 घंटे का ले लेते हैं, तो वही समय इनके लिए बढ़िया मिलेगा, अच्छा मुहूर्त मिलेगा।
0: बिल्कुल, एक बार जरा राजमिश्रा जी आपसे भी जान लेते हैं इस बार ग्रह कितना फेवरेबल है, क्योंकि अगर हम मान कर चले, बहुत अच्छी शुरुआत की है दिवाकर जी ने कि हर बार भद्रा के फेर में फंस जाते हैं, कब रक्षाबंधन मनाएं कब नहीं मनाएं, कब राखी बांधे कब नहीं बांधे, इस बार गुड न्यूज ये है कि पूरा दिन ही शुभ माना जा रहा है, आपके हिसाब से एक्यूरेट सही समय क्या है, ग्रह दशा क्या कह रही है इस बार की?
3: तो बहुत धन्यवाद मनोज जी आपके चैनल का और फिर से एक बार आपका कि आप लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस कर रहे हैं और देश के जो भी प्रतिष्ठित पैनलिस्ट हैं उनको बुला करके उस विषय पर जानकारी दे रहे हैं, गुड न्यूज की इस चीज के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं कहूंगा इस बार ग्रह खुद भाई और बहनों पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रह खुद इस बार रक्षाबंधन मना रहे हैं और उसका कारण ये है कि मंगल को भाई या बहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भ्रातृ कारक किसी को कहा गया है वो मंगल का कहा गया है और सौभाग्यवश इस बार अगर देखा जाए तो मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं जो काल पुरुष की तीसरी राशि है, जो भाई बहनों की राशि मानी जाती है, वहां पर स्वयं मंगल का गोचर करना वास्तविकता में प्राकर्म को बढ़ाने वाला और दोनों के प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। तो इस बार अगर मैं ग्रह गोचर की परिस्थिति की बात करूं तो एक शानदार गोचर, उसके साथ बृहस्पति का हंस नामक योग में विराजमान होना, हमने कई बार इस विषय पर चर्चा किया है, और ये संयोग भी अपने आप में बहुत शानदार संयोग है जो एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन जो मनाया जाएगा वो सद्भिषा नक्षत्र के अंतर्गत बनाया जाएगा। सद्भिषा नक्षत्र के जो वास्तविक देवता हैं वो वरुण देवता हैं, जिनको जल का देवता कहा जाता है, और जो इमोशंस को प्रदान करने वाले हैं, जो इमोशनली एक दूसरे को अटैच करने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाने वाले हैं, तो इस बार श्रद्धा पूर्वक मनाया गया जो रक्षाबंधन है वो वास्तविकता में रिश्तों को सुंदरता प्रदान करने वाला होगा, जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा, और जो प्रार्थनाएं, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ हैं, इससे जो प्रार्थना की जाएगी वो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। मुझे, मैंने बहुत सारी पिछली जो राखियां थी करीब काफी दिन तक मैंने ढूंढ करके देखा कि ऐसा कभी समय आया जब मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत रक्षाबंधन के समय गोचर कर रहे हो, बृहस्पति कर्क राशि में रहे हो, इस प्रकार का कोई संयोग हुआ, तो मैंने करीब करीब पिछले 15-20 साल तक तो देखने का प्रयास किया, वहां इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मुझे नजर नहीं आया कि ऐसा कुछ आया हो। इस बार की राखी अपने आप में सुंदर है। मैं दिवाकर जी के साथ सहमत हूँ कि हर बार ऐसा होता था कि भद्रा है, इस समय पर नहीं बांधना है, इस समय पर नहीं बांधना है, लेकिन इस बार भद्रा की परिस्थिति नहीं है, इस बार भद्रा से दूर है रक्षाबंधन, इसलिए वो सुंदर है। हाँ, पंचांग को लेकर के जो विषय दिवाकर जी ने कहा है, दैट इज करेक्ट, कि जो कुछ पंचांग है उसके अंतर्गत 9:48 तक पूर्णिमा तिथि को दिखाया गया है, बट क्योंकि शास्त्रोक्त नियम है कि 3 घड़ी से ऊपर कोई तिथि जाती है तो इस परिस्थिति में वो पूरा दिन मानी जाएगी, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पूरा दिन रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया जा सकता है। 9:49 से या 9 बजे उससे पहले अगर हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा, 7:30 से लेकर के 9:49 के बीच में हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, और अगर नहीं भी हो पाता, जैसा कि हमारी पुरानी परंपरा रही है कि हम लोग करीब 10 दिन तक रक्षाबंधन मनाया जाता था, तो उस समय पर भगवान को राखी इत्यादि अर्पण करके और बाद में भी यदि बहने अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं तो ऐसे परिस्थिति में परमात्मा का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा और वो परिस्थितियां बेहतर होंगी। नवजोत जी, मैं एक चीज जानता हूँ, भगवान का स्मरण करके यदि किसी समय पर कार्य किया जाए तो वो निश्चित रूप से उस समय सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर वो बड़ी सुंदर चौपाई आती है, जब लिखा है कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि शकल भये अनुकूल और चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। जब एक बहन श्रद्धा पूर्वक अपने भाई के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर ले तो बाकी ग्रह अपना आशीर्वाद देने अपने आप ही आ जाते हैं, और इस बार तो वो परिस्थिति है ही। और बार बार मैं दोबारा उसी विषय को कहूं कि जीएनटी लगाए रहिए तो पॉजिटिव वाइब्स जो है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपके घर में आती रहेगी
0: जी।
3: और ऐसे समय में रक्षाबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा जी।
0: बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। वाना जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपके हिसाब से शुभ समय कौन सा है? और यहीं से आगे चर्चा को बढ़ाते हैं थोड़ा, क्योंकि दिवाकर जी और राज जी दोनों बता ही चुके हैं शुभ घड़ियां, शुभ समय के बारे में। इसी के साथ साथ ग्रहण भले ही भारत में नहीं है, लेकिन आप ही लोग हमेशा कहते हैं कि चाहे वो सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, असर पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं रहता है, थोड़ा या बहुत ज्यादा। भारत में सूतक माने नहीं है, ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, हम इसके प्रभाव से भी निकल आए हैं, हम भद्रा के साय से भी पूरी तरह से निकल आए हैं। गुड न्यूज इस बार है, पूरा दिन बहुत अच्छा है राखी बांधने के लिए। लेकिन बावजूद इसके, वो लोग, वो जगह जहां पर ग्रहण का असर होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन को मानते हैं, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मानते हैं, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में इस पर्व को मनाया जाता है, तमाम धर्मों के लोग इसको मनाते ही हैं। वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से, कौन सी प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं?
4: सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो इस बार जो मेरे दोनों रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने ऑलरेडी जो है मुहूर्त बता दिया है, मेरे हिसाब से ये जो मुहूर्त है जो सबसे बेस्ट है वो आपका जो है 5:57 से लेकर 9:48, 5:57 से लेकर 9:48 तक का जो समय है वो आपका सबसे बेस्ट ऑस्पिशियस मुहूर्त है, क्योंकि ये भद्रा रहित है। यहाँ पर जो है पूर्णिमा तिथि जो है वो भी एंड हो जाएगी, क्योंकि वो मोस्ट ऑस्पिशियस, जब भी कोई इवेंट होता है, जब हम उसको उसके ऑस्पिशियस टाइम में करते हैं, उसके ऑस्पिशियस मुहूर्त में करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो कई गुना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सब लोग, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप इस मुहूर्त को फॉलो करें, अदरवाइज उदया तिथि से आप पूरा दिन जो है कभी भी इस राखी को मना सकते हैं विद वेरी प्योर इंटेंशंस। अब बात करते हैं, हम ये नहीं भूल सकते कि हम गुड न्यूज़ टुडे पर है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भारत में जो है ग्रहण का कोई भी असर नहीं है, कोई भी सूतक पातक जो है वो भारत में माने नहीं है। लेकिन जो लोग भी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हमें देश विदेश से देख रहे हैं, हमें पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं, अगर आपकी कंट्री में जो है अगर ग्रहण पड़ रहा है और उसका सूतक जो है वो माने है, या फिर अदरवाइज फॉर इंडियंस एज वेल, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है नीच के हैं, राहु केतु की युति में है, किसी भी एक्स वाई जी रीजन से आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, शनि के साथ कंजंक्शन में है, तो आप लोगों को अगर उस टाइम पर लगता है थोड़ा सा जो चंद्र ग्रहण का हमारा समय है, अगर हम इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये 6:53 AM से लेकर 12:31 PM तक रहेगा। कल के दिन मैं फिर से बता देती हूँ 6:53 से लेकर 12:31 तक। तो इस टाइम पर अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, तो जो लोग भी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप उस टाइम पर अपने पितरों को याद कर सकते हैं, आप उस टाइम पर अपनी कुल देवी को याद कर सकते हैं, आप उस टाइम पर अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप सिर्फ उस चैंटिंग को, उस वाइब्रेशन को आप फील भी कर सकते हैं, आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। बट याद रखें, जो लोग भी ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ मानसिक जाप करना है, क्योंकि ग्रहण में ईश्वर जो होते हैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कष्ट में होते हैं, बहुत ही ज्यादा पीड़ा में होते हैं। इस टाइम पर आप अगर अपनी कोई भी मदरली फिगर या मदर से या कोई भी फेमिनिन एनर्जी से जिससे आप कनेक्ट करते हैं, आपको जो है उनसे अपना संतुलन, अपना इक्विलिब्रियम, अपना बैलेंस जो है वो उस टाइम पर आपको जो है बना के रखना है। और इसके अलावा जो है आप अपने इस बैलेंस को मेंटेन करके रखिए, आंखें बंद कीजिए और इस टाइम पर जो आपकी लाइफ की चीजें हैं जो अब आपको सर्व नहीं करती हैं उनको अपने जीवन से निकालिए। ग्रहण का मतलब है अच्छी चीजों की एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव चीजों का अपनी लाइफ में रिलीज। तो इस टाइम पर एक पेपर लीजिए, उस पर एक पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए कि आप अपने जीवन में इस टाइम पर क्या चीज, कौन सा नेगेटिव इमोशन, कौन सा अनस्टक पैटर्न या कोई भी एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आपके पूर्वजों से चला रहा है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपको कष्ट दे रहा है, जो आपको आपके जीवन में पीड़ा दे रहा है, और उसको आप इस ग्रहण के टाइम पर हमेशा के लिए अपने जीवन से, अपनी लाइफ से इस पैटर्न को आप रिलीज कर दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का भी आप इस टाइम पर जाप कर सकते हैं, आप इस टाइम पर ओम चंद्रमसे नमः का जाप भी कर सकते हैं। इस टाइम पर आप आंखें बंद करके चंद्रदेव को विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने, और आप चंद्रदेव को इस टाइम पर जो है नमन कर सकते हैं। अगर आपका मन, अगर आपको इस टाइम पर थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी फील हो रही है, तो आप इस टाइम पर थोड़ा सा आप लेवेंडर ऑयल जो है वो भी अपने माथे पर लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का आप जो है इस समय पर जाप कर सकते हैं, आप इस टाइम पर ओम चैंटिंग जो है कर सकते हैं। और आप लोगों के अगर आपकी कंट्री में ग्रहण अगर विजिबल है तो आप इस टाइम पर अगर अपने घर से बाहर ना निकले तो बहुत अच्छा है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आप अपने वूम पर जो है आप सफेद चंदन जो है वो लगा सकती हैं, माथे पर आप सफेद चंदन लगा सकती हैं, और कोई भी पॉइंटेड चीज को इस टाइम पर आप कोई कटिंग या कोई भी चॉपिंग जो है इस तरह की चीजों को अवॉइड करें, और थोड़ा सा डार्कनेस में जाना अवॉइड करें, कोई भी डार्क एनर्जी जो है आप जो है अवॉइड करें। और प्रेग्नेंट लेडीज को मैं यही सलाह दूंगी कि आप अगर अपनी मदर या मदर इन लॉ या कोई भी फेमिनिन एनर्जी के इस टाइम पर अगर आप और में रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा।
5: बिल्कुल अरुण शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। 6:55 से ग्रहण की शुरुआत हो रही है और दोपहर 12:30 तक ये ग्रहण रहेगा। भारत में क्योंकि सूतक माननीय, तो क्या तमाम शुभ कार्य भारत में किए जा सकते हैं?
6: जी बिल्कुल। देखिए, मैं दो शब्दों में ग्रहण का क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में यदि किसी की जो है तो उत्पत्ति हुई है, कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो वह जो सूतक है पूरे गांव को नहीं लगेगा, सिर्फ उस घर को लगेगा, उस परिवार को लगेगा। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण जहां पड़ रहा है वहां पे इसका प्रभाव रहेगा और वहां पे ये ग्रहण जो है मान्य होगा। भारत देश में किसी भी प्रकार से चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। जिस वक्त ग्रहण पड़ेगा उस वक्त ऑलरेडी जो है रात्रिकालीन समय होगा, तो इसलिए भारत देश में इसका कोई प्रभाव है ही नहीं, और ये होता तो उसका मान्य होता। अब बात रही राखी की, तो राखी के विषय में देखिए, इस बार सबसे जो विशिष्ट बात है, सभी विद्वानों ने बताया कि भद्रा आदि नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपको ऐसी परेशानी भी नहीं जानी है। पूरे दिन बढ़िया मुहूर्त है और उत्तम मुहूर्त जो बताया गया है कि सूर्योदय के बाद से लेकर 9:48 तक आप राखी बांध सकते हैं। विशेष इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि राखी जो आप बांधते हो, वो जो कलावा बांधते हो रक्षा सूत, उसका क्या महत्व है, वो कैसा होना चाहिए? आप जो मार्केट से कलावा लाते हैं और राखी के रूप में उसको बांधते हैं, ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन वो कलावा उस योग्य नहीं है जो आपकी भावनाएं के लिए विशेष योग्य कलावा चाहिए, विशेष उसमें सामग्री चाहिए। तो ये मैं बताता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा और जो भी इसको देख रहे हैं वो कल तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। सरसों के 5-7 दाने ले लें,

0: लीजिए और फिर आपको यदि बांधना है तो राखी के धागे में लपेट के बांध लीजिए। इससे लाभ क्या होगा, जो आप सरसों बांधेंगे तो सरसों से शत्रु का नाश होता है, रोग व्याधि बाधा आपके जीवन से नष्ट होंगी। प्रायः हवन में या पूजन में सरसों का प्रयोग होता है, दिग्दक्षिण आदि करते हैं। दुर्वा का मतलब होता है कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखा परुकस्परी एवानो दुर्वे प्रतानुशासन सतेनचा। दुर्वा से जो है वंश वृद्धि होती है, जैसे एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, और जैसी दुर्वा हरी होती है उसी प्रकार आप जो राखी बांध रहे हैं जिसको भी, उसका जीवन हरा भरा रहे। यदि बहन भाई को बांध रही है या पंडित जी किसी को बांध रहे हैं या कोई भी किसी को बांध रहे हैं तो ये है। इसके बाद जो आपका केसर है, केसर आपको समृद्धि दिलाता है, केसर आपको राजसी जीवन देता है। उसके साथ साथ जो हल्दी है, हल्दी आपकी एंटीबायोटिक है और रोग व्याधि बाधाओं को नष्ट करती है। अक्षत का मतलब है, अक्षत का मतलब होता है अक्षय पुण्य को देने वाला, जो इस कार्य को अक्षय कर दे। अर्थात जो भाई के कलाई में बहन जब राखी बांधती है तो बहन जो आशीष देगी वह आशीष अक्षय होगा। तो हम सभी जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राखी का बांधना। और राखी का बांधना इंपॉर्टेंट आज से नहीं है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। बलि को जो है माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, द्रौपदी ने जो है भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, और इंद्र को जो है बचाने के लिए जब देवासुर संग्राम में जो है युद्ध हो रहा था तो इंद्राणी सची ने विजय के लिए इंद्र को राखी बांधी थी। तो कहने का तात्पर्य कि ये आदिकाल से चला आ रहा है पर्व, लेकिन इसका जो मेन सामग्री और विधान है वो ये है जो मैंने बताया है। और इसको आप सहज तरीके से बना करके और उसी राखी के धागे से बांधना चाहो तो यह कार्य जो है अति उत्तम होगा। थोड़ा सा ये और कर लीजिएगा कि इसको गजानन गणेश या भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव के समक्ष रख करके और इसको जो है प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, जिस कामना जिस भाव से मैंने यह सामग्री डाल के तैयार की है उसका प्रतिफल संपूर्ण रूप से जो है मेरे भाई को प्राप्त हो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया कि कैसे आप राखी बांध सकते हैं। अब दिवाकर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, कहने को तो तमाम बातें होती हैं कि सूतक नहीं लग रहा है, ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कुछ ना कुछ वहम रहता है। चाहते हैं लोग कि हम फिर भी कोई उपाय कर लें, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा पर्व है, तो किसी भी तरह का कोई खलल ना पड़े। क्या बताएंगे आप, क्या सलाह देंगे लोगों को?
2: देखिए, जहां पर ग्रहण दृश्य होता है प्रभाव वहां पर ज्यादा पड़ता है, और धार्मिक दृष्टिकोण से इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं है भारत भूमि पर, इस कारण से डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ग्रहों का परिवर्तन है, चंद्रमा के साथ राहु का संयोजन बनेगा, सूर्य का केतु के साथ होगा, तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रही प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ना है। तो सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन कोशिश करें लोग कि यात्रा ना करें, ऐसी यात्रा अगर जरूरत भी पड़े तो सुरक्षित यात्रा करें, स्पीड में बहुत स्पीड में ना जाएं, बहुत तीव्रता न करें, किसी भी निर्णय में तीव्रता न करें, स्थिरता से अगर काम करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। दूसरी बात कि जो ये ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वह भारत भूमि से बहुत दूर, जैसे अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रभाव होगा। जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं वहां पर प्रभाव जरूर उत्पन्न होगा। तो भारत भूमि पर डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय अगर देश, भारत में अगर देखते हैं इस ग्रहण का ज्योतिष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर अगर हम प्रभाव डालते हैं, जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओमान हो गया, बोलिविया हो गई, यहाँ पर भूस्खलन या भूकंप की स्थिति में वृद्धि हो सकती है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से, मतलब रक्षाबंधन के त्योहार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसमें निश्चिंत रहें सभी लोग। और एक उपाय जरूर करें कि चंद्रमा और सूर्य का अगर संभव हो सके तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंद्रमा और सूर्य के मंत्रों का जप कर लें, राहु का दान कर लें, अगर संभव हो सके तो राहु के मंत्रों का जप कर लें, क्योंकि राहु और केतु के अधीन सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं। तो अगर हम राहु और केतु को का दान कर दें या उनके मंत्रों का जप कर लें तो चंद्रमा पर उनका नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, सूर्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा, तो किसी तरह का कोई नुकसान होने की स्थिति व्यक्तिगत रूप से नहीं बनने वाली है किसी व्यक्ति पर। इस दिन एक उपाय मैं जरूर बताऊंगा, जरूर करना।

0: चाहिए भाई बहनों को, और यह कार्य प्रत्येक वर्ष करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि राज मिश्रा जी ने बताया बड़ी अच्छी बात कि मिथुन राशि में, बुध की राशि में मंगल है, मंगल भाई बहनों के कारक ग्रह है, बुध जो है प्रकृति का कारक ग्रह है, बुध की राशि है प्रकृति के कारक के ग्रह की राशि है, तो इस दिन प्रकृति के संरक्षण के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो प्रत्येक भाई बहन को इस दिन पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम और नीम में से कोई ना कोई वृक्ष लगाना चाहिए और उसको बड़ा होने देना चाहिए। बहन अगर भाई के घर जाती है तो वहां पर लगाएं, भाई अगर बहन के घर आते हैं तो वहां पर वो पेड़ लगाएं और दोनों जहां जहां पेड़ लगे उसका ख्याल रखें, उसको बड़ा करें। एक तो याद रहेगा कि इस रक्षाबंधन पर हमने कार्य किया था और इतना बड़ा ये वृक्ष हो गया, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा होगी तो बुध ग्रह का सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और मंगल का भी सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। तो इस दिन अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर रक्षाबंधन अति शुभ कारक होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, रक्षाबंधन पर सबसे शुभ मुहूर्त के इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: तो रक्षाबंधन पर सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व कल मनाया जाएगा और देश में किस तरीके से रौनक है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज भी हम आपको दे रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि पहली बात, रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है, यानी पूरा दिन आपके लिए शुभ मुहूर्त के तौर पर है, आप कभी भी बांध सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें जो शुभ समय है वो हमारे साथ जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य वो भी बता रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि कल ग्रहण है, लेकिन ग्रहण का असर भी भारत पर नहीं होने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बिल्कुल ग्रहण के साये से भी परे है, यानी इस बार का रक्षाबंधन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी गुड न्यूज लेकर आ रहा है। राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सबने ग्रहण पर अपनी अपनी बातें कही हैं, आपकी एक्सपर्टीज भी इस पर हैं। एक तो चाहूंगी इसी पर आप अपनी राय दीजिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का असर कितने दिन तक रहता है?
2: देखिए, दो तीन नियम है नवजोत जी, जैसा कि ये नियम है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को लेकर के। सूर्य ग्रहण का नियम है कि यदि सूर्य उदय से लेकर के 4 घंटे तक ग्रहण घटित होता है तो उसका जो प्रभाव रहता है स्पेशली वो 4 महीने, पहले महीने से लेकर के 4 महीने तक। अगर 4 घंटे बाद होता है, मध्यम समय में होता है, तो 4 से लेकर 5वें से लेकर 8वें महीने तक, और दिन के अंतिम प्रहर में होने पर 8वें से 12वें महीने तक। उस प्रकार चंद्र ग्रहण का नियम है कि यदि चंद्र ग्रहण अगर रात्रि के पहले प्रहर में यदि चंद्र ग्रहण घटित हो जाए तो 10 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट जिस कंट्री पर घटित हुआ है, जिस राशि पर घटित हुआ है, वहां पर पड़ जाता है। अगर दूसरे उसमें घटित हुआ है, यानी 4 घंटे रात्रि व्यतीत होने के बाद चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 10 से 20 दिन, और अगर अंतिम प्रहर में घटित हो रहा है तो 20 से 30 दिन, यानी चंद्र ग्रहण का बुरा या अच्छा जो भी प्रभाव है वो 1 महीने के अंतर्गत नजर आता है। सूर्य ग्रहण का जो भी अच्छा बुरा प्रभाव है वो 1 साल में नजर आता है। डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के अंतर्गत जो ग्रहण घटित हो रहा है, वहां की टाइमिंग क्या है, और वहां के व्यक्तियों के अनुसार ही उस ग्रहण का इंपैक्ट पड़ता है, ये देखा गया है। इसमें कोई तो राय नहीं, क्योंकि ये भारत में ये ग्रहण नहीं घटित हो रहा है, तो भारत में किसी प्रकार का कोई स्पिरिचुअल अगर देखा जाए तो उसको कोई रिलीजियस जो नियम है उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, मैं वान्या जी की उस बात से सहमत हूं कि इस समय पर मंत्र इत्याग चैंट करना, परमात्मा का ध्यान करना इंपॉर्टेंट होगा। ग्रहण के लिए नियम है हर कंट्री में, ये भी नहीं कि ग्रहण एक ही जैसा प्रभाव हर एक कंट्री के अंतर्गत देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रहण का नियम है कि जिस कंट्री में घटित हो रहा है उस कंट्री के स्पेशली किस हाउस के अंदर घटित हो रहा है उसके अंतर्गत ग्रहण का इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी कंट्री के 4th हाउस के अंतर्गत ग्रहण घटित हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रहण का इंपैक्ट उस कंट्री के पब्लिक को उकसाएगा, उस कंट्री के अंतर्गत भूकंप इत्यादि आएगा, और उस ग्रहण कंट्री की जो अपोजिशन पार्टी होगी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसा कि यह ग्रहण कुंभ राशि के अंतर्गत घटित हो रहा है और इस बार जो जगत लग्न बनी है वो वृष राशि की बनी है, और वृष राशि के अकॉर्डिंग जो ग्रहण घटित हो रहा है वो 10th हाउस के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। तो स्पेशली जिस भी कंट्री के 10th हाउस, भारत में नहीं हो रहा ये सबसे अच्छी बात है, बिकॉज भारत के चार्ट के अंतर्गत 10th हाउस के अंतर्गत कुंभ राशि है। अगर जिस भी कंट्री के अंदर यह ग्रहण घटित होगा, अगर वहां 10th हाउस के अंतर्गत यह ग्रहण घटित हो, 10th हाउस में कुंभ राशि होगी, तो ऐसे परिस्थिति में वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो डिफिकल्टीज लेकर के आएगी, जो रूलिंग पार्टी स्पेशली होगी उनके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स लेकर के वहां राजनीति के लिए आती है। तो 1 महीने में रिजल्ट आता है नवजोत जी, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसके किस हाउस के अंदर वो घटित हो रहा है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री के किस हाउस में घटित हो रहा है उसके अनुसार इंपैक्ट पड़ता है जी। एक और चीज शायद हमारे साथ शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी शायद सुबह कहना चाह रहे थे बट वो रात कह गए थे। भारत में जब ये ग्रहण घटित हो रहा होगा उस टाइम सुबह का समय होगा, पंचांगों में 8:22 का 8:04 का प्रारंभिक समय है और 11:22 तक है, बट हो सकता है कि कहीं कुछ चेंज हो, बट पंचांग में सुबह 8:04 का समय दिया हुआ है और 11:22 तक है। शुक्ला जी सुबह कहना चाह रहे थे,
1: नहीं वो मेरे ख्याल से आप रिस्पेक्टिव कंट्री की बात कर रहे थे, जिस देश में हो रहा है वहाँ का कुछ कंफ्यूजन है। चलिए वाने जी,
3: जिस देश में हो रहा है मैंने वहाँ की बात बोली,
1: उस देश की बात कर रहे थे कि वहाँ पर उस समय ग्रहण का असर होगा, वहाँ रात होगी। बिल्कुल वाने जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्या विधान है रक्षाबंधन का?
4: जी, रक्षाबंधन एक बहुत ही ऑस्पिशियस पर्व है जिसको अगर हम रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अगर मनाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठकर जो है स्नान कीजिए, कुछ अच्छे से ब्राइट कलर्स पहनिए और कोशिश कीजिए आपके कलर्स में, अगर आपका येलो कलर होता है, क्योंकि येलो जो होता है बहुत ज़्यादा शुभ शगुन का कलर होता है और इस टाइम पर गुरुदेव बृहस्पति जो है वो भी अपनी उच्चस्थ राशि में है। इस दिन जो है क्योंकि बहुत अच्छे योग संयोग बन रहे हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य अपनी राशि में है और जो है हंस महापुरुष बन रहा है, तो आप जो है जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, अपने रक्षाबंधन की थाली को सजाइए। अपने रक्षाबंधन की थाली को बहुत ही ब्यूटीफुली आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, तांबे की थाली हो सकती है, पीतल की, कांसे की, चांदी की, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप कुछ वहम मत कीजिए। उसमें जो है उस थाली में थोड़े से आप फ्रेश फ्लावर्स यानी कि फ्रेश फूल जो है आप वो तोड़ेंगे और उस थाली में रखेंगे। उसके बाद उसमें जो है रोली आप रखेंगे, कुमकुम, उसके बाद अक्षत रखेंगे। याद रखें जो अक्षत आप रख रहे हैं वो कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए क्योंकि वो हमारी लाइफ में सौभाग्यता का प्रतीक होते हैं। उसके बाद जो है आप एक जटा वाला नारियल रख सकते हैं, आप एक कलश रख सकते हैं जल से भरा, नारियल को उसके ऊपर भी रख सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आप जो है मिठाई रख सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और उस थाली में आप एक दिया भी जला सकते हैं। उस थाली में आप कुछ कैश जो है वो जरूर रखें। मैं यहाँ पर देखिए आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल उसका ट्रेंड है, लेकिन लक्ष्मी जब हाथ में हमारे हाथों में आती है तो वो हमें उसकी एनर्जी फील होती है और वो बहुत ब्लेस्ड एनर्जी होती है। तो आप जो है उस थाली में कुछ पैसे जो है वो आप जरूर रखिए और इसके अलावा जो है आप उसमें धूप अगरबत्ती वो आपकी अपनी ऑप्शनल चॉइस है, आप साइड में जो है रख सकते हैं। एक हैंकी जरूर रखिए जिससे जो है आप अपने भाई का सर जो है ढकेंगी और आप भी कोशिश कीजिए कि आपने जो भी दुपट्टा पहना हुआ है अगर आप उसे अपना सिर कवर करते हैं उस टाइम पर तो आप वो करेंगे। उसके बाद वो थाली जो है जब आप अपने ब्रदर की जो फेस की डायरेक्शन होनी चाहिए आपके भाइयों की, तो वो ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए या फिर वो नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो जोन्स होते हैं हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सौभाग्य, शुभता लाते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं। तो आप जब राखी की थाली के बाद जो है आप राखी जब भाई को बांधेंगे वो जो कलाई आपके राइट हैंड पे, क्योंकि राइट हमारा वर्किंग हैंड होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन से इसका कनेक्शन होता है, तो राइट कलाई पर जो है आपने वो राखी बांधनी है। और जो आरती आप करेंगे, जो आरती की पूजा की थाली है वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, जैसे ये मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जहां पर मैं बैठी हूं, तो ऐसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करेंगे। उसके बाद जो अक्षत है वो भी आप अपने भाई के सिर पर डाल सकते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद जो है आप अपने भाई को दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप जो भी ब्लेसिंग देंगे वो आपके भाई को लगेगी और जो उसके बाद जो है भाइयों को बहनों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी का रूप होता है। अगर छोटी बहन है तो भी लेना चाहिए, मैं कहती हूं, क्योंकि हर कन्या में भी एक लक्ष्मी का रूप होता है, बड़ी बहन है तो लेना ही चाहिए। और आपके अपने भाइयों को बांधने से पहले अपने इष्ट देव को और जो भी देवता लोग हैं जिनको आप अपना भाई मानते हैं आप उनको भी ये राखी बांधिए। और कहीं ना कुछ फैमिलीज में, कुछ कल्चर्स में भाभियों को भी राखी बांधने का एक रिचुअल है, तो आप जो है उसको वहां भी आप जो है अपनी भाभियों को, अपनी बहनों को राखी बांध सकते हैं। और जिन लोगों का भाई नहीं है वो अपने ईश्वर को भी राखी बांध सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को भी, अपनी बहनों को भी, क्योंकि रक्षा का सूत्र है। वो लोग जो भी हमारे जीवन में हमारी रक्षा करते हैं, इनफैक्ट और भी कोई ऐसे लोग जो आपको लगता है आपकी रक्षा करते हैं आप उनको भी राखी बांध सकते हैं, आप पीपल देव को भी एक राखी बांध सकते हैं। और जो भी ओल्ड ट्रीज होते हैं, जो भी जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उनको राखी बांध के भी आप उनसे अपनी विश जो है अपनी लाइफ में जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उनसे भी वो राखी बांध के आप रक्षा का वादा जो है उनसे ले सकते हैं। और दुआओं में अपने भाई की लंबी उम्र की आप कामना करें। करें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और भाई भी ब्लेसिंग्स दें, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैश एक्सचेंज भी आप जरूर करें ताकि एक दूसरे के लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आए।
1: शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, आपने बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से बताया है कि क्या इसकी परंपरा रही है रक्षाबंधन की, लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल और भी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है आजकल कि बहन भाई आमने सामने हो जब रक्षाबंधन हो रहा हो, राखी बहन स्वयं जाकर बांधे, कई बार ऐसा होता है कि दूर होती है और आजकल तो पोस्टल राखियां भी बहुत चलती हैं, अलग अलग तरीके से लोग भेज देते हैं राखियां, तो अगर भाई बहन दोनों दूर हैं तो ऐसे समय में किस तरीके से कौन सा नियम है जिसका पालन करना जरूरी हो जाता है?
3: देखिए ऐसा है कि राखी बहन मान लीजिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, राखी तो उसकी पहुंच सकती है आज की तारीख में जो है भाई जो है पोस्ट द्वारा या किसी भी तरह से आप राखी पहुंचा सकती हैं, नहीं भी मान लीजिए आप राखी पहुंचा पाई हैं तो भाई को आप कहें कि राखी लें और राखी लेकर के वो भगवान जो है शिव जी को अर्पित करके और फिर किसी भी कन्या से किसी भी जो है वहाँ ऐसे पूज्य व्यक्ति से या किसी भी ब्राह्मण से आप राखी बंधवा लें, वही फल प्राप्त होगा जो बहन को राखी बांधने का आशीष आपको मिलता है। अभी सामग्री के विषय में वान्या जी ने बहुत अच्छे से बताया, लगभग पूर्ण सामग्री उन्होंने बता दी कि किस तरह से कैसे आपको थाली में रखना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा क्रम बता देता हूँ और रक्षा बंधन का के विषय में ये त्यौहार विशेष फेमस हो गया है भाई और बहन का, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बहन भर का त्यौहार है। इस रक्षा सूक्त को जो है गुरु शिष्य के बांध सकता है, कोई भी पंडित पुरोहित अपने जो है यजमान को बांध सकता है। जैसा कि मैंने बताया रक्षा इस प्रकार का बना करके किसी के भी आप बांधोगे तो रक्षा बंधन का चार शब्द है रक्षा बंधन, जिस रक्षा सूत से आप बंध जाएं, कहने का तात्पर्य कि बहन आपको जिस रक्षा सूत से बांध देती है वह आपकी रक्षा करता है। और उपहार में एक भाई बहन को क्या देता है, वह उपहार में उससे वादा करता है कि आजीवन तुम्हारी मैं जो है सेवा के रूप में रक्षा करूंगा या आजीवन तुम्हारा मैं सहयोग करूंगा। और बहन किसी भी स्थिति में हो पूजनीय होती है भाई के लिए, वह इसलिए कि माता और पिता जब कन्यादान करते हैं तो वह पूज्य होती है माता पिता की, तो आपके लिए तो पूज्य बनती ही बनती है। तो बिल्कुल झुक करके आशीष लें और बहन को जो उपहार आप दे सकते हैं वो विशेष रूप से दें, क्योंकि बहन लड़की बुआ आदि इनको आप कुछ भी देते हैं तो इनसे आपकी धन संपदा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। एक बात ये, उस थाली को जैसे वान्या जी ने बताया कि आपने पूरी तरह से तैयार कर लिया, वो एक एक सामग्री को मैं नहीं बता रहा, उन्हें लगभग बता दिया है। आप सबसे पहले जो है भाई को जो एक जल का पात्र भी रखें, भाई के सिर में जो है थोड़ा सा जल का जो है छिट्टा दें, उससे वो है कि किसी प्रकार की यदि अशुद्धि पोजीशन पे तो पवित्र होगा। सिर ढकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्य में सिर नहीं ढका जाता है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल पूरे उससे लिखित प्रमाणित के साथ कह रहा हूं कि कभी कोई धार्मिक कार्य करें पूजा करें तो जो रुमाल आप सिर में ढकते हैं कभी भी सिर ढक करके पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, एक ये। उसके साथ साथ जो है आप अपने दाहिने हाथ में जो है कलाई जो है उसमें राखी बंधवाएं, और यदि शायद बहन मंत्र बोल सके तो बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ए न बद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबला ते न त्वाम प्रतिवध नामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब तात्पर्य यही होता है कि हे परमपिता परमात्मा मैं कामना करती हूँ कि आपकी हर तरह से आपकी जो है रक्षा हो। तिलक करें, तिलक किसी भी चीज का हो, कुमकुम का हो, चंदन का हो, रोली आदि का, वो विशिष्ट रहेगा। तिलक के बाद आप जो है उनकी आरती उतारें, और आरती उतारने का तात्पर्य यह होता है कि आपके किसी भी प्रकार के जीवन में अलाबला ना आए, नजर आदि का कोई दोष ना हो। इसके बाद आप जो है मिष्ठान उनको खिलाएं, मिष्ठान खिलाने के बाद फिर भाई का फर्ज बनता है कि बिल्कुल पूरी तरह से झुक करके सिर मस्तक को पूरा उनके चरणों में झुका करके प्रणाम करें, क्योंकि मस्तक में आवेश जो तेज होता है जब आपका मस्तक झुकेगा तो निश्चित रूप से इसमें ठंडक आता है, इसका आवेश और तेज खत्म होता है, आपके अंदर गंभीरता धैर्यता नम्रता सहनशीलता ये चीजें आती हैं। और उपहार के रूप में मैं फिर कहूंगा भाई की जो क्षमता है आर्थिक रूप में वो तो देता है, लेकिन एक प्रण जरूर करे कि बहन के जीवन में किसी प्रकार का यदि कोई कष्ट आएगा तो मैं हर तरह से प्रयास करूंगा। सगी बहन नहीं है, सगा भाई नहीं है, कोई किसी के भी राखी बांध सकता है। सबसे बड़ी यहाँ दुआओं का जो है उपहार है और दुआओं का सबसे बड़ा आशीष।
1: बिल्कुल, हालांकि सर ढकने वाली बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ,
3: ये दो विद्वान बैठे हैं इस चीज को, यदि ये कह दें तो मैं मान जाऊंगा।
1: नहीं नहीं दिवाकर जी आप क्या क्या कहते हैं इसको लेकर?
5: देखिए पूजा जब भी हम करते हैं, चाहे रुद्राभिषेक करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो जितना हमारा शरीर खुला रहेगा उतनी ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे।
1: ठीक है राज मिश्रा जी, आपका आपकी राय इसको लेकर क्या है?
3: मिश्रा जी कहिए आप भी।
2: जो शास्त्रीय मान्यता है वो शुक्ला जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, कंधे पर वस्त्र रखने की शास्त्रीय मान्यता है, बट क्योंकि हमारा जो सम्मानीय सिख धर्म है उसमें ये परंपरा है कि आप जब भी प्रवेश करें तो आपको सर ढक करके प्रवेश करना चाहिए। मैं उस परंपरा का सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है कि ढकने से किसी प्रकार का दोष इत्यादि होगा, लेकिन अगर मैं शास्त्रोक्त बात करूं तो जो शुक्ला जी ने कहा है बिल्कुल ये शास्त्र के अंतर्गत वर्णन है कि जब पूजा करना चाहिए तो उत्तरीय वस्त्र रखना चाहिए, कंधे पर रखने का नियम है। पुरुष के लिए स्पेशली ये नियम है, ध्यान रखिएगा, महिला के लिए ये नियम नहीं है।
3: राज्य में महिला के लिए नहीं बोला, पुरुष के लिए ही बोला हूँ।
2: महिला के लिए कोई भी पूजन में बैठ रही है तो सर ढकने का नियम है, पुरुष के लिए नियम है कि जब पुरुष पूजन कर रहा है तो कंधे पर वस्त्र रखे, उत्तरीय वस्त्र जरूर होना चाहिए।
1: ठीक है जी। अब दिवाकर जी जल्दी से, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं है, वापस से अपनी उसी बात पर आते हैं। शुभ समय तो हमने जान लिया, लेकिन एक शुभ चीज, शुभ कार्य जो हमें रक्षाबंधन के दिन करना चाहिए, जब बहने भाई को राखी बांध रही, चाहे वो भाई करे या बहन करे।
5: देखिए पहली बात तो सारे विद्वान लोग सब बातें बता दिए हैं, मेरा हमेशा यही रहा है कि हम ऐसे संबंध बनाए, ऐसे संस्कार लाए अपने अंदर कि प्रकृति का रक्षण जरूर हो। तो इस दिन वृक्षारोपण जरूर करें, जिसमें पंच पल्लव की बात आती है, पीपल पाकड़ बरगद गुलर आम और नीम, इनके इनमें से कोई एक वृक्ष भाई बहन जरूर इस दिन लगाएं। अगर ऐसा होगा तो राष्ट्र की रक्षा होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, जो प्रेम है भाई बहनों के मध्य, जो स्नेह है वो भी बढ़ेगा निश्चित तौर पर। पूरा वर्ष और आने वाला दिन याद रहेगा कि इस वर्ष यह वृक्ष लगाए थे, इस वर्ष हम लोग ये वृक्ष लगाए थे, एक यादगार हो जाता है। और यह एक ऐसा उपहार है भाई बहनों का कि बहन जो है भाई को भी देती है और भाई जो है बहन को देता है। और बुध ग्रह उनके संतान के लिए, उनके परिवार के लिए बुध ग्रह का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बात मैं और स्पष्ट करूंगा कि ग्रहण है तो कुछ लोगों का बात आता है कि अगर ग्रहण है और हम दान करना चाहते हैं तो जब ग्रहण समाप्त तो हो जाए, जैसा कि ग्रहण का जो समय पंचांगों में दिया हुआ है कि मोक्ष काल जो है 11:22 ही है, स्पर्श काल 8:04 है और मोक्ष काल 11:22 के बाद है, तो 11:22 के बाद स्नान करके, पवित्र सरोवर में स्नान करना है या घर में गंगा जल डालकर स्नान करके अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, जूता का दान करें, तिल जौ दही चीनी इनका दान अगर करते हैं जरूरतमंद को तो बहुत शुभकारक होगा।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, रक्षाबंधन का शुभ समय बताने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: यूपी की राजधानी लखनऊ से नारी शक्ति की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मौका था उन महिलाओं को सम्मानित करने का जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई, और इस भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा को उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ने कहा कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये कार्यक्रम केवल सम्मान का मंच नहीं था बल्कि बदलाव का संदेश भी बना।
2: मंच पर मौजूद हैं, मैं अमृतांजलि जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आएं। और बबीता जी का,
1: जब महिलाओं को सम्मान का अवसर मिला, सम्मान और अधिकार मिलेगा, तभी सशक्त नारी सशक्त भारत का सपना पूरी तरह से साकार होगा।
2: कृपया बबीता जी का सम्मान करें, उनके साथ हमारे साथ ही बीता जी हैं।
1: रक्षाबंधन की रौनक दिखाते हैं, पूरे देश में किस तरीके से रक्षाबंधन की रौनक है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है। बहनें राखियों की जमकर खरीदारी कर रही हैं, जिससे वो कल यानी कि शुक्रवार को अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी, और इसी के साथ साथ जवानों को भी राखियां भेजी गई हैं।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करने में जुटी हैं। रक्षाबंधन का यह त्यौहार भले ही शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन देश की सीमा पर तैनात सेना के जवानों से लेकर पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी सजने लगी है। देश की रक्षा में तैनात जो जवान इस त्यौहार अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से राखियां भेजी जा रही हैं। वहीं लड़कियां और महिलाएं इन जवानों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां बांटती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन से लगती सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए नीति घाटी की महिलाओं ने रक्षाबंधन को खास बना दिया। पारंपरिक नृत्य करते हुए महिलाएं केलांग मंडी होते हुए गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजी थजी जुम्मा और कागा गांव की इन महिलाओं ने गोटिंग आर्मी कैंप पहुंचकर जवानों की कलाई पर राखी बांधी। ये पल सरहद के इन सुरमाओं के साथ ही सीमांत बहनों के लिए भी बेहद खास बन गया। रक्षाबंधन के त्योहार का ऐसा ही रंग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली, जहां स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी बहनें सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और उनकी सलामती की कामना की। यहां आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान का भाव भी जाहिर किया, तो जवानों ने भी बहनों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लिया।
1: हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है और आज उनको हमारी बहनें जो हमारी दिव्यांग बेटियाँ हैं, लखपति दीदियाँ हैं, बिहान की दीदियाँ हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियाँ हैं, ड्रोन दीदियाँ हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है।
0: पंजाब के पठानकोट में भी भाई बहन के पवित्र रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिली। यहाँ भी बहनें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां बांटती नजर आईं। बहनों ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। बहनों ने अपने इन भाइयों की लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना की, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन्हें बतौर गिफ्ट हेलमेट देकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। इस पावन अवसर पर पैरामिलिट्री फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ ही बहनें भी अपनी खुशी जताती दिखी।
2: रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, मेरा कि बहुत बढ़िया तरीके नाल जड़ा है मनाया गया।
0: चमोली से कमल नैन सिलोरी, रायपुर से महेंद्र नामदेव और पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, छाए के साथ हम हाजिर हैं तमाम खबरों के साथ। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शुरुआत करेंगे नेपाल में आई आपदा के बीच किस तरीके से मिशन जिंदगी जारी है, मुश्किल किस घड़ी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण कैसे चमत्कार दिखा रही है, राहत और बचाव कार्य की तमाम तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की तैयारियां कैसी हो रही हैं, मुंबई के पंडालों में किस तरह से श्रद्धा के साथ बप्पा का स्वागत हो रहा है। इस बार मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा की भी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। केरल के एक मंदिर में अब भगवान की मूर्ति को असली हाथी की जगह मैकेनिकल हाथी पर विराजित किया जाएगा। कैसा है ये मशीनी हाथी जिसका अंदाज है बिल्कुल असली हाथी जैसा, इसे कितनी मेहनत के साथ तैयार किया गया है इसकी रोचक कहानी है, सुनाएंगे आपको।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, स्पेन के ला टोमेटिना फेस्टिवल भी आपको लेकर चलेंगे। बुनोल की सड़कों पर कैसे लोगों ने टमाटर की लाल बारिश का आनंद लिया है, इसकी शानदार तस्वीरें आपको आज दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, ढेर सारी खबरें होने वाली हैं चाय के साथ, और आज चाय पे चर्चा में चीन के रिवर लालटेन और लोकगीत उत्सव की रौनक भी बिखरेगी। तो बढ़ती उम्र को मात देती एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे और पोते के साथ कैसी गजब टाइमिंग और तालमेल के साथ स्केट बोर्डिंग कर रही है, इसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल में की गई विशेष प्रार्थना, धर्मशाला में जुटे बौद्ध भिक्षु, नेपाल में मिशन जिंदगी तेज। देश भर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक, औरैया में राखियों से बाजार गुलजार, वाराणसी में सोने और चांदी वाली राखियों की डिमांड। गाजियाबाद जेल में रक्षाबंधन की तैयारी, कैदी तैयार कर रहे राखियां, जेल प्रशासन की पहल से सुधार और बदलाव का संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: और चलिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं मिशन जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के बीच अगर किसी की जान बच जाए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं। नेपाल में आए इस भीषण आपदा के बीच भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जो कि तबाही के बीच उम्मीद जगाती है। कहीं बाढ़ में फंसे बच्चे को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला जा रहा है, तो कहीं मलबे में तब्दील हो चुके घर से एक बुजुर्ग महिला को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। नेपाल में चल रहा ये मिशन जिंदगी वाकई इंसानियत और हिम्मत की मिसाल बन गया है। बाढ़ के इन मुश्किल हालात में नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस लगातार राहत बचाव के साथ लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरों में आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, देखिए 6 तस्वीरें नेपाल में जो आपदा आई है उसको लेकर किस तरह से मिशन जिंदगी लगातार यहां पर जारी है। और वाकई हर बार शगुफ्ता सरगम आप लोगों ने भी देखा, सुबह से आप लोग भी तस्वीरें, क्योंकि आप लोग सुबह आते हैं, खबरें लगातार आप लोग देख रहे होंगे, दिखा रहे होंगे। आपदा बहुत बड़ी है, भीषण है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर देखिए मिशन जिंदगी जो चल रही है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कितनी मुश्किल हालातों में लोगों को यहां बचाया और निकाला जा रहा है।
6: मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में ना ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इतने दुर्गम स्थानों में पहुंचकर जो काम करती है ना, उसको हैट्स ऑफ। और मैं ना एक कंपैरिजन कर रही थी इस चीज को लेकर लाइफ के साथ, की लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब आप एक्सट्रीमली लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, कोई होता नहीं है, कोई होप नहीं दिखती है, तो ये होप वाली तस्वीरें हैं कि होप हर जगह आप देख सकते हैं।
7: नहीं, उसमें भी देखिए सबसे बड़ी बात, एक अच्छे मित्र की तरह भारत ने जिस तरीके से हाथ बढ़ाया है, C-17 ग्लोब मास्टर अगर आपको याद हो, हर जगह जहां कहीं भी इस तरह की आपदा आती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, या फिर इनफैक्ट बहुत जगह हमने देखा कि युद्ध जैसे हालात भी हैं, वहां से या भारतीयों को निकालना हो या फिर उस देश के आम नागरिकों की मदद करनी हो, हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। और यहां से C-17 ग्लोब मास्टर ऑलरेडी रवाना हो चुका है राहत सामग्री लेकर, ताकि वहां पर लोगों को किसी तरह की मुश्किल न हो। खुद प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से कल मुलाकात फोन पर बातचीत की है और उन्हें कहा है कि भारत पूरी तरह से नेपाल के साथ है और दोनों मुल्क और बहुत अच्छी दोस्ती भी इनकी रही। अगर हम हाल फिलहाल
3: के सीमाएं जुड़ी हुई हैं, न सिर्फ ये पॉलिटिकली देखा जाए, यहाँ तो रिश्ते जुड़े हुए हैं। बिहार का जो बॉर्डर है, मैं आपको बता दूं, वो नेपाल से जुड़ा हुआ है और कई रिश्ते बिहार के जो है वो नेपाल में है। और यहाँ पर C-17 की जो बात हो रही थी ग्लोब मास्टर की, देखिये भारत की तरफ से जो यहाँ पर खेप गई है, मैं उसमें देख रही थी जैसे टेंट्स भेजे गए हैं, क्योंकि रहने के लिए मुश्किल होगी अब लोगों को जो बचाया जा रहा है, तो टेंट्स भेजे गए हैं, मेडिकल किट्स भेजे गए हैं, ऑफकोर्स डॉक्टर्स यहां से गए हुए हैं, तो कई खाने पीने की चीजें इस तरह के किट्स वहां पर गए हैं ताकि आपदा में किस तरह से राहत पहुंचाई जा सके।
6: बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी आपको बता देते हैं अब वहां पर जो हालात हैं, जहां हाथों से मलबा हटाना मुश्किल हो रहा है, वहां पर जेसीबी और दूसरी आधुनिक मशीनें पहुंच गई हैं, मदद उनके लिए जा रही है। मलबे के नीचे दबी हर जिंदगी को बचाने के लिए जवान पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जिस इलाके में तबाही आई है वहीं कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है, लिहाजा इस त्रासदी की चपेट में भारत समेत दूसरे देशों से आए कई तीर्थ यात्री भी आए हैं। ऐसे में भारत भी अपने नागरिकों की मदद के साथ साथ नेपाल के लोगों तक हर संभव राहत पहुंचाने में जुटा है। तबाही के बीच जारी ये रेस्क्यू ऑपरेशन हर बचती जिंदगी के साथ एक नई उम्मीद की कहानी लिखता जा रहा है।

0: हर विपदा हर आपदा के बीच बची जिंदगी हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। नेपाल में आए जलजले के बाद चलाया जा रहा राहत बचाव अभियान इसकी ताजा मिसाल है। चारों तरफ फैले मलबे के मंजर के बीच मिशन जिंदगी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। बाढ़ और तबाही के बीच जिंदगी बचाने के लिए बड़े स्तर पर मिशन चलाया जा रहा है। नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस राहत और बचाव के साथ लापता लोगों की तलाश अभियान पर जुटी हैं। तस्वीर दिखा रही हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में राहत और बचाव के लिए अनुभवी जवान पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटे हैं। आधुनिक मशीनों के सहारे मलबे में फंसी जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश है। जहां हाथों से मलबा हटाना मुश्किल है, वहां जेसीबी जैसी भारी मशीनों की मदद भी ली जा रही है। ऐसे में ही मलबे की जद में आई इस महिला को भी अपनी जिंदगी बचने की शायद ही उम्मीद रही होगी, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राहत बचाव के काम में जुटे जवान समय पर महिला को बचाने के लिए पहुंच गए। जेसीबी की मदद लेकर बेहद सावधानी के साथ मलबा हटाया गया और इस महिला को सुरक्षित बाहर लाया गया। बुजुर्ग महिला की हालत को देखते हुए बिना वक्त गंवाए उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। नेपाल और चीन के हिमालयन बॉर्डर पर एक चट्टान के टूटकर नदी में गिरने से जो आपदा आई उसके दायरे में इस महिला का मकान भी आ गया। हालांकि आपदा के समय महिला का पति ऊपरी मंजिल पर था, इसीलिए वो सुरक्षित रहे। अपनी पत्नी की सलामती की खबर ने उनको संतुष्ट किया, हालांकि उन्हें अपनी पत्नी के बचने की बहुत कम उम्मीद थी।
1: माथि महालो छतमा पनि आइपुग्यो, अब लड्दै भन्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टा पछि अलि घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अलिक चाल्तु घरको छतसम्म पुरिहाल्यो, बुढी पुरिहाल्यो। हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टा पछि त्यो रात गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट निकाल्यो।
0: कहते हैं कि जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो सबसे बड़ी आफत भी हौसले के आगे छोटी लगने लगती है। नेपाल के लिए इस मुश्किल समय में दुनिया भर से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित ये एक और इलाका है जहां एक घर की छत से बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ इस तरह से रेस्क्यू किया गया। ऐसे ही कई और क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावितों को सड़क या हवाई मार्गों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो मलबे में दबे लोगों की जिंदगी को भी तलाशा जा रहा है। ये बाढ़ इतनी भयानक थी कि पहाड़ी इलाकों की शक्ल सूरत ही बदल गई। यही वजह रही कि हौसले से भरे राहत कर्मी खराब मौसम के बीच टूटे फूटे रास्तों से होकर जैसे तैसे पीड़ितों तक पहुंच पा रहे हैं। इन व्यवस्थाओं के बीच नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक तरफ भारी मलबा तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। ऐसे में मदद का हाथ बढ़ना, जिंदगी बच जाना और उम्मीद कायम रहना, ये सारे संकेत भीषण आपदा में किसी चमत्कार से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और नेपाल में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर अचानक आए फ्लैश फ्लड में कुछ ऐसे भी भारतीय रहे जो बाल बाल बच गए। ये सभी लोग सुरक्षित हैं। हैदराबाद के 31 तीर्थ यात्रियों में डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी शामिल हैं। दरअसल इन तीर्थ यात्रियों ने बाढ़ प्रभावित इलाके को बुधवार सुबह ही पार कर लिया था, यानी कि बाढ़ आने से कुछ घंटे पहले ही वो वहां से निकल गए थे। हालांकि बाद में ये टीम तिब्बत के सागा इलाके में फंस गई। ये भी बताते चलें कि सागा माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के रास्ते में एक अहम पड़ाव है, जहां पर 31 सदस्यों का ये ग्रुप बाढ़ प्रभावित नेपाल वाले रास्ते से लौटने के बजाय अब वाया तिब्बत चीन हैदराबाद लौटने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके अलावा नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास रासुबा गिंगयुंग इलाके में भी अचानक आई बाढ़ से सड़क संपर्क टूट गया है और कई यात्रियों के फंसने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, जिसके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल तो मानसरोवर यात्रा पर निकले हैदराबाद के इस ग्रुप का बाल बाल बचना ऐसे समय में हुआ है जब आपदा में फंसे तीर्थयात्रियों का पता लगाना और प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी है।
4: तो नेपाल में चल रहे मिशन जिंदगी की बात करते हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद वहां बचाव राहत का काम तेजी से चल रहा है और इसी बीच भारत ने सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया और तत्काल करीब 50 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है।
5: बिल्कुल, आपको बता दें वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को $20 लाख की मदद भेजने का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के दूसरे देश भी इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

0: गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा इंडियन एयरफोर्स का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ है। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में कल रात से लेकर आज सुबह तक भारतीय वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री नेपाल भेजी गई। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था। भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी के साथ नेपाल के लिए इस राहत मिशन को अंजाम देने की कार्रवाई शुरू की है।
1: कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में, तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब लिरिक मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
0: ये राहत अभियान भारत की तरफ से भेजी जा रही अतिरिक्त मानवीय सहायता का हिस्सा है। भारत की ओर से कल रात राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेजी गई। इसमें कैंपिंग किट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाइयों के साथ मानवीय सहायता और जरूरी मेडिकल सामान काठमांडू पहुंचाया गया।
2: The aircraft is almost full with 40 tons of payload also because the load is generally voluminous in such circumstances. बड़े-बड़े पैकेट्स होते हैं। तो विद 40 टन ऑफ पेलोड दैट वी आर कैरिंग, मोस्ट ऑफ इट इज NDRF लोड विच इज अबाउट 27 टन्स। NDRF लोड में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिक सस्टेनेंस के लिए चीज़ें हैं लाइक मस्किटो नेट्स, मस्किटो रेपेलेंट्स, टार्पोलिंस एंड डिग्निटी किट्स फॉर फीमेल, मेल, चिल्ड्रन एंड सच स्टफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कैरी सम जेन सेट्स टू एनेबल देम टू सेटअप कैंप एंड प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल। Other than the NDRF load, we are also carrying a host of medicines which have been provided by the Ministry of External Affairs, and that amounts to about almost 7 to 8 tons of medicine load and food and water supplies.
0: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई आपदा के मौजूदा हालात को देखते हुए काठमांडू में विमानों की लैंडिंग और समय से राहत सामग्री पहुंचाने का काम आसान नहीं है, लिहाजा भारतीय वायुसेना ने उड़ानों की आवाजाही से जुड़ी हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े।
3: अभी हम एडिक्वेट फ्यूल कैरी कर रहे हैं कि इन केस हमें अप्रोच में कुछ होल्ड करना पड़े तो 1 से 1.5 घंटे के होल्डिंग हम कर सकते हैं, पर उसके भी अगर डिले अनसर्टेन है और हमें लैंडिंग नहीं मिल रही है तो हमने विद इन इंडिया 2 बेसेस एयरमार्क करके रखे हैं जिनको इन्फॉर्म किया गया है कि अगर हमें डाइवर्ट करना पड़े तो हम वहां पे डाइवर्ट करेंगे, रिफ्यूल करेंगे और फिर जब नेपाल से क्लियरेंस अगेन आएगा तो हम विल लॉन्च फॉर नेपाल। तो वो ऑल कंटिजेंसी जितने भी है वेदर वाइज और एनी डिले इन एयरपोर्ट वाइज उन सबको हम कैटर करके चलते हैं।
0: इसके साथ ही हर विमान में 3 पायलट समेत 9 लोग भेजे गए हैं ताकि आसानी से राहत सामग्री की अपलोडिंग भी की जा सके। खासतौर से मौसम के हालात को देखते हुए वायुसेना हर स्थिति के लिए तैयार है।
1: तो यहाँ से जहाज जाते हैं तो ये सब प्लानिंग करके जाते हैं कि रास्ते में वेदर खराब हो सकता है, अगर वहाँ पे बाढ़ आई है एक्सेसिव रेन के कारण तो आई एम श्योर वेदर खराब हो सकता है, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। प्लस जब वहाँ पे हम जाएंगे काठमांडू पहुंचेंगे तो वहाँ पे और भी कंट्रीज के ऐसे एयरक्राफ्ट आ रहे होंगे, तो ये पॉसिबल है कि इमीडिएटली लैंडिंग ना मिले, तो उसके लिए भी हम तैयारी रखते हैं कि फ्यूल इतना हो कि हम वहाँ पे थोड़ी देर सर्कल करें, लैंड करें, बट मेन एम है सामान पहुँचाना, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करके यहाँ से चलते हैं।
0: भारत सरकार ने नेपाल को आपदा की इस घड़ी में हौसला दिया है और आश्वस्त भी किया है कि भारत हमेशा नेपाल के साथ है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।
1: उसके डिटेल्स मुझे नहीं पता है बट इतना तो है कि हाँ हेलीकॉप्टर्स भी स्टैंड बाई पे हैं, वो भी तैयार हैं, वो भी लॉन्च हो सकते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर आप सोचें इस नेचर ऑफ ऑपरेशंस, उसमें हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ सकती है।
0: नेपाल में आई बाढ़ के बाद सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो सहायता कर ही रहा है, कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की ओर से नेपाल को $500,000 देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रूपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तत्पर हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब देखिए, पहाड़ों पर सफर हमेशा खूबसूरत होता है, लेकिन पहाड़ों का मौसम और हालात कब बदल जाएं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई रुकावट ने एक बार फिर से यही संदेश दिया है, पहाड़ों की यात्रा में उत्साह के साथ सावधानी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है।
5: बिल्कुल, देखिये, मौसम विभाग के अलर्ट और स्थानीय प्रशासन की सलाह को ध्यान में रखते हुए यात्रा की बेहतर प्लानिंग की जाए तो मुश्किल परिस्थितियों से काफी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने से पहले देखिए जरूरी है कि सफर सुरक्षित हो और यादगार भी।
0: बद्रीनाथ धाम जाने की राह में आई मुश्किल को दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने रास्ता रोका तो अब मशीनों और मजदूरों ने मोर्चा संभाल लिया है। उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ हो, यात्रा फिर रफ्तार पकड़े और भक्त बिना किसी रुकावट के अपने आराध्य बद्रीनाथ के दर्शन कर पाए।
6: बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात मारवाड़ी और विश्वप्रयाग के आगे 10 से 15 मीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कल देर रात यहां ऊपर पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो धस चुका है। यहां पे इस समय जो जेसीबी मशीनें हैं लगी हुई हैं, पीआरओ द्वारा यहां पे कार्य कराया जा रहा है, जो कार्यदायी संस्था है वो यहां पे काम कर रही है।
0: चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा धंसने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मारवाड़ी पुल और विष्णुप्रयाग के बीच करीब 50 मीटर सड़क धंस गई। इसी वजह से बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक रास्ते में फंस गए। हालांकि अब रास्तों को खोलने का काम तेजी से चल रहा है।
6: मशीनें इस समय लगी हुई हैं, लेकिन कब तक मार्ग खुलेगा कह नहीं सकते हैं। ऐसे में जहां भूस्खलन हुआ वहीं तीर्थयात्रियों की भी मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन कब तक खुलेगा ये देखना होगा।
0: वहीं नेपाल में आई फ्लैश फ्लड का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ा है। बाढ़ से रसुआगढ़ी केरुंग रूट प्रभावित होने के चलते इस रास्ते से होने वाली यात्रा और आवाजाही प्रभावित हुई है। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर मौसम कब करवट ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सफर से पहले थोड़ी सावधानी और बेहतर प्लानिंग बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखें, स्थानीय प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता दें, सबसे जरूरी हालात अनुकूल हों तभी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुरक्षित सफर ही आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्सव की करेंगे। कल रक्षाबंधन है और त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बहनें भाई की कलाई सजाने के लिए तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं और बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की भरमार भी है। कोई कार्टून वाली राखी पसंद कर रहा है तो कोई मोती और रुद्राक्ष वाली, लेकिन इस बार राखी में टेक्नोलॉजी का तड़का भी लगा है। स्मार्ट डिजिटल राखी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। खास बात यह है कि इसे किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के छात्रों ने तैयार किया और ये खबर आपको भी आगे दिखाएंगे।
7: बिल्कुल, आपको बता दें, उधर रक्षाबंधन के बाद अब देश भर की नजरें गणपति उत्सव पर भी टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में तो अभी से गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी है। गणपति उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं तो कहीं बप्पा की विशाल प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकारों के हाथ दिन रात काम में जुटे हैं। मिट्टी और रंगों से गजानन के अलग अलग रूप आकार ले रहे हैं। इस बार गणपति बप्पा के कई दिलचस्प रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं बप्पा पारंपरिक अंदाज में नजर आ रहे हैं तो कहीं आधुनिक थीम के साथ, यानी गणपति की भक्ति में क्रिएटिविटी का भी पूरा तड़का लगाया जा रहा है।
8: तो देखिए, मुंबई समेत पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम दिखने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है।
4: और देखिए, इसी बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में है। मुंबई के साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं

0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं, तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है, तो कहीं गजानन भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं, तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
1: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है, पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानन की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं ने जवानों के लिए रक्षाबंधन पर अनोखा उपहार तैयार किया है। दरअसल इन छात्राओं ने एक हाईटेक राखी बनाई है
3: और इस एक इनोवेटर की मदद से इन छात्राओं ने ऐसी राखी बनाई है जो कि जवानों की हिफाजत में मददगार साबित हो सकती है। आपको दिखाते हैं कौन सी है ये हाईटेक सोलर राखी।
0: त्योहारों की उमंग के साथ आधुनिक तकनीक की जुगलबंदी हो जाए तो नतीजा कुछ ऐसे ही खास डिजाइन की शक्ल में सामने आता है। पूरे देश में इन दिनों रक्षाबंधन पर्व का उल्लास है। भाई बहन के अटूट बंधन के इस त्योहार पर वाराणसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने देश के वीर जवानों के लिए एक अनोखी राखी तैयार की है। वाराणसी के युवा इनोवेटर श्याम चौरसिया के साथ मिलकर छात्राओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये राखी बनाई है। उनका दावा है कि सोलर पावर से चलने वाली ये राखी बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है।
4: मेरी टीम के साथ मिलकर एक राखी तैयार किया है जो कि इस वीर जवानों के सुरक्षा में भी काम आएगा। हम बहनों की तरफ से अपने वीर जवान भाइयों के लिए एक उपहार है। ये राखी उनकी सेफ्टी भी करेगा और उनकी बहुत काम आएगा। बिना नेटवर्क के इस राखी से वो वीडियो कॉल पे बात भी कर पाएंगे और इससे अपने गन का ट्रिगर भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें SOS की भी सुविधा उपलब्ध है और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भी ये काम करता है। हमने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए ये राखी बनाया है।
0: इस सोलर सोल्जर राखी के प्रोटोटाइप को इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। इस राखी में 2.1 इंच का डिस्प्ले लगा है। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें माइक्रोफोन और कैमरा मौजूद है। ये सोलर एनर्जी खुद ही चार्ज हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी ये कनेक्ट हो सकता है। इसमें ऑडियो वीडियो संचार की सुविधा भी दी गई है। इसका वजन करीब 70 ग्राम है।
5: हम लोगों ने जो राखी डिजाइन किया है वो स्पेशली इस राखी के जरिए जो हमारे सोल्जर्स है वो बॉर्डर पे अपने हथियारों को संचालित कर सकते हैं। कभी भी आप

0: सपोज कि हमारे जो सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे कहीं घायल हो गए या उनको अपने हथियारों को ऑपरेट करना है, तो अपने राखी के जरिए ही वो उन गन को ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसी परिस्थिति में अगर हमारे जवान को गोली लग जाती है तो राखी के जरिए कंट्रोल रूम को सूचना भी भेज सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये भी है कि वीडियो कॉल के जरिए अगर कोई हमारे जवान घायल हो जाते हैं तो वो कंट्रोल रूम को संपर्क साध सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हमने अपने आईटीएम कॉलेज के इनोवेशन सेल में अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर के तैयार किया है।
1: इस सोलर राखी को तैयार करने में करीब 3 महीने का वक्त लगा और इसे बनाने में करीब 1.25 लाख रुपए की लागत आई। इसे तैयार करने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज अब इस राखी को देश के जवानों तक पहुंचाना चाहता है ताकि जवानों को इस रक्षाबंधन पर हिफाजत की एक नई सौगात मिल सके। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: केरल के कासरगोल में अब मंदिर की सवारी का अंदाज बदलने वाला है। आपको बता दें यहाँ पे गुरुपुरम महाविष्णु मंदिर में भगवान की प्रतिमा को अब असली हाथी की जगह मैकेनिकल हाथी पर विराजमान कराया जाएगा। 11 फीट ऊंचा और करीब 800 किलो वजनी ये हाथी देखने में बिल्कुल असली हाथी जैसा लगता है। इसका नाम रखा गया है गुरुपुरम अर्जुनन। रबर और लोहे के फ्रेम से तैयार इस हाथी को बनाने में करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि इसका सिर, आंख, कान, मुंह और पूंछ भी हिलती है, यानी कि सवारी भले ही मशीन की हो लेकिन अंदाज पूरा हाथी वाला है।
3: अब जरा इसकी सवारी भी समझ लीजिए। गुरुपुरम अर्जुनन की पीठ पर एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं, वहीं महावत भी मौजूद रहेगा, लेकिन उसे नियंत्रित करने के लिए सिर्फ सूंड का इस्तेमाल करना होगा। यही सूंड पानी का छिड़काव भी कर सकती है, यानी मंदिर की पारंपरिक सवारी में तकनीक का तड़का लगाया है। कासरगोड जिले में किसी मंदिर को दिया गया ये पहला मैकेनिकल हाथी है। अब भगवान की प्रतिमा को मंदिर में ले जाने के लिए इसे पारंपरिक हाथी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
4: तो चलिए, हाँ, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे स्पेन, जहां ला टोमेटिना फेस्टिवल की धूम नजर आई।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल में की गई विशेष प्रार्थना, धर्मशाला में जुटे बौद्ध भिक्षु, नेपाल में मिशन जिंदगी तेज। देश भर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक, औरैया में राखियों से बाजार गुलजार, वाराणसी में सोने और चांदी वाली राखियों की डिमांड। गाजियाबाद जेल में रक्षाबंधन की तैयारी, कैदी तैयार कर रहे राखियां, जेल प्रशासन की पहल से सुधार और बदलाव का संदेश। मध्य प्रदेश के आगर मालवा की सलोनी की सराहनीय पहल, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया आशियाना, पर्यावरण के साथ जीव संरक्षण का दिया संदेश। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का दिखा अद्भुत संगम।
4: तो चलिए अब देखिए वो तस्वीरें जब खूबसूरत चेहरे मोहब्बत की मिसाल यानी ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। मौका था टीन इंटरनेशनल 2026 की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के आगरा दौरे का। प्रतिभागियों ने ताज की शानदार वास्तुकला, संगमरमर की नक्काशी और खूबसूरती को करीब से देखा। ग्लैमरस अंदाज में पहुंची प्रतिभागी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी।
3: और देखिए ताज को निहारते निहारते कई प्रतिभागी कैमरे में इस खूबसूरत पल को कैद करने लगे। किसी ने ताज के सामने पोज दिया तो किसी ने साथी प्रतिभागियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। 30 से ज्यादा देशों के प्रतिभागियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व दिव्या वाधवा कर रही हैं। मिस टीन इंटरनेशनल का ग्रैंड फिनाले 30 अगस्त को होगा जयपुर।
5: टमाटर जो आमतौर पर हमारी रसोई का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन स्पेन के बुनोल में यही टमाटर बन जाते हैं मस्ती और जश्न के हथियार। यहाँ हजारों लोग टमाटरों से एक दूसरे पर हमला करते हैं और देखते देखते पूरा शहर लाल हो जाता है।
1: बिल्कुल, देखिए मौका है दुनिया के मशहूर ला टोमेटिना फेस्टिवल का। इस साल भी बुनोल की सड़कों पर टमाटरों की ऐसी बारिश हुई कि हर तरफ सिर्फ लाल रंग ही नजर आया।
6: फिल्मी सीन नहीं बल्कि स्पेन की बुनोल शहर की तस्वीर है। सड़कें टमाटरों से पटी हैं, लोग टमाटर में सराबोर हैं। हर तरफ सुनाई दे रही है हंसी और मस्ती की आवाज। मौका ला टोमेटिना फेस्टिवल का है। फेस्टिवल शुरू होते ही हजारों लोग टमाटरों से भरी सड़कों पर उतर आए, फिर एक दूसरे पर टमाटर से जंग शुरू हुई। कोई टमाटर उठाकर सामने वाले पर फेंक रहा था तो कोई खुद ही टमाटरों के ढेर में कूदकर इस पल को यादगार बना रहा था।
7: इस खास मौके का आनंद लेना खासकर बुनियोल में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक शानदार अनुभव है। आज मेरा 30वां जन्मदिन है दोस्तों, मैं अपने जन्मदिन का खूब आनंद ले रहा हूँ।
6: इस बार इस आयोजन में दुनिया भर से करीब 22,000 प्रतिभागी पहुँचे। इस एक घंटे की मस्ती के लिए करीब 1.5 लाख किलो टमाटरों का इंतजाम किया गया। लोग टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर पूरी तरह लाल हो गए। वहीं कुछ ही देर में बुनोल की सड़कें भी टमाटर से लाल हो गईं और लोगों ने सड़क पर लेटकर इस फेस्टिवल का खूब आनंद लिया। साल 1945 में गांव वालों के बीच अचानक टमाटर फेंकने की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन तब किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यही मजाकिया घटना एक दिन दुनिया के मशहूर फेस्टिवल का रूप ले लेगी। हालांकि इस परंपरा का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। फ्रांसिस्को फ्रांको के शासनकाल में 1950 के दशक में इस आयोजन पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में ला टोमेटिना फिर लौटा और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता स्पेन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। आज आलम यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग बुनोल पहुंचते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन के लिए खुद को टमाटरों में रंग पाएं।
8: सबसे अच्छी बात तो ये है कि ट्रकों के गुजरने के बाद खुद को जमीन पर गिरा देना, इस तरह आप इस अनुभव का भरपूर आनंद लेते हैं।
6: स्थानीय लोगों के लिए ये फेस्टिवल खास है क्योंकि उनके शहर की पहचान तो अब पूरी दुनिया में इसी अनोखी परंपरा से जुड़ चुकी है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता स्पेन से निकलकर पूरी दुनिया में फैली हुई है। यानी यहाँ टमाटर सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि जश्न और मस्ती का जरिया है। बुनोल की सड़कों पर होने वाली ये अनोखी टमाटर जंग अब शहर की पहचान बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और खबर जर्मनी से, आपको बता दें कि जर्मनी के कोलोन में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मेले गेम्सकॉम 2026 का आगाज हो गया है। बुधवार 26 अगस्त से शुरू हुए इस मेले में दुनिया भर की 1700 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां गेमिंग के दीवानों को नए नए गेम्स की झलक तो मिल ही रही है, साथ ही कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, करीब 2,33,000 वर्ग मीटर में फैले इस मेले में कंपनियां अपने नए गेम्स और टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने पेश कर रही है। गेम्सकॉम का आयोजन 30 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान गेमिंग की दुनिया में के नए ट्रेंड्स भी सबके सामने आएंगे, सबकी नजर उन पर पड़ेगी।
8: ये है जर्मनी, जहां के कोलोन में दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो और कंप्यूटर गेमिंग ट्रेड फेयर चल रहा है। यहां दुनिया भर से गेम डेवलपर, पब्लिशर और गेमिंग प्रेमी नए गेम्स, हार्डवेयर और तकनीक को देखने पहुंच रहे हैं। यहां की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गेम अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। यहां कोई टैबलेट पर गेम खेल रहा है, कोई कंप्यूटर पर, तो कोई बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर गेम का नया एक्सपीरियंस ले रहा है। गेम्स में रचे बसे इस संसार का एक्सपीरियंस अद्भुत है। यहाँ गेमिंग के किरदारों के गेटअप में भी लोग पहुँचे हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में गेमिंग की दुनिया कैसे होने वाली है। जर्मनी के कोलोन शहर में चल रहे इस महा इवेंट में करीब 1700 से ज्यादा कंपनियां अपने गेम और नई तकनीक लेकर पहुँचे हैं। गेमिंग की इस बढ़ती दुनिया में सिर्फ गेमर्स ही नहीं, दुनिया की बड़ी टेक और गेमिंग कंपनी भी अपना भविष्य तलाश रही है। गेम्सकॉम में सेगा और एक्सबॉक्स जैसे बड़े नाम मौजूद हैं, जो अपने नए गेम्स और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला बड़ा गेम कौन सा होगा, सवाल ये भी है कि एआई के साथ गेमिंग की दुनिया कितनी एडवांस होने जा रही है।
9: Wir haben eine riesige Vielfalt auf der Gamescom und es gibt Trends wirklich in unterschiedlichen Bereichen, bei den Spielen, aber zum Beispiel auch bei den Technologien. Es geht viel um den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, es geht um Indie-Spiele, die besonders erfolgreich sind, aber es geht genauso um die positiven Effekte von Games für Themen, die uns gesellschaftlich interessieren, wie für die Stärkung der Demokratie.
8: जिस रफ्तार से हाल के सालों में गेमिंग का क्रेज बढ़ा है, उसके पीछे सिर्फ उसकी लोकप्रियता नहीं है बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी है। अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर का वीडियो गेम बाजार करीब 330 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी गेमिंग की दुनिया में स्क्रीन के सामने बैठा खिलाड़ी अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस खड़ा है। फिलहाल तो 30 अगस्त तक गेमिंग के इस महामेले के दरवाजे खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, जापान में इन दिनों एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सैकड़ों लोग एक साथ जुटे हैं, हाथों में मोटी मोटी रस्सियां हैं और इन रस्सियों के सहारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम किले को खींच रहे हैं। दरअसल यहां ऐतिहासिक किले को उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाने का काम चल रहा है और इसके लिए मशीनों के साथ साथ इंसानी ताकत भी लग रही है।
1: बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात अगर आप पूछेंगे ना इसमें यह है कि इस पूरे मिशन में स्थानीय लोगों की भी बड़ी भागीदारी है। कोई रस्सी खींच रहा है तो कोई इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद कर रहा है, यानी इतिहास को उसकी पुरानी जगह पर लौटाने की कोशिश में पूरा शहर जैसे एक साथ खड़ा नजर आ रहा हो।
6: ये तस्वीरें जापान के हिरोसाकी शहर की हैं, जहां इतिहास को वापस उसकी जगह पहुंचाने के लिए सैकड़ों लोग एक साथ जुटे, हाथों में रस्सियां, कदमों में तालमेल और पूरी ताकत के साथ बुर्ज को खींचते लोग नजर आए। सबसे खास बात ये रही कि बुर्ज को खींचने के लिए लोगों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग चुने गए। चुने गए स्वयं सेवकों ने करीब 400 टन वजनी इस बुर्ज को रस्सियों की मदद से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर उठाया। दरअसल ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा बड़ा संरक्षण अभियान है। किले की दीवारों के ऊपर मौजूद इस बुर्ज को करीब 70 मीटर दूर उसकी मूल जगह पर वापस ले जाया जा रहा है। इस पूरे मिशन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये बुर्ज मूल रूप से 1611 में बनाया गया था, लेकिन साल 2015 में आए भूकंप ने किले की दीवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दीवार की मरम्मत के लिए बुर्ज को उसकी जगह से हटाना पड़ा। करीब एक दशक बाद अब इस ऐतिहासिक बुर्ज की घर वापसी हो रही है। खास बात यह है कि इस काम में मशीनों के साथ साथ आम लोगों की ताकत को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इंसानों के जरिए किए जाने वाले हिस्से का काम खत्म हो गया और अब बाकी प्रक्रिया मशीनों की मदद से पूरी हो रही है। 400 टन के बुर्ज को रस्सियों से खींचते सैकड़ों लोग, तस्वीरें भले ही अनोखी हों, लेकिन संदेश बेहद खास है। जब बात अपनी विरासत को बचाने की हो तो लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: देखिए, उम्र बढ़ती है तो लोग कहते हैं कि अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन हम आपको चीन की एक ऐसी दादी से मिलवाने जा रहे हैं जो उम्र को मात दे रही हैं। चीन के शानदोंग प्रांत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक साथ स्केटबोर्ड पर है 3 पीढ़ियां। एक है 65 साल की दादी, 43 साल का उनका बेटा और 14 साल का पोता, और कमाल ये है कि तीनों स्केटबोर्ड चला रहे हैं। कमाल ये भी है कि तीनों एकदम एक जैसी टाइमिंग और तालमेल के साथ मूव्स कर रहे हैं।
5: दादी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कह रही हूँ उम्र सिर्फ एक नंबर है स्केटबोर्डिंग के लिए। वीडियो में तीनों कभी साथ ग्लाइड करते हैं तो कभी एक साथ टर्न लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तीनों ने एक ही रिहर्सल में पूरे स्टेप्स कॉपी किए हों। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा 65 साल की दादी के स्केटबोर्डिंग की हो रही है।
4: तो चीन से आई कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्होंने पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हजारों रोशन लालटेन से नदी का पूरा इलाका जगमगा उठा है। ऐसा लगा मानो आसमान के सितारे नदी में उतर आए। ये नजारा है ग्वांगशी जुआंग स्वात क्षेत्र के जियांग काउंटी का, जहां रिवर लालटेन और लोकगीत उत्सव अपने चरम पर पहुंचा है। 6 दिनों तक चले इस उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए। लोगों ने हजारों लालटेन जलाकर उन्हें नदी में प्रवाहित किया।
1: देखिये, मान्यता है कि नदी में लालटेन प्रवाहित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही लोग इन लालटेन के जरिए अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। इस बार उत्सव की रौनक कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि पहली बार इसे 3 दिन के बजाय पूरे 6 दिनों तक मनाया गया। लोक संस्कृति, खेल प्रतियोगिताएं और पारंपरिक व्यंजनों से जुड़ी गतिविधियों ने लोगों का खूब मनोरंजन भी किया।
10: हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे समय रैना के कॉमिक कमेंट पर हंस पड़े सीएम फडणवीस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब बात करते हैं मशहूर सिंगर आस्था गिल की। अपनी दमदार आवाज और एनर्जेटिक अंदाज से आस्था ने म्यूजिक इंडस्ट्री में खास पहचान अपनी बनाई है। दिल्ली में जन्मी आस्था गिल ने छोटी उम्र से ही संगीत में रुचि दिखाई और धीरे धीरे अपने इसी शौक को प्रोफेशन में बदल दिया।
2: बिल्कुल, देखिए करियर की शुरुआत में उन्होंने बतौर बैकग्राउंड सिंगर काम किया है और बाद में बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिंगर आस्था गिल की जुबानी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी कहानी।
3: आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी और आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस जनरेशन को कई पार्टी एंथम से नवाजा है और आज उन सुपरहिट गानों के बीच में हम उनकी जर्नी जानेंगे। उन्होंने जो अपना इंडिविजुअल एक एरा शुरू किया है उससे भी हम रूबरू होंगे। आस्था बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे।
4: थैंक यू सो मच।
3: पहले तो आस्था मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फर्स्ट ट्रैक फुर्सत, एक इंडिपेंडेंट एक एरा आपने शुरू किया है। कमर्शियल म्यूजिक से आपने ब्रेक लिया, 8 महीने का ब्रेक लिया, अब आपकी वापसी हुई है। तो इस 8 महीने में आपको ऐसा क्यों लगा कि फुर्सत एक ऐसा गाना है जो आपकी इंडिपेंडेंस एक एरा है उसको एक शुरुआत कर देगा उसकी?
4: क्योंकि 8 महीने बहुत फुर्सत का टाइम है।
3: आस्था ने फुर्सत से सोचा है।
4: फुर्सत से सोचा है मैंने और जिंदगी की इस रेस में बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से 10 साल से भागती आई हूँ मैं। सो मुझे मतलब अंदर से एक आवाज़ आई कि इट्स टाइम टू टेक अ पॉज, मतलब थोड़ा सा रुक के सांस लेके समझूं, लाइफ को समझूं, आगे कैसा करना है, पूरी ट्रैजेक्टरी कैसे रखनी अपने करियर की, एंड कीपिंग अ वेरी नाइस बैलेंस बिटवीन कमर्शियल एंड समथिंग ऑफ बीट। तो ये मैंने थोड़ा सा इस पे और काफी म्यूजिक पे काम किया एक्चुअली पिछले।
3: आई वॉच्ड द वीडियो, आई वॉच्ड द, आई हर्ड द म्यूजिक, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी दैट यू लाइक इट।
3: दो हिट गाने अभी तो पार्टी शुरू हुई है और डीजे वाले बाबू, मतलब हमने उसे आस्था गिल को जाना था, वो वाला फेस कैसा रहा था? क्योंकि वो एक ऐसा, उसके बाद आप हाउस होल्ड, आई वुड से यू वर द हाउस होल्ड नेम, तो हाउ वाज दैट फेस?
4: इट वाज वेरी स्कैरी फॉर मी क्योंकि मैं, हाँ, बिकॉज कॉलेज तक मैंने आई हैव डन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म,
3: बट डीजे वाले बाबू मतलब इतना सुपर हिट गाना, उसके बाद हमने ये भी सुना आपने बोला कि दैट यू फील लॉस्ट, व्हाई? इतना सुपर हिट गाना था वो, तो
4: वही तो प्रॉब्लम थी
3: कि सुपर हिट हो गया,
4: इतना बड़ा हो गया कि इसके बाद क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है अब ये इसको कैसे तोड़ा जाएगा। नहीं था उसका सोल्यूशन। एंड इन दिस जर्नी नाउ आई हैव, मतलब 10 साल लग गए मुझे रियलाइज करने में कि जस्ट वर्क ऑन मेकिंग अ गुड सॉन्ग, क्योंकि हम लोग ऐसे कंडीशन हो गए थे कि हिट कैसे बनेगा यही सोचने लग गए थे, वो बहुत गलत थॉट प्रोसेस था, बट मेरे को काफ़ी सारे हिट्स बन गए उस चक्कर में, बट ठीक है, दैट वॉज अ डिफरेंट टाइम, नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इतना टैलेंट है, पीपल आर गेटिंग सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, एंड आजकल इतनी ईजीली गुड टैलेंट एक्सप्लोर हो जाता है, सो उस टाइम पे नहीं था वो, सो आई एम वेरी थैंकफुल जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली है मुझे लाइफ में।
3: डीजे वाले बाबू की हम बात कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता आपको ना बोलूं कि आप 2 लाइन गा दें।
4: ओ डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंचे कर दे, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे,
3: क्या बात,
4: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो
3: बहुत बढ़िया। बस की बात करूं 2018 में एक, मतलब आपका एक इंडिविजुअल मैं बोलूंगी, एक वो रोल आया, उसका वो कैसा रहा था वो वाला एक फेज, कि भाई आफ्टर 2 हिट्स नाउ देयर इज बज़?
4: आई थिंक बस गेव मी द आइडेंटिटी, बस की वजह से मुझे प्रॉपर, क्योंकि उससे पहले मेरा लोग नाम जानते थे, मेरी आवाज़ जानते थे, लेकिन बस के बाद मुझे जानने लगे, मेरा चेहरा जानने लगे, सो आई थिंक दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। सो अगर मेरे से आज भी कोई पूछता है कि आपका वो स्पेशल गाना कौन सा, तो मैं कहती हूँ बस, एक वो था और आज एक फुर्सत है जिसने मुझे एक न्यू आइडेंटिटी दी है, सो आई एम वेरी हैप्पी।
3: सो वी विल एंड दिस कन्वर्सेशन विद योर लेटेस्ट ट्रैक फुर्सत, 2 लाइनें हो जाए उसकी।

0: थैंक यू सो मच.
1: दैट वाज फन.
0: दैट वाज फन.
2: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका कोई कॉमेडी शो नहीं है बल्कि मुंबई पुलिस को लेकर उनका एक ऐसा बयान है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि समय रैना हाल ही में मुंबई में आयोजित साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम में पहुंचे थे। यहां महाराष्ट्र साइबर की ओर से साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया,
7: और देखिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। और इसी दौरान समय रैना ने मुंबई पुलिस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा माहौल ठहाके लगाकर हंसने लगा।
8: सो मच फॉर द फेलिसिटेशंस एंड महाराष्ट्र साइबर और मेरा रिश्ता बहुत टाइम से चलता आ रहा है, एंड या 1930 इज रियली अ ग्रेट नंबर सर। मैंने तो सेव किया है क्योंकि कई बार मुझे वहीं से कॉल आ जाता है। बहुत ज्यादा एक्टिव है महाराष्ट्र साइबर, आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर। चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप इंडिया में हो, दे विल कैच यू, एंड या इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। एंड आज पहली बार हुआ है कि साइबर सेल का ऑफिसर एक कमेडियन के घर गया सुबह, उसे घर से उठाया, और इस बार फेलिसिटेशन हुआ है। सो थैंक यू सो मच बनाए, थैंक यू सो मच।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे चाय पर फिर होगी आपसे मुलाकात।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: के पर्व की महिमा, रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। देश भर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक, औरैया में राखियों से बाजार गुलजार, वाराणसी में सोने और चांदी वाली राखियों की डिमांड। मध्य प्रदेश के आगरमालवा की सलोनी की सराहनीय पहल, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया आशियां, पर्यावरण के साथ साथ जीव संरक्षण का दिया संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। वो दोनों जब लड़ने पर आते हैं तो सारा का सारा घर सर पर उठा लेते हैं, लेकिन बात जब दुनिया से लड़ने की हो तो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक दूसरे को चाहे दुनिया भर की खरी खोटी सुना ले, लेकिन कोई और कुछ कह दे तो तुरंत एक दूसरे के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मम्मी के सामने ऐसे लड़ेंगे मानो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो, लेकिन जब पापा की डांट से बचाना हो तो फौरन एक दूसरे के हक में बहाने बनाने लगते हैं। ऐसा प्यारा होता है भाई बहन का रिश्ता। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे इसी प्यार भरे रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाले सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन की। 28 अगस्त यानी कल रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। हमारे देश में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। कई पौराणिक कहानियों में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है। आज आपको सुनाएंगे ऐसी ही कहानियां जिनका सिरा हमारी राखी की डोर से बंधा है। ऐसा ही एक कहानी है राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की।

0: देखो तो बस एक डोर है, मामूली सा धागा है, रेशम का एक तार है, लेकिन इसी तार से बुना है, बंधा है, जुड़ा है वो रिश्ता जिसमें संसार भर का सार समाया है। हर दोस्ती से गहरी दोस्ती, हर वादे से पक्का वादा और हर हाल में साथ निभाने का इरादा, अंत तक, वहां तक जहां माँ बाप का साथ भी शायद एक रोज छूट जाएगा, लेकिन भैया या दीदी कहते हो प्यार से जिसे, ये साथी तुम्हें तब भी साथ खड़ा नजर आएगा। भाई बहन की इसी दोस्ती, साथ और भाव को दिल से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा दिन है रक्षाबंधन, जिसे हमारे भारत में अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब एक रक्षा सूत्र ने रिश्तों की लाज रखी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं हमारे यहाँ। इनमें राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा को खास तौर पर सुनाया और बताया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 बग जमीन मांगी। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और फिर आकाश को नाप लिया। अब 3रा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहकर उसकी रक्षा करे। भगवान ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान विष्णु वैकुंठ नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी को चिंता हुई। देवी लक्ष्मी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे नारायण को वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुँची। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उनका कोई भाई नहीं है और वे उन्हें रक्षा सूत्र बांध कर अपना भाई बनाना चाहती हैं। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। देवी लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप राजा बलि से भगवान विष्णु को उनके दिए वरदान से मुक्त करने को कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर दिया।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय राजा बलि से जुड़े इस मंत्र का जप करने की परंपरा है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलह तेन त्वा मनु बदनामि रक्षे मा चल मा चलह। यानी जिस तरह शक्तिशाली दैत्य राज बलि को रक्षा सूत्र से बांधा गया था, उसी तरह ये रक्षा सूत्र भी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक बने। आज भी बहनें प्यारे भाई की कलाई पर ये धागा बांधते हुए इस मंत्र का जाप करती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए कहानी के साथ ही आपको रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त यानी आज सुबह 9:08 से हो चुकी है। इसका समापन 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर होगा। उदया तिथि होने के चलते 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस गणित के हिसाब से 28 अगस्त यानी कल सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक ही पूर्णिमा तिथि होगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसके चलते 28 अगस्त को सूर्योदय से लेकर 9:48 तक का समय रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य ये बताते हैं कि राहुकाल को छोड़कर पूरा दिन राखी बांधी जा सकती है और कल राहुकाल का समय सुबह सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22 तक का है।
3: श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार मनाया जाता है, इस दिन श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त को पड़ रही है और 28 अगस्त के दिन ही जो है रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार जो मनाया जाएगा। यह त्योहार जो है भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, उनको तिलक करके उनको रक्षा सूत्र मानती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई भी अपनी श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार जो है बहनों को उपहार देते हैं और भेंट देते हैं। इस बार 28 अगस्त को भद्रावास जो है पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए जो है रक्षाबंधन का त्यौहार जो है पूरे दिन मनाया जाएगा। किसी भी समय जो है बहनें जो है भाई का रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
4: तो इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा।
3: जी हाँ, इस बार जो है श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त की पड़ रही है और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा।
2: रक्षाबंधन की एक पौराणिक कहानी देवताओं के राजा इंद्र के साथ भी जुड़ी है। ये बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। असुरों का पलड़ा कुछ इस कदर भारी था कि इंद्र का सिंहासन डोल रहा था। बताया जाता है कि उस समय एक रक्षा सूत्र ने संग्राम की बाजी पलट दी थी।

0: रक्षाबंधन पर्व कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध रक्षाबंधन से जुड़ता है। इस कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। ये कथा बताती है कि जब देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब दानवों को विजय की ओर अग्रसर देख देवराज इंद्र बेहद परेशान हो गए थे। दिन रात उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें एक मंत्र सिद्ध धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया।
1: दूसरा एक कथा ये कहलाती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इंद्र थोड़ा भय में थे, तो इंद्र को अभय वर देते हुए इंद्राणी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था ताकि देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त करें और उनकी ख्याति और उनका छत्र सदैव के लिए सुरक्षित रहे।
0: इस तरह इंद्राणी ने असुरों पर विजय पाने में देवराज इंद्र की सहायता की। मान्यता है कि विजय के आशीर्वाद से सिक्त उस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और कालांतर में यही रक्षा सूत्र सनातन परंपरा में रक्षा बंधन त्योहार के उद्गम का निमित्त बना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात आस्था की भी है और विश्वास की भी। राखी से पहले की शाम है आज और देश भर में शहर अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां खरीदने बाजारों में पहुंच रही हैं तमाम महिलाएं। लेकिन चंडीगढ़ की कुछ बहनें अपने भाई के लिए अपने हाथों से विशालकाय राखी तैयार कर रही हैं। चंडीगढ़ में ये 12.5 फीट की विशालकाय राखी तैयार हो रही है। इतनी बड़ी राखी बनाना जरूरी भी था क्योंकि जिनकी कलाई पर ये राखी बांधी जानी है उनका रूप भी तो भीमकाय है। ये राखी चंडीगढ़ के हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंग बली के विशालकाय स्वरूप बांधी जाएगी। वीर हनुमान की यह प्रतिमा 32 फीट ऊंची है, इसलिए शहर की महिलाओं ने अपने आराध्य के लिए 12.5 फीट की खास राखी तैयार की है। रंग बिरंगी इस राखी को बनाने में हफ्तों की मेहनत लगी है और अब कल सुबह शुभ मुहूर्त में ये राखी बजरंग बली को बांधी जाएगी।
3: हमारे ऐसे घर में हमारे भाई तो है ही है, लेकिन हमारे ये हनुमान धाम में हमारे महावीर जो कि पूरी सृष्टि के कलयुग के साक्षात भगवान है, वो हमारे महावीर भाई हैं। तो हम अपने भाई के कलाई पर 32 फुट के हमारे वीर हनुमान जी हैं, उनकी कलाई पर रखड़ी बांधने के लिए हम भी एक कम से कम पहले एक महीना तक प्लानिंग करते कि क्या बनानी, कैसे बनानी है। और हमें हमारे ये 12-15 दिन तो हम इस देखा आप देख रहे हैं कि राखी को बनाने में हम लग जाते हैं। हमारी बहनें कम से कम रोज़ 5-6 घंटे तो रोज लगाती हैं, जैसे सुबह ही आ जाती है और लंच वगैरह हम यही करते हैं, अपना घर से लेकर आते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से इको फ्रेंडली राखी हम लोग बनाते हैं। इसमें गत्ता है, कागज है, पेपर है और गोटा किनारी है। ये आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से हमारी बहनें लगी हुई हैं। बहुत ही प्यार और उल्लास के साथ अपने भाई को वो दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो हनुमान जी 32 फुट के हैं, तो ये एक सुंदरकांड में एक इनका प्रसंग आता है। 32 उसके हिसाब से हमने जो हनुमान जी के स्थापित किया है। और ये रखड़ी जो हमने बनाई है, हमने इस बार 12.25 फुट की बनाई है। पिछले साल 11 की थी, इस बार हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है तो ऊपर जाकर तो बिल्कुल भी छोटी लग जाती है। हम जितनी मर्जी बनाएं, बाकी मतलब इसको बहुत मन से बना रहे हैं। हम जो भी इस रखड़ी को बहुत दिल से और मन से बना रहे हैं।
2: आज राखी के त्यौहार से जुड़ी तमाम पौराणिक कहानियां हम आपको सुना रहे हैं। अब इसी कड़ी में राखी की एक कहानी महाभारत से भी जुड़ी है। ये बात तब की है जब वासुदेव श्री कृष्ण ने राखी का वचन निभाया और भरी सभा में द्रौपदी के मान की रक्षा की थी।

0: भाई बहन को स्नेह सूत्र में बांधने वाले रक्षाबंधन की डोर द्वापर युग से भी जुड़ती है। कथा जो जुड़ी है दुर्योधन के अभिमान से, द्रौपदी के मान से, पांडवों की मर्यादा से, और जुड़ी है कौरवों की उस राजसभा से जिसकी जमीन पर कभी महाभारत के महासंग्राम का बीज पड़ा था। महाभारत से जुड़ी इस कथा में वर्णन मिलता है जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया था तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। उस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और वो समय जल्द ही आया भी, क्योंकि नीति पांडवों के भाग्य में उस दुर्घटना को पहले ही लिख चुकी थी।
1: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है, कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का, अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: चौसर में हार के बाद कुरु राज सभा में द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने अपने उसी वचन को निभाया और द्रौपदी के मान की रक्षा की। कालांतर में जन्मी पीढ़ियां कभी श्री कृष्ण की उंगली पर बांधे गए द्रौपदी के उस रक्षा सूत्र को रक्षा बंधन के त्योहार से जोड़ती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: स्नेह के इस पर्व की अलग अलग तस्वीरें इस समय देश भर से आ रही हैं। अब इसी कड़ी में एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से भी आई, जहां सजा याफ्ता कैदियों ने जेल में ही हजारों राखियां अपने हाथों से तैयार की हैं।

0: त्योहार सबका है तो भागीदारी भी सबकी होनी चाहिए। आखिर सबके साथ से मिलकर ही तो बनता है और मनता है त्योहार। रक्षाबंधन के मौके पर गाजियाबाद से इसी भाव को बयान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रही ये सिर्फ धागे और सजावट की चीजों से बनी राखियां नहीं हैं, बल्कि इनमें एक नई शुरुआत की कहानी छिपी है। गाजियाबाद की जेल में कैदियों ने रक्षाबंधन के लिए खास तौर पर राखियां तैयार की हैं। इन राखियों को करीब 15,000 बहनों तक पहुंचाया जाएगा, जो रक्षाबंधन पर अपने भाइयों की कलाई पर इन्हें बांधेंगी।
1: ये जिला कारागार गाजियाबाद है। किस कैदी को क्या सजा मिली, उसका क्या जुर्म था, क्या अपराध था, उस पर कौन सी दफाएं लगी, इन सब बातों से परे एक कैदी को यहाँ इंसान भी समझा जाता है। और यही वजह है कि इस रक्षाबंधन पर हर कोई रक्षाबंधन जैसा त्योहार जैसा महसूस करे, इसके लिए खास इंतजाम किए गए। जेल के अंदर कैदियों को ट्रेनिंग दी गई कि राखियां कैसे बनाई जाती हैं, रॉ मटेरियल उन तक पहुंचाया गया। और फिर देखिए क्या कमाल किया है कैदियों ने कि कैसे कुछ ही दिनों के भीतर, आप ये राखियां देख रहे हैं, लगभग 15,000 राखियां इन कैदियों ने अपने हाथों से तैयार कर दी हैं। जब आप कोई राखी खरीदते हैं बाहर, तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि किसने बनाया, इन राखियों पर भी लिखा है। इन राखियों को आप उठाएंगे तो इनके रैपर पर लिखा हुआ है, बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद, जिला कारागार गाजियाबाद। इन राखियों को 18 पुरुष और 11 महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है। बकायदा उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद उन्हें इस काम में लगाया गया।
0: खास बात यह है कि इन राखियों को बनाने वाले कैदी हैं, जो जेल में रहते हुए हुनर सीख रहे हैं। जेल में तैयार हो रही इन राखियों को बनाने में कैदी पूरे मन से जुटे हैं। राखी तैयार करने से लेकर उसकी सजावट तक हर काम में कैदियों की मेहनत नजर आती है।
2: हाँ, व्यक्ति जिन परिस्थितियों में भी आया, जाने अनजाने उससे कोई भी सामाजिक विधिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ, उसके बाद वो यहाँ कारागार में, तो वो खुद को और बेहतर बना पाए। और जो उद्देश्य होता है कारागार का, यह है कि वो लायबिलिटी बन गया समाज पर, जब बाहर जाए तो लायबिलिटी ना रहे, एक असेट बन के जाए। इसी क्रम में उनके जो मानव तत्व है उसको उभारना हम लोग का काम होता है, और उनकी टैलेंट को देखना कौन किस काम में इंटरेस्टेड है। तो अभी चूंकि राखी का त्यौहार था यहाँ, तो राखी बनाने के लिए कुछ बंदियों का चयन किया गया जो इच्छुक थे, तो इस तरह 18 पुरुष बंदी और 11 महिला बंदियों को प्रशिक्षण दिलाया गया विगत माह। और उसके बाद करीब लगभग 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद वो लोग राखी बनाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद तब से राखियां बनाई जा रही हैं।
0: इस पहल का मकसद ही सिर्फ त्योहार के लिए राखियां तैयार करना भर नहीं है, बल्कि कैदियों को हुनर से जोड़ना और समाज की मुख्यधारा में लौटने का मौका देना भी है। जेल प्रशासन की इस पहल के जरिए कैदियों को काम सीखने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिल रहा है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब देखिए सब जुटे हैं, कोई राखी बना रहा है तो कोई खरीद रहा है, अपने अपने भाइयों के लिए तैयारी पूरी है, लेकिन उनका क्या जिनके भाई नहीं है, वो कल किसे राखी बांधेंगी। धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों की सलाह में इस सवाल का भी एक जवाब है, चलिए आपको वो बताते हैं।

0: राखी का त्योहार यूँ तो भाई बहन को समर्पित माना जाता है, लेकिन तब क्या करें जब आपका कोई सगा भाई न हो। ऐसे में किसे राखी बांधनी चाहिए, इसका उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। अगर आपका कोई सगा भाई न हो तो चचेरे भाई या ममेरे भाई को राखी बांध सकते हैं। अगर वे भी नहीं है तो फिर गणपति को या श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है।
1: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है, या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: लेकिन कोई भाई न होने की सूरत में भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के अलावा आप किसे अपना भाई बना सकते हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं।
1: किसी भी हम अपने भाई को, चाहे वो हमारा मानसिक भाई हो, शारीरिक हमारी माता का सहोदर नहीं है, तब भी जो हमें रक्षा करता है, और सबसे पहले हमारी धरती माता की रक्षा करने वाले हमारे वो भाई जो सीमाओं पर हमारे लिए गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, सबसे बड़े रक्षक हमारे वो, उनको भाई बनाया जा सकता है। लेकिन देवताओं में गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण को अपने भाई के स्वरूप में मानकर आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं।
0: बात इतनी सी है कि ये बंधन विश्वास का है, वचन निभाने का है, और जो आपकी रक्षा का दायित्व निभाता है वही आपका भाई हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, जिनके भाई दूर हैं उन बहनों ने कई दिन पहले ही राखियां पोस्ट कर दी हैं, और जिनकी बहनें दूर हैं उन भाइयों के बारे में तो सोचना ही था। खास तौर पर वो फौजी भाई जो हर वचन से ऊपर देश की रक्षा का वचन सीमाओं पर निभा रहे हैं, भला उन्हें कैसे भूला जा सकता है। तभी तो सीमावर्ती शहरों में बहनें जा पहुंची हैं इन भाइयों के पास, और हमारे जांबाजों की कलाई पर सबसे पहले सज गई है देश की बहनों की राखी।

0: भाई बहन के पावन त्योहार रक्षाबंधन को लेकर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करने में जुटी हैं। रक्षाबंधन का यह त्यौहार भले ही शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन देश की सीमा पर तैनात सेना के जवानों से लेकर पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी सजने लगी है। देश की रक्षा में तैनात जो जवान इस त्यौहार अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से राखियां भेजी जा रही हैं। वही लड़कियां और महिलाएं इन जवानों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां बांटती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन से लगती सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए नीति घाटी की महिलाओं ने रक्षाबंधन को खास बना दिया। पारंपरिक नृत्य करते हुए महिलाएं केलांग मंडी होते हुए गोटिंग आर्मी कैंप पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी जुम्मा और कागा गांव की इन महिलाओं ने गोटिंग आर्मी कैंप पहुंचकर जवानों की कलाई पर राखी बांधी। ये पल सरहद के इन सुरमाओं के साथ ही सीमांत बहनों के लिए भी बेहद खास बन गया। रक्षाबंधन के त्योहार का ऐसा ही रंग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली, जहां स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी बहनें सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और उनकी सलामती की कामना की। यहां आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान का भाव भी जाहिर किया, तो जवानों ने भी बहनों की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लिया।
1: हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियाँ हैं, लखपति दीदियाँ हैं, बिहान की दीदियाँ हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियाँ हैं, ड्रोन दीदियाँ हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है।
0: पंजाब के पठानकोट में भी भाई बहन के पवित्र रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिली। यहाँ भी बहनें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां बांटती नजर आईं। बहनों ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। बहनों ने अपने इन भाइयों की लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना की, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन्हें बतौर गिफ्ट हेलमेट देकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। इस पावन अवसर पर पैरामिलिट्री फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ ही बहनें भी अपनी खुशी जताती दिखी।
2: रक्षाबंधन का त्योहार मनाया मेरा की बहुत बढ़िया तरीके नाल जड़ा है मनाया गया।
0: चमोली से कमल नैन सिलोरी, रायपुर से महेंद्र नामदेव और पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई और भी तमाम बातें और जानकारियां जीएनटी के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। देश भर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक, औरैया में राखियों से बाजार गुलजार, वाराणसी में सोने और चांदी वाली राखियों की खूब डिमांड। मध्य प्रदेश के आगरमालवा की सलोनी की सराहनीय पहल, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया आशियाना, पर्यावरण के साथ साथ जीव संरक्षण का संदेश। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का धमाल, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगाई सेंचुरी, 108 करोड़ का नेट कलेक्शन। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: काशी की गुलाबी मीनाकारी, राखियों की विदेशों में खूब धूम, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की डिमांड, स्पेन में भी काशी की राखियों का क्रेज। सात समुद्र पार पहुंची काशी की गुलाबी मीनाकारी राखियों को कारोबार ने छुआ 10 करोड़ का आंकड़ा। काशी की खास राखियों ने बनाई है ग्लोबल पहचान, फ्लोरिडा कैलिफोर्निया।

0: कैलिफोर्निया से मिल रहे हैं राखियों के भारी ऑर्डर्स। एक राखी बनाने में लगते हैं 5 से 6 घंटे। चांदी पर नक्काशी फिर होती है गुलाबी मीनाकारी। काशी की कला पर विदेशों में भी बांटेगी भाई बहन का प्यार गुलाबी मीनाकारी। राखियों ने बाजार में मचाई धूम। गाजियाबाद जेल से आई खास तस्वीरें। कैदी बना रहे हैं भाई बहन के प्यार की राखी। जेल में तैयार हो रही हैं 15,000 राखियां। कैदियों ने हाथों से सजेगी भाइयों की कलाई और राखी मनाती कैदियों ने दिया बदलाव का संदेश। कैदियों के हुनर से त्योहार में घुरा प्यार। जेल की 4 दीवार से बाहर पहुंचेगी खुशियां। राखी बनाकर नई शुरुआत कर रहे हैं कैदी। कैदियों ने राखियों में पिरोया भाई बहन का प्यार। कैदियों ने राखियों में भरा बदलाव का रंग। जेल की राखियां देंगी नई जिंदगी का संदेश। देशभर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां तेज। अलग अलग थीम और रंगों की सुंदर राखियां उपलब्ध। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में देखने को मिली देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की बहुत खूबसूरत तस्वीर। छात्राओं ने जवानों को बांधी राखी। छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी दिए। दानापुर रेजिमेंट सेंटर के मौर्य पार्क में आयोजित किया गया है सुंदर कार्यक्रम। छात्राओं के हाथों रक्षा सूत्र बंधवाते हुए नजर आए जवान। कार्यक्रम में सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाकर राष्ट्रप्रेम से सराबोर करके पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर देखिए रक्षाबंधन के त्योहार। स्कूली बच्चों ने बीएसएफ जवानों संग मनाया त्योहार। फिरोजपुर के स्कूली विद्यार्थियों ने जवानों के लिए बना दिया खास रक्षाबंधन के त्योहार। सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं। टिहरी जिला कारागार में मनाया गया रक्षाबंधन के त्योहार। कैदियों को महिला उत्थान समिति की बहनों ने बांधी राखी। बहनों ने राखी बांधकर कैदियों से सही मार्ग पर चलने उज्जवल भविष्य की कामना की। वाराणसी में रक्षाबंधन पर इस बार सोने और चांदी से बनी राखियों की भारी डिमांड। राजधानी के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक। हर तरफ रंग बिरंगी राखियां। राखी की दुकान पर महिलाओं की भीड़। और रक्षाबंधन से पहले हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आई बहनें। अमृतसर के बाजारों में खरीदारी करने के लिए उमड़ रही बहनें। अपने भाइयों की कलाई पर सजाएंगी राखी। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और रंगों की राखियां महिलाओं को कर रही हैं खूब आकर्षित। रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं प्रयागराज के बाजार। कार्टून से लेकर डिजाइनर राखियां उपलब्ध। गोरैया के बाजार में रक्षाबंधन की रौनक। राखी खरीदने बाजारों में उमड़ रही है भारी भीड़। बहनें भाइयों के लिए चुन रही हैं राखियां। रंग बिरंगी राखियां बनी आकर्षण के मुख्य केंद्र। दुकानों पर सजी है तरह तरह की राखियां। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बड़ी चहल पहल। राखियों की मांग बढ़ते ही दुकानदारों के चेहरे खिले। शिरडी साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया सोने का ब्रॉच। 75 ग्राम सोने से बना ये ब्रॉच। इटली से भक्त सतीश कुमार ने साईं चरणों में ब्रॉच गिफ्ट किया। भिलाई में आस्था और भक्ति का सैलाब। शिवनाथ नदी से निकली 37 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा। देव लौदा में प्राचीन शिव मंदिर में हुआ जलाभिषेक। 13वीं शताब्दी के शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल। देव बदौला तक शिवमय का हुआ माहौल। 1,000 से ज्यादा महिलाएं बनी कांवड़ यात्रा का हिस्सा। विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। महाकाल की अघोरी टोली ने किया तांडव नृत्य। शिव पार्वती की झांकी ने खींचा सभी का ध्यान। हर चौक पर कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत। अपने अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में पहुंची पवित्र छड़ी। मुबारक स्वामी विश्वमानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में बूढ़ा अमरनाथ पहुंचा पवित्र जुलूस। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ छड़ी को स्वयंभू शिवलिंग पर किया जाएगा स्थापित। इस पवित्र यात्रा में हजारों की संख्या में देश भर से आए शिव भक्त शामिल हुए। भगवान भोले के जयकार से गुंजायमान हुआ वातावरण। कल रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंद देव हिंडोला उत्सव का शानदार समापन हुआ। देखा आस्था और परंपरा का अनोखा संगम। 100 साल पुराने 100 किलो चांदी से झूले में विराजते हैं भगवान। 500 सालों से चली आ रही झूलन उत्सव की परंपरा, शहर में झूलन उत्सव को लेकर विशेष तैयारियां। रंग बिरंगी लाइटों से हुआ मंदिर परिसर का श्रृंगार, भजन कीर्तन का विशेष आयोजन। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में उमड़े भक्त। देशभर में बप्पा के आगमन को लेकर भी तैयारियां तेज। कर्नाटक के तेनकाशी जिले में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय प्राकृतिक मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों का उपयोग कर रहे हैं कारीगर। महीनों पहले से पारंपरिक कला के जरिए मनमोहक और सुंदर मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं स्थानीय कारीगर। तमिलनाडु के वेल्लूर में भी बनाई जा रही हैं विघ्नहर्ता की रंग बिरंगी मूर्तियां। 14 सितंबर को गणेश उत्सव के लिए तैयारियां तेज। आकर्षक रंगों और बारीक नक्काशी से किया जा रहा है श्रृंगार। गणेश उत्सव को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की अहम बैठक। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के कामकाज और तैयारियों को लेकर चर्चा। गणेश उत्सव के लिए मंदिर में बनाई जा रही है मुंबई में बप्पा की विशाल मूर्तियां। इस बार शिव जी के अवतार वाली मूर्तियों की सबसे ज्यादा डिमांड, बप्पा के अलग अलग स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। केरल के गुरुपुरम श्री महाविष्णु मंदिर को उपहार में मिला रोबोटिक हाथी बेटा इंडिया और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भेंट। 11 फीट ऊंचा है और 800 किलोग्राम वजन है गुरुपुरम अर्जुनन नाम का ये हाथी। मोटर की मदद से हिलाए जा सकते हैं इसके सिर पूंछ आंख मुंह और कान। कोटा में बड़केश्वर महादेव मंदिर में आस्था का मेला, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। सावन में भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने में जुटे हुए हैं। दिन भर पूजा अर्चना के साथ चलता रहता है भजन कीर्तन का सिलसिला। हजारों साल पुराने बरगद के पेड़ के कारण पड़ा है बड़केश्वर महादेव मंदिर का नाम, स्थानीय लोगों के बीच इसका खास महत्व। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में देखा आस्था और परंपरा का संगम। अवनी अवितम यज्ञोपतीय समारोह किया गया आयोजित। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है ये पारंपरिक और पवित्र अनुष्ठान। इस शुभ अवसर पर पुष्प पुरुष सदस्य पवित्र स्नान के बाद धारण करते हैं जनेऊ। आगरमालवा में दुल्हन सलोनी ने शादी के मौके पर पेश की अनूठी मिसाल, शादी के खर्च में कटौती करके बनाया पक्षी आशियाना। छह मंजिला पक्षी आशियाना बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। हर मंजिल पर पक्षियों के लिए बनाए गए छोटे घर, धूप और बारिश से भी मिलेगी राहत। लखनऊ में नारी शक्ति का भव्य सम्मान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर निदिशा मल्होत्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। मेहनत और संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान, सशक्त नारी से सशक्त भारत का संदेश, समाज के लिए प्रेरणा बनी महिलाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में स्पेशल मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन। कोटा का एक दंपति 116 सरकारी स्कूलों में 15,500 बच्चों को दे चुका है मुफ्त हेयर कट। सप्ताह में 4 दिन अलग अलग सरकारी स्कूलों में लगाते हैं कैंप्स। ग्यारह जुलाई 2024 से शुरू हुआ दंपत्ति का यह अनोखा सफर जरूरतमंद बच्चों को आत्मविश्वास के साथ स्वच्छता का भी संदेश दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित नन्हे लक्ष्य ने रच दिया इतिहास। आम की गुठलियों से लगाए कई पेड़। विपक्ष ने 5 जून 2026 को मिशन 1008 आम के पेड़ की शुरुआत की थी। पेड़ लगाने के लिए 12 दिन में जुटाई 1008 गुठलियां। लक्ष्य का कहना है कि उनकी इस मुहिम का उद्देश्य कोई रिकॉर्ड बनाना या पुरस्कार हासिल करना नहीं है, बल्कि पर्यावरण बचाना मकसद है। सिलीगुड़ी में न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपराधिक न्याय व्यवस्था और 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना उद्देश्य। अलग अलग स्टॉल और प्रस्तुतियों के जरिए नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाने की कोशिश। युवाओं ने खास तौर पर दिखाई दिलचस्पी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन 1930 साइबर अवेयरनेस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है पहल। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सीजन 2025-26 के अवार्ड समारोह का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से संवाद, खेल और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा हुई। हर जिले के 2 कॉलेजों के युवा हुए इसमें शामिल। खेल फिटनेस और नागरिक जिम्मेदारी पर रखे अपने विचार। ओलंपिक सपनों से विकसित भारत खेलो इंडिया डायलॉग में 5 प्रमुख विषयों पर युवाओं से संवाद हुआ। खेल प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के साथ साथ नशा मुक्त युवा अभियान पर भी फोकस हुआ। एथलीट से की सीधे बातचीत। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के तहत खेलो इंडिया डायलॉग का माय भारत के जरिए देश भर में जुटे हुआ। यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 योगी सरकार का जेन जी को बड़ा तोहफा। 24,243 स्टार्टअप्स के साथ उत्तर प्रदेश बनेगा इनोवेशन हब। सीएम योगी ने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल। स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 107 स्टार्टअप्स को बांटी जाएगी इंसेंटिव राशि। उत्तर प्रदेश में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई रफ्तार। लखनऊ नोएडा में यू हब से बढ़ेगा डीप टेक फोकस। 120 से 24,243 युवा हुआ उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स का आंकड़ा। यूपीटीईटी 2026 रिजल्ट हुआ जारी। प्राथमिक के 93,000 और उच्च प्राथमिक के 1.13 लाख अभ्यर्थी पास हुए। नेपाल में बाढ़ के बीच बाल बाल बचे हैदराबाद के 31 तीर्थयात्री। सोशल मीडिया पर वीडियोस किया शेयर। अब तिब्बत चीन के रास्ते भारत लौटने की तैयारी। कल अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म कोसला का कोसला 2 हो रही है रिलीज। लगभग 20 साल बाद आ रही है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाइस थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। कल से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। सिनेमा घरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बंदर। कल से Zee5 पर स्ट्रीम होगी। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड है चुंबक भी कल से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। सुमित व्यास इसमें नजर आएंगे। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल। 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर हो रही है रिलीज। चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक नदी का पारंपरिक उत्सव हुआ खत्म। हजारों लोगों ने नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद किया। जिजियांग नदी पर हजारों लालटेन तैरती हुई नजर आई। लोगों ने रोशनी के साथ लोकगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। करीब 30 साल पहले हुई थी इस उत्सव की शुरुआत। तैरती लालटेन देखने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। इस साल उत्सव को पहली बार 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। इसमें खेल, लोक संस्कृति और अलग अलग तरह के खाने के कार्यक्रम भी शामिल। इस उत्सव की परंपरा चीन के तांग और सुंग राजवंशों के समय से जुड़ी बताई जाती है। आज भी लोग उसी परंपराओं को रोशनी, गीत और पूजा के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। चीन में कांच से फूलों का बनाया गया खूबसूरत बगीचा। ये फूल 1400 डिग्री तापमान पर होते हैं तैयार। कारीगरों को पिघले कांच को आकार देने के लिए मिलते हैं सिर्फ 5 सेकंड। जरा सी देर हुई तो जम जाता है कांच। कांच के एक गुलदाउदी फूल में होती हैं 300 तक पंखुड़ियां। हर पंखुड़ी को हाथ से जोड़ना पड़ता है। कुछ फूल बनाने में कांच को 100 बार तक करना पड़ता है। गर्म एक गलती से खराब हो सकती है पूरी मेहनत। चीन में कला करीब 2000 साल पुरानी। साल 6 महीने में से करीब 100 करोड़ रुपए की हुई कमाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा? रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बटर जो आमतौर पर हमारी रसोई का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन स्पेन के बुनोल में यही टमाटर बन जाते हैं मस्ती और जश्न के हथियार। जी हाँ, यहाँ पर हजारों लोग टमाटर से एक दूसरे पर हमला करते हैं और देखते ही देखते पूरा शहर लाल हो जाता है। मौका है दुनिया के मशहूर ला टोमेटीना फेस्टिवल का, और इस साल भी बुनोल की सड़कों पर टमाटरों की ऐसी बारिश हुई कि हर तरफ सिर्फ लाल रंग ही नजर आया।
7: ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि स्पेन की बुनोल शहर की तस्वीर है। सड़कें टमाटरों से पटी हैं, लोग टमाटर में सराबोर हैं। हर तरफ सुनाई दे रही है हंसी और मस्ती की आवाज। मौका ला टोमेटीना फेस्टिवल का है। फेस्टिवल शुरू होते ही हजारों लोग टमाटरों से भरी सड़कों पर उतर आए, फिर एक दूसरे पर टमाटर से जंग शुरू हुई। कोई टमाटर उठाकर सामने वाले पर फेंक रहा था तो कोई खुद ही टमाटरों के ढेर में कूदकर इस पल को यादगार बना रहा था।
9: इस खास मौके का आनंद लेना खासकर बुनियोल में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक शानदार अनुभव है। आज मेरा 30वां जन्मदिन है। दोस्तों, मैं अपने जन्मदिन का खूब आनंद ले रहा हूँ।
7: इस बार इस आयोजन में दुनिया भर से करीब 22,000 प्रतिभागी पहुंचे। इस एक घंटे की मस्ती के लिए करीब 1.5 लाख किलो टमाटरों का इंतजाम किया गया। लोग टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर पूरी तरह लाल हो गए। वहीं कुछ ही देर में बुनोल की सड़कें भी टमाटर से लाल हो गईं और लोगों ने सड़क पर लेटकर इस फेस्टिवल का खूब आनंद लिया। साल 1945 में गांव वालों के बीच अचानक टमाटर फेंकने की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन तब किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यही मजाकिया घटना एक दिन दुनिया के मशहूर फेस्टिवल का रूप ले लेगी। हालांकि इस परंपरा का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। फ्रांसिस्को फ्रांको के शासनकाल में 1950 के दशक में इस आयोजन पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में ला टोमेटीना फिर लौटा और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता स्पेन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। आज आलम ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग बुनोल पहुंचते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दिन के लिए खुद को टमाटरों में रंग पाएं।
10: सबसे अच्छी बात तो ये है कि ट्रकों के गुजरने के बाद खुद को जमीन पर गिरा देना, इस तरह आप इस अनुभव का भरपूर आनंद लेते हैं।
7: स्थानीय लोगों के लिए ये फेस्टिवल खास है क्योंकि उनके शहर की पहचान तो अब पूरी दुनिया में इसी अनोखी परंपरा से जुड़ चुकी है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता स्पेन से निकलकर पूरी दुनिया में फैली हुई है। यानी यहाँ टमाटर सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि जश्न और मस्ती का जरिया है। बुनोल की सड़कों पर होने वाली ये अनोखी टमाटर जंग अब शहर की पहचान बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: जर्मनी के कोलोन में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मेले यानी गेम स्कॉम 2026 का आगाज हो चुका है और बुधवार 26 अगस्त से शुरू हुए इस मेले में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और यहां पर गेमिंग के दीवानों को नए नए गेम्स की झलक तो मिलती ही रहती है, बल्कि साथ ही साथ खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं।
10: जर्मनी जहाँ के कोलोन में दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो और कंप्यूटर गेमिंग ट्रेड फेयर चल रहा है। यहाँ दुनिया भर से गेम डेवलपर, पब्लिशर और गेमिंग प्रेमी नए गेम्स हार्डवेयर और तकनीक को देखने पहुँच रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गेम अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। यहाँ कोई टैबलेट पर गेम खेल रहा है, कोई कंप्यूटर पर तो कोई बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर गेम का नया एक्सपीरियंस ले रहा है। गेम्स में रचे बसे इस संसार का एक्सपीरियंस अद्भुत है। यहाँ गेमिंग के किरदारों के गेटअप में भी लोग पहुँचे हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में गेमिंग की दुनिया कैसे होने वाली है। जर्मनी के कोलोन शहर में चल रहे इस महा इवेंट में करीब 1700 से ज्यादा कंपनियां अपने गेम और नई तकनीक लेकर पहुंचे हैं। गेमिंग की इस बढ़ती दुनिया में सिर्फ गेमर्स ही नहीं, दुनिया की बड़ी टेक और गेमिंग कंपनी भी अपना भविष्य तलाश रही है। गेम्सकॉम में सेगा और एक्सबॉक्स जैसे बड़े नाम मौजूद हैं, जो अपने नए गेम्स और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला बड़ा गेम कौन सा होगा, सवाल ये भी है कि एआई के साथ गेमिंग की दुनिया कितनी एडवांस होने जा रही है।
11: Wir haben eine riesige Vielfalt auf der Gamescom und es gibt Trends wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen, bei den Spielen, aber zum Beispiel auch bei den Technologien. Es geht viel um den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, es geht um Indie-Spiele, die besonders erfolgreich sind, aber es geht genauso um die positiven Effekte von Games für Themen, die uns gesellschaftlich interessieren, wie für die Stärkung der Demokratie.
10: जिस रफ्तार से हाल के सालों में गेमिंग का क्रेज बढ़ा है, उसके पीछे सिर्फ उसकी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी है। अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर का वीडियो गेम बाजार करीब 330 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी गेमिंग की दुनिया में स्क्रीन के सामने बैठा खिलाड़ी अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस खड़ा है। फिलहाल तो 30 अगस्त तक गेमिंग के इस महामेले के दरवाजे खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर, नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। देशभर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक, औरैया में राखियों से बाजार गुलजार, वाराणसी में सोने और चांदी वाली राखियों की डिमांड। मध्य प्रदेश के आगरमालवा की सलोनी की सराहनीय पहल, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया आशियाना, पर्यावरण के साथ साथ जीव संरक्षण का दिया संदेश। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का धमाल, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगाई सेंचुरी, 108 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स के रूम, बीजिंग में दिखा संतुलन, नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आते ही बाजारों में भी रौनक पड़ गई है। दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट से लेकर करनाल के बाजारों तक खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है भाई बहन की खुशियों का त्यौहार राखी का इंतजार। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक और काशी से लेकर कन्याकुमारी तक राखी के पर्व को लेकर खास तैयारी जारी है। कल देश भर में राखी का पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर बाजारों में अभी से रौनक देखने के लिए मिल रही है। एक से बढ़कर एक राखी बाजार में मौजूद है, जिन्हें खरीदने के लिए बहनों की लाइन लगी हुई है।
13: राखी भाई बहन के प्यार और विश्वास का वो अटूट धागा है जो हर साल रिश्ते को और मजबूत कर देता है। राखी के पवित्र पर्व के लिए बाजारों की रौनक देखने लायक है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में अभी से रौनक है। कहीं रंग बिरंगी राखियों की चमक है तो कहीं मिठाइयों और उपहारों की खरीदारी को लेकर उत्साह है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर बाजार राखियों से सज चुके हैं। जनपद से लेकर लाजपत नगर तक बहनें भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में त्योहार से पहले खरीदारी का उत्साह देखते ही बन रहा है। परिवार के साथ लोग बाजार पहुंच रहे हैं और राखी के साथ मिठाई, कपड़े और गिफ्ट की खरीदारी भी हो रही है।
14: ब्रदर के घर जाएंगे, राखी बांधेंगे, हमारे तो बहुत सारे, हाँ शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे हम।
15: हाँ भतीजे,
14: अच्छा लगता है यहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है।
15: राखी वाखी ठीक है मार्केट में?
14: राखी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे, कलेक्शन अच्छी है।
13: वहीं करनाल के बाजारों में भी रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह है। बाजारों में बढ़ती भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि भाई बहन के इस त्योहार को लेकर लोगों में कितना उत्साह है।
16: एक भाई है जिसपे बहन पूरा ट्रस्ट कर सकती है आजकल के समय में, तो राखी के जरिए बस हम अपना अच्छा वो बताते हैं कि इतना अच्छा बॉन्ड है।
13: रक्षाबंधन पर आस्था और भाई बहन के रिश्ते का अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में बहनें वीर हनुमान के लिए राखी तैयार कर रही हैं। 32 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को बहनें राखी बांधेंगी, जिसके लिए करीब 12.5 फीट लंबी विशाल राखी तैयार की जा रही है।
17: हमारे ऐसे घर में हमारे भाई तो है ही है, लेकिन हमारे ये हनुमान धाम में हमारे महावीर जो कि पूरी सृष्टि के कलयुग के साक्षात भगवान है, वो हमारे महावीर भाई हैं। तो हम अपने भाई की कलाई पर, 32 फुट के हमारे वीर हनुमान जी हैं, उनकी कलाई पर रखड़ी बांधने के लिए हम भी एक कम से कम पहले एक महीना तक प्लानिंग करते कि क्या बनानी, कैसे बनानी है। और हमें हमारे ये 12-15 दिन तो हम इस देखा आप देख रहे हैं कि राखी को बनाने में हम लग जाते हैं।
13: भगवान के साथ साथ देश की सीमा पर तैनात भाइयों के लिए भी बहनें राखी तैयार कर रही हैं। देश भर में कई एनजीओ समेत कई संस्थाएं रक्षा सूत्र तैयार कर रहे हैं, जिन्हें देश की रक्षा में दिन रात जुटे जवानों की कलाई पर बांधा जा सके। बिहार के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में रक्षाबंधन के मौके पर देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। रेजिमेंट सेंटर के मौर्य पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की छात्राओं ने सेना के अधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधी। बहनों के हाथों से जैसे ही जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बंधा, उनके चेहरे पर खुशी और भावुकता दोनों साफ नजर आए।
18: children from various schools and other organizations, they have come here. It gives us confidence. It gives us a lot of confidence to us in the work, what we are doing. And we feel confident that the nation is behind us. It definitely enhances our confidence in doing whatsoever we are doing. Thank you so much.
13: छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी भेंट किए हैं और देश की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए उनका आभार भी जताया। वीर जवानों के लिए ऐसे ही प्यार की तस्वीर पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर में भी देखने को मिली, जहां भारत पाकिस्तान सीमा पर देश की रक्षा के लिए हर समय मुस्तैद रहने वाले बीएसएफ जवानों के लिए छात्राओं ने राखी तैयार की और उनके साथ खास अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। विद्यार्थियों ने बीएसएफ की महिला सीमा प्रहरी और जवानों और अधिकारियों की कलाइयों पर राखी बांधी और उनका मुंह मीठा करवाकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का संदेश दिया।
19: जो यहाँ पर सरहद पे खड़े जवान हैं, वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं और हमने कोशिश की है कि हम उन्हें रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे उन्हें अपनी बहनों भाइयों और अपनी फैमिलीज की याद आती है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनकी इस कमी को पूरा कर सकें। जब हम उन्हें राखी बांधते थे तो हमने उनकी आंखों में अपनी फैमिलीज के लिए प्यार देखा, उन्होंने हमें अपनी छोटी बहनें कहा और हमें बहुत ही अच्छा लगा।
13: रक्षाबंधन के मौके पर छात्राओं ने बीएसएफ जवानों के साथ त्योहार मनाया। विद्यार्थियों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर टिहरी में भी इस रिश्ते को बेहद खूबसूरत तस्वीर देने की कोशिश की गई। यहां महिला उत्थान समिति की बहनें टिहरी जिला कारागार पहुंची और पुलिस वालों और बंदियों के साथ रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाया। दिल्ली से आशुतोष कुमार और मनेर से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
20: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम दिखने लगी है। गणेश चतुर्थी से पहले ही पंडालों में बप्पा का आगमन होने लगा है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है और बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पंडालों में पधारने लगे बप्पा। मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा जो कि 47 फीट की है वो पंडाल में पहुंच चुकी है और अब पंडालों की साज सज्जा का काम आखिरी दौर में है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में भी गणेशोत्सव की तैयारी चल रही है।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी की 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही है। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात आस्था और श्रद्धा से जुड़े पवित्र छड़ी मुबारक की। अमरनाथ यात्रा का समापन होने जा रहा है और इस मौके पर पवित्र छड़ी मुबारक बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंच गई है। यहां पूरे विधि विधान के साथ छड़ी मुबारक का स्वागत किया गया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है पवित्र छड़ी मुबारक बाबा बूढ़ानाथ के द्वार। जी हाँ, पुंछ के प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार और भव्य स्वागत के साथ पवित्र छड़ी मुबारक मंदिर पहुंच गई है। छड़ी मुबारक के पहुंचने पर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। वहीं बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कल यानी कि 28 अगस्त को बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन होगा। यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति का भाव देखने को मिल रहा है। इधर अमरनाथ यात्रा 2026 का औपचारिक समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना के साथ होगा। पंचतरणी में छड़ी मुबारक पहुंच चुकी है और कल अमरनाथ में पूजा के साथ ही अमरनाथ यात्रा का समापन होगा।
4: इस साल की अमरनाथ यात्रा कल यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने वाली है। इस बीच छड़ी मुबारक अब पंचतरणी पहुंच चुकी है। पंचतरणी में पूजा और रात के रुकने के बाद कल सुबह छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेगी। अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। अब की बार अमरनाथ यात्रा काफी सुरक्षित रही, जिसको लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार भी काफी खुश है और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की है। अमरनाथ यात्रियों का आखिरी जत्था भी छड़ी मुबारक के साथ अमरनाथ यात्रा कर रहा है।
3: और गुजरात के सूरत में भक्ति, कला और अनूठी कल्पना का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सूरत के एक कलाकार ने भगवान के लिए एक ऐसा अनोखा झूला तैयार किया, जिसे भारत समेत 42 देशों के 51 लाख सिक्कों से सजाया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 42 देशों के 51 लाख सिक्कों से तैयार भगवान का झूला। सावन का महीना खत्म होने को है, लेकिन इसकी खूबसूरती अभी भी हर जगह देखने को मिल रही है। पहाड़ों से लेकर शिवालयों तक सावन के रंग बिखरे हैं। वैसे सावन के महीने में हिंडोला महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भगवान को भव्य झूले पर झूला झुलाया जाता है। गुजरात के सूरत शहर में हिंडोला उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान एक अद्भुत और अनोखी कलाकृति देखने को मिली। सूरत के स्वामीनारायण मंदिर में भगवान के लिए 51 लाख सिक्कों का इस्तेमाल करके एक भव्य हिंडोला यानी कि झूला तैयार किया गया। इस अनोखे झूले को सजाने के लिए केवल भारतीय मुद्रा ही नहीं बल्कि दुनिया के 42 अलग अलग देशों के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है। इस झूले के मुख्य कारीगर पार्थ हरिकृष्णा हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे बेहद बारीकी और कलात्मकता से डिजाइन किया है। इस झूले की खासियत सिर्फ इसकी भव्यता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी वर्षों की मेहनत और दुनिया भर के सिक्कों का अद्भुत संग्रह भी है।
5: करीब करीब 51 लाख रुपीस, इंडियन रुपीस, वो उपयोग करके ये हिंडोला तैयार हुआ है और उसके साथ 42 कंट्रीज के जो कॉइन्स होते हैं उसका भी उपयोग हुआ है। स्वामीनारायण भगवान द्वारा प्रसादीभूत 3 ऐसी कोरिया भी यहाँ पे लगाई हुई है, जिसका दर्शन करके हम आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 42 गांव से इंडियन कॉइन्स है वो लाए गए है और उसके साथ कई देश है वहां से भी ये सिक्का है वहां से लाया गया है। वैसे तो गुल्फ कंट्रीज है, इराक है, ईरान है, यूएई है, वहां से ये सारा लाया गया। उसके साथ लंदन है, जर्मनी है, कनाडा है, अमेरिका है, वो कंट्रीज के भी यहाँ पे जो सिक्के है वो लाए गए है और सभी के दर्शन के लिए यहाँ पे रखे गए है।
3: और सूरत के स्वामीनारायण मंदिर में डोले को देखने और भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग इस अनूठी कलाकृति को अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ भगवान का झूला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्प कला और वैश्विक विविधता का अद्भुत संगम है। दरअसल हिंडोला महोत्सव भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक खास धार्मिक उत्सव है, जिसमें भगवान को भव्य और आकर्षक झूलों में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं।
5: हिंडोला की परंपरा जो है वह भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण व्रज में राधा जी के साथ हिंडोले पर झूले थे और वही वैष्णवी परंपरा स्वामीनारायण संप्रदाय में भी आई है। स्वामीनारायण भगवान भी अपने जीवन काल में वड़ताल, गढ़पुर, कार्याणी और वड़ताल के आसपास के जो गांव थे वहां पे वो वड़ की पीपर की कई वृक्ष की डाली पर वो झूले है। और कई भक्तों का और कई संतों का भाव भी होता है कि अपना जो इष्ट देव है उनको हिंडोले पर झुलाए और अपनी भक्ति है वो व्यक्त करे। वैसे हिंडोला है वो भक्ति का त्योहार भी भक्ति का त्योहार है उस तरफ भी हम मानते हैं।
3: समाज सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा मंच हो, बड़ा बजट हो या फिर बड़े आयोजन किए जाए। अगर हुनर और सेवा का भाव हो तो रोजमर्रा का काम भी बदलाव की वजह बन सकता है। कोटा में ऐसा ही उदाहरण पेश कर रहा है एक दंपत्ति जो कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के मुफ्त में बाल काट रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। मुफ्त बाल काटकर बांट रहे बराबरी की मुस्कान। कोटा के ब्रजेश और ममता ने कैंची और कंघी को ही समाज सेवा का जरिया बना लिया। ब्रजेश और उनकी पत्नी ममता सेन सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के निशुल्क हेयर कटिंग कर रहे हैं।
6: आमतौर पर सरकारी स्कूलों में समाजसेवी संस्थाओं की ओर से किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, फर्नीचर या फिर अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन कोटा में एक ऐसे दंपत्ति हैं जो बच्चों को साफ सुथरा रखने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनके बाल काटते हैं। कोटा के बालिता क्षेत्र में रहने वाले ब्रजेश कुमार सेन और उनकी पत्नी ममता सेन ने कैंची और कंघी को ही समाज सेवा का जरिया बना लिया। ब्रजेश और ममता सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों की निशुल्क हेयर कटिंग कर रहे हैं। ब्रजेश का अपना सैलून है और उनकी पत्नी ममता ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। और ये दोनों सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों के बाल काटते हैं। चौबीस से शुरू हुआ बच्चों के बाल काटने का सफर किसी कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपनी टीम के साथ हफ्ते में 4 दिन अलग अलग सरकारी स्कूलों में कैंप लगाते हैं और स्कूल प्रबंधन की अनुमति के बाद वो बच्चों की मुफ्त हेयर कटिंग करते हैं।
7: 2024 11 जुलाई से मैं एक स्कूल में गया, मैंने मास्टर से पूछा, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, अगर आप हमें परमिशन देते हो तो बताइए क्या करना है। बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए अब आपका स्वागत है। तो मैं गया, शुरू में मेरे पास संसाधन भी कम थे, मैं गया एक लड़के को लेके गया, देखा शुरू में अपने 15-20 कटिंगें करी, फिर उसके बाद उनको अच्छा लगा, बच्चों को अच्छा लगा।
6: ब्रजेश और उनकी टीम अब तक 116 सरकारी स्कूलों में पहुंच चुकी है और वहां पर उन्होंने 15,500 बच्चों की निशुल्क हेयर कटिंग की है। ब्रजेश की टीम में 6 लोग शामिल हैं और एक दिन में करीब 300 से 350 बच्चों की हेयर कटिंग की जाती है। लड़कों की हेयर कटिंग टीम के सदस्य करते हैं जबकि छात्राओं की हेयर कटिंग की जिम्मेदारी ममता खुद संभालती है।
8: बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अगर भले हम छोटा सा ही काम कर रहे हैं, बाकी हम लोगों के करने से उन लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है कटिंग करने के बाद, जो बच्चे इतने सुंदर लगते हैं सब कुछ, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है सर। तो उनके जो चेहरे पे मुस्कान आती है उसी से हमारी दिल से खुशी होती है।
6: दरअसल सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में कई बार आर्थिक परिस्थितियों के कारण बच्चे समय पर हेयर कट नहीं करवा पाते, जबकि कुछ बच्चे अलग अलग तरह की स्टाइलिश हेयर कटिंग करवा कर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में ब्रजेश ने बच्चों के बीच एक जैसी हेयर कटिंग की पहल शुरू की ताकि किसी बच्चे को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग न आंका जाए।
7: कहीं ना कहीं बच्चों की जो सरकारी स्कूल होते हैं इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं दे पाते, समय से कटिंग नहीं करा पाते हैं। तो इनकी चलो कोई तो ऐसा इंसान है जिसने ये पीड़ा उठाया है और निशुल्क इनकी हेयर कटिंग कर रहा है, नाखून भी काट रहा है। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, धीरे धीरे मेरा मनोबल बढ़ता गया, मैं अपना काम बढ़ाता गया और आगे चल के है जो मैं धीरे धीरे जो भी मेरे पास संसाधन घट रहे थे धीरे धीरे मैंने वो बसाए।
6: स्कूल में कैंप के दौरान बच्चों की हेयर कटिंग करने के साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी समझाया जाता है। उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने, नियमित रूप से बालों की देखभाल करने और स्वच्छ रहने के फायदे बताए जाते हैं। यानी कैंची सिर्फ बालों की लंबाई कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को हेयर कट के साथ साफ सफाई का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हरियाली जो धरती की खूबसूरती भी है और जिंदगी की जरूरत भी, और इसी हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वन महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस महाभियान के तहत 12 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में 3,500 फलदार और छायादार पौधों का विधिवत रोपण किया गया। हमारी आज की अगली यानी कि छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। वन महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वन महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। वन विभाग दुर्ग वन मंडल ने इस महाअभियान के तहत 12 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण रक्षक का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में कुल 3,500 फलदार और छायादार पौधों को लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव समेत तमाम नेता पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जन प्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया और आम जन से प्रकृति संवर्धन में सक्रिय सहभागी बनने और रोपे गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल की भावुक अपील की। दरअसल केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वन महोत्सव के माध्यम से समाज के हर वर्ग को प्रकृति संरक्षण के अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पौधे बारिश लाने में मदद करते हैं और भूजल स्तर बढ़ाते हैं। ये पक्षियों और जानवरों के आश्रय देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और इनमें कई औषधीय गुण होते हैं।
9: 300 फलदार छायादार पौधों का रोपण किया गया। यह रोपण बोरसीभाटा स्थित 12 हेक्टेयर भूमि में किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण हुआ है। इस कार्यक्रम में लगभग 500 से 600 विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित रोवर रेंजर, भारत स्काउट गाइड और रेड क्रॉस के विद्यार्थी शामिल हुए और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपण कार्य में उन्होंने भागीदारी दी और वृक्षारोपण करने का एक संदेश दिया।
10: बीच शहर में एक जंगल लगभग 35,000 इसमें वृक्ष रहेंगे, एक मिलेगा जिससे पर्यावरण में बहुत मदद मिलेगा। लोगों को एक पिकनिक स्पॉट या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक का एक बड़ा स्थल बनेगा। आने वाले समय में इसको और हम डेवलप करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसके जस्ट पीछे नगर वन है, बीच में जलाशय, मरुदा जलाशय, तो कोशिश करेंगे कि मंकी ब्रिज हम बनाएं ताकि लोग इस जंगल से उस जंगल आ सके, जा सके और बड़ा पर्यटक स्थल घोषित हो।
3: उत्तर प्रदेश के आगरा में खूबसूरती और ग्लैमर का एक बड़ा आयोजन किया गया, जहां लगभग 30 देशों की मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट ने ताजमहल की खूबसूरती का दीदार किया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज, ग्लोबल सुंदरियों पर छाया ताजमहल का जादू। जी हाँ, आपको बता दें कि आगरा में बुधवार को 30 देशों की मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट ताजमहल देखने के लिए पहुंची। ताजमहल के सामने पहुंचते ही प्रतिभागियों ने अपने मोबाइल और कैमरों से तस्वीरें खिंचवानी शुरू कर दी। किसी ने ताज के सामने पोज दिया तो किसी

0: अलग अलग देशों से आई फाइनलिस्ट का ग्लैमरस अंदाज में पर्यटकों के आकर्षण का ये केंद्र रही। सुंदरियों ने ताज के मुख्य गुंबद, रॉयल गेट और आसपास के परिसर को इन्होंने देखा और इस ऐतिहासिक स्मारक की वास्तुकला को करीब से समझा। ताजमहल की खूबसूरती पर सुंदरिया मोहित भी हो गई और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत इमारत उन्होंने नहीं देखी। मिस टीन इंटरनेशनल का ग्रैंड फिनाले 30 अगस्त को जयपुर में होगा।
1: ये प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा कि हम यहाँ ताजमहल आए, सारी कंट्रीज को लेकर आए, उनको भी ये जगह बहुत सुंदर लगी। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ताजमहल हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में वन ऑफ द सेवन वर्ल्ड से बन गए में से एक। 30 अगस्त को जयपुर में हमारे इंडिया में मिस टीन इंटरनेशनल 2026 हो रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीम पैजेंट है, जहाँ पर 30 से भी ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और 30 अगस्त को हमारा ग्रैंड फिनाले है, जब हमें हमारी नई मिस टीन इंटरनेशनल 2026।
0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा? रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव, और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देशभर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष राखी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची खास राखी। काशी की गुलाबी मीनाकारी राखियों की प्रदेश में भी खूब डिमांड, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की डिमांड, स्पेन में भी काशी की राखियों का क्रेज।

0: मध्य प्रदेश के आगर मालवा की सलोनी की सराहनीय पहल, शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया आशियाना, पर्यावरण के साथ जीव संरक्षण का संदेश दिया। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दूसरी दवाएं भी C-17 ग्लोब मास्टर से नेपाल पहुंचाई गई। चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की धूम, बीजिंग में दिखा संतुलन नियंत्रण और रफ्तार का रोमांच, खेल और तकनीक का अनोखा संगम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी किसी वीडियो को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ की रेखा की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य होने के बाद मराठी न सीख पाने के चलते एक आदमी अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र छोड़कर जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसे शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक वाले को ही धमकाने लगी। क्या है सच्चाई, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। क्या है इसका सच, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।
2: महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य भर में कमर्शियल ऑटो और टैक्सी चलाने वालों के लिए बेसिक मराठी अनिवार्य कर दी है। आरटीओ के उड़न दस्तों ने पूरे महाराष्ट्र में जांच शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देशों पर जांच की जा रही है। नए नियमों के अनुसार जिन चालकों को मराठी का ज्ञान नहीं है, उन्हें पहले नोटिस थमाया जाएगा और सीखने की मोहलत दी जाएगी। तय समय में अगर चालक मराठी नहीं सीख पाया तो 3 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद भी नियम न मानने पर परमिट पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमा रहे लाखों प्रवासी चालकों में डर पैदा हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के लगेज पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता से डर के ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की तहकीकात की और सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य कर दिया है ताकि स्थानीय यात्रियों से संवाद आसान हो सके। अगस्त के महीने से प्रशासन विशेष अभियान चलाकर चालकों के मौखिक और व्यावहारिक मराठी ज्ञान की जांच भी कर रहा है और इस दौरान कई नोटिस भी जारी किए गए और इसके बाद राजनीतिक नेताओं की मांग और बैठकों के बाद इस मामले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई तुरंत सख्ती नहीं की जाएगी और चालकों को सीखने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे ट्रेन के एक नंबर पर गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वाराणसी के बीच 1 अप्रैल से 15 जून के बीच चलाई गई एक स्पेशल ट्रेन का है और अभी फिलहाल ये ट्रेन नहीं चल रही है। इससे ये तो साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हालिया नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ये कहीं ना कहीं जानकारी इसके बारे में जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने मुंबई डिवीजन के DRM से संपर्क किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि ये वीडियो पुराना है और रेलवे के मौजूदा नियमों और प्रक्रिया के अनुसार इस ऑटो को 27 अप्रैल को पार्सल के तौर पर बुक किया गया था, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बनारस जाना था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता एजाज खान ने ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल को ढूंढ निकाला और फिर कैमरे के सामने वायरल हो रहे वीडियो की सारी हकीकत सामने आ गई।
3: मैंने मराठी के चलते नहीं ले गया था, मैं कुल्ला टर्मिनल से बनारस लेके गया था बुक करके ट्रेन में। मैं वहाँ पे चलाने के लिए ले गया था और वहाँ पे 3 महीने रह के मैंने चला के देखा, हमको नहीं पड़ रहा वहाँ पे, नहीं जमा, इसलिए फिर वापस मैंने लेके चलाया।
4: मराठी की वजह से आप रिक्शा लेकर गाँव गए आप?
3: नहीं नहीं, मराठी को जैसे नहीं, अगर मराठी को जैसे मैं रिक्शा लेके गांव गया होता तो फिर लेके मैं वापस नहीं आया होता।
4: कितने साल से मुंबई में
3: आ? मुंबई में 2003 का मेरा लाइसेंस है।
2: दरअसल ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल वाराणसी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। वो कुछ निजी कारणों से गांव जाकर रिक्शा चलाने का फैसला किया था, लेकिन गांव में ई रिक्शा की संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए वो 7 अगस्त को अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र वापस लौट आए। उन्हें बेसिक मराठी आती है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने मजाक या सनसनी फैलाने के मकसद से इसमें गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ दी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल निजी कारणों से अप्रैल में अपने गांव गए थे और अगस्त में वापस महाराष्ट्र आ गए थे। मुंबई से एजाज खान के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक से कहा सुनी की उसके साथ धक्का मुक्की की। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
5: ये लड़की ना मेरी बाइक में पता नहीं क्या कर रही, देख रहे हो? देखे ये तोड़ दी। अबे देखो, मैं बहुत देर से इसको देख रहा हूं, बहुत देर से इसके पास जा रहा हूं, देख रहे हो क्या करती मेरी बाइक का पूरा चेंज कर जाना, देख रहे हो सत्यानाश कर दिया लड़की।
6: नारंगी रंग की एक बाइक को तोड़ती एक बुरखाधारी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप भागने के फिराक में होती है कि एक युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है।
5: ये क्या करी तूने? ओ मैं यहाँ से जाना मत, यहाँ से घसक मत जाना। ये क्या करी तूने? ये क्या है? ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा?
7: पहले से टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ी।
5: पहले से टूटा हुआ था? मैडम तुमको क्या दिक्कत था इसमें क्यों लग रही थी बाइक में? तुम यहाँ पे टच कर रही हो, बैठी थी तो मैंने कुछ बोल रहा था, मैं दूर से देख रहा हूँ मैडम। उसके बाद ये तोड़ दी तूने यार,
8: दिमाग है या नहीं है, ये क्या कर रही हो तुम?
6: वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग आक्रोश जताते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हिंदू युवक ने ये सारा वाक्य रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो ये महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते लिखा कि वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला बाइक तोड़कर जिस प्रकार बाइक मालिक को ही धमका रही है, बाइक मालिक ने वीडियो नहीं बनाई होती तो क्या होता, ये मुस्लिम महिला अपने घर वालों को फोन कर बुलाती और इस बाइक वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाती, फिर इसे पीटा जाता। दो चार सेक्युलर हिंदू भी बिना सच जाने इस युवक को कूट कर पुलिस के हवाले कर देते।
8: अभी बुला पुलिस को।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
8: तो दो मिनट में पुलिस भी आ जाएगी, तुम अगर यहाँ से जाओ, नहीं आप जाओ, मैं पुलिस को बुला दूंगा, आगे ही पकड़े जाओगे, बता रहा हूँ तुमको। इसने तोड़ी है, तूने तोड़ी है, यस या नो बता दो। नहीं तोड़ी है तूने? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठी थी।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि बुरखा पहनी एक महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप वहां से भागने की फिराक में होती है, तभी युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है और वीडियो को शेयर करने के बाद कई लोग आक्रोश भी जताते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हिंदू युवक ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में एक जगह ये नजर आता है कि जब महिला बाइक के अगले हिस्से को तोड़ रही होती है तभी वहां पर एक बाइक सवार गुजरता है, लेकिन वो कुछ दूर पहले ही बाएं मुड़ जाता है, मानो उसे इशारा कर दिया गया हो कि यहां पर शूट चल रहा है। इसके लिए कैमरे की फ्रेम में आप मत आओ। वीडियो को देखने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि कहानी के हिसाब से सारे वाकये को शूट किया गया है, क्योंकि किसी सड़क पर महिला सरेआम ऐसी हरकत करेगी तब उसे पकड़ा जाएगा तो वो शोर मचाएगी जाहिर से बात, और उसे सुनकर लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमें वीडियो पर शक हुआ, हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। इस वीडियो का सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे मिलता जुलता वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो में भी वही महिला है, वही नारंगी बाइक है और वही लोकेशन है। दरअसल इस तरह के वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स अक्सर एक ही कहानी पर अलग अलग कलाकारों के साथ कई वीडियो शूट कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग अकाउंट से शेयर करते हैं ताकि सभी एक्टर्स के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को एंगेजमेंट मिल जाए। सर्च के दौरान हमें कई और वीडियो भी मिले जिनमें ठीक वही महिला एक्टर बुरखा पहने हुए दिख रही है। बाइक तोड़ने वाले वीडियो से ठीक पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला जिसमें एक लड़की स्कर्ट टॉप पहने हुए उसी बाइक पर बैठी है। उसके जूते और फोन वायरल वीडियो वाली बुरखा पहनी महिला से मेल खाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला
0: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चे का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों जापान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 1800 लोग मिलकर 360 टन वजनी एक विशाल ऐतिहासिक किले को रस्सियों से खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर पर तौलिया और टोपी पहने सैकड़ों लोग 30 मीटर लंबी रस्सियों को पकड़े हुए पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। पीछे एक बहुमंजिला विशाल जापानी किला पटरियों और रोलर्स पर टिका हुआ है। जैसे ही 80-80 लोगों की टीमें एक साथ सोरे सोरे के पारंपरिक जापानी नारा लगाते हैं, 360 टन का भारी भरकम किला धीरे धीरे आगे की ओर खिसकने लगता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में एक रेड पॉइंटर और स्केल दिखाई देता है, जिसमें मिलीमीटर दर मिलीमीटर किला आगे बढ़ते हुए साफ नजर आ रहा है। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया है। बताया जा रहा है कि घटना जापान के ओमोरी प्रांत में स्थित ऐतिहासिक हिरोसाकी किले की है। ये किला 1611 में बनाया गया था और इसे जापान की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। दरअसल भूकंप के कारण किले के निचले हिस्से की मुख्य पत्थर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दीवार की मरम्मत करने के लिए 2015 में किले के मुख्य टावर को उसकी मूल जगह से 70 मीटर से अधिक दूर खिसकाया गया था। 2185 पत्थरों को जोड़कर फाउंडेशन और पत्थरों की दीवार दोबारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो इस 360 टन के किले को वापस उसके असली जगह पर स्थापित किया जा रहा है। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और 2 मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।

0: Indore to catch my bus to Delhi. My mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas. Because she knows that I can't have anything without namkeen.
1: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे, वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इंदर एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा। रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का क्या होगा प्रभाव और ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले आपको दिखाएंगे तस्वीरें रक्षाबंधन के पर्व की। भाई बहनों का पवित्र ये त्योहार रक्षाबंधन कल है, तैयारियां कैसी हैं आगे दिखाएंगे। अंतिम पड़ाव पर अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को होगी, पवित्र गुफा में आखिरी पूजा, और साथ ही साथ आपको गणपति उत्सव की रौनक दिखाएंगे जो अभी से ही दिख रही है। खेतवाड़ी की 47 फीट के विघ्नहर्ता के दिव्य दर्शन कीजिए जो इस बार नरसिंह अवतार में दर्शन देने वाले हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
2: देशभर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक, उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखी, अयोध्या में प्रभु राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी।

काशी की गुलाबी मीनाकारी राखियों की विदेशों में भी धूम। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की डिमांड। स्पेन में भी काशी की राखियों का क्रेज। गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। मध्य प्रदेश के आगरमालवा की सलोनी की सराहनीय पहल। शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए बनाया आशियाना। पर्यावरण के साथ साथ जीव संरक्षण का भी दिया संदेश। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप। करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात रक्षाबंधन की। यह त्यौहार अब से कुछ ही घंटों के बाद देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही इसकी रौनक देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आने लगी है। बाजारों में इस वक्त अच्छी खासी भीड़ है। महिलाएं भाइयों के लिए राखियां खरीदने पहुंची हैं, जबकि सरहद पर तैनात जवानों को राखी बांधने की शुरुआत हो चुकी है। और तो और मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जेलों में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की तैयारी की गई है।

0: भाई बहनों का खत्म हुआ इंतजार,
1: आ गया रक्षाबंधन का त्योहार। जेल हो या सरहद, बाजार हो या मंदिर, रक्षाबंधन की रौनक हर जगह दिखाई देने लगी है। जिसकी एक तस्वीर सरहदी राज्य पंजाब के फिरोजपुर से सामने आई, जहां छात्राओं ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो जवानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। देश की सुरक्षा में डटे ये बीएसएफ जवान अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात सीमा पर ड्यूटी निभा रहे हैं। कई बार ड्यूटी के चलते वो अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते हैं, इसीलिए इन छात्राओं ने जवानों को राखी बांधकर उनके लिए ये दिन खास बना दिया।
2: बहुत अच्छा लगा कि हम इतने दूर घर से हैं, तो हमें भी बहनों की याद आती है, तो एक इस कमी को पूरा करने के लिए जो मेरी छोटी बहन आई है आज, और उन्होंने हमें रक्षाबंधन का त्योहार में जो मुझे दिखलाई स्टेशन की प्रोग्राम की, बहुत अच्छा लगा।
3: मैं बहुत खुश हूँ, हमारे सारे जवान बहुत खुश हैं, उन्होंने एक मनोरंजक गेम भी खिलवाए काफी सारे हम सभी के बीच में, और एप्रिसिएट किया, एंटरटेन किया, ड्यूटी से हट के कुछ अलग किया आज हमने, तो अच्छा लगा।
4: जो यहाँ पर सरहद पे खड़े जवान हैं वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं, और हमने कोशिश की है कि हम उन्हें रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे उन्हें अपनी बहनों भाइयों और अपनी फैमिली की याद आती है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनकी इस कमी को पूरा कर सके।
0: फिरोजपुर की तरह ही बिहार के दानापुर में भी छात्राओं और स्वास्तिक परिवार की बहनों ने बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवानों की कलाई पर राखी बांधी। साथ ही छात्राओं ने जवानों को राखी के साथ शुभकामना संदेश वाले कार्ड भी दिए। जवानों की कलाई पर बंधने वाला ये धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि पूरे देश की हिम्मत, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये स्नेह सैनिकों को कठिन से कठिन हालात में देश की रक्षा करने का हौसला देता है।
5: हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि सैनिकों को राखी बांधने का, अपना अफेक्शन को शो करने का, एंड बहुत रिस्पेक्टफुल चीज था हमारे लिए ये, कि कैसे वो बॉर्डर पर रहते हैं एंड हम अपने रिस्पेक्ट उनको शो करते हैं।
6: यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया था, बट यहाँ पर आए सारे फौजियों के साथ रहना मुझे अच्छा लगा बहुत। ये एक तरह से देखते तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि हम लोग जैसे बॉर्डर पर हम लोग के जैसे सैनिक है वो अपनी बहनों के पास नहीं जा पाते, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम वहाँ के लोगों को राखी बांध सकते हैं या फिर भेज सकते हैं, इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा।
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार देश के अलग अलग मंदिरों में भी मनाने की तैयारी कर ली गई है। सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद भक्त भगवान को राखी बांधी जाएगी। ऐसी ही एक विशाल राखी चंडीगढ़ सेक्टर 40B में मौजूद श्री हनुमंत धाम के लिए तैयार की जा रही है। यहाँ इस बार 32 फीट ऊंचे वीर हनुमान जी के लिए 12.5 फीट की राखी तैयार की जा रही है। इस विशाल राखी को तैयार कर रही नीना तिवारी ने बताया कि ये राखी पूरी तरह इको फ्रेंडली है।
7: 32 फुट के हमारे वीर हनुमान जी हैं, उनकी कलाई पर रखड़ी बांधने के लिए हम भी एक कम से कम पहले एक महीना तक प्लानिंग करते कि क्या बनानी, कैसे बनानी है, और हमें हमारे ये 12-15 दिन तो हम इस देखा आप देख रहे हैं कि राखी को बनाने में हम लग जाते हैं। हमारी बहनें कम से कम रोज 5-6 घंटे तो रोज लगाती हैं, जैसे सुबह ही आ जाती है, और लंच वगैरह हम यही करते हैं, अपना घर से लेकर आते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इको फ्रेंडली राखी हम लोग बनाते हैं।
0: वही रक्षाबंधन का ये त्योहार हर साल देश की जेलों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इसकी तैयारी की गई है। यूपी के गाजियाबाद की जेल में ये तैयारी देखने को मिली, जहां जेल में बंद कैदियों ने राखियां तैयार की हैं, जिन्हें करीब 15,000 बहनों तक पहुंचाया जाएगा। राखी तैयार करने से लेकर उसकी सजावट और पैकिंग तक हर काम में कैदियों की मेहनत और हुनर साफ नजर आता है।
8: आप ये राखियां देख रहे हैं, लगभग 15,000 राखियां इन कैदियों ने अपने हाथों से तैयार कर दी हैं। जब आप कोई राखी खरीदते हैं बाहर तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि किसने बनाया, इन राखियों पर भी लिखा है। इन राखियों को आप उठाएंगे तो इनके रैपर पर लिखा हुआ है बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद, जिला कारागार गाजियाबाद। इन राखियों को 18 पुरुष और 11 महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है और अब जेल के बाहर ही इस तरह से स्टॉल लगाकर इन राखियों को रखा गया है। अगर कोई भी बहन मिलने आती है अपने भाई से रक्षाबंधन पे तो वो यहाँ से इन राखियों को खरीद सकती है। कीमत बहुत कम रखी गई है, महज 10 रुपए की ये एक राखी है और यहाँ से खरीद कर ही वो महिलाएं अंदर जाकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं।
1: इस पहल का मकसद सिर्फ त्योहार के लिए राखियां तैयार करना नहीं बल्कि कैदियों को हुनर से जोड़ना और समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका देना भी है। कभी जिन हाथों पर अपराध का दाग लगा था आज वही हाथ भाई बहन के प्यार का प्रतीक तैयार कर रहे हैं।
8: डासना जेल सुप्रिंटेंडेंट सीताराम शर्मा जी मेरे साथ में है। सर, बहुत ही शानदार पहल की कैदियों को हम सोचते हैं कि जो जेल के अंदर गया वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उनको लगातार एक्टिव रखना, किसी न किसी काम में लगाए रखना बड़ी अच्छी बात है। इन कैदियों को कितने दिन पहले ट्रेनिंग दी गई, कितने दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर कैसे काम शुरू हुआ?
9: देखिए, कारागार की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है और यहाँ व्यक्ति जिन परिस्थितियों में भी आया, जाने अनजाने उसे कोई भी सामाजिक विधिक मानदंडों का उल्लंघन हुआ, उसके बाद वो यहाँ कारागार में, तो वो खुद को और बेहतर बना पाए और जो उद्देश्य होता है कारागार का यह है कि वो लायबिलिटी बन गया समाज पर, जब बाहर जाए तो लायबिलिटी ना रहे, एक असेट बन के जाए। इसी क्रम में उनके जो मानव तत्व है उसको उभारना हम लोग का काम होता है और उनकी टैलेंट को देखना कौन किस काम में इंटरेस्टेड है। तो अभी चूंकि राखी का त्यौहार था यहाँ, तो राखी बनाने के लिए कुछ बंदियों का चयन किया गया जो इच्छुक थे, तो इस तरह 18 पुरुष बंदी और 11 महिला बंदियों को प्रशिक्षण दिलाया गया विगत माह।
1: आज रक्षाबंधन का दायरा केवल सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि दोस्तों और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। देश के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें यही संदेश दे रही हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया, फिरोजपुर से अक्षय कुमार, मनेर से मनोज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: आगे बढ़ते हैं बात उस धार्मिक यात्रा की जिसका समापन अब से कुछ ही घंटों बाद होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की जिसके समापन की घड़ी नजदीक आ गई है। इस दौरान यात्रा के समापन से जुड़ी छड़ी मुबारक यात्रा सुबह अमरनाथ गुफा पहुंचने वाली है जिसके बाद यात्रा का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन यानी कल होगा।

0: जिस उत्साह और उमंग के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का श्री गणेश 3 जुलाई को हुआ था, ठीक उसी उत्साह और भक्तिभाव के साथ यात्रा का समापन अब से कुछ घंटों बाद होने जा रहा है।
1: बम, बम, बोले, बम, बम, बोले, बम, बम, बोले।
0: यात्रा के समापन के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से रवाना हुई छड़ी मुबारक यात्रा अब अपने मंजिल के बेहद करीब पहुँच चुकी है, जिसकी ये सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें दशनामी अखाड़े के साधु संत भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हाथों में पवित्र चांदी की गदा लेकर अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं।
1: हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये छड़ी मुबारक यात्रा सालाना अमरनाथ यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होने से पहले दशनामी अखाड़े के शिविर में साधु संतों ने विशेष पूजा पाठ की।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा कल यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने वाली है। इस बीच छड़ी मुबारक अब पंचतरणी पहुंच चुकी है। पंचतरणी में पूजा और रात के रुकने के बाद कल सुबह छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेगी और अमरनाथ गुफा में ही अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी।
0: ये छड़ी मुबारक भगवान शिव की पवित्र चांदी की गदा है, जिसे शिव जी की अलौकिक शक्तियों का वाहक माना गया है। इसमें शिव की दिव्य उपस्थिति निहित मानी जाती है। ये भक्तों को आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यही वजह है कि इस पवित्र चांदी की गदा को साधु संत बहुत भक्तिभाव के साथ पवित्र गुफा तक ले जाते हैं और फिर वहाँ इसकी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन हो जाता है।
3: देवता लोग पहले से छड़ी को लेकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी ऋषियों के साथ कैलाश में जाकर भगवान शिव की अर्चना करते थे और उनकी स्तुति करते थे। वही परंपरा आज भी प्राचीन ऋषियों के मत के अनुसार यहाँ पर प्रवाहित की जाती है और इसका मेन उद्देश्य सारे समाज, सारे मजहब, सभी जातियाँ, सभी देश इकट्ठे होकर एक सूत्र में बंधकर एक होकर बिना क्राइम के, बिना नफरत के, बिना किसी पाखंड के सभी जीवन व्यतीत करें।
0: छड़ी मुबारक की ये यात्रा न केवल एक जरूरी धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भक्ति, समर्पण, एकता और कश्मीर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है, जिसे हर साल अमरनाथ यात्रा के समापन पर इसी भक्ति भाव के साथ निभाया जाता है। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में करीब 4,80,000 तीर्थयात्री पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है।
2: आखिरी यानी शुक्रवार को वो छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी, जहां पर उस छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा की छड़ी के साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी सफर कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी।
4: बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति, मुंबई के दिव्य और भव्य गणेश पंडालों तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इनमें खेतवाड़ी की 11वीं गली में स्थापित होने वाले गणपति बप्पा की भी गिनती होती है, जिन्हें खेतवाड़ीचा, लंबोदर और मुंबईचा महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंडल अक्सर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है। इस बार भी यहां भगवान गणेश नरसिंह अवतार में विराजमान हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 47 फीट तक है। हर साल यहाँ बप्पा की मूर्तियों को बेहद अनोखे और भव्य रूप में तैयार किया जाता है। इस दौरान किसी देवी देवता के अवतार का रूप बप्पा को दिया जाता है।

0: बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक। बप्पा का अपने दिव्य और भव्य पंडालों में आगमन शुरू हो चुका है। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति का शुभागमन हो चुका है। गणेशोत्सव से करीब 15 दिन पहले से ही खेतवाड़ी 11वीं गली में गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष सुनाई देने लगा है। वहां लगातार भगवान गणेश के प्रति आस्था और अगाध प्रेम से जुड़ी भावनाओं का संचार हो रहा है। बप्पा के आगमन के दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा और पूरा परिसर गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठा। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति के आस्था, भक्ति और आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। वैसे गजानन की भक्ति की कोई सीमा या परिधि नहीं है। खेतवाड़ी की 11वीं गली का मंडल अपनी भव्य और विशाल मूर्तियों के लिए पूरे मुंबई में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के लिए यहाँ विघ्नहर्ता की सबसे आकर्षक और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर वर्ष यहाँ बप्पा देवी देवताओं के अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस बार विनायक की विशाल प्रतिमा को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में स्थापित किया गया है। यानी गजानन का ये स्वरूप उग्र होने के साथ ही दिव्य और भव्य भी है। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 47 फीट है।
1: गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य अगले महीने यानी कि 14 तारीख से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश महाउत्सव यानी कि गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है। शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम हमेशा रोज ही अपनी खबरों में बताते हैं कि गणेश जी की जो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडालों में लाने का काम भी शुरू हो गया है। इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा और अत्यंत भयंकर अवतार है जिसमें उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का धारण किया था ताकि भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्यकश्यप का वध किया जा सके। ऐसी परंपरा है कि मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्त खेतवाड़ी की गलियों में बप्पा के अलग अलग रूपों के दर्शन करने जरूर आते हैं और यही वजह है कि हर साल बप्पा नए अवतारों में दिखते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़ी ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
2: हम लास्ट 25 साल से भी ज्यादा हमें अनुभव हुआ है कि हम टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और लास्ट 5 साल से तो हम महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और उनका कंटिन्यू अवार्ड लेते हैं। और इसमें इस साल हमने नरसिम्हा अवतार बनानी है क्योंकि हम हर एक साल अलग अलग अलग अवतार हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि जो यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं तो उनको अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे।
1: अच्छा, इसके पहले कौन से अवतार में बप्पा आ चुके हैं जिनके लिए आपने अवार्ड्स लिए?
2: उनके पहले आए हैं परशुराम अवतार आए हैं, फिर इंद्र अवतार बनाए हैं, फिर उसके बाद एक कल्कि अवतार बनाए हैं। कल्कि अवतार के बाद लास्ट ईयर स्वानंद देसाई, जो गणपति का खुद मूल स्थान है स्वानंद देसाई, वो रूप में गणेश जी की विराजमान की थी। वो भी 45 फीट की थी, इस बार 47 फीट की है। यहाँ पे इस बार नरसिम्हा अवतार की मूर्ति बनाई।
0: 47 फीट ऊंची प्रतिमा को अस्तित्व में लाना आसान कार्य नहीं था। निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिमा से जुड़ी कई बारीकियों का खास ख्याल रखा जाता है। इनमें गदा, त्रिशूल, चक्र और तलवार जैसे अस्त्रों का संयोजन शामिल होता है।
2: जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति के हम लोग करीबन 25 साल से, मैंने आपको कहा कि बड़ी मूर्तियां स्थापना करते, हम यहाँ पे ही हमारे नज़र के सामने ही मूर्ति बनाते। हमारे मूर्तिकार है सुनील वराड़कर जी। मैं और सुनील वराड़कर जी 2 महीने से शुरुआत करते हैं और उसमें कि उसका बैलेंस कैसा रहता है, उनके शस्त्र उनके जो बैलेंस रहता है उनको कैसे नियोजन करते हैं, उसमें सपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसमें बहुत से रोल काम करते हैं। पहले कास्टिंग करते हैं, जो टीम रहती है पहले कास्टिंग की टीम काम करती है, कास्टिंग की टीम काम करने के बाद जॉइंटिंग करती है, जॉइंटिंग करने में वेल्डर की बहुत महत्व की भूमिका रहती है। उसके बाद जो आते हैं पॉलिश करने वाले, जो टीम आती है उसके बाद जो पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद कलर के काम करने वाले, कलर की टीम आती है, कलर टीम करने के बाद ही मंडल को सौंपा जाता है।
0: खेतवाड़ी की गलियों में स्थापित पंडालों की सजावट भी बहुत मशहूर है। यहाँ के पंडालों में आधुनिक लाइट और पौराणिक कथाओं की सुंदर सजावट की जाती है और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंडाल की सजावट का विशेष ख्याल रखा जाता है। हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी थीम पर ही खेतवाड़ी की 11वीं लेन के गणपति पंडाल की सजावट होगी
1: और डेकोरेशन भी नरसिंह अवतार से ही आसपास के संबंधित होगा।
2: हाँ जी, नरसिंह अवतार के जो रिलेटिव्स जो भी है, हिरण्यकश्यप और उनके जो वध किया था, उस रिलेशन में ही हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे।
0: भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। गणेशोत्सव में 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में हर मूर्तिकार की तरफ से गणेश प्रतिमाओं को अलग रूप दिया जा रहा है।
1: आप बताएं, बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपकी व्यस्तता चल रही है, कैसा चल रहा है आपका?
3: बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है।
1: अच्छा, तो कितनी अभी तक गणेश जी की प्रतिमाएं आप बना चुके हैं, जो पंडालों में आपने भेज भी दिया है, और थोड़ा बताएं डिटेल।
3: काफी कम मूर्ति अभी तक निकली है, मतलब एक टेलर ही हुआ, शुरुआत हुई है अभी। इस संडे से ज्यादा के आगमन शुरू हो जाएंगे, ये संडे, अगला संडे, ये दो संडे काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अभी ये दो संडे में काफी सारी मूर्तियां, जो मुंबई की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बिगेस्ट पंडाल है, उनके आगमन शुरू हो जाएंगे।
1: अभी इस समय पंडाल में भी होंगी बहुत सारी मूर्तियां बनकर रेडी हो चुकी
3: है, कई सारी मूर्तियां हैं, मतलब मुंबई के बिगेस्ट मंडल जो है उनकी मूर्तियां अभी ये संडे अगले संडे जाने बाकी।
1: थोड़ा सा दो चार नाम बताएं ताकि लोग आकर के इंतजार करें, मूर्ति निकले तो लोग वहां पे शामिल हो। कौन से वो बड़े मंडल है?
3: परेल वर्कशॉप से मुंबई के दिग्गज मंडल है, उनकी मूर्तियां जाना बाकी है, जैसे चिंतामणि हुआ, गंधराज हुआ, धावी खेतवाड़ी गली, खेतवाड़ी दसवीं गली, ओम तांडव हुआ, ऐसे बिगेस्ट मंडलों की मूर्तियां अभी तक यहाँ से जाना बाकी है।
1: अच्छा, अभी बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या सबकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं?
3: और कुछ मूर्तियां तैयार है और बाकी मूर्तियों का काम चल रहा है।
1: कितने कितने समय तक आप काम करते हैं और कितने लोगों के साथ कर रहे हैं?
3: अभी 24 घंटे काम चल रहा है।
0: मुंबई के परेल में गणेश प्रतिमाओं से जुड़ा एक परिसर मौजूद है जिसे मुंबई का सबसे बड़ा गणपति वर्कशॉप कहा जाता है। मूर्ति कला के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक केंद्र में मुंबई के सबसे मशहूर पंडालों के लिए विशालकाय और भव्य मूर्तियां तैयार होती हैं। और यही वजह है कि इन मूर्तियों से जुड़ी इस कार्यशाला में 24 घंटे काम चल रहा है। 14 सितंबर से 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुनावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की और इसके महिमा की, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 9:48 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण कोई विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, एक उप छाया ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है। ये उप छाया ग्रहण 28 अगस्त को प्रातः 6:53 पर आरंभ होगा और इसका समापन पूरी तरीके से दोपहर में 12:31 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ये जो उपछाया ग्रहण है ये भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। एक तो वैसे ही ये उपछाया ग्रहण है और दूसरा चूंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा इसीलिए किसी भी प्रकार के सूतक के नियम या किसी भी प्रकार की सावधानियां इस ग्रहण में लागू नहीं होंगी। किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है और 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं है और रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः रक्षाबंधन पर भद्रा का विचार किया जाता है, रक्षाबंधन पर भद्रा महत्वपूर्ण होती है और भद्रा 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे समाप्त हो जाएगी। तो 28 अगस्त को आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट, कोई मनाही, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से आपको बचना चाहिए, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले एक पक्ष से 15 दिन से लेकर एक महीने तक रहेगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव मध्यम रहेगा। इनको अपने करियर और अपने रिश्तों का ध्यान देना होगा। मेष, वृषभ, कन्या और धनु, मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अनुकूल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इनको करियर के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इनको अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा और इन लोगों को इस समय बड़े निर्णयों में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके बड़े निर्णय गड़बड़ हो सकते हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण का प्रभाव बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है, मान सम्मान आपको मिल सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, बेवजह की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में धैर्य बनाए रखें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यतः बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई की मंगल कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं और बहन की रक्षा और सुरक्षा का वचन भी देते हैं। प्राचीन परंपरा ये है कि ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधी जाती है और उनकी मंगल कामना की जाती है। जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं वो यजुर्वेद का पाठ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पर्व से करते हैं। तो मुख्यतः रक्षाबंधन के पर्व पर एक तो भाई बहन की आपसी संबंध, उनकी आपसी सुरक्षा हो जाती है, और अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं तो रक्षाबंधन का पर्व उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधें, पहले रक्षा सूत्र को भगवान को समर्पित करें और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधेंगी। ऐसा करने से उनके संबंध मधुर बने रहेंगे, उनके संबंधों में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। रक्षा सूत्र बांधने के पहले बहनों को उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का वो पर्व जिसमें एक धागा रिश्ते को अटूट बंधन में बांध देता है, लेकिन जब यही रक्षा सूत्र आराध्य देवों की कलाई पर सजता है तो आस्था का रंग और भी गहरा हो जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फीट की भव्य राखी तैयार की, तो वहीं अयोध्या में भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से विशेष राखी रामलला तक पहुंचाई जा रही है। 2 शहर 2 परंपराएं, लेकिन भाव केवल एक भाई बहन का पवित्र प्रेम। भजनों की मधुर धुन के बीच महिलाएं राखी को आकार देती नजर आती हैं। बाबा के नेत्र त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू, त्रिपुंड, ओम, स्वास्तिक, मोरपंख और मोतियों के साथ रेशमी कपड़े से इसे सजाया गया है। कहीं राजा महाकाल का रूप है तो कहीं श्रीनाथ जी की छवि। रामनगरी अयोध्या, जहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से भेजी गई विशेष राखी रामलला तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालु राखी लेकर नाचते गाते रामनगरी पहुंचे और फिर इसे रामलला के पुजारियों को सौंपा गया। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की जाएगी, जिसके बाद श्रृंगार आरती के बाद रामलला को ये राखी बांधी जाएगी। 2 तस्वीरें 2 जगहों पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पक में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पक पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश भर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखी, अयोध्या में प्रभु राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। काशी की गुलाबी मीनाकारी, राखियों की विदेशों में धूम, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की डिमांड, स्पेन में भी काशी की राखियों का क्रेज। गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां तेज, राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत, मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की 2री खेप, करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कोटा के नन्हे पर्यावरण प्रहरी लक्ष्य की भी है जिन्होंने आम की गुठलियों से हरियाली लाने का संकल्प लिया है।
5: पर्यावरण के खतरों से सब वाकिफ हैं, पर उसे बचाने की कोशिशें कम नजर आती हैं। लेकिन कोटा के इस छोटे से बच्चे ने एक ऐसी पहल की है कि लोग इन्हें नन्हा पर्यावरण प्रहरी तक कहने लगे हैं। इनका नाम लक्ष्य है। पीएम मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित लक्ष्य ने संकल्प लिया आमों की गुठली से पेड़ उगाने का, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने 5 जून को मिशन 1008 आम के पेड़ की शुरुआत की और महज 12 दिनों में ही 1008 गुठलियां जमा कर ली। इसके बाद अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में इनकी बुआई की गई। बोई गई कई गुठलियां नन्हे पौधों के रूप में अंकुरित हो चुकी हैं। लक्ष्य के संकल्प की अब हर तरफ चर्चा है। लोग मान रहे हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए बड़े संसाधन ही जरूरी नहीं, मजबूत इरादा और एक छोटी सी कोशिश भी मायने रखती है। समाज सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, चाहो तो कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ इन्होंने भी अपने हुनर को समाज सेवा का जरिया बना लिया। कोटा के बलिता इलाके में रहने वाले इस दंपति का नाम ब्रजेश और ममता सेन है। दोनों पार्लर चलाते हैं। मन में समाज को कुछ देने की चाह थी, सो कैंची और कंघी लेकर ही मैदान में उतर पड़े। उनके मुताबिक बच्चों का साफ सुथरा रहना, आत्मविश्वास के साथ स्कूल आना और किसी बच्चे को उसके आर्थिक हालात की वजह से अलग महसूस न होने देना भी समाज सेवा का हिस्सा है। इसलिए दोनों सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के निःशुल्क हेयर कटिंग कर रहे हैं। साल 2024 में शुरुआत की और अब तक 116 सरकारी स्कूलों और आश्रमों में लगभग 15,500 बच्चों की निःशुल्क हेयर कटिंग कर चुके हैं। ये पहल अब कोटा में समाज सेवा की ऐसी मिसाल बन रही है जिसमें न कोई बड़ा मंच है न दिखावा, बस कैंची कंघी सेवा का भाव और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। केरल में कासरगोड के गुरुपुरम महाविष्णु मंदिर में आया ये नया हाथी लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसका नाम गुरुपुरम अर्जुनन है। असल में ये एक रोबोटिक हाथी है जो करीब 11 फीट ऊंचा और 800 किलो वजनी है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिल्कुल असली हाथी की तरह लगे। ये सिर, पूंछ, आंख, मुंह और कान सब हिला सकता है। सूंड से पानी की बौछार भी कर सकता है। इस हाथी पर 4 लोग तक बैठ सकते हैं। इसे बनाने में 5,00,000 रुपए का खर्च आया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस मैकेनिकल हाथी को अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने मंदिर को दान में दिया है। साई बाबा में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है। अपनी मुराद पूरी होने पर वे साईं बाबा को दिल खोलकर दान भी देते हैं। साईं बाबा मंदिर को मिले एक से बढ़कर एक अनूठे दान की अक्सर चर्चा भी होती है। इस बार चर्चा उन्हें चढ़ावे में मिले इस सोने और हीरे वाले ब्रोच की है। 75 ग्राम वजनी इस सोने और हीरे जड़े ब्रोच की कीमत करीब 11,19,000 रुपए बताई जा रही है। इस ब्रोच को इटली से आए एक शख्स ने दान किया है, हालांकि वो रहने वाले दिल्ली के हैं। इनका नाम सतीश कुमार चांदना है। गणेशोत्सव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मूर्ति बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। कर्नाटक के तेनकाशी में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तिकार रंग बिरंगी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
3: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में आई आपदा के बाद वहां बचाव और राहत का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल सेना प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक कुल 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। इस बीच भारत ने सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है और तत्काल करीब 50 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को $20,00,000 की मदद भेजने का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के दूसरे देश भी इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

0: सुरगढ़ी से सुना यार मतलब मुझे 9 बजे करीब में इधर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पूछेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
1: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटी सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
2: नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोवो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूंगी, जरा आगे की देखिए, यहां से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो है जिसमें नेपाली आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से खड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे।
1: राहत कर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं।
2: जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा, अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ, अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है, आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी।
1: राहत और बचाव कार्य की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रिसवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं।
3: जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए।
1: हवाई तस्वीरों से भी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे। घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं।
2: जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान, क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहाँ देखिए, किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनके की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग।
1: इस बीच नेपाल की पुलिस और स्थानीय राहत कर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने भी पड़ोसी देश में राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को नेपाल भेजा। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था।
4: देखिए, कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में, तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटीरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब लिर मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
1: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई मुसीबत के बाद उसका सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से नेपाल को $5,00,000 देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गृह मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आई इस आपदा के बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचना शुरू कर दिया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: पीएम मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू किया जाएगा और बच्चे की रुचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकार हर तरह का सहयोग देगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव पर प्याज की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। यह मौजूदा बाजार भाव से 44% कम है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बेच रही है। नेपाल और तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाखंग में आयोजित की गई। इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक पुंछ के दशनामी अखाड़ा से चलकर राजपुरा मंडे स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ जी तीर्थ स्थल पर पहुंच गई है। ये पवित्र छड़ी यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। छड़ी मुबारक के मंडी पहुंचने के साथ ही इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई है जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है ताकि उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना न पड़े। सलोनी की शादी जून में हुई थी। उन्होंने इससे पहले पंछियों के लिए यह घर बनवाया।
5: और अब बात रक्षाबंधन की। राखी का त्यौहार बस अब से कुछ ही घंटों बाद देश भर में मनाया जाएगा, लिहाजा इसकी रौनक देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आने लगी है। देश भर के बाजारों में बड़ी संख्या में महिलाएं भाइयों के लिए राखी खरीदने पहुंची हैं। बाजारों में अलग अलग रंग और डिजाइनों की राखियां मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड डिजाइनर राखियों की है। जबकि सरहद पर तैनात जवानों को राखी बांधने की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधने की तैयारी कर ली गई है।

0: आ गया रक्षाबंधन का त्योहार, खत्म हुआ भाई बहनों का इंतजार। बाजार हो या मंदिर, जेल हो या सरहद, रक्षाबंधन की रौनक हर जगह दिखाई देने लगी है। कहीं रंग बिरंगी राखियों की चमक है तो कहीं मिठाई और उपहारों की खरीदारी को लेकर उत्साह है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर बाजार राखियों से सज गए हैं। जनपद से लेकर लाजपत नगर के बाजार तक बहने अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। वहीं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में त्योहार से पहले खरीदारी का उत्साह देखते ही बन रहा है। परिवार के साथ लोग बाजार पहुंच रहे हैं, राखी के साथ मिठाई, कपड़े और गिफ्ट की खरीदारी भी कर रहे हैं।
1: ब्रदर के घर जाएंगे, राखी बांधेंगे। हमारे तो बहुत सारे, हाँ, शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे हम।
2: भतीजे,
1: अच्छा लगता है यहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है।
2: राखी वाखी ठीक है मार्केट में?
1: राखी अच्छी है, कपड़े भी अच्छी, कलेक्शन अच्छी है।
3: भाई लोग आएंगे, राखी बांधेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। यही हमारा भाई के लिए तो मार्केटिंग करने के लिए है कि मिठाई होना चाहिए, राखी होना चाहिए।
2: उत्साह नजर आ रहा है, भीड़ है
3: मार्केटिंग में तो भीड़ है, मेहंदी वाले के पास भीड़ है, कपड़े वाले के पास भीड़ है।
0: हरियाणा में करनाल के बाजारों में भी रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में बढ़ती भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि भाई बहन के इस खास त्योहार को लेकर लोगों में कितना उत्साह है।
4: एक भाई है जिसपे बहन पूरा ट्रस्ट कर सकती है आजकल के समय में, तो राखी के जरिए बस हम अपना अच्छा वो बताते हैं कि इतना अच्छा बॉन्ड है।
5: बाजार में कितना क्रेज है?
4: बहुत क्रेज है, क्योंकि स्पेशली गिफ्ट के लिए बहने होती है कि हाँ हमें गिफ्ट मिलेगा, तो इसमें से ज्यादा क्रेज होता है। बाकी ये होता है कि अपने भाई को कुछ ऐसा दूं कि हमारा भाई भी खुश हो और हम भी उसका खुश हैं।
0: महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी राखी के बाजार सज चुके हैं। यूपी के औरैया में बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करने निकल पड़ी हैं, जिससे बाजारों की रौनक बढ़ गई है। यहाँ अलग अलग रंग की कई तरह की राखियाँ मिल रही हैं।
6: तो मैं जो बहनें राखियाँ भाई के लिए खरीद रही अपने पसंद या भाई भी आते साथ में
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार देश के अलग अलग मंदिरों में भी मनाने की तैयारी कर ली गई है। सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद भक्त भगवान को राखी बांधी जाएगी। ऐसे एक विशाल राखी चंडीगढ़ सेक्टर 40B में मौजूद श्री हनुमंत धाम के लिए तैयार की जा रही है। चंडीगढ़ में बहनें वीर हनुमान के लिए राखी तैयार कर रही हैं। 32 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को बहनें राखी बांधेंगी, जिसके लिए करीब 12.5 फीट लंबी विशाल राखी तैयार की जा रही है। इस विशाल राखी को तैयार कर रही नीना तिवारी ने बताया कि ये राखी पूरी तरह इको फ्रेंडली है।
7: हमारे ऐसे घर में हमारे भाई तो है ही है, लेकिन हमारे ये हनुमत धाम में हमारे महावीर जो कि पूरी सृष्टि के कलयुग के साक्षात भगवान है, वो हमारे महावीर भाई हैं। तो हम अपने भाई के कलाई पर 32 फुट के हमारे वीर हनुमान जी हैं, उनकी कलाई पर रखड़ी बांधने के लिए हम भी एक कम से कम पहले एक महीना तक प्लानिंग करते कि क्या बनानी, कैसे बनानी है। और हमें हमारे ये 12-15 दिन तो हम इस देखा आप देख रहे हैं कि राखी को बनाने में हम लग जाते हैं। हमारी बहनें कम से कम रोज 5-6 घंटे तो रोज लगाती हैं, जैसे सुबह ही आ जाती है और लंच वगैरह हम यही करते हैं, अपना अपना घर से लेकर आते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इको फ्रेंडली राखी हम लोग बनाते हैं।
0: शहर नगर ही नहीं बल्कि सरहद से भी राखी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश की सुरक्षा में डटे ये BSF जवान अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात सीमा पर ड्यूटी निभा रहे हैं। कई बार ड्यूटी के चलते वो अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते हैं, इसलिए इन छात्राओं ने जवानों को राखी बांधकर उनके लिए ये दिन खास बना दिया। पंजाब के फिरोजपुर में छात्राओं ने BSF जवानों की कलाई पर राखी बांधी तो जवानों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
8: बहुत अच्छा लगा कि हम इतने दूर घर से हैं तो हमें भी बहनों की याद आती है, तो एक विश कमी को पूरा करने के लिए जो मेरी छोटी बहन आई है आज और उन्होंने हमें रक्षाबंधन का त्योहार में जो बुद्धि दिखलाई उसके की प्रोग्राम की बहुत अच्छा लगा।
9: मैं बहुत खुश हूँ, हमारे सारे जवान बहुत खुश हैं, उन्होंने एक मनोरंजक गेम भी खिलवाए काफी सारे हम सभी के बीच में और अप्रिसिएट किया, एंटरटेन किया, ड्यूटी से हट के कुछ अलग किया आज हमने, तो अच्छा लगा।
10: सरहद पे खड़े जवान हैं, वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं और हमने कोशिश की है कि हम उन्हें रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे उन्हें अपनी बहनों भाइयों और अपनी फैमिली की याद आती है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनकी इस कमी को पूरा कर सकें।
0: बिहार के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में रक्षाबंधन के मौके पर देशभक्ति और भाई बहन के स्नेह की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। बहनों ने जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा तो उनके चेहरों पर खुशी और भावुकता दोनों साफ दिखाई दी।
11: चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस स्कूल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव कम हियर, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू us in the work what we are doing, and we feel confident that nation is behind us it definitely enhances our confidence.
0: रक्षाबंधन का ये त्योहार हर साल देश की जेलों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इसकी तैयारी की गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर टिहरी में भी इस रिश्ते की बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। यहाँ महिला उत्थान समिति की बहनें टिहरी जिला कारागार पहुँची। इन बहनों ने पुलिस वालों और बंदियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। यूपी के गाजियाबाद की जेल में बंद कैदियों ने ये राखियां तैयार की हैं, जिन्हें करीब 15,000 बहनों तक पहुँचाया जाएगा। राखी तैयार करने से लेकर उसकी सजावट और पैकिंग तक हर काम में कैदियों की मेहनत और हुनर साफ नजर आता है।
12: आप ये राखियां देख रहे हैं, लगभग 15,000 राखियां इन कैदियों ने अपने हाथों से तैयार कर दी हैं। जब आप कोई राखी खरीदते हैं बाहर तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि किसने बनाया, इन राखियों पर भी लिखा है। इन राखियों को आप उठाएंगे तो इनके रैपर पर लिखा हुआ है बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद जिला कारागार गाजियाबाद। इन राखियों को 18 पुरुष और 11 महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है और अब जेल के बाहर ही इस तरह से स्टॉल लगाकर इन राखियों को रखा गया है। अगर कोई भी बहन मिलने आती है अपने भाई से रक्षाबंधन पे तो वो यहाँ से इन राखियों को खरीद सकती है। कीमत बहुत कम रखी गई है, महज 10 रुपये की ये एक राखी है और यहाँ से खरीद कर ही वो महिलाएं अंदर जाकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं।
0: तो अब रक्षाबंधन का मुहूर्त भी जान लीजिए। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कल सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक है। अभिजित मुहूर्त कल सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक है। रक्षाबंधन का पर्व सावन पूर्णिमा पर आता है। आज कई लोगों ने पूर्णिमा व्रत रखा है जिसका शुक्रवार को पारण होगा।
13: चंद्र ग्रहण की यदि हम बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण इस बार इंडिया में विजिबल नहीं है। इंडिया में विजिबल नहीं होने की वजह से उसका सूतक काल भी मान्य नहीं है, तो चंद्र ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट राखी के पावन पर्व पर नहीं पड़ने वाला है।
0: रक्षाबंधन का ये दायरा अब सिर्फ सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। देश के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें तो यही संदेश दे रही हैं। फिरोजपुर से अक्षय कुमार, मनेर से मनोज सिंह और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ गाजियाबाद से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
14: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यारे रिश्ते का जश्न मनाने का दिन होता है। इस मौके पर राखी बांधने वाली बहनें अपने भाई की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। राखी के त्यौहार को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनसे इस खास दिन के मायने समझे।
15: रक्षाबंधन पर हम कर रहे हैं कुछ भाइयों से बात और वो बताएंगे कि उनके लिए उनकी बहन के साथ सबसे खास पल क्या है और साथ ही साथ में क्योंकि सिर्फ उनकी खुद की बहन नहीं, देश की हर महिला उनकी बहन है, हर महिला को, हर लड़की को बहन की या माता की नज़रों से देखा जाता है, तो हम जानेंगे कि अगर इस रक्षाबंधन उनको कोई एक प्लेज लेना हो तो वो क्या लेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे। सर, आप मुझे बताइए कि अगर इस रक्षाबंधन आपको कोई एक प्लेज लेना हो, कोई एक शपथ लेनी हो तो आप क्या लेंगे?
16: आई थिंक मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि नॉट ओनली फॉर माई सिस्टर, सोसाइटी में जितनी भी सिस्टर है वो बाहर जब निकले तो वो सिक्योर और जो सेफ प्रेजेंस फील करे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा प्लेज लेनी चाहिए हर किसी को, मैं भी लेता हूँ कि है ना, सिक्योर फील करे ऐसे।
15: सिक्योर फील करें, मतलब कह सकते हैं कि आपकी तरफ से कम उनको कभी डर ना महसूस हो या फिर आपके आसपास वो हमेशा सेफ रहे।
16: जी एक्चुअली सोसाइटी इस हिसाब से वर्क कर रही है ना, आजकल हर एक लड़की थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करती है जब भी थोड़ा सा 10 बजे के बाद बाहर निकले, 8 बजे के बाद निकले। हर बार घर वालों को सोचना पड़ता है, टेंशन में आ जाते हैं कि क्या ऐसा इन्वायरमेंट है, क्या निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो
15: हाँ जी आप

0: राखी एक डोरा होता है जो आपकी कलाई पे बनता है हर रक्षाबंधन वाले दिन, क्या आपके लिए सिर्फ वो एक डोरा है, क्या एक दिन ही रक्षाबंधन है, या फिर आप हर दिन रक्षाबंधन मनाते हैं?
1: हर दिन ही हो गया मेरी तरफ से तो।
0: क्यों हो गया है?
1: क्योंकि वो एक राखी में एक डोरा बांधते तो मेरी बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज है, तो इसे हर टाइम ही हो गया।
0: अगर आपको इस रक्षाबंधन पर कोई एक शपथ लेनी हो तो क्या लेंगे?
1: शपथ ये है कि मेरी बहन चाहती है कि मैं लाइफ में सक्सेस हूँ, तो मैं उसको सक्सेस दिखाऊंगा अपनी।
0: उनका जो सपना है वो पूरा करेंगे?
1: हाँ।
0: अच्छा, आप अपना बता रहे हैं कि आप अपनी बहन की रक्षा करेंगे, वो राखी बांधती है, तो जो भी उसका महत्व है उसको निभाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी बहन के साथ सबसे ज़्यादा यादगार पल कौन सा है?
1: यादगार पल तो यही है कि जब भी कोई भी मुसीबत में आता हूँ तो वो मुझे बचा लेती है, बस थोड़े बहुत पैसे नहीं देती, वैसे कभी लड़ाई हो जाती है तो उसमें आके बचा लेती है।
0: आप मुझे बताइए कि राखी आपके लिए क्या है?
2: राखी मेरे लिए एक बहुत अच्छा त्यौहार है। इसमें मतलब मेरी कज़न सिस्टर, मेरी कोई खास बहन नहीं है, मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो मेरे को राखी बांधने आती है ना, और वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मतलब वो हर रक्षाबंधन आती है बिना कोई उसके, चाहे उनका कितना ही काम हो चाहे कितना ही कुछ हो, तब भी वो हमारे लिए टाइम निकाल के आती हैं।
0: मुझे एक बात बताओ कि आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो बदल गए हैं या फिर मान्यताएं बदल गई हैं? आजकल राखी को भाई बहन के त्यौहार की तरह नहीं देखा जाता है, राखी आजकल बहनें आपस में बांधती है, भाई आपस में बांध लेते हैं, या फिर कहीं कहीं तो देखा जाता है कि लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को भी राखी बांध रही, क्योंकि राखी का मतलब है आप सदैव उनके लिए रहें, उनकी रक्षा करें। तो आपके लिए अगर आपको इस रक्षाबंधन को एक प्लेज लेना हो तो आप किसके लिए लेंगे और क्या लेंगे?
2: मैं अपनी बहनों के लिए लूँगा, जो मेरी अपनी सगी बहनें हैं या फिर मेरी कज़न सिस्टर हैं या फिर और भी कोई मेरी बहनें हैं, उनके लिए ये लूँगा कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, और अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है तो वो अपना डिसीजन खुद ले पाएँ, सेल्फ डिसीजन ले पाएँ, और खुद के उन पर एक तरह से वो सेल्फ डिफेंस रहें, किसी की ज़रूरत नहीं हो उनको एक तरह से वो।
0: तो ये आप कैसे मेक श्योर करेंगे?
2: मेक श्योर ऐसे करूँगा मैं कि उनको मतलब खुद के डिसीजन खुद लेने चाहिए, उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो एकदम इंडिपेंडेंस गर्ल है इंडिपेंडेंस जगह की इंडिया की, तो उन्हें खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंस रखना।
3: न्यूज वक्त पर आ गए हैं धन बाजार, जहाँ शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
4: शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को सेंसेक्स 539 अंक लुढ़ककर 76,934 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 117 अंक फिसला, ये गिरकर 24,091 पर आ गया। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोना 800 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,65,700 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत 2,50,500 रुपए पर स्थिर रही। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 10 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.54 रुपए हो गई।
3: न्यूज पक में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश भर में दिखने लगी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखी। अयोध्या में प्रभु राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। काशी की गुलाबी मीनाकारी राखियों की विदेशों में धूम। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की डिमांड। स्पेन में भी काशी की राखियों का क्रेज। गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाए जा रहे बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। नेपाल को भारत ने भेजी मदद की दूसरी खेप। करीब 40 टन सहायता सामग्री और दवाएं लेकर पहुंचे C-17 ग्लो मास्टर। नेपाल सरकार ने लॉन्च किया रिलीफ फंड पोर्टल। चलिए न्यूज़ पर

0: पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर।
1: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के अनोखे साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है, गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं, माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसे आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
0: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहां गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: सिनेमा घरों के बाद अब एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा घर बैठे भी देख सकते हैं। वायरफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ पहली बार साथ नजर आई हैं। शिव रवेल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों खतरनाक मिशन पर निकले स्पाई बनी हैं। 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली और कहानी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणाबाली। 16 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल संक्रेतायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है। नई पोस्टर में आग और धुएं के बीच विजय का रफ और खतरनाक अवतार दिखा। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रामायण की महाकथा बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाली है। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला गाना सियाराम रिलीज कर दिया गया है। हिंदी वर्जन को जावेद अली और छत्तीसगढ़ी वर्जन को अनुराग शर्मा ने आवाज दी है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्रीराम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। आशीष डोनाल्ड और देव चौहान ने संगीत दिया है। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में रिलीज होगी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई और 4 क्रांतिकारियों की कहानी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा राठौर और गुरफतेह पीरजादा अहम किरदारों में हैं। सीरीज 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में देखी जा सकेगी।
5: हमारी कहानी हम ही लिखेंगे।
3: पहाड़ों पर सफर हमेशा खूबसूरत होता है, लेकिन पहाड़ों का मौसम और हालात कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई रुकावट ने एक बार फिर यही संदेश दिया है। पहाड़ों की यात्रा में उत्साह के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। मौसम विभाग के अलर्ट और स्थानीय प्रशासन की सलाह को ध्यान में रखते हुए यात्रा की बेहतर प्लानिंग की जाए तो मुश्किल परिस्थितियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।
6: बद्रीनाथ धाम जाने की राह में आई मुश्किल को दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने रास्ता रोका तो अब मशीनों और मजदूरों ने मोर्चा संभाल लिया है। उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ हो, यात्रा फिर रफ्तार पकड़े और भक्त बिना किसी रुकावट के अपने आराध्य बद्रीनाथ के दर्शन कर पाए।
7: बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात मारवाड़ी और विश्वप्रयाग के आगे 10 से 15 मीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कल देर रात यहाँ ऊपर पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो धस चुका है। यहाँ पे इस समय जो जेसीबी मशीनें हैं लगी हुई हैं, बीआरओ द्वारा यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है, जो कार्यदायी संस्था है वो यहाँ पे काम कर रही है।
6: चमोली जिले में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा धंसने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मारवाड़ी पुल और विष्णुप्रयाग के बीच करीब 50 मीटर सड़क धंस गई। इसी वजह से बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक रास्ते में फंस गए। हालांकि अब रास्तों को खोलने का काम तेजी से चल रहा है।
7: मशीनें इस समय लगी हुई हैं, लेकिन कब तक मार्ग खुलेगा कह नहीं सकते हैं। ऐसे में जहां भूस्खलन हुआ वहीं तीर्थयात्रियों की भी मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि काम चल रहा है, लेकिन कब तक खुलेगा ये देखना होगा।
6: वहीं नेपाल में आई फ्लैश फ्लड का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ा है। बाढ़ से रसुआगढ़ी केरुंग रूट प्रभावित होने के चलते इस रास्ते से होने वाली यात्रा और आवाजाही प्रभावित हुई है। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर मौसम कब करवट ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सफर से पहले थोड़ी सावधानी और बेहतर प्लानिंग बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखें, स्थानीय प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी हालात अनुकूल हों तभी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सुरक्षित सफर ही आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चीन में सजा कांच के फूलों का अनोखा बागीचा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक चला पारंपरिक नदी उत्सव अब खत्म हो गया है। इस दौरान हजारों लोगों ने जेजियांग नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नतें मांगी। रात के वक्त नदी पर तैरती रोशन लालटेन का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। करीब 30 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव को पहली बार 3 से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक प्रस्तुतियाँ, खेल और खान पान के आयोजन भी हुए। परंपरा को तांग और सोंग राजवंशों से जुड़ा बताया जाता है। चीन में कांच से बने फूलों का खूबसूरत बगीचा लोगों का ध्यान खींच रहा है। इन फूलों को तैयार करने के लिए कांच को करीब 1400 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। कारीगरों के पास इसे आकार देने के लिए महज 5 सेकंड का समय होता है। जरा सी देरी होते ही कांच जम जाता है। कुछ फूलों को तैयार करने के लिए कांच को 100 बार तक गर्म करना पड़ता है। करीब 2000 साल पुरानी इस कला से इस साल 6 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है। इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल पर भी जोर है। इंडी गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता भी चर्चा में है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा। जापान के हिरोसाकी शहर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 400 टन का किला रस्सियों से खींच कर करीब 3 मीटर आगे बढ़ा है। किले को करीब 70 मीटर दूर उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाया जाना है। इसके लिए लोगों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया था। 2015 में भूकंप से किले की दीवार को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद इसे हटाया गया। मरम्मत के बाद अब इसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। जून से जारी इस प्रक्रिया में लोगों द्वारा किला खींचने का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम मशीनों से होगा। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स ने शानदार शुरुआत करते हुए सर्फिंग में परफेक्ट 10 अंक हासिल किया। वहीं फ्रांस की वाहिने पियरो ने दमदार वापसी करते हुए 14.17 अंक जुटाए और अगले दौर में जगह बनाई। कोस्टारिका की ब्रिसा हेनेसी ने कई बार गिरने के बावजूद इसराइल के अनाथ लेलियार को मात दी। फिजी से उनका खास कनेक्शन भी है। वहीं हवाई के साथ मोनिस भी मुकाबले के लिए लौटे हैं। बेटी के जन्म के बाद वो कुछ समय सर्फिंग से दूर रहे थे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली अंडर 19 टीम में एंट्री। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: श्रीलंका के साथ भारत का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सोनल दिनुषा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो गई थी और मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे, तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ कर लिया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, लिहाजा भारत ये सीरीज 1-0 से जीत गया है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके प्रति दीवानगी अभी से दिखने लगी है। वहां भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पहले 48 घंटे में 26,000 टिकट बिक चुके हैं। भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तीनों मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, यानी वनडे टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक साथ नजर आएंगे।
1: इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार, पर्व से पहले बहनों ने हाथों पर रचाई मेहंदी, बाजारों में राखियों की भी खरीदारी। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट है राखी की चौड़ाई और 75 फीट लंबाई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है पप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं राखी की। शुक्रवार को पूरे देश में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार का धागा बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी। तो भाई हमेशा बहन का साथ देने और सुरक्षा का वचन देगा। आज आपको राखी बांधने के नियम और शुभ मुहूर्त की जानकारी तमाम हम देंगे। समझेंगे कि ग्रहण और पंचक होने के बावजूद क्यों शुक्रवार को पूरे दिन राखी बांधने को लेकर कोई उलझन नहीं है। इसके अलावा आपको रंग बिरंगी राखियों की रौनक भी तमाम दिखाएंगे। काशी का ऐसी राखी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसकी धूम जो है कैलिफोर्निया तक देखने को मिल रही है। तो गाजियाबाद जेल में बनी राखियां भी दिखाएंगे। भाई से पहले भगवान को राखी बांधने का भी रिवाज है, परंपरा है। उज्जैन में महाकाल के लिए बनाई गई दिव्य राखी भी आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं राखी बांधने की शुभ समय के साथ। देखिए, साल में एक बार आने वाली सावन पूर्णिमा का इंतजार हर बहन को रहता है, मगर इस साल राखी के दिन जो संयोग बन रहे हैं उनसे जुड़ी 3 उलझने हैं। लोगों के मन में चंद्रग्रहण, पंचक और भद्रा काल को लेकर दुविधा है। सवाल है कि ग्रहण है तो राखी कब बांधे और पंचक से कोई समस्या तो नहीं है। दूसरा सवाल यह कि भद्रा काल को लेकर भी है। तो चलिए जानकारों से समझते हैं कि शुक्रवार को राखी बांधने का सबसे अच्छा समय क्या है और राखी बांधते हुए बहनों को किन बातों का ध्यान रखना होगा।

0: बार आती है सावन की पूर्णिमा और ये एक दिन होता है बहनों का। एक रेशम की डोर जो कलाई पर सजती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित तीन गांठ पड़ती है और बहन भाई के लिए लंबी उम्र, सुख संपत्ति और शांति की कामना करती है। जाहिर है इस एक दिन के लिए उत्साह है, उमंग है, मगर संयोग कुछ ऐसा कि रक्षाबंधन के दिन पर एक नहीं तीन तीन उलझन है। पहली उलझन है चंद्र ग्रहण, दूसरी माथा पच्ची पंचक को लेकर है और तीसरा सवाल भद्रा काल से जुड़ा है। ये संयोग भी गजब का है कि जब राखी बांधी जाएगी उसी वक्त 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चंद्र ग्रहण होगा। 28 अगस्त को सुबह 6:53 से लेकर दोपहर 12:32 तक साल का आखिरी ग्रहण लगेगा। इसलिए सवाल सूतक काल को लेकर है कि क्या इसकी वजह से राखी बांधने में विलम्ब होगा। जानकार एक मत है कि चूंकि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा इसलिए सूतक मान्य नहीं, इसलिए शुभ मुहूर्त में कभी भी राखी बांधी जा सकती है।
1: जो ग्रहण की स्थिति बन रही है चंद्र ग्रहण की स्थिति, तो भारत में दृश्य नहीं होने के कारण इसका धार्मिक दृष्टिकोण से भारत भूमि पर कोई महत्व नहीं है। इस कारण से रक्षाबंधन के मुहूर्त पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ग्रहों का परिवर्तन है, चंद्रमा के साथ राहु का योग संयोजन बनेगा, सूर्य का केतु के साथ होगा, तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रही प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ना है। तो सावधानी क्या बरतनी है कि इस दिन कोशिश करें लोग कि यात्रा न करें, दूर ऐसी यात्रा अगर जरूरत भी पड़े तो सुरक्षित यात्रा करें, स्पीड में बहुत स्पीड में ना जाएं, बहुत तीव्रता न करें, किसी भी निर्णय में तीव्रता न करें, स्थिरता से अगर काम करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। चंद्रमा और सूर्य का अगर संभव हो सके तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंद्रमा और सूर्य के मंत्रों का जप कर लें, राहु का दान कर लें, अगर संभव हो सके तो राहु के मंत्रों का जप कर लें, क्योंकि राहु और केतु के अधीन सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं। तो अगर हम राहु और केतु को का दान कर दें या उनके मंत्रों का जप कर लें तो चंद्रमा पर उनका नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, सूर्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा, तो किसी तरह का कोई नुकसान होने की स्थिति व्यक्तिगत रूप से नहीं बनने वाली है किसी व्यक्ति पर।
0: दूसरी उलझन पंचक को लेकर है, क्योंकि मान्यता है कि पंचक में भी शुभ काम नहीं होता। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पंचक रहने वाला है, लेकिन ये पंचक गुरुवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए इसे सामान्य पंचक कहा जाएगा और इसे लेकर राखी बांधने पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब तीसरी उलझन पर बात करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा काल को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जाती है। इसके पीछे कहानी है कि ब्रह्मा जी ने शनि की बहन भद्रा को उसके व्यवहार के कारण श्राप दिया कि उसकी मौजूदगी में कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा। जाहिर है राखी बांधने जैसा मंगलकारी कार्य भी भद्रा काल में करना अशुभ माना जाता है, लेकिन इस साल भद्रा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। सावन की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया तो है, पर भद्रा काल 27 अगस्त की सुबह प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन 27 अगस्त की रात 9:29 पर हो जाएगा। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त की तारीख पूरी तरह भद्रा मुक्त होगी।
1: अच्छी बात यह है कि हर बार हम लोग भद्रा में फंस जाते थे कि उदयकालिक पूर्णिमा तिथि मिलती थी, उस दिन भद्रा की स्थिति बन जाती थी तो तनाव हो जाता था भद्रा के कारण कब बांधे कैसे बांधे। इस बार उदयकालिक पूर्णिमा तिथि में भद्रा नहीं होने के कारण अच्छा योग यही है कि हम निश्चिंत होकर के रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, इस साल बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विद्यमान है तो यह भी एक अच्छा वर्ष होगा, क्योंकि 12 वर्षों के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं और बृहस्पति जब भी उच्च राशि में होंगे तो शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, तो इस साल यह स्थिति बनी हुई है, तो बृहस्पति पर्याप्त है कि इस साल के शुभता को बढ़ाने के लिए।
0: सावन पूर्णिमा की शुरुआत वैसे तो 27 अगस्त को सुबह 9 बजे से हो जाएगी और 28 अगस्त को सुबह 9:39 पर पूर्णिमा समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन इतनी सुबह राखी बांधना सभी बहनों के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। उदय तिथि के आधार पर 28 को दिन भर राखी बांधी जा सकती है।
1: कार्तिक के पंचांगों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ आज 27 अगस्त को 8:31 सुबह से हो गया है और जो 28 तारीख को शुक्रवार को दिन में 9:18 तक रहेगा। तो इस कारण से जो पूर्णिमा तिथि का मान होगा कार्तिक के निकट के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो पूर्णिमा तिथि रहेगी वो 9:18 तक रहेगी और सूर्योदय जो हो रहा है वो 5:42 के आसपास हो रहा है। तो वहां से लेकर के और 9:18 तक पूर्णिमा तिथि की स्थिति बनेगी। उसमें अगर रक्षाबंधन का कार्य करते हैं तो शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो जाएंगी, पूर्णिमा तिथि भी रहेगी और इसमें भद्रा की स्थिति भी नहीं रहेगी और चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो लगने वाला ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया मुहूर्त जो काशी के निकट के लोग हैं, जैसे कुछ पंचांग जो दिल्ली के हैं या गुजरात क्षेत्र के हैं वहां पर ये 9 के निकट ले गए हैं लोग, 9:48 तक ले गए हैं, लेकिन काशी के पंचांग 9:18 तक ही बता रहे हैं पूर्णिमा तिथि का मान। तो यह समय बहुत अच्छा है। उदय कालिक स्थिति में राहु काल को छोड़कर के पूरा दिन रक्षाबंधन का काम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि का जो शुभ संयोग है जिसमें रक्षाबंधन के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है वह 9:18 तक है। अब ध्यान यही देना है कि अपने समय से सूर्योदय से लेकर के लगभग 3.5 घंटे का समय अगर ले लेते हैं, 4 घंटे का ले लेते हैं, तो वही समय इनके लिए बढ़िया मिलेगा, अच्छा मुहूर्त मिलेगा।
0: तो शुभ मुहूर्त पर पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है। हाँ, पर राखी बांधने के कुछ नियम हैं जिनका पालन शुभ होता है। सबसे पहली बात कि भाई को राखी बांधने से पहले देवी देवता को राखी जरूर अर्पित करें। भाई को राखी बांधते समय कभी भी मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना चाहिए, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। राखी बांधते समय भाई के सिर पर रुमाल या फिर कोई कपड़ा अवश्य रखें और हाँ, भाई के दाएं हाथ में ही राखी बांधनी चाहिए।
2: रक्षाबंधन का त्योहार जो है एक तरह से रक्षा सूत्र जो है माता लक्ष्मी ने बाली को बांधा था और भगवान के वामन अवतार के समय उनको वैकुंठ लेकर गई थी। उसके बाद देव दानव संघर्ष के मध्य जो है सची ने अभिमंत्रित रक्षा सूत्र जो है इंद्र को बांधा था ताकि इंद्र की जो युद्ध में रक्षा हो सके। इसी प्रकार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अभिमंत्रित रक्षा सूत्र पांडवों को बांधा था ताकि युद्ध के समय उनकी जो रक्षा हो सके, उनकी रक्षा की कामना करते हुए रक्षा सूत्र उनको बांधा जाता है। पहले पूर्व काल में जो है यजमान अपने यजमानों को जो है रक्षा सूत्र बांधते थे और उसे रक्षा का दायित्व जो है उनके कंधों पर डालते थे और प्रजा भी जो है राजा को जो रक्षा सूत्र बांधती थी और उसे अपनी रक्षा का दायित्व जो है राजा को सौंपती थी और राजा भी जो है संकल्प करता था कि वो प्रजा की रक्षा करेंगे। इस बार 28 अगस्त को भद्रावास जो है पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए जो है रक्षाबंधन का त्यौहार जो है पूरे दिन मनाया जाएगा। किसी भी समय जो है बहने जो है भाई का रक्षा सूत्र बांध सकती है।
0: राखी बांधने से पहले बहने पूजा की थाली तैयार कर ले जिसमें रोली, अक्षत, घी का दीपक, मिठाई, नारियल, पान सुपारी और फूल के साथ जल अवश्य रखें। जब कलाई पर राखी बांधे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित 3 गांठ जरूर लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: राखी का धागा भले ही नाजुक हो लेकिन इससे बंधा प्यार बहुत मजबूत होता है। राखी में बहनों की भावनाएं अलग अलग रंगों में नजर आती हैं। कुछ राखियां ऐसी हैं जिनकी बड़ी चर्चा है। काशी की गुलाबी मीनाकारी वाली राखियां अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही हैं। तो उदयपुर में सोने और डायमंड से बहुत सूक्ष्म राखी बनाई गई है। गाजियाबाद जेल में कैदियों ने हजारों राखियां तैयार करके नई शुरुआत का संदेश दे दिया। करनाल के बाजारों से लेकर सरहद तक राखी के त्योहार का उत्साह है। रिपोर्ट देखिए।

0: राखी का धागा भले ही नाजुक हो, लेकिन इसमें बंधा रिश्ता बेहद मजबूत होता है। एक छोटी सी डोर में बहन की दुआ, भाई का भरोसा और बचपन की अनगिनत यादें समा जाती हैं। कलाई पर सजते ही ये सिर्फ त्योहार का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि अपनों के साथ होने का एहसास बन जाती है। यही वजह है कि हर साल रक्षाबंधन पर ऐसी रौनक होती है। घर महकते हैं और दिल रिश्तों की गर्माहट से भर उठते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। यूं तो देश के सभी इलाकों में, सभी बाजारों में राखियों की धूम है, पर काशी की गलियों से निकली गुलाबी मीनाकारी वाली राखी की बात ही कुछ और है, जो अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही है। उदयपुर में सोने और डायमंड से बनी इतनी नन्ही राखी तैयार हुई कि उसे देखने के लिए लेंस लगाना पड़े। वहीं गाजियाबाद जेल में कैदियों ने राखी बनाकर बदलाव की नई मिसाल पेश की, तो सरहद पर बेटियों ने जवानों की कलाई पर स्नेह बांधा है और बजरंग बली के लिए तैयार हो रही है 12.25 फीट की विशाल राखी। यानी इस बार रक्षा सूत्र की डोर सिर्फ रिश्ते नहीं जोड़ रही, बल्कि हुनर, उम्मीद, आस्था और देश प्रेम को भी एक साथ पिरो रही है। काशी की गुलाबी मीनाकारी वाली राखियों की चमक अब विदेशों तक पहुंच गई है। अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से इनके ऑर्डर मिल रहे हैं। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में भी इनकी खास मांग है। चांदी पर बारीक नक्काशी और गुलाबी मीनाकारी से सजी ये राखियां सामान्य डिजाइन से अलग नजर आती हैं। कारीगर करीब 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। एक बारीक राखी तैयार करने में 5 से 6 घंटे तक लगते हैं। इस कारोबार से काशी में 50 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। एक सीजन में करीब 10 करोड़ रुपए तक का कारोबार होने का दावा है।
1: इस बार हम लोगों ने 5वां साल है राखी बनाने का। तो पहली बार, मतलब पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया जब लोग चाइना के प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहे थे, और जैसे चाइना की राखियां 50 रुपए की होती थी, 5 रुपए की होती थी, और इंडिया की 50 रुपए की भी होती थी, तो भी लोग इंडिया की प्रेफर करते थे 50 रुपए वाली राखी। तो उस समय हम लोगों के मन में ख्याल आया कि अगर हम लोग राखियां भी बनाए गुलाबी मीनाकारी की, तो कितना अच्छा हो, देखा जाएगा कैसा डिमांड आता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहली साल हम लोग मतलब बनाए, कुछ प्रयोग किए अलग अलग तरह की राखियां, तो उसमें काफ़ी जो है रिस्पांस मिला। तो उससे हम लोग और जो है दूसरे साल कुछ नया किए, तीसरे साल कुछ नया किए। एक बार हम लोगों ने राखियां पे जैसे भाइयों का नाम लिख के कुछ प्रयोग किया था, कुछ अगले साल फिर हम लोगों ने रत्न का प्रयोग किया था, जो भाइयों को ज्योतिष ग्रह के हिसाब से उनको सूट करते हैं। और फिर इस साल हम लोगों ने किया है इयररिंग, मतलब बहने राखी बांध के भैया से वापस लेके और उनका इयररिंग बना लेंगी, लॉकेट बना लेंगी। कैलिफोर्निया में एक आउटलेट पहले से है, उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया नया मार्केट मिला है, फ्लोरिडा और टेक्सास में भी काफी एनआरआई हैं जो हम लोगों के वो लेते हैं, इसके अलावा पूरे भारत में सप्लाई होती है।
0: इनकी कीमत भी डिजाइन और कारीगरी के हिसाब से तय होती है। बाजार में ये राखियां करीब 1500 से 10,000 रुपए तक में उपलब्ध है। काशी की पुरानी कला को आधुनिक अंदाज में पेश करने वाली ये राखियां एनआरआई परिवारों के बीच भी खास पसंद की जा रही है।
2: यहाँ पे हर साल अलग अलग तरीके की राखी बनाई जाती हैं। इस साल भी हमने कुछ अलग ट्राई किया है कि ऐसे कोई, जैसे कि बहनें एक दो राखी लेती हैं तो उनसे वो अगले दिन अपने इयररिंग बना सकती हैं।
3: कैसे कैसे बनाया जाता है, कुछ आप किस तरह बनाती हैं?
2: पहले हम लोग ड्रॉइंग करते हैं, फिर उसे तार से ढांचा देते हैं, तार से ढांचा देने के बाद उस पर चांदी की परत चढ़ाते हैं, फिर उसे भट्टी पे पकाया जाता है, भट्टी पे पकाने के बाद उस पर मीना किया जाता है, मीना करने के बाद मीना पे पेंटिंग किया जाता है।
0: राखी की चमक सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है, उदयपुर में भी शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने सूक्ष्म कारीगरी की मिसाल पेश की है। उन्होंने सोने और अमेरिकन डायमंड से करिश्माए तिरंगी राखी तैयार की है।
4: विश्व की सबसे छोटी सोने और डायमंड, अमेरिकन डायमंड से बनी हुई करिश्माए तिरंगी राखी जो देख रहे हैं, इसमें मैंने, आपने देखा है कि मैंने भारत का जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसी के रंग में मैंने ये राखी बनाई है। ये इतनी छोटी है कि इसको लेंस से अगर देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगी, और अगर लेंस हटा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रेशम के तिरंगे धागे पड़े हुए हैं। ये जो मैंने बनाई है अभी, जो राखी का हमारा पर्व चल रहा, क्योंकि हमारे भी राखी बांधती हैं बहनें, हिंदू बहनें, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे पूरे हिंदुस्तान के लिए, बहनों के लिए कोई नायाब तोहफा बनाना चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये तिरंगी विश्व की राखी सबसे छोटी बनी है, जो 7 घंटे में मैंने तैयार की है। और इसको जो हमारी जो 12 नंबर की एक सुई होती है, उसके छेद से भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हो।
0: इतनी बारीक कि इसे सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। लेंस लगाने पर तिरंगे रेशमी धागे में सजी सोने की राखी और डायमंड साफ दिखाई देता है। इसे बनाने में करीब 7 घंटे लगे। राखी इतनी हल्की है कि फूंक से भी उड़ सकती है। इस अनोखी कलाकृति के जरिए भारतीय कला, तिरंगे और भाई बहन के स्नेह को एक साथ पिरोया गया है।
4: मैंने इसका वजन कराया धर्म काटे पे, तो इस सोने का वजन भी ना उसमें 0 आया है। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि ये कितनी छोटी विश्व की राखी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि लेंस से ही दिखाई देगी, वैसे अगर देखोगे तो बिल्कुल अदृश्य हो जाती है। ये मैं पूरे देश की जो हमारी बहन बेटियां हैं, क्योंकि मैं भी राखी बंधवाता हूँ, मेरे यहाँ पे भी आते हैं, तो मेरी तरफ से उन सबको ये देश की बहन बेटियों को तोहफा है।
0: रक्षाबंधन की एक अलग तस्वीर गाजियाबाद की जेल से सामने आई है। यहाँ कैदियों ने अपने हाथों से हजारों राखियाँ तैयार की है। करीब 15,000 बहनों तक ये रक्षा सूत्र पहुँचेंगे। इन राखियों में सिर्फ सजावट नहीं बल्कि सुधार और नई शुरुआत की कहानी छिपी है। कदम कभी गलत राह पर गए थे, पर आज उंगलियां त्योहार के लिए खुशियां गढ़ रही हैं। जेल प्रशासन की पहल कैदियों को हुनर सीखने और समाज की मुख्यधारा से दोबारा जोड़ने का अवसर दे रही है।
5: आप ये राखियां देख रहे हैं, लगभग 15,000 राखियां इन कैदियों ने अपने हाथों से तैयार कर दी हैं। जब आप कोई राखी खरीदते हैं बाहर, तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि किसने बनाया। इन राखियों पर भी लिखा है। इन राखियों को आप उठाएंगे तो इनके रैपर पर लिखा हुआ है, बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद, जिला कारागार गाजियाबाद। इन राखियों को 18 पुरुष और 11 महिला कैदियों ने मिलकर तैयार किया है, और अब जेल के बाहर ही इस तरह से स्टॉल लगाकर इन राखियों को रखा गया है। अगर कोई भी बहन मिलने आती है अपने भाई से रक्षाबंधन पे, तो वो यहाँ से इन राखियों को खरीद सकती है। कीमत बहुत कम रखी गई है, महज 10 रुपए की ये एक राखी है, और यहाँ से खरीद कर ही वो महिलाएं अंदर जाकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं।
0: वहीं चंडीगढ़ में भी हनुमंत धाम में वीर हनुमान जी के लिए विशाल राखी तैयार हो रही है। 32 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए बनाई जा रही ये राखी 12.25 फीट की है। मंदिर की बहनें करीब 10 दिनों से मिलकर इसे तैयार कर रही है। गत्ता, कागज, गोटा किनारी, शीशे और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। 28 अगस्त को सुबह 11:15 पर बजरंग बली को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाएगा। विशाल स्वरूप के साथ ये पहल पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी।
6: हमारे ऐसे घर में हमारे भाई तो है ही है, लेकिन हमारे ये हनुमत धाम में हमारे महावीर जो कि पूरी सृष्टि के कलयुग के साक्षात भगवान है, वो हमारे महावीर भाई हैं। तो हम अपने भाई की कलाई पर, 32 फुट के हमारे वीर हनुमान जी हैं, उनकी कलाई पर रखड़ी बांधने के लिए हम भी एक कम से कम पहले 1 महीना तक प्लानिंग करते कि क्या बनानी, कैसे बनानी है। और हमें हमारे ये 12-15 दिन तो हम इस रेखा आप देख रहे हैं कि राखी को बनाने में हम लग जाते हैं। हमारी बहनें कम से कम रोज 5-6 घंटे तो रोज लगाती हैं, जैसे सुबह ही आ जाती है, और लंच वगैरह हम यही करते हैं, अपना घर से लेकर आते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इको फ्रेंडली राखी हम लोग बनाते हैं।
0: वहीं दूसरी ओर करनाल के बाजारों में त्योहार से पहले जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। दुकानों पर रंग बिरंगी राखियों के लिए लंबी कतारें हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए पसंदीदा डिजाइन चुन रही हैं। कहीं पारंपरिक धागे आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं नई डिजाइन और खास सजावट लोगों को लुभा रही है। खरीदारी करने पहुंची बहनों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। जो भाई दूसरे शहर या विदेश में हैं, उनके लिए डाक के जरिए रक्षा सूत्र भेजे जा रहे हैं।
7: एक भाई है जिसपे बहन पूरा ट्रस्ट कर सकती है आजकल के समय में, तो राखी के जरिए बस हम अपना अच्छा वो बताते हैं कि इतना अच्छा बॉन्ड है। बहुत क्रेज है क्योंकि स्पेशली गिफ्ट के लिए बहनें होती है कि हाँ हमें गिफ्ट मिलेगा, तो इस वजह से ज्यादा क्रेज होता है। बाकी ये होता है कि अपने भाई को कुछ ऐसा दूं कि हमारा भाई भी खुश हो और हम भी उसका खुश रहे।
0: लेकिन इस पर्व की सबसे भावुक तस्वीर सरहद से भी आई है। फिरोजपुर में स्कूली विद्यार्थियों ने बीएसएफ जवानों और महिला सीमा प्रहरियों की कलाइयों पर राखी बांधी, मुंह मीठा कराया और देश की रक्षा के लिए उनके समर्पण को सलाम किया।
8: जो यहाँ पर सरहद पर खड़े जवान हैं, वो अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं और हमने कोशिश की है कि हम उन्हें रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पे उन्हें अपनी बहनों भाइयों और अपनी फैमिली की याद आती है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनकी इस कमी को पूरा कर सके। जब हम उन्हें राखी बांधते थे तो हमने उनकी आंखों में अपनी फैमिली के लिए प्यार देखा, उन्होंने हमें अपनी छोटी बहनें कहा और हमें बहुत ही अच्छा लगा।
9: हमें यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हुई, हमने देखा कि कैसे जवान सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, वो त्योहारों पर भी अपने परिवारों से दूर रहते हैं। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर हमने ये इनिशिएटिव लिया कि इस रक्षाबंधन उनकी कलाई खाली ना जाए और हमने उनकी बहनों का दर्जा लिया।
0: दानापुर के बिहार रेजिमेंट सेंटर में भी छात्राओं और स्वास्तिक परिवार की बहनों ने जवानों को रक्षा सूत्र बांधा, उन्हें शुभकामना संदेश वाले कार्ड दिए गए, सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई। राखी बंधवाते वक्त जहां चेहरों पर खुशी थी, वहीं घर परिवार से दूर होने पर दिल इमोशनल भी हो गया।
10: चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस स्कूल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव कम हियर, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू अस इन द वर्क व्हाट वी आर डूइंग एंड वी फील कॉन्फिडेंट दैट नेशन इज बिहाइंड अस and it definitely enhances our confidence in doing whatsoever we are doing. Thank you so much.
0: रक्षा बंधन का असली रंग सिर्फ कलाई पर बंधे धागे में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो रिश्तों को जोड़ती है, हौसला देती है और इंसान को बेहतर बनने की राह दिखाती है। हर साल की तरह इस साल की राखी भी भाई बहन के प्यार को और मजबूत करेगी। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता, दिल्ली से मनीषा लड्डा, करनाल से कमलदीप, दिल्ली से आशुतोष कुमार, फिरोजपुर से अक्षय कुमार, मानेर से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन के त्योहार, पर्व से पहले बहनों ने हाथों पर रचाई मेहंदी, बाजारों में राखियों की खरीदारी। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक, उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी, 65 फीट है राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत, मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए भव्य राखी तैयार, पुजारी परिवार की महिलाओं ने बनाई राखी, 6 साल बाद पुजारी परिवार को मिली सेवा।

0: सबसे पहले बाबा महाकाल को बांधी जाएगी 2 फीट की राखी। महाकालेश्वर राम मंदिर में भस्म आरती में बाबा को अर्पित की जाएगी राखी। राखी में दिखेगा बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप, त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष से सजावट, ओम और स्वास्तिक से सजी राखी। बाबा महाकाल के लिए तैयार हुई है खास राखियां, श्रीनाथ जी स्वरूप वाली राखी भी तैयार। महाकाल मंदिर से शुरू होगी रक्षाबंधन की परंपरा। रक्षाबंधन पर बाबा को लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। रामलला के लिए रिंग ऋषि आश्रम से अयोध्या पहुंची खास राखी। ढोल नगाड़ों के साथ राखी लेकर पहुंचे श्रद्धालु, जारी है मोतियों से सजी विशेष राखी। रक्षाबंधन पर राखी से सजेगी रामलला की कलाई, ब्रह्म मुहूर्त में रामलला को पहनाई जाएगी राखी। श्रृंगार आरती के बाद धारण कराई जाएगी राखी, हर साल निभाई जाती है शांता राम की अनूठी परंपरा। रामलला और माता शांता के रिश्ते से जुड़ी हुई परंपरा। रक्षाबंधन पर अयोध्या में देखेगा भावनाओं का संगम। काशी गुलाबी मीनाकारी राखियों की विदेशों में खूब धूम, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक राखियों की खूब डिमांड। सात समुद्र पार पहुंची काशी की गुलाबी मीनाकारी, राखियों के कारोबार में छुआ 10 करोड़ का आंकड़ा। काशी की खास राखियों ने बनाई ग्लोबल पहचान, फ्लोरिडा कैलिफोर्निया से मिल रहे हैं राखी के भरमार ऑर्डर्स। एक राखी बनाने में लगते हैं 5 से 6 घंटे, चांदी पर नक्काशी, फिर होती है गुलाबी मीनाकारी। काशी की कला अब विदेशों में भी बटोर रही है भाई बहन का प्यार। गुलाबी मीनाकारी राखियों ने बाजार में पकड़ी रफ्तार। गाजियाबाद में राखियों की खरीदारी तेज, अमेरिकन डायमंड राखियां बनी पहली पसंद। रंग बिरंगी राखियों से सजे गाजियाबाद के बाजार, बहनें भाइयों के लिए पसंद कर रही हैं राखियां। कुंदन मोती के साथ क्रिस्टल राखियों की मांग, रुद्राक्ष वाली राखियां भी खूब बिक रही हैं। बच्चों को भारी कार्टून और लाइट वाली राखियां। बहनों को भा रही हैं चमकदार डिजाइनर राखियां। गाजियाबाद में राखी की खरीदारी ने पकड़ी रफ्तार। गाजियाबाद जेल में आई खास तस्वीर, कैदी बना रहे हैं भाई बहन के प्यार की राखी। जेल में तैयार हो रही 15,000 राखियां। कैदियों के हाथों से सजेगी भाइयों की कलाई। कैदियों के हुनर से त्योहार में घुला प्यार, रहा जेल की चार दीवार से बाहर पहुंचेगी खुशियां। कैदियों ने राखियों में पिरोया भाई बहन का प्यार, राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। कैदियों ने राखियों में भरा बदलाव का रंग, जेल की राखियां देंगी नई जिंदगी का संदेश। जमशेदपुर में अनोखे तरीके से मनाया गया रक्षाबंधन, पेड़ों को बांधी गई राखी, आदिवासी महिलाओं ने पेड़ों को मनाया अपना भाई। पद्मश्री जमुना टुडे ने पेड़ को बांधी राखी, जंगल बचाने वाली महिलाओं को अनोखी पहल। रक्षाबंधन पर जंगल में देखी अनूठी तस्वीर, 50 महिलाओं ने पेड़ की कलाई पर बांधी राखी। आदिवासी परंपरा के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार, हरे परिधानों में जंगल पहुंची आदिवासी महिलाएं, गीत गाते हुए नजर आईं, पेड़ों की पूजा की, पेड़ों की आरती करके बांधी राखी। जंगल की रक्षा को समर्पित महिलाओं का अनोखा पर्व, महिलाओं ने पेड़ को बताया अपना भाई। भारत पाकिस्तान सीमा पर देखे रक्षाबंधन के त्यौहार के रंग, स्कूली बच्चों ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी। फिरोजपुर के स्कूली विद्यार्थियों ने जवानों के लिए बना दिया खास रक्षाबंधन का त्यौहार, सैनिकों की कलाई पर बांधी राखी। टिहरी जिला कारागार में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार, कैदियों ने बनाई राखी। बहनों ने राखी बांधकर कैदियों से सही मार्ग पर चलने और उज्जवल भविष्य की कामना की। वाराणसी में रक्षाबंधन पर इस बार सोने और चांदी से बनी राखियों की खूब डिमांड, 400 से लेकर 11,000 तक की राखियां। राजधानी के बाजारों में रक्षाबंधन की भारी रौनक, हर तरफ रंग बिरंगी राखियां। राखी की दुकान पर महिलाओं की भीड़, रक्षाबंधन से पहले हाथों पर मेहंदी लगवाती नजर आई महिलाएं। अमृतसर के बाजारों में खरीदारी करने के लिए उमड़ रही हैं बहनें, अपने भाइयों की कलाई पर बांध रही हैं राखियां। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और तमाम राखियां उपलब्ध, रक्षाबंधन को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही महिलाएं। रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं प्रयागराज के बाजार, कार्टून से लेकर डिजाइनर राखियों की खूब डिमांड। औरैया के बाजार में रक्षाबंधन की रौनक, राखी खरीदने के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं बहनें। रंग बिरंगी राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, दुकानों पर सजी तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बढ़ी चहल पहल, राखियों की मांग बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले। शिरडी साईं बाबा को भक्त ने चढ़ाया सोने का ब्रोच, 75 ग्राम सोने के ब्रोच में जड़े हैं हीरे। इटली से भक्त सतीश कुमार ने साईं चरणों में ब्रोच किया, अवतरित बेशकीमती है ये ब्रोच। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने निभाया रक्षा का वचन, महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी। पुलिस कर्मियों की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र, पुलिस ने महिलाओं को दिया सुरक्षा का भरोसा। काशी में किन्नर अखाड़े में भव्य शोभा यात्रा, किन्नर समुदाय ने निकाली बाबा की विश्वनाथ की शोभा यात्रा। शीतला घाट से विश्वनाथ मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों के साथ निकला भव्य जुलूस। किन्नर समुदाय ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक, रथ पर सवार नजर आए किन्नर समुदाय। कोलकाता में सोने हीरे की राखियों की धूम, रक्षाबंधन पर गोल्ड डायमंड राखियों की भारी डिमांड। बाजार में गोल्ड राखियों की चमक ने खींचा सभी का ध्यान, गोल्ड डायमंड राखियों की बिक्री में तेजी। बिजनौर में छात्राओं ने एसपी के बिश्नोई को राखी बांधकर बनाया जश्न। रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, से दिल्ली प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, शकूर बस्ती प्रयागराज के बीच भी चलेगी। 19 कोच की होगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन, 9 स्लीपर कोच होंगे, 2 एसी, 3 और 6 जनरल। भिलाई में आस्था और भक्ति का सैलाब, शिवनाथ नदी से निकली 37 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा। देव बलौदा में प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया, 13वीं शताब्दी के शिव मंदिर में चढ़ाया गया जल। भिलाई से लेकर देव बलौदा तक शिव में हुआ माहौल, 1000 से ज्यादा महिलाएं शामिल। महाकाल की अघोरी टोली ने किया तांडव नृत्य, 180 किलो की बर्फीली शिवलिंग बनी आकर्षण का केंद्र। शिव पार्वती की झांकी ने खींचा सभी का ध्यान, हर चौक पर कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत। अपने अंतिम चरण में है अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ में पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक। स्वामी विश्वानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचा पवित्र जुलूस। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ छड़ी को स्वयंभू शिवलिंग पर समर्पित। इस पवित्र यात्रा में हजारों की संख्या में देश भर से आए शिव भक्त शामिल हुए। कल रक्षाबंधन और श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी पवित्र छड़ी। राजस्थान के फतेहपुर में गोविंदा देवा हिंडोला उत्सव का शानदार समापन, दिखा आस्था का अद्भुत संगम। 100 साल पुराने 50 किलो चांदी के झूले पर विराजते हैं भगवान, अलग अलग प्रकार के नजर आए। 500 सालों से चली आ रही है झूलनोत्सव की परंपरा। रंग बिरंगी लाइटों से हुआ है मंदिर का भव्य श्रृंगार, भजन कीर्तन का दौर। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। देश धर्म बापा के आगमन को लेकर भी जबरदस्त तैयारियां, कर्नाटक के तेनकाशी जिले में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय प्राकृतिक मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों का हो रहा है उपयोग। महीनों पहले से पारंपरिक कला के जरिए मनमोहक और सुंदर प्रतिमाएं को दिया जा रहा है रूप। तमिलनाडु के वेल्लूर में भी बनाई जा रही है विघ्नहर्ता की रंग बिरंगी मूर्तियां, 14 सितंबर को गणेशोत्सव की तैयारियां। आकर्षक रंगों और बारीक नक्काशी से किया जा रहा है प्रतिमाओं का श्रृंगार। कोटा में बड़केश्वर महादेव मंदिर में आस्था का मेला, भगवान शिव की पूजा करने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सावन भक्त बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। हजारों साल पुरानी बरगद के पेड़ के कारण पड़ा है बड़केश्वर मंदिर का नाम। तमिलनाडु की तूतुकुड़ी में दिखा आस्था और परंपरा का जबरदस्त संगम, अवनि अवितम यज्ञोपवीत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है पारंपरिक और आधुनिक अनुष्ठान। आगरमालवा में दुल्हन सलूनी ने शादी के मौके पर पेश की अनूठी मिसाल, शादी के खर्च में कटौती करके बनाया पक्षी का आशिया, 6 मंजिला पक्षी आशिया ने बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। लखनऊ में नारी शक्ति का भव्य सम्मान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर नितिशा बलोत्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। मेहनत और संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान, सशक्त नारी से सशक्त भारत का संदेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में स्पेशल मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों को बड़ी राहत, मराठी सीखने के लिए मिला एक साल का मौका। भाषा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, ऑटो टैक्सी चालकों की मांग हुई मंजूर। नोटिस पर चालकों को भी राहत मिल गई, बोले फडणवीस, मराठी का विशेषज्ञ बनना जरूरी नहीं है। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह, गृहमंत्री अमित शाह ने 900 मेधावी छात्रों को बांटी डिग्रियां। अहमदाबाद में फार्म नोवा अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया, फार्मा रिसर्च और इनोवेशन को मिला मंच। चीन के ग्वांगशी में 6 दिन चला नदी का पारंपरिक उत्सव खत्म हुआ, हजारों लोग शामिल हुए। जिजियांग नदी पर हजारों लालटेन तैरते हुए नजर आए, लोगों ने रोशनी के साथ लोकगीत भी गाया। करीब 30 साल पहले हुई थी इस उत्सव की शुरुआत, तैरती लालटेन देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। इस साल उत्सव को पहली बार 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया, इसमें खेल, लोक संस्कृति और अलग अलग रंग। इस उत्सव की परंपरा चीन के तांग और सुंग राजवंशों के साथ जुड़ी हुई है। चीन में कांच से फूलों का बनाया गया है खूबसूरत बगीचा, कारीगरों को पिघले हुए कांच को आकार देने के लिए मिलते हैं सिर्फ 5 सेकंड्स। कांच के एक गुलदाउदी फूल में होती है 300 से ज्यादा पंखुड़ियां। कुछ फूल बनाने में कांच को 100 बार तक करना पड़ जाता है, कर्म ये गलती से हो जाता है खराब। चीन में कला करीब 2000 साल पुरानी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: रक्षाबंधन पर आपने कई तरह की राखियां जरूर देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में तैयार हुई ये शिव राखी आपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए 13 रुद्राक्षों से बनी इस राखी में सिर्फ कलाई सजाने की खूबसूरती नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था और सूक्ष्म चित्रकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चित्रकला जबरदस्त है और चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस खास राखी का जो है तैयार किया है, और राखी में 12 रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र उकेरे गए हैं। महाकाल से लेकर अगर आप देखेंगे केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ सहित सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग इन छोटे छोटे रुद्राक्षों पर अपनी पहचान के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस राखी की सबसे खास बात यह है कि इसका 13वां रुद्राक्ष यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के बीच से केंद्र में रखा गया है और इसी पर उकेरा गया है मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी एक ही राखी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान को भी खास जगह दी गई है। अब जरा गौर से देखिए इन रुद्राक्षों की सतह को, आकार बहुत छोटा है, सतह उभरी हुई है और जगह इतनी कम की एक छोटी सी गलती पूरी कलाकृति को बिगाड़ सकती है, लेकिन राहुल ने इसी चुनौती को अपनी कला का माध्यम बनाया। राहुल की ये शिव राखी इस परंपरा में कला और आस्था का एक नया रंग जोड़ती है। 13 रुद्राक्ष, 12 ज्योतिर्लिंग और केंद्र में पशुपति महादेव, छोटी सी राखी में समाई ये बड़ी कलाकारी भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम पेश कर रही है। नागपुर में रक्षाबंधन से पहले छात्रों ने भाई बहन के प्रेम और रिश्ते को समर्पित एक अनोखी पहल की है। छात्रों ने मिलकर करीब 65 फीट लंबी और 75 फीट चौड़ी विशाल राखी तैयार की, जिसे देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। इतने बड़े आकार की राखी को तैयार करने के लिए छात्रों ने खास तैयारियां की। रंग बिरंगे सजावटी सामान और पारंपरिक डिजाइन के साथ इसे आकर्षक रूप दिया गया है। दूर से देखने पर यह विशाल राखी रक्षाबंधन के पर्व की भव्यता को दर्शाती है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ एक बड़ी राखी बनाना नहीं, बल्कि रक्षाबंधन के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। छात्रों ने अपनी रचनात्मकता के जरिए भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के इस त्यौहार को खास अंदाज में मनाने की कोशिश की है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है ये राखी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का वो पर्व जिसमें एक धागा रिश्ते को अटूट बंधन में बांध देता है, लेकिन जब यही रक्षा सूत्र आराध्य देवों की कलाई पर सजता है तो आस्था का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फीट की भव्य राखी तैयार की है, तो वहीं पर अयोध्या में भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता और की ओर से जो है विशेष राखी रामलला तक पहुंचाई गई है। दो शहर, दो परंपराएं, लेकिन भाव केवल एक, भाई बहन का पवित्र प्रेम। भजनों की मधुर धुन के बीच महिलाएं राखी को आकार देती नजर आती हैं। बाबा के नेत्र, त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू, त्रिपुंड, ओम और स्वस्तिक, मोरपंख और मोतियों के साथ रेशमी कपड़े से इसे सजाया गया है। कहीं राजा महाकाल का स्वरूप है, कहीं पर श्रीनाथ जी की छवि। रामनगरी अयोध्या जहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से भेजी गई विशेष राखी रामलला तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालु राखी लेकर नाश्ते गाते रामनगरी पहुंचे और फिर ऐसे रामलला के पुजारी को सौंप दिया गया। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा के बाद श्रृंगार आरती के बाद रामलला को ये राखी धारण कराई जाएगी। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त। शादी का दिन जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक होता है, लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने इस खास दिन को सिर्फ अपनी खुशियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी खुशी में बेजुबान परिंदों को भी शामिल कर लिया। जी हां, सलोनी ने शादी में होने वाले कई पारंपरिक और खर्चीले आयोजनों में कटौती करके उस सोच को एक खूबसूरत रूप दे दिया, और जो अब मोती सागर तालाब के किनारे नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, 6 मंजिला यह अनोखा आशियाना हर मंजिल पर पक्षियों के लिए छोटे छोटे घरों से सजा है, और छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, तो बड़े पक्षियों के लिए दरवाजों का आकार अलग रखा गया है। हर मंजिल पर बनी छत परिंदों को धूप और बारिश से बचाएगी। तालाब के किनारे होने से पानी की कमी नहीं होगी और आसपास मौजूद बड़े पक्षियों को उनके प्राकृतिक वातावरण का एहसास भी लगातार होता रहेगा। सलोनी की सोच बहुत सीधी है, शादी में लाखों रुपए खर्च करके एक वक्त का भोजन कराया जाता है जिसका स्वाद और आयोजन कुछ समय बाद यादों में धुंधला पड़ जाता है, लेकिन उसी खर्च का एक हिस्सा अगर किसी बेजुबान की जिंदगी संवारने में लगा दिया जाए तो उससे मिलने वाला सुकून कहीं ज्यादा बड़ा है। सावन के महीने में बाबा पालकेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का रंग और भी गहरा नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से सजाया गया। झूले पर विराजमान बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास का इलाका पूरी तरीके से गुलजार है। कहीं बड़े बड़े झूले बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं तो कहीं पर मीना बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। खान पान के स्टॉल्स भी सज चुके हैं और दूर दराज से पहुंचे दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी सजा रखी हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
2: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़
8: और प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, Shaping Future, Creating Leaders।
0: कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। पर्व से पहले बहनों ने हाथों पर रचाई मेहंदी, बाजारों में राखियों की भी खरीदारी। मन मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट है राखी की चौड़ाई और 75 फीट लंबाई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। जी हां, भाई बहन के बीच अटूट बंधन, विश्वास और प्यार की, ये रिश्ता बेहद खास है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, रक्षा सूत्र बांधने के पहले उसको भगवान को अर्पित करिए और इसके बाद वो रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिए। ऐसा करने से आपके संबंध भाई के साथ मधुर बने रहेंगे। यानी अगर भगवान को समर्पित करके आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे तो भाई बहन के संबंध बेहतर बने रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 28 अगस्त 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या कहता है।
1: दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 9:48 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं क्या है रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व।
1: हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। इस पर्व का पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है उस पवित्र धागे को रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का और सहायता का वचन देते हैं। महाभारत काल में एक कथा आती है, ऐसी मान्यता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को भी राखी बांधी जाती है और राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रावणी भी कहते हैं और इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन से शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। ये दिन शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन शिक्षा और ज्ञान के उपाय भी किए जा सकते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए जान लेते हैं कि भाई बहन का पवित्र बंधन वाला ये त्योहार हम कैसे मनाएं, कैसे हमें मनाना चाहिए रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार।
1: रक्षाबंधन का पर्व मनाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से ये त्योहार मनाना चाहिए? एक थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें, घी का एक दीपक भी रखें जिससे रक्षा सूत्र बांधने के बाद अपने भाई की आरती कर सकें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा करके बैठाएं, पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद जो घी का दीपक है उसको जला करके उससे आरती करें और फिर मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा बंधवाने के बाद जो भाई हैं वो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें और बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तु दीजिएगा जो दोनों के लिए मंगलकारी हो, काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ उपहार में मत दीजिएगा।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में जानने का।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न देवाशीष घोष जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। 19 जनवरी 1970 का जन्म है, 8:35 रात को बैरकपुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, भविष्य में नौकरी कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देवाशीष जी, कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा भी बुध की चल रही है। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ठीक ठाक नौकरी इस साल के अंत में मिल जानी चाहिए। और जहां तक आपके आर्थिक स्थिति का सवाल है, भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिला जुला के ठीक रहेगी। जून 2027 के बाद से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक पीला पुखराज या एक टोपाज सुनहला, ये आप बनवा लीजिए 6-8 रत्ती का, सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का और जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, अगला प्रश्न मनीष शर्मा जी ने हमें नोएडा से लिखा है। 18 मई 2004 का जन्म है, 1:15 AM दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं भविष्य में किस करियर में जाऊं, क्या मेरी दिशा होगी और क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूं। मनीष जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, बैंकिंग या फाइनेंस में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर आप प्रयत्न करें तो। और आपकी उम्र लगभग 22 साल हुई है, उम्र के 25-26 साल में आपके लिए सफलता की संभावना बनती है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए जानते हैं कि किस कामना की पूर्ति के लिए हम अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र बांधें।
1: अब ये जानते हैं कि अपने भाई को उसकी मनोकामना पूरी होने के अनुसार कौन सा रक्षा सूत्र बहन को बांधना चाहिए। भाई की अच्छी शिक्षा के लिए और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा, उसको शिक्षा और एकाग्रता में लाभ होगा। अगर आपके भाई के विवाह में विलंब हो रहा है तो भाई के शीघ्र विवाह के लिए ऐसा रक्षा सूत्र बांधिए जिसमें सफेद रंग के नग लगे हों या रक्षा सूत्र सफेद रंग का हो। भाई के जीवन में अगर विवाह संबंधी समस्या है तो अपने भाई को पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधिए, बहुत उचित होगा। भाई के रोजगार में फायदा हो, भाई की आर्थिक स्थिति में फायदा हो, इसके लिए नीले रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। भाई की रक्षा हो नकारात्मक ऊर्जा से, भाई स्वस्थ रहे, दुर्घटना से रक्षा हो, इसके लिए अपने भाई को लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधिएगा। आपके भाई की हर प्रकार से रक्षा हो, इसके लिए लाल, पीले और सफेद रंग के धागों से बना हुआ मिश्रित रक्षा सूत्र बांधिएगा। तो आप अपने भाई की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भाई के मांगल्य के लिए, भाई के जीवन में शुभता के लिए अलग अलग रंग के रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकती हैं।
0: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई नया अवसर मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: ये तो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के पावन त्योहार पे जब हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो हमें रिटर्न में कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, तो किस मनोकामना के लिए बहन को कैसा उपहार दें, आइए जान लेते हैं पंडित जी से।
1: अब आपके बहन की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, बहन जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न रहे, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए बहन को कैसा उपहार दें? बहन का करियर अच्छा हो, बहन की नौकरी अच्छी हो, इसके लिए अपनी बहन को अच्छी कलम, पुस्तकें और लैंप, ये आप उपहार में दे सकते हैं। अगर आपकी बहन के विवाह में विलंब हो रहा है तो बहन के शीघ्र विवाह के लिए बहन को सुगंध और पीले वस्त्र उपहार में दे सकते हैं। बहन का वैवाहिक जीवन सुखद हो, विवाह की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए बहन को चांदी के आभूषण, फुटवेयर, जूते चप्पल उपहार में दे सकते हैं। बहन के जीवन में संतान संबंधी समस्याएं दूर हों, इसके लिए अपनी बहन को बाल कृष्ण की मूर्ति और संगीत का सामान आपको देना चाहिए। बहन की आर्थिक संपन्नता हो, बहन की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो, इसके लिए बहन को लाल वस्त्र, मिठाई और चावल, ये उपहार में दीजिए। आपकी बहन के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बड़े आसानी से आ जाएगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, बेवजह की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न विकास जी ने थाने महाराष्ट्र से हमें लिखा है। 1 अगस्त 1962 का जन्म है, 9:51 प्रातः मुंबई महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। विकास जी आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कर्क राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए भविष्य आपका बिल्कुल ठीक है, पैसे रुपए के हिसाब से, संतान की उन्नति के हिसाब से आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली के लिए बन रही है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, पेट का, प्रोस्टेट का, यूरिन और किडनी से संबंधित समस्याओं का ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिएगा, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा।
1: और अब जानेंगे आज के अंतिम प्रश्न के बारे में, तो चलिए जानते हैं आज का चौथा और अंतिम प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी

सारथी जी ने हमें इटावा से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 जून 1998, 9:05 रात को इटावा।

0: सर्प योग भी है। विनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली है मकर लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, तो वो सफलता में थोड़ा विलंब करेगा और बेटे के मन में चिंता और तनाव भी थोड़ा पैदा करेगा। लेकिन कुल मिला जुला के 2028 के फरवरी के बाद आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। साल 2027 में इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना चाहिए। एक इनको ओपल बनवा करके पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनसे बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बेहतर होगा। ज्योतिष में काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसीलिए उसकी चिंता करने की या उसका तनाव पालने की कोई जरूरत आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है।
1: पंडित जी, एक सवाल था मन में, क्योंकि रक्षाबंधन का पावन त्योहार है और कई बहनें ऐसी हैं जिनके कोई भाई नहीं है, तो ऐसे में वो किसको राखी बांधे?
0: जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बहनें ऐसी हों जिनके कोई भाई ना हो। तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहनों के कोई धर्म भाई होते हैं, मुंह बोले भाई होते हैं, उनको राखी बांध करके वो रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण संबंध आपका ईश्वर के साथ होता है। और हम सामान्यतः कहते हैं ना कि ईश्वर ही हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारा परिवार है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके इष्ट देव हैं, जिनके प्रति आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, भगवान शिव हों, भगवान कृष्ण हों, भगवान गणपति हों, हनुमान जी हों, जिसके प्रति आपकी सर्वाधिक श्रद्धा है, जिस देवता के स्वरूप के प्रति, आप उनको रक्षाबंधन बांध सकती हैं और रक्षाबंधन का पावन पर्व मना सकती हैं। लेकिन देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि रक्षाबंधन का जो पर्व था वो मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को, अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधा जाता था। भाई बहन का एंगल उसमें तब आया जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा बांधा, क्योंकि उनके हाथ से रक्त निकल रहा था। तो चूंकि भगवान कृष्ण की मान्यताओं के बाद रक्षाबंधन में भाई बहन का संबंध जुड़ा, इसलिए अगर आप भगवान कृष्ण को अपना भाई माने, भगवान कृष्ण को भाई मानकर उनको रक्षा सूत्र बांधें और उनसे प्रार्थना करें, तो ये पर्व आपके लिए बहुत शुभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 28 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, विदेश में या दूर स्थान में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया है इसी के साथ आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण भी है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा?

0: करेगा। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं होता। रक्षाबंधन पर भद्रा देखना महत्वपूर्ण होता है। भद्रा का विचार किया जाता है और भद्रा 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग समाप्त हो जाएगी। इस बार आप पूरे दिन जब चाहें रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई वर्जना, कोई रोक आपके ऊपर नहीं है।
1: और अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जानते हैं 28 अगस्त 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और गुडलक में इसी के साथ वक्त है आज की गुडलक राशि को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि क्या कहती है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की गड़बड़ियां क्या हैं और उन्हें जीवन में सुधार कैसा करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है तुला। आपको चंचलता से और दिखावे से बचना चाहिए और जीवन में अच्छा मित्र बनाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर बार बार आपकी नौकरी छूट जाती हो तो आप क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा रोज करिए और सप्ताह में एक दिन शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए। बार बार नौकरी का छूटना बंद हो जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: बात करेंगे उस धार्मिक यात्रा की जिसका समापन अब से कुछ घंटों बाद होने जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके समापन की घड़ी नजदीक आ गई है। इस यात्रा के समापन से जुड़ी छड़ी मुबारक यात्रा सुबह अमरनाथ गुफा पहुंचने वाली है, जिसके बाद यात्रा का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन हो जाएगा।

0: जिस उत्साह और उमंग के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का श्री गणेश 3 जुलाई को हुआ था, ठीक उसी उत्साह और भक्तिभाव के साथ यात्रा का समापन अब से कुछ घंटों बाद होने जा रहा है।
1: बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
0: यात्रा के समापन के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से रवाना हुई छड़ी मुबारक यात्रा अब अपने मंजिल के बेहद करीब पहुँच चुकी है, जिसकी ये सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें दशनामी अखाड़े के साधु संत भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हाथों में पवित्र चांदी की गदा लेकर अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं।
1: हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये छड़ी मुबारक यात्रा सालाना अमरनाथ यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होने से पहले दशनामी अखाड़े के शिविर में साधु संतों ने विशेष पूजा पाठ की।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा कल यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने वाली है। इस बीच छड़ी मुबारक अब पंचतरणी पहुंच चुकी है। पंचतरणी में पूजा और रात के रुकने के बाद कल सुबह छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेगी और अमरनाथ गुफा में ही अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी।
0: ये छड़ी मुबारक भगवान शिव की पवित्र चांदी की गदा है, जिसे शिव जी की अलौकिक शक्तियों का वाहक माना गया है। इसमें शिव की दिव्य उपस्थिति निहित मानी जाती है। ये भक्तों को आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यही वजह है कि इस पवित्र चांदी की गदा को साधु संत बहुत भक्तिभाव के साथ पवित्र गुफा तक ले जाते हैं और फिर वहाँ इसकी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन हो जाता है।
3: देवता लोग पहले से छड़ी को लेकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी ऋषियों के साथ कैलाश में जाकर भगवान शिव की अर्चना करते थे और उनकी स्तुति करते थे। वही परंपरा आज भी प्राचीन ऋषियों के मत के अनुसार यहाँ पर प्रवाहित की जाती है और इसका मेन उद्देश्य सारे समाज, सारे मजहब, सभी जातियाँ, सभी देश इकट्ठे होकर एक सूत्र में बंधकर एक होकर बिना क्राइम के, बिना नफरत के, बिना किसी पाखंड के सभी जीवन व्यतीत करें।
0: छड़ी मुबारक की ये यात्रा न केवल एक जरूरी धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भक्ति, समर्पण, एकता और कश्मीर की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी है, जिसे हर साल अमरनाथ यात्रा के समापन पर इसी भक्ति भाव के साथ निभाया जाता है। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में करीब 4,80,000 तीर्थयात्री पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है।
2: आखिरी यानी शुक्रवार को वो छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी, जहां पर उस छड़ी मुबारक की पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा की छड़ी के साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी सफर कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी।
4: बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति, मुंबई के दिव्य और भव्य गणेश पंडालों तक पहुंचना शुरू हो चुका है। इसमें खेतवाड़ी की 11वीं गली में स्थापित होने वाले गणपति बप्पा की भी गिनती होती है, जिन्हें खेतवाड़ीचा लंबोदर और मुंबईचा महाराजा के नाम से जाना जाता है। ये मंडल अक्सर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस बार यहाँ भगवान गणेश नरसिंह अवतार में नजर आ रहे हैं।

0: बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक। बप्पा का अपने दिव्य और भव्य पंडालों में आगमन शुरू हो चुका है। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति का शुभागमन हो चुका है। गणेशोत्सव से करीब 15 दिन पहले से ही खेतवाड़ी 11वीं गली में गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष सुनाई देने लगा है। वहां लगातार भगवान गणेश के प्रति आस्था और अगाध प्रेम से जुड़ी भावनाओं का संचार हो रहा है। बप्पा के आगमन के दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा और पूरा परिसर गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठा। मुंबई के सबसे ऊंचे गणपति के आस्था, भक्ति और आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। वैसे गजानन की भक्ति की कोई सीमा या परिधि नहीं है। खेतवाड़ी की 11वीं गली का मंडल अपनी भव्य और विशाल मूर्तियों के लिए पूरे मुंबई में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के लिए यहाँ विघ्नहर्ता की सबसे आकर्षक और विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। हर वर्ष यहाँ बप्पा देवी देवताओं के अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस बार विनायक की विशाल प्रतिमा को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में स्थापित किया गया है। यानी गजानन का ये स्वरूप उग्र होने के साथ ही दिव्य और भव्य भी है। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 47 फीट है।
1: गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य अगले महीने यानी कि 14 तारीख से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश महाउत्सव यानी कि गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हम हमेशा रोज ही अपनी खबरों में बताते हैं कि गणेश जी की जो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडालों में लाने का काम भी शुरू हो गया है। इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा और अत्यंत भयंकर अवतार है, जिसमें उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का धारण किया था ताकि भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्यकश्यप का वध किया जा सके। ऐसी परंपरा है कि मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्त खेतवाड़ी की गलियों में बप्पा के अलग अलग रूपों के दर्शन करने जरूर आते हैं। और यही वजह है कि हर साल बप्पा नए अवतारों में दिखते हैं। आस्था और भक्ति से जुड़ी ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
2: हम लास्ट 25 साल से भी ज्यादा हमें अनुभव हुआ है कि हम टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और लास्ट 5 साल से तो हम महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और उनका कंटिन्यू अवार्ड लेते हैं। और इसमें इस साल हमने नरसिम्हा अवतार बनानी है क्योंकि हम हर एक साल अलग अलग अलग अवतार हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि जो यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं तो उनको अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे।
1: अच्छा, इसके पहले कौन से अवतार में बप्पा आ चुके हैं जिनके लिए आपने अवार्ड्स लिए?
2: उनके पहले आए हैं परशुराम अवतार आए हैं, फिर इंद्र अवतार बनाए हैं, फिर उसके बाद एक कल्कि अवतार बनाए हैं। कल्कि अवतार के बाद लास्ट ईयर स्वानंद देसाय, जो गणपति का मूल स्थान है स्वानंद देसाय, वो रूप में गणेश जी की विराजमान की थी। वो भी 45 फीट की थी, इस बार 47 फीट की है। यहाँ पे इस बार नरसिम्हा अवतार की मूर्ति बनाई।
0: 47 फीट ऊंची प्रतिमा को अस्तित्व में लाना आसान कार्य नहीं था। निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिमा से जुड़ी कई बारीकियों का खास ख्याल रखा जाता है। इनमें गदा, त्रिशूल, चक्र और तलवार जैसे अस्त्रों का संयोजन शामिल होता है।
2: जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति के हम लोग करीबन 25 साल से, मैंने आपको कहा कि बड़ी मूर्तियां स्थापना करते हम यहाँ पे ही हमारे नज़र के सामने ही मूर्ति बनाते हैं। हमारे मूर्तिकार है सुनील वराड़कर जी। मैं और सुनील वराड़कर जी 2 महीने से शुरुआत करते हैं और उसमें कि उसका बैलेंस कैसा रहता है, उनके शस्त्र उनके जो बैलेंस रहता है उनको कैसे नियोजन करते हैं, उसमें सपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसमें बहुत से रोल काम करते हैं। पहले कास्टिंग करते हैं, जो टीम रहती है पहले कास्टिंग की टीम काम करती है, कास्टिंग की टीम काम करने के बाद जॉइंटिंग करती है, जॉइंटिंग करने में वेल्डर की बहुत महत्व की भूमिका रहती है। उसके बाद जो आते हैं पॉलिश करने वाले, जो टीम आती है उसके बाद जो पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद कलर के काम करने वाले, कलर की टीम आती है, कलर टीम करने के बाद ही मंडल को सौंपा जाता है।
0: खेतवाड़ी की गलियों में स्थापित पंडालों की सजावट भी बहुत मशहूर है। यहाँ के पंडालों में आधुनिक लाइट और पौराणिक कथाओं की सुंदर सजावट की जाती है और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंडाल की सजावट का विशेष ख्याल रखा जाता है। हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी थीम पर ही खेतवाड़ी की 11वीं लेन के गणपति पंडाल की सजावट होगी
1: और डेकोरेशन भी नरसिंह अवतार से ही आसपास के संबंधित होगा।
2: हाँ जी, नरसिंह अवतार के जो रिलेटिव्स जो भी है, हिरण्यकश्यप और उनके जो वध किया था उस रिलेशन में ही हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे।
0: भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। गणेशोत्सव में 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में हर मूर्तिकार की तरफ से गणेश प्रतिमाओं को अलग रूप दिया जा रहा है।
1: आप बताएं, बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपकी व्यस्तता चल रही है, कैसा चल रहा है आपका?
3: बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है।
1: अच्छा, तो कितनी अभी तक गणेश जी की प्रतिमाएं आप बना चुके हैं जो पंडालों में आपने भेज भी दिया है, और थोड़ा बताएं डिटेल?
3: काफी कम मूर्ति अभी तक निकली है, मतलब एक टेलर ही हुआ, शुरुआत हुई है। अभी इस संडे से ज्यादा के आगमन शुरू हो जाएंगे, ये संडे, अगला संडे, ये दो संडे काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और अभी ये दो संडे में काफी सारी मूर्तियां, जो मुंबई की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बिगेस्ट पंडाल है, उनके आगमन शुरू हो जाएंगे।
1: अभी इस समय पंडाल में भी होंगी बहुत सारी मूर्तियां बनकर रेडी हो चुकी
3: है, कई सारी मूर्तियां हैं, मतलब मुंबई के बिगेस्ट मंडल जो है उनकी मूर्तियां अभी ये संडे अगले संडे जाने बाकी।
1: थोड़ा सा दो चार नाम बताएं ताकि लोग आकर के इंतजार करें, मूर्ति निकले तो लोग वहां पे शामिल हो, कौन से वो बड़े मंडल है?
3: परेल वर्कशॉप से मुंबई के दिग्गज मंडल है, उनकी मूर्तियां जाना बाकी है, जैसे चिंतामणि हुआ, गंधराज हुआ, धावी खेतवाड़ी गली, खेतवाड़ी दसवीं गली, ओम तांडव हुआ, ऐसे बिगेस्ट मंडलों की मूर्तियां अभी तक यहाँ से जाना बाकी है।
1: अच्छा, अभी बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या सबकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं?
3: और कुछ मूर्तियां तैयार है और बाकी मूर्तियों का काम चल रहा है।
1: कितने कितने समय तक आप काम करते हैं और कितने लोगों के साथ कर रहे हैं?
3: अभी 24 घंटे काम चल रहा है।
0: मुंबई के परेल में गणेश प्रतिमाओं से जुड़ा एक परिसर मौजूद है जिसे मुंबई का सबसे बड़ा गणपति वर्कशॉप कहा जाता है। मूर्ति कला के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक केंद्र में मुंबई के सबसे मशहूर पंडालों के लिए विशालकाय और भव्य मूर्तियां तैयार होती हैं। और यही वजह है कि इन मूर्तियों से जुड़ी इस कार्यशाला में 24 घंटे काम चल रहा है। 14 सितंबर से 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जर्मनी के कोलोन में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मेले यानी गेम्सकॉम 2026 का आगाज हो चुका है। बुधवार 26 अगस्त से शुरू हुए इस मेले में दुनिया भर की 1700 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां गेमिंग के दीवानों को नए नए गेम्स की झलक तो मिल ही रही है, साथ ही साथ कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं।
5: जर्मनी, जहाँ के कोलोन में दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो और कंप्यूटर गेमिंग ट्रेड फेयर चल रहा है। यहाँ दुनिया भर से गेम डेवलपर, पब्लिशर और गेमिंग प्रेमी नए गेम्स, हार्डवेयर और तकनीक को देखने पहुँच रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि गेम अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। यहाँ कोई टैबलेट पर गेम खेल रहा है, कोई कंप्यूटर पर, तो कोई बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर गेम का नया एक्सपीरियंस ले रहा है। गेम्स में रचे बसे इस संसार का एक्सपीरियंस अद्भुत है। यहाँ गेमिंग के किरदारों के गेटअप में भी लोग पहुँचे हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में गेमिंग की दुनिया कैसे होने वाली है।
0: जर्मनी के कोलोन शहर में चल रहे इस महा इवेंट में करीब 1700 से ज्यादा कंपनियां अपने गेम और नई तकनीक लेकर पहुंचे हैं। गेमिंग की इस बढ़ती दुनिया में सिर्फ गेमर्स ही नहीं, दुनिया की बड़ी टेक और गेमिंग कंपनी भी अपना भविष्य तलाश रही है। गेम्सकॉम में सेगा और एक्सबॉक्स जैसे बड़े नाम मौजूद हैं, जो अपने नए गेम्स और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला बड़ा गेम कौन सा होगा, सवाल ये भी है कि एआई के साथ गेमिंग की दुनिया कितनी एडवांस होने जा रही है।
6: Wir haben eine riesige Vielfalt auf der Gamescom und es gibt Trends wirklich in unterschiedlichen Bereichen, bei den Spielen, aber zum Beispiel auch bei den Technologien. Es geht viel um den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, es geht um Indie-Spiele, die besonders erfolgreich sind, aber es geht genauso um die positiven Effekte von Games für Themen, die uns gesellschaftlich interessieren, wie für die Stärkung der Demokratie.
0: जिस रफ्तार से हाल के सालों में गेमिंग का क्रेज बढ़ा है, उसके पीछे सिर्फ उसकी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी है। अनुमान है कि 2026 में दुनिया भर का वीडियो गेम बाजार करीब 330 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी गेमिंग की दुनिया में स्क्रीन के सामने बैठा खिलाड़ी अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस खड़ा है। फिलहाल तो 30 अगस्त तक गेमिंग के इस महामेले के दरवाजे खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार

0: sure that he said, nobody per him. इधर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पूछेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
1: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटी सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
2: नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगे, जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो है जिसमें नेपालीज आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से खड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये कि ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा टेरेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे।
1: राहत कर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं।
2: जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों के मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा, अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ, अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है, आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी।
1: राहत और बचाव कार्य की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रिसवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं।
3: जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए।
1: हवाई तस्वीरों से भी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे। घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं।
2: जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान, क्या मकान, सब उसकी चपेट में आए। वहाँ देखिए, किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनके की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग।
1: इस बीच नेपाल की पुलिस और स्थानीय राहत कर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने भी पड़ोसी देश में राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को नेपाल भेजा। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था।
4: देखिए, कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में, तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटीरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ से 10 टन के करीब मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
1: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई मुसीबत के बाद उसका सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से नेपाल को $5,00,000 देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गृह मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आई इस आपदा के बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचना शुरू कर दिया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: पीएम मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू किया जाएगा और बच्चे की रुचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकार हर तरह का सहयोग देगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव पर प्याज की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। यह मौजूदा बाजार भाव से 44% कम है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बेच रही है। नेपाल और तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाखंग में आयोजित की गई। इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक पुंछ के दशनामी अखाड़ा से चलकर राजपुरा मंडे स्थित श्री बूढ़ा मरनाथ जी तीर्थ स्थल पर पहुंच गई है। ये पवित्र छड़ी यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। छड़ी मुबारक के मंडी पहुंचने के साथ ही इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई है जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है ताकि उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना न पड़े। सलोनी की शादी जून में हुई थी। उन्होंने इससे पहले पंछियों के लिए यह घर बनवाया।
5: चलिए न्यूज वेब पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर।
1: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की यह बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसी आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
5: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी की 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में है जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का,

0: जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: सिनेमा घरों के बाद अब एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा घर बैठे भी देख सकते हैं। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी बाग पहली बार साथ नजर आई हैं। शिव रवेल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों खतरनाक मिशन पर निकले स्पाई बनी हैं। 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली और कहानी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणाबाली। 16 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल संक्रेतायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है। नई पोस्टर में आग और धुएं के बीच विजय का रफ और खतरनाक अवतार दिखा। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रामायण की महाकथा बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाली है। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला गाना सियाराम रिलीज कर दिया गया है। हिंदी वर्जन को जावेद अली और छत्तीसगढ़ी वर्जन को अनुराग शर्मा ने आवाज दी है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्रीराम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। आशीष डोनाल्ड और देव चौहान ने संगीत दिया है। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में रिलीज होगी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई और 4 क्रांतिकारियों की कहानी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा राठौर और गुरफतेह पीरजादा अहम किरदारों में हैं। सीरीज 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में देखी जा सकेगी।
3: हमारी कहानी हम ही लिखेंगे।
1: चीन में सजा कांच के फूलों का अनोखा बागीचा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
2: चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक चला पारंपरिक नदी उत्सव अब खत्म हो गया है। इस दौरान हजारों लोगों ने जेजियांग नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नतें मांगी। रात के वक्त नदी पर तैरती रोशन लालटेन का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। करीब 30 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव को पहली बार 3 से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक प्रस्तुतियां, खेल और खान पान के आयोजन भी हुए। परंपरा को तांग और सोंग राजवंशों से जुड़ा बताया जाता है। में कांच से बने फूलों का खूबसूरत बगीचा लोगों का ध्यान खींच रहा है। इन फूलों को तैयार करने के लिए कांच को करीब 1400 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। कारीगरों के पास इसे आकार देने के लिए महज 5 सेकंड का समय होता है। जरा सी देरी होते ही कांच जम जाता है। कुछ फूलों को तैयार करने के लिए कांच को 100 बार तक गर्म करना पड़ता है। करीब 2000 साल पुरानी इस कला से इस साल 6 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है। इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल पर भी जोर है। इंडी गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता भी चर्चा में है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा। जापान के हिरोसाकी शहर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 400 टन का किला रस्सियों से खींच कर करीब 3 मीटर आगे बढ़ा है। किले को करीब 70 मीटर दूर उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाया जाना है। इसके लिए लोगों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया था। 2015 में भूकंप से किले की दीवार को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद इसे हटाया गया। मरम्मत के बाद अब इसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। जून से जारी इस प्रक्रिया में लोगों द्वारा किला खींचने का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम मशीनों से होगा। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स ने शानदार शुरुआत करते हुए सर्फिंग में परफेक्ट 10 अंक हासिल किया। वहीं फ्रांस की वाहिने फियरो ने दमदार वापसी करते हुए 14.17 अंक जुटाए और अगले दौर में जगह बनाए। कोस्टारिका की ब्रिसा हेनेसी ने कई बार गिरने के बावजूद इसराइल के अनाथ लेलियार को मात दी। फिजी से उनका खास कनेक्शन भी है। वहीं हवाई के साथ मोनिस भी मुकाबले के लिए लौटे हैं। बेटी के जन्म के बाद वो कुछ समय सर्फिंग से दूर रहे थे।
1: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली अंडर 19 टीम में एंट्री। खेल जगत से

0: जुड़िए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
1: श्रीलंका के साथ भारत का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सोनल दिनुषा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो गई थी और मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे, तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ कर लिया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, लिहाजा भारत ये सीरीज 1-0 से जीत गया है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके प्रति दीवानगी अभी से दिखने लगी है। वहां भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पहले 48 घंटे में 26,000 टिकट बिक चुके हैं। भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तीनों मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, यानी वनडे टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक साथ नजर आएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
3: 'असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक, उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखियां, अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी, 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत, मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी किसी वीडियो को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना

0: खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य होने के बाद मराठी न सीख पाने के चलते एक आदमी अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र छोड़कर जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसे शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक को ही धमकाने लगी। क्या है सच्चाई, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। क्या है इसका सच, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।
2: महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य भर में कमर्शियल ऑटो और टैक्सी चलाने वालों के लिए बेसिक मराठी अनिवार्य कर दी है। आरटीओ के उड़न दस्तों ने पूरे महाराष्ट्र में जांच शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देशों पर जांच की जा रही है। नए नियमों के अनुसार जिन चालकों को मराठी का ज्ञान नहीं है, उन्हें पहले नोटिस थमाया जाएगा और सीखने की मोहलत दी जाएगी। तय समय में अगर चालक मराठी नहीं सीख पाया तो 3 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद भी नियम न मानने पर परमिट पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमा रहे लाखों प्रवासी चालकों में डर पैदा हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के लगेज पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता से डर के ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की तहकीकात की और सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य कर दिया है, ताकि स्थानीय यात्रियों से संवाद आसान हो सके। अगस्त के महीने से प्रशासन विशेष अभियान चलाकर चालकों के मौखिक और व्यावहारिक मराठी ज्ञान की जांच भी कर रहा है और इस दौरान कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। और इसके बाद राजनीतिक नेताओं की मांग और बैठकों के बाद इस मामले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई तुरंत सख्ती नहीं की जाएगी और चालकों को सीखने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे ट्रेन के एक नंबर पर गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वाराणसी के बीच 1 अप्रैल से 15 जून के बीच चलाई गई एक स्पेशल ट्रेन का है और अभी फिलहाल ये ट्रेन नहीं चल रही है। इससे ये तो साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हालिया नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ये कहीं ना कहीं जानकारी इसके बारे में जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने मुंबई डिवीजन के DRM से संपर्क किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि ये वीडियो पुराना है और रेलवे के मौजूदा नियमों और प्रक्रिया के अनुसार इस ऑटो को 27 अप्रैल

0: को पार्सल के तौर पर बुक किया गया था, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बनारस जाना था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता एजाज खान ने ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल को ढूंढ निकाला और फिर कैमरे के सामने वायरल हो रहे वीडियो की सारी हकीकत सामने आ गई।
1: मैंने मराठी के चलते नहीं ले गया था, मैं कुल्ला टर्मिनल से बनारस लेके गया था बुक करके ट्रेन में। मैं वहाँ पे चलाने के लिए ले गया था और वहाँ पे 3 महीने रह के मैंने चला के देखा, हमको नहीं पड़ रहा वहाँ पे, नहीं जमा, इसलिए फिर वापस मैंने लेके चलाया है।
2: मराठी की वजह से आप रिक्शा लेकर गांव गए आप?
1: नहीं नहीं, मराठी की वजह से नहीं, अगर मराठी की वजह से मैं रिक्शा लेके गांव गया होता तो फिर लेके मैं वापस नहीं आया होता।
2: कितने साल से मुंबई में आप?
1: मुंबई में 2003 का मेरा लाइसेंस है।
0: दरअसल ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल वाराणसी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। वो कुछ निजी कारणों से गांव जाकर रिक्शा चलाने का फैसला किया था, लेकिन गांव में ई रिक्शा की संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए वो 7 अगस्त को अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र वापस लौट आए। उन्हें बेसिक मराठी आती है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने मजाक या सनसनी फैलाने के मकसद से इसमें गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ दी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल निजी कारणों से अप्रैल में अपने गांव गए थे और अगस्त में वापस महाराष्ट्र आ गए थे। मुंबई से एजाज खान के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक से कहा सुनी की उसके साथ धक्का मुक्की की। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
4: लड़की ना मेरी बाइक में पता नहीं क्या कर रही है, देख रहे हो? देखे ये तोड़ दी। अबे देखो, मैं बहुत देर से इसको देख रहा हूँ, बहुत देर से इसके पास जा रहा हूँ, देख रहे हो क्या करती मेरी बाइक का पूरा देख सत्यानाश, देख रहे हो सत्यानाश कर दिया लड़की।
5: नारंगी रंग की एक बाइक को तोड़ती एक बुर्खाधारी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप भागने के फिराक में होती है कि एक युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है।
4: क्या करी तूने? ओ मैं यहाँ से जाना मत, यहाँ से घसक मत जाना। ये क्या करी तूने? ये क्या है? ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा?
6: पहले से टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ी।
4: पहले से टूटा हुआ था? मैडम तुमको क्या दिक्कत था इसमें? इसमें क्यों लग रही थी बाइक में? तुम यहाँ पे टच कर रहे हो, बैठी थी तो मैंने कुछ बोल रहा था, मैं दूर से देख रहा हूँ मैडम। उसके बाद ये तोड़ दी तूने, यार दिमाग है या नहीं है, ये क्या कर रही हो तुम?
5: वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग आक्रोश जताते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हिंदू युवक ने ये सारा वाक्य रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो ये महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते लिखा कि वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला बाइक तोड़कर जिस प्रकार बाइक मालिक को ही धमका रही है, बाइक मालिक ने वीडियो नहीं बनाई होती तो क्या होता, ये मुस्लिम महिला अपने घर वालों को फोन कर बुलाती और इस बाइक वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाती, फिर इसे पीटा जाता। 2-4 सेक्युलर हिंदू भी बिना सज्जाने इस युवक को कूट कर पुलिस के हवाले कर देते।
4: अभी बुला पुलिस को।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: तो 2 मिनट में पुलिस भी आ जाएगी। तुम अगर यहाँ से जाओ, नहीं आप जाओ, मैं पुलिस को बुला दूंगा, आगे ही पकड़े जाओगे, बता रहा हूँ तुमको। इसने तोड़ी है, तूने तोड़ी है, यस या नो बता दो? नहीं तोड़ी है तूने? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठी थी।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्का पहनी एक महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप वहां से भागने की फिराक में होती है, तभी युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है और वीडियो को शेयर करने के बाद कई लोग आक्रोश भी जताते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हिंदू युवक ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में एक जगह ये नजर आता है कि जब महिला बाइक के अगले हिस्से को तोड़ रही होती है तभी वहां पर एक बाइक सवार गुजरता है, लेकिन वो कुछ दूर पहले ही बाएं मुड़ जाता है, मानो उसे इशारा कर दिया गया हो कि यहां पर शूट चल रहा है। इसके लिए कैमरे की फ्रेम में आप मत आओ। वीडियो को देखने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि कहानी के हिसाब से सारे वाकये को शूट किया गया है, क्योंकि किसी सड़क पर महिला सरेआम ऐसी हरकत करेगी तब उसे पकड़ा जाएगा तो वो शोर मचाएगी जाहिर सी बात, और इसे सुनकर लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमें वीडियो पर शक हुआ, हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? इस वीडियो का सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे मिलता जुलता वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो में भी वही महिला है, वही नारंगी बाइक है और वही लोकेशन है। दरअसल इस तरह के वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स अक्सर एक ही कहानी पर अलग अलग कलाकारों के साथ कई वीडियो शूट कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग अकाउंट से शेयर करते हैं ताकि सभी एक्टर्स के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को एंगेजमेंट मिल जाए। सर्च के दौरान हमें कई और वीडियो भी मिले जिनमें ठीक वही महिला एक्टर बुर्खा पहने हुए दिख रही है। बाइक तोड़ने वाले वीडियो से ठीक पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला जिसमें एक लड़की स्कर्ट टॉप पहने हुए उसी बाइक पर बैठी है। उसके जूते और फोन वायरल वीडियो वाली बुर्खा पहनी महिला से मेल खाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चे का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों जापान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 1800 लोग मिलकर 360 टन वजनी एक विशाल ऐतिहासिक किले को रस्सियों से खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर पर तौलिया और टोपी पहने सैकड़ों लोग 30 मीटर लंबी रस्सियों को पकड़े हुए पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। पीछे एक बहुमंजिला विशाल जापानी किला पटरियों और रोलर्स पर टिका हुआ है। जैसे ही 80-80 लोगों की टीमें एक साथ सोरे सोरे के पारंपरिक जापानी नारा लगाते हैं, 360 टन का भारी भरकम किला धीरे धीरे आगे की ओर खिसकने लगता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में एक रेड पॉइंटर और स्केल दिखाई देता है, जिसमें मिलीमीटर दर मिलीमीटर किला आगे बढ़ते हुए साफ नजर आ रहा है। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना जापान के ओमोरी प्रांत में स्थित ऐतिहासिक हिरोसाकी किले की है। ये किला 1611 में बनाया गया था और इसे जापान की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। दरअसल भूकंप के कारण किले के निचले हिस्से की मुख्य पत्थर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दीवार की मरम्मत करने के लिए 2015 में किले के मुख्य टावर को उसकी मूल जगह से 70 मीटर से अधिक दूर खिसकाया गया था। 2185 पत्थरों को जोड़कर फाउंडेशन और पत्थरों की दीवार दोबारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो इस 360 टन के किले को वापस उसकी असली जगह पर स्थापित किया जा रहा है। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।

0: when I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas, because she knows that I can't have anything without namkeen.
1: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे, वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीखों के पुल बांध रहे हैं। इंदर में एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़ कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़ कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: रक्षाबंधन पर आपने कई तरह की राखियां जरूर देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में तैयार हुई ये शिव राखी आपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि देखिए 13 रुद्राक्षों से बनी इस राखी में सिर्फ कलाई सजाने की खूबसूरती नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था और सूक्ष्म चित्रकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चित्रकला जबरदस्त है और चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस खास राखी का जो है तैयार किया है, और राखी में 12 रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र उकेरे गए हैं। महाकाल से लेकर अगर आप देखेंगे केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ सहित सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग इन छोटे छोटे रुद्राक्षों पर अपनी पहचान के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस राखी की सबसे खास बात यह है कि इसका 13वां रुद्राक्ष, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के बीच इसे केंद्र में रखा गया है और इसी पर उकेरा गया है मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी एक ही राखी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान को भी खास जगह दी गई है। अब जरा गौर से देखिए इन रुद्राक्षों की सतह को, आकार बहुत छोटा है, सतह उभरी हुई है और जगह इतनी कम कि एक छोटी सी गलती पूरी कलाकृति को बिगाड़ सकती है। लेकिन राहुल ने इसी चुनौती को अपनी कला का माध्यम बनाया। राहुल की ये शिव राखी इस परंपरा में कला और आस्था का एक नया रंग जोड़ती है। 13 रुद्राक्ष, 12 ज्योतिर्लिंग और केंद्र में पशुपति महादेव, छोटी सी राखी में समाई ये बड़ी कलाकारी भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम पेश कर रही है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का वो पर्व जिसमें एक धागा रिश्ते को अटूट बंधन में बांध देता है। लेकिन जब यही रक्षा सूत्र आराध्य देवों की कलाई पर सजता है तो आस्था का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फीट की भव्य राखी तैयार की है, तो वहीं पर अयोध्या में भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता और की ओर से जो है विशेष राखी रामलला तक पहुंचाई गई है। दो शहर दो परंपराएं, लेकिन भाव केवल एक, भाई बहन का पवित्र प्रेम। भजनों की मधुर धुन के बीच महिलाएं राखी को आकार देती नजर आती हैं। बाबा के नेत्र, त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू, त्रिपुंड, ओम और स्वस्तिक, मोरपंख और मोतियों के साथ रेशमी कपड़े से इसे सजाया गया है। कहीं राजा महाकाल का स्वरूप है, कहीं पर श्रीनाथ जी की छवि। रामनगरी अयोध्या जहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से भेजी गई विशेष राखी रामलला तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालु राखी लेकर नाचते गाते रामनगरी पहुंची और फिर ऐसे रामलला के पुजारी को सौंप दिया गया। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा के बाद श्रृंगार आरती के बाद रामलला को ये राखी धारण कराई जाएगी। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों।
2: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: इसीलिए खबर के
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
1: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखियां। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में आई आपदा के बाद वहां बचाव और राहत का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल सेना प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक कुल 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे। इस बीच भारत ने सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है और तत्काल करीब 50 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को $20 लाख की मदद भेजने का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के दूसरे देश भी इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

0: sure that he said, Punaya, Motomoti, nobody per इधर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पूछेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
1: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटी सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
2: नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगे, जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो है जिसमें नेपालीज आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से भरा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, उसमें दिखाई देती है वो ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे।
1: राहत कर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं।
2: जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों के मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा, अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ, अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है, आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी।
1: राहत और बचाव कार्य की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रिसवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं।
3: जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए।
1: हवाई तस्वीरों से भी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे। घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं।
2: जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान, क्या मकान, सब उसकी चपेट में आए। वहाँ देखिए, किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनके की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग।
1: इस बीच नेपाल की पुलिस और स्थानीय राहत कर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने भी पड़ोसी देश में राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को नेपाल भेजा। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था।
4: देखिए, कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में, तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटीरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
1: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई मुसीबत के बाद उसका सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से नेपाल को $5,00,000 देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गृह मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आई इस आपदा के बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचना शुरू कर दिया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: पीएम मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू किया जाएगा और बच्चे की रुचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकार हर तरह का सहयोग देगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव पर प्याज की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। यह मौजूदा बाजार भाव से 44% कम है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बेच रही है। नेपाल और तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाखंग में आयोजित की गई। इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक पुंछ के दशनामी अखाड़ा से चलकर राजपुरा मंडे स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ जी तीर्थ स्थल पर पहुंच गई है। ये पवित्र छड़ी यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। छड़ी मुबारक के मंडी पहुंचने के साथ ही इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई है जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है ताकि उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना न पड़े। सलोनी की शादी जून में हुई थी। उन्होंने इससे पहले पंछियों के लिए यह घर बनवाया।
5: चलिए न्यूज वक्त पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर।
1: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की यह बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसी आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
5: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहां गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: सिनेमाघरों के बाद अब एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा घर बैठे भी देख सकते हैं। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ पहली बार साथ नजर आई हैं। शिव रवल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों खतरनाक मिशन पर निकले स्पाई बनी हैं। 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली और कहानी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणावाली। 16 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल संक्रेतायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है। नई पोस्टर में आग और धुएं के बीच विजय का रफ और खतरनाक अवतार दिखा। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रामायण की महाकथा बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाली है। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला गाना सियाराम रिलीज कर दिया गया है। हिंदी वर्जन को जावेद अली और छत्तीसगढ़ी वर्जन को अनुराग शर्मा ने आवाज दी है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्रीराम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। आशीष डोनाल्ड और देव चौहान ने संगीत दिया है। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में रिलीज होगी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई और 4 क्रांतिकारियों की कहानी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा राठौर और गुरफतेह पीरजादा अहम किरदारों में हैं। सीरीज 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में देखी जा सकेगी।
5: हमारी कहानी हम ही लिखेंगे।
3: चीन में सजा कांच के फूलों का अनोखा बागीचा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक चला पारंपरिक नदी उत्सव अब खत्म हो गया है। इस दौरान हजारों लोगों ने जेजियांग नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नतें मांगी। रात के वक्त नदी पर तैरती रोशन लालटेन का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। करीब 30 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव को पहली बार 3 से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक प्रस्तुतियां, खेल और खान पान के आयोजन भी हुए। परंपरा को तांग और सोंग राजवंशों से जुड़ा बताया जाता है। में कांच से बने फूलों का खूबसूरत बगीचा लोगों का ध्यान खींच रहा है। इन फूलों को तैयार करने के लिए कांच को करीब 1400 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। कारीगरों के पास इसे आकार देने के लिए महज 5 सेकंड का समय होता है। जरा सी देरी होते ही कांच जम जाता है। कुछ फूलों को तैयार करने के लिए कांच को 100 बार तक गर्म करना पड़ता है। करीब 2000 साल पुरानी इस कला से इस साल 6 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है। इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल पर भी जोर है। इंडी गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता भी चर्चा में है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा। जापान के हिरोसाकी शहर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 400 टन का किला रस्सियों से खींच कर करीब 3 मीटर आगे बढ़ा है। किले को करीब 70 मीटर दूर उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाया जाना है। इसके लिए लोगों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया था। 2015 में भूकंप से किले की दीवार को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद इसे हटाया गया। मरम्मत के बाद अब इसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। जून से जारी इस प्रक्रिया में लोगों द्वारा किला खींचने का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम मशीनों से होगा। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स ने शानदार शुरुआत करते हुए सर्फिंग में परफेक्ट 10 अंक हासिल किया। वहीं फ्रांस की वाहिने फियरो ने दमदार वापसी करते हुए 14.17 अंक जुटाए और अगले दौर में जगह बनाए। कोस्टारिका की ब्रिसा हेनेसी ने कई बार गिरने के बावजूद इसराइल के अनात लेलियार को मात दी। फिजी से उनका खास कनेक्शन भी है। वहीं हवाई के साथ मोनिस भी मुकाबले के लिए लौटे हैं। बेटी के जन्म के बाद वो कुछ समय सर्फिंग से दूर रहे थे।
3: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली अंडर-19 टीम में एंट्री। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
4: श्रीलंका के साथ भारत का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सोनल दिनुषा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो गई थी और मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे, तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ कर लिया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, लिहाजा भारत ये सीरीज 1-0 से जीत गया है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके प्रति दीवानगी अभी से दिखने लगी है। वहां भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पहले 48 घंटे में 26,000 टिकट बिक चुके हैं। भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तीनों मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, यानी वनडे टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक साथ नजर आएंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
15: आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशेष 2 फीट की राखियां। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी किसी वीडियो को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू

0: करते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य होने के बाद मराठी न सीख पाने के चलते एक आदमी अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र छोड़कर जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई आगे जानिए। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक वाले को ही धमकाने लगी। क्या है सच्चाई जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। क्या है इसका सच, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।
2: महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य भर में कमर्शियल ऑटो और टैक्सी चलाने वालों के लिए बेसिक मराठी अनिवार्य कर दी है। आरटीओ के उड़न दस्तों ने पूरे महाराष्ट्र में जांच शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देशों पर जांच की जा रही है। नए नियमों के अनुसार जिन चालकों को मराठी का ज्ञान नहीं है उन्हें पहले नोटिस थमाया जाएगा और सीखने की मोहलत दी जाएगी। तय समय में अगर चालक मराठी नहीं सीख पाया तो 3 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद भी नियम न मानने पर परमिट पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमा रहे लाखों प्रवासी चालकों में डर पैदा हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के लगेज पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता से डर के ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की तहकीकात की और सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य कर दिया है ताकि स्थानीय यात्रियों से संवाद आसान हो सके। अगस्त के महीने से प्रशासन विशेष अभियान चलाकर चालकों के मौखिक और व्यावहारिक मराठी ज्ञान की जांच भी कर रहा है और इस दौरान कई नोटिस भी जारी किए गए हैं और इसके बाद राजनीतिक नेताओं की मांग और बैठकों के बाद इस मामले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई तुरंत सख्ती नहीं की जाएगी और चालकों को सीखने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे ट्रेन के एक नंबर पर गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वाराणसी के बीच 1 अप्रैल से 15 जून के बीच चलाई गई एक स्पेशल ट्रेन का है और अभी फिलहाल ये ट्रेन नहीं चल रही है। इससे ये तो साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हालिया नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ये कहीं ना कहीं जानकारी इसके बारे में जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने मुंबई डिवीजन के DRM से संपर्क किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि ये वीडियो पुराना है और रेलवे के मौजूदा नियमों और प्रक्रिया के अनुसार

0: ऑटो को 27 अप्रैल को पार्सल के तौर पर बुक किया गया था, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बनारस जाना था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता एजाज खान ने ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल को ढूंढ निकाला और फिर कैमरे के सामने वायरल हो रहे वीडियो की सारी हकीकत सामने आ गई।
1: मैंने मराठी के चलते नहीं ले गया था, मैं कुल्ला टर्मिनल से बनारस लेके गया था बुक करके ट्रेन में। मैं वहाँ पे चलाने के लिए ले गया था और वहाँ पे 3 महीने रह के मैंने चला के देखा, हमको नहीं पड़ रहा वहाँ पे, नहीं जमा, इसलिए फिर वापस मैंने लेके चलाया है।
2: मराठी की वजह से आप रिक्शा लेकर गांव गए आप?
1: नहीं नहीं, मराठी की वजह से नहीं, अगर मराठी की वजह से मैं रिक्शा लेके गांव गया होता तो फिर लेके मैं वापस नहीं आया होता।
2: कितने साल से मुंबई में आप?
1: मुंबई में 2003 का मेरा लाइसेंस है।
0: दरअसल ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल वाराणसी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। वो कुछ निजी कारणों से गांव जाकर रिक्शा चलाने का फैसला किया था, लेकिन गांव में ई रिक्शा की संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए वो 7 अगस्त को अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र वापस लौट आए। उन्हें बेसिक मराठी आती है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने मजाक या सनसनी फैलाने के मकसद से इसमें गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ दी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल निजी कारणों से अप्रैल में अपने गांव गए थे और अगस्त में वापस महाराष्ट्र आ गए थे। मुंबई से एजाज खान के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक से कहां सुनी की उसके साथ धक्का मुक्की की। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
4: लड़की ना मेरी बाइक में पता नहीं क्या कर रही है, देख रहे देखे तोड़ दी। अभी देखो मैं बहुत देर से इसको देख रहा हूँ, बहुत देर से इसके पास जा रहा हूँ, देख रहे हो क्या करती मेरी बाइक का पूरा चेंज कर जाना, देख रहे हो सत्यानाश कर दिया लड़की।
5: नारंगी रंग की एक बाइक को तोड़ती एक बुरखाधारी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप भागने के फिराक में होती है कि एक युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है।
4: क्या करी तूने? ओ मैं यहाँ से जाना मत, यहाँ से घसक मत जाना। ये क्या करी तूने? ये क्या है, ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा?
6: पहले से टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ी।
4: पहले से टूटा हुआ था? मैडम तुमको क्या दिक्कत था इसमें क्यों लग रही थी बाइक में? तुम यहाँ पे टच कर रही हो, बैठी थी तो मैंने कुछ बोल रहा था, मैं दूर से देख रहा हूँ मैडम। उसके बाद ये तोड़ दी तूने, यार दिमाग है या नहीं है, ये क्या कर रही हो तुम?
5: वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग आक्रोश जताते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हिंदू युवक ने ये सारा वाक्य रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो ये महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते लिखा कि वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला बाइक तोड़कर जिस प्रकार बाइक मालिक को ही धमका रही है, बाइक मालिक ने वीडियो नहीं बनाई होती तो क्या होता, ये मुस्लिम महिला अपने घर वालों को फोन कर बुलाती और इस बाइक वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाती, फिर इसे पीटा जाता। 2-4 सेक्युलर हिंदू भी बिना सच जाने इस युवक को कूट कर पुलिस के हवाले कर देते।
4: अभी बुला पुलिस को।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: तो 2 मिनट में पुलिस भी आ जाएगी, तुम अगर यहाँ से जाओ, नहीं आप जाओ, मैं पुलिस को बुला दूंगा, आगे ही पकड़े जाओगे, बता रहा हूँ तुमको। इसने तोड़ी है, तूने तोड़ी है, यस या नो बता दो? नहीं तोड़ी है तूने? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठी थी।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि बुरखा पहनी एक महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप वहां से भागने की फिराक में होती है, तभी युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है और वीडियो को शेयर करने के बाद कई लोग आक्रोश भी जताते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हिंदू युवक ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में एक जगह ये नजर आता है कि जब महिला बाइक के अगले हिस्से को तोड़ रही होती है तभी वहां पर एक बाइक सवार गुजरता है, लेकिन वो कुछ दूर पहले ही बाएं मुड़ जाता है, मानो उसे इशारा कर दिया गया हो कि यहां पर शूट चल रहा है। इसके लिए कैमरे की फ्रेम में आप मत आओ। वीडियो को देखने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि कहानी के हिसाब से सारे वाकये को शूट किया गया है, क्योंकि किसी सड़क पर महिला सरेआम ऐसी हरकत करेगी तब उसे पकड़ा जाएगा तो वो शोर मचाएगी, जाहिर सी बात, और इसे सुनकर लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लिहाजा ऐसे में हमें वीडियो पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? इस वीडियो का सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे मिलता जुलता वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो में भी वही महिला है, वही नारंगी बाइक है और वही लोकेशन है। दरअसल इस तरह के वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स अक्सर एक ही कहानी पर अलग अलग कलाकारों के साथ कई वीडियो शूट कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग अकाउंट से शेयर करते हैं ताकि सभी एक्टर्स के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को एंगेजमेंट मिल जाए। सर्च के दौरान हमें कई और वीडियो भी मिले जिनमें ठीक वही महिला एक्टर बुर्का पहने हुए दिख रही है। बाइक तोड़ने वाले वीडियो से ठीक पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला जिसमें एक लड़की स्कर्ट टॉप पहने हुए उसी बाइक पर बैठी है। उसके जूते और फोन वायरल वीडियो वाली बुर्का पहनी महिला से मेल खाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: आता फैक्चर के आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है, जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्ची का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों जापान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 1800 लोग मिलकर 360 टन वजनी एक विशाल ऐतिहासिक किले को रस्सियों से खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर पर तौलिया और टोपी पहने सैकड़ों लोग 30 मीटर लंबी रस्सियों को पकड़े हुए पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। पीछे एक बहुमंजिला विशाल जापानी किला पटरियों और रोलर्स पर टिका हुआ है। जैसे ही 80-80 लोगों की टीमें एक साथ सोरे सोरे के पारंपरिक जापानी नारा लगाते हैं, 360 टन का भारी भरकम किला धीरे धीरे आगे की ओर खिसकने लगता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में एक रेड पॉइंटर और स्केल दिखाई देता है, जिसमें मिलीमीटर दर मिलीमीटर किला आगे बढ़ते हुए साफ नजर आ रहा है। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना जापान के ओमोरी प्रांत में स्थित ऐतिहासिक हिरोसाकी किले की है। ये किला 1611 में बनाया गया था और इसे जापान की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। दरअसल भूकंप के कारण किले के निचले हिस्से की मुख्य पत्थर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दीवार की मरम्मत करने के लिए 2015 में किले के मुख्य टावर को उसकी मूल जगह से 70 मीटर से अधिक दूर खिसकाया गया था। 2185 पत्थरों को जोड़कर फाउंडेशन और पत्थरों की दीवार दोबारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो इस 360 टन के किले को वापस उसकी असली जगह पर स्थापित किया जा रहा है। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।
3: And I told my mama not to keep me anything. When I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas. Because she knows that I can't have anything without namkeen.
2: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे। वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़ कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़ कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: रक्षाबंधन पर आपने कई तरह की राखियां जरूर देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में तैयार हुई ये शिव राखी आपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए 13 रुद्राक्षों से बनी इस राखी में सिर्फ कलाई सजाने की खूबसूरती नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था और सूक्ष्म चित्रकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चित्रकला जबरदस्त है और चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस खास राखी का जो है तैयार किया है, और राखी में 12 रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र उकेरे गए हैं। महाकाल से लेकर अगर आप देखेंगे केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ सहित सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग इन छोटे छोटे रुद्राक्षों पर अपनी पहचान के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस राखी की सबसे खास बात यह है कि इसका 13वां रुद्राक्ष, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के बीच इसे केंद्र में रखा गया है और इसी पर उकेरा गया है मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी एक ही राखी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान को भी खास जगह दी गई है। अब जरा गौर से देखिए इन रुद्राक्षों की सतह को, आकार बहुत छोटा है, सतह उभरी हुई है और जगह इतनी कम कि एक छोटी सी गलती पूरी कलाकृति को बिगाड़ सकती है। लेकिन राहुल ने इसी चुनौती को अपनी कला का माध्यम बनाया। राहुल की ये शिव राखी इस परंपरा में कला और आस्था का एक नया रंग जोड़ती है। 13 रुद्राक्ष, 12 ज्योतिर्लिंग और केंद्र में पशुपति महादेव, छोटी सी राखी में समाई ये बड़ी कलाकारी भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम पेश कर रही है। विश्वास का वो पर्व जिसमें एक धागा रिश्ते को अटूट बंधन में तो आस्था का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फीट की भव्य राखी तैयार की है, तो वहीं पर अयोध्या में भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता और की ओर से जो है विशेष राखी रामलला तक पहुंचाई गई है। दो शहर दो परंपराएं, लेकिन भाव केवल एक, भाई बहन का पवित्र प्रेम। भजनों की मधुर धुन के बीच महिलाएं राखी को आकार देती नजर आती हैं। बाबा के नेत्र, त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू, त्रिपुंड, ओम और स्वस्तिक, मोरपंख और मोतियों के साथ रेशमी कपड़े से इसे सजाया गया है। कहीं राजा महाकाल का स्वरूप है, कहीं पर श्रीनाथ जी की छवि। रामनगरी अयोध्या जहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से भेजी गई विशेष राखी रामलला तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालु राखी लेकर नाचते गाते रामनगरी पहुंचे और फिर ऐसे रामलला के पुजारी को सौंप दिया गया। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा के बाद श्रृंगार आरती के बाद रामलला को ये राखी धारण कराई जाएगी। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: और आपको समझाएंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशिष्ट 2 फीट की राखियां। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है पप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
1: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में आई आपदा के बाद वहां बचाव और राहत का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के रसुआ जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल सेना प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक कुल 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे। इस बीच भारत ने सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है और तत्काल करीब 50 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को $20 लाख की मदद भेजने का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के दूसरे देश भी इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

0: सुवागढी से सुनाया मतलब मोटी नौ बजे करीब में
1: जी इधर से बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पहुँचेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
2: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटी सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
3: नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगे, जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो है जिसमें नेपालीज आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से खड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये कि ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे।
2: राहत कर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं।
3: जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों के मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा, अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ, अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है, आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी।
2: राहत और बचाव कार्य की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रिसवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं।
4: जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी, चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए।
2: हवाई तस्वीरों से भी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे। घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं।
3: जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान, क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहाँ देखिए, किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनके की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग।
2: इस बीच नेपाल की पुलिस और स्थानीय राहत कर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने भी पड़ोसी देश में राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को नेपाल भेजा। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था।
5: देखिए, कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में, तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटीरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ से 10 टन के करीब मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
2: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई मुसीबत के बाद उसका सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से नेपाल को $5,00,000 देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गृह मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आई इस आपदा के बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचना शुरू कर दिया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
2: पीएम मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू किया जाएगा और बच्चे की रुचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकार हर तरह का सहयोग देगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव पर प्याज की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। यह मौजूदा बाजार भाव से 44% कम है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बेच रही है। नेपाल और तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाखंग में आयोजित की गई। इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक पुंछ के दशनामी अखाड़ा से चलकर राजपुरा मंडे स्थित श्री बूढ़ा मरनाथ जी तीर्थ स्थल पर पहुंच गई है। ये पवित्र छड़ी यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। छड़ी मुबारक के मंडी पहुंचने के साथ ही इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई है जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है ताकि उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना न पड़े। सलोनी की शादी जून में हुई थी। उन्होंने इससे पहले पंछियों के लिए ये घर बनवाया।
6: चलिए न्यूज वक्त पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर।
2: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसे आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
6: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: सिनेमा घरों के बाद अब एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा घर बैठे भी देख सकते हैं। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ पहली बार साथ नजर आई हैं। शिव रवल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों खतरनाक मिशन पर निकले स्पाई बनी हैं। 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली और कहानी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली।

0: अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणाबाली। 16 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल संक्रेतायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है। नई पोस्टर में आग और धुएं के बीच विजय का रफ और खतरनाक अवतार दिखा। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रामायण की महाकथा बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाली है। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला गाना सिया राम रिलीज कर दिया गया है। हिंदी वर्जन को जावेद अली और छत्तीसगढ़ी वर्जन को अनुराग शर्मा ने आवाज दी है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्रीराम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। आशीष डोनाल्ड और देव चौहान ने संगीत दिया है। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में रिलीज होगी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई और चार क्रांतिकारियों की कहानी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा राठौर और गुरफतेह पीरजादा अहम किरदारों में हैं। सीरीज 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में देखी जा सकेगी।
1: हमारी कहानी हम ही लिखेंगे।
2: चीन में सजा कांच के फूलों का अनोखा बागीचा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक चला पारंपरिक नदी उत्सव अब खत्म हो गया है। इस दौरान हजारों लोगों ने जेजियांग नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नतें मांगी। रात के वक्त नदी पर तैरती रोशन लालटेन का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। करीब 30 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव को पहली बार 3 से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक प्रस्तुतियां, खेल और खान पान के आयोजन भी हुए। परंपरा को तांग और सोंग राजवंशों से जुड़ा बताया जाता है। चीन में कांच से बने फूलों का खूबसूरत बगीचा लोगों का ध्यान खींच रहा है। इन फूलों को तैयार करने के लिए कांच को करीब 1400 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। कारीगरों के पास इसे आकार देने के लिए महज 5 सेकंड का समय होता है। जरा सी देरी होते ही कांच जम जाता है। कुछ फूलों को तैयार करने के लिए कांच को 100 बार तक गर्म करना पड़ता है। करीब 2000 साल पुरानी इस कला से इस साल 6 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है। इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल पर भी जोर है। इंडी गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता भी चर्चा में है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा। जापान के हिरोसाकी शहर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 400 टन का किला रस्सियों से खींच कर करीब 3 मीटर आगे बढ़ाया। किले को करीब 70 मीटर दूर उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाया जाना है। इसके लिए लोगों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया था। 2015 में भूकंप से किले की दीवार को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद इसे हटाया गया। मरम्मत के बाद अब इसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। जून से जारी इस प्रक्रिया में लोगों द्वारा किला खींचने का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम मशीनों से होगा। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स ने शानदार शुरुआत करते हुए सर्फिंग में परफेक्ट 10 अंक हासिल किया। वहीं फ्रांस की वाहिने फियरो ने दमदार वापसी करते हुए 14.17 अंक जुटाए और अगले दौर में जगह बनाई। कोस्टारिका की ब्रिसा हेनेसी ने कई बार गिरने के बावजूद इसराइल के अनाथ लेलियार को मात दी। फिजी से उनका खास कनेक्शन भी है। वहीं हवाई के साथ मोनिस भी मुकाबले के लिए लौटे हैं। बेटी के जन्म के बाद वो कुछ समय सर्फिंग से दूर रहे थे।
2: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली अंडर 19 टीम में एंट्री। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
0: श्रीलंका के साथ भारत का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सोनल दिनुषा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो गई थी और मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे, तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ कर लिया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, लिहाजा भारत ये सीरीज 1-0 से जीत गया है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके प्रति दीवानगी अभी से दिखने लगी है। वहां भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पहले 48 घंटे में 26,000 टिकट बिक चुके हैं। भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20,

0: 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तीनों मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, यानी वनडे टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक साथ नजर आएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक, उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशिष्ट 2 फीट की राखियां, अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी, 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत, मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और
2: फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी किसी वीडियो को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ की रेखा की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य होने के बाद मराठी न सीख पाने के चलते एक आदमी अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र छोड़कर जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक को ही धमकाने लगी। क्या है सच्चाई, जानिए आगे। शुरुआत करते

0: अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। क्या है इसका सच, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।
2: महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य भर में कमर्शियल ऑटो और टैक्सी चलाने वालों के लिए बेसिक मराठी अनिवार्य कर दी है। आरटीओ के उड़न दस्तों ने पूरे महाराष्ट्र में जांच शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देशों पर जांच की जा रही है। नए नियमों के अनुसार जिन चालकों को मराठी का ज्ञान नहीं है उन्हें पहले नोटिस थमाया जाएगा और सीखने की मोहलत दी जाएगी। तय समय में अगर चालक मराठी नहीं सीख पाया तो 3 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद भी नियम न मानने पर परमिट पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमा रहे लाखों प्रवासी चालकों में डर पैदा हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के लगेज पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता से डर के ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की तहकीकात की और सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य कर दिया है ताकि स्थानीय यात्रियों से संवाद आसान हो सके। अगस्त के महीने से प्रशासन विशेष अभियान चलाकर चालकों के मौखिक और व्यावहारिक मराठी ज्ञान की जांच भी कर रहा है और इस दौरान कई नोटिस भी जारी किए गए हैं और इसके बाद राजनीतिक नेताओं की मांग और बैठकों के बाद इस मामले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई तुरंत सख्ती नहीं की जाएगी और चालकों को सीखने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे ट्रेन के एक नंबर पर गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वाराणसी के बीच 1 अप्रैल से 15 जून के बीच चलाई गई एक स्पेशल ट्रेन का है और अभी फिलहाल ये ट्रेन नहीं चल रही है। इससे ये तो साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो हालिया नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो फिर ये कहीं ना कहीं जानकारी इसके बारे में जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने मुंबई डिवीजन के DRM से संपर्क किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि ये वीडियो पुराना है और रेलवे के मौजूदा नियमों और प्रक्रिया के अनुसार इस ऑटो को 27 अप्रैल को पार्सल के तौर पर बुक किया गया था जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बनारस जाना था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता एजाज खान ने ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल को ढूंढ निकाला और फिर कैमरे के सामने वायरल हो रहे वीडियो की सारी हकीकत सामने आ गई।
3: मैंने मराठी के चलते नहीं ले गया था, मैं कुल्ला टर्मिनल से बनारस लेके गया था बुक करके ट्रेन में। मैं वहाँ पे चलाने के लिए ले गया था और वहाँ

0: पर 3 महीने रह के मैंने चला के देखा, हमको नहीं पड़ोरा वहाँ पे नहीं जमा, इसलिए फिर वापस मैंने लेके चलाया है।
1: मराठी की वजह से आप रिक्शा लेकर गांव गए आप?
0: नहीं नहीं, मराठी की वजह से नहीं, अगर मराठी की वजह से मैं रिक्शा लेके गांव गया होता तो फिर लेके मैं वापस नहीं आया होता।
1: कितने साल से मुंबई में?
0: मुंबई में 2003 का मेरा लाइसेंस है।
2: दरअसल ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल वाराणसी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। वो कुछ निजी कारणों से गांव जाकर रिक्शा चलाने का फैसला किया था, लेकिन गांव में ई रिक्शा की संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए वो 7 अगस्त को अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र वापस लौट आए। उन्हें बेसिक मराठी आती है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने मजाक या सनसनी फैलाने के मकसद से इसमें गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ दी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ऑटो ड्राइवर विजय प्रताप पाल निजी कारणों से अप्रैल में अपने गांव गए थे और अगस्त में वापस महाराष्ट्र आ गए थे। मुंबई से एजाज खान के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक से कहा सुनी कि उसके साथ धक्का मुक्की की। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
4: लड़की ना मेरी बाइक में पता नहीं क्या कर रही, देख रहे देखे तोड़ दी। अब देखो मैं बहुत देर से इसको देख रहा हूँ, बहुत देर से इसके पास जा रहा हूँ, देख रहे क्या करती मेरी बाइक का पूरा सत्यानाश कर दिया लड़की।
5: नारंगी रंग की एक बाइक को तोड़ती एक बुरखाधारी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप भागने के फिराक में होती है कि एक युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है।
4: ये क्या करी तूने? ओ मैं यहाँ से जाना मत, यहाँ से घसक मत जाना। ये क्या करी तूने? ये क्या है? ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा?
6: पहले से टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ी।
4: पहले से टूटा हुआ था? मैडम तुमको क्या दिक्कत था इसमें? इसमें क्यों लग रही थी बाइक में? तुम यहाँ पे टच कर रहे हो, बैठी थी तो मैंने कुछ बोल रहा था, मैं दूर से देख रहा हूँ मैडम। उसके बाद ये तोड़ दी तूने यार, दिमाग है या नहीं है, ये क्या कर रही हो तुम?
5: वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग आक्रोश जताते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हिंदू युवक ने ये सारा वाक्या रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो ये महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते लिखा कि वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला बाइक तोड़कर जिस प्रकार बाइक मालिक को ही धमका रही है, बाइक मालिक ने वीडियो नहीं बनाई होती तो क्या होता? ये मुस्लिम महिला अपने घर वालों को फोन कर बुलाती और इस बाइक वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाती, फिर इसे पीटा जाता। 2-4 सेक्युलर हिंदू भी बिना सच जाने इस युवक को कूट कर पुलिस के हवाले कर देते।
4: अभी बुला पुलिस को।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: तो 2 मिनट में पुलिस भी आ जाएगी, तुम अगर यहाँ से जाओ, नहीं आप जाओ, मैं पुलिस को बुला दूंगा, आगे ही पकड़े जाओगे। बता रहा हूँ तुमको, इसने तोड़ी है, तूने तोड़ी है, यस या नो बता दो। नहीं तोड़ी है तूने? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठी थी।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि बुरखा पहनी एक महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप वहां से भागने की फिराक में होती है, तभी युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है और वीडियो को शेयर करने के बाद कई लोग आक्रोश भी जताते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हिंदू युवक ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में एक जगह ये नजर आता है कि जब महिला बाइक के अगले हिस्से को तोड़ रही होती है तभी वहां पर एक बाइक सवार गुजरता है, लेकिन वो कुछ दूर पहले ही बाएं मुड़ जाता है, मानो उसे इशारा कर दिया गया हो कि यहां पर शूट चल रहा है। इसके लिए कैमरे की फ्रेम में आप मत आओ। वीडियो को देखने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि कहानी के हिसाब से सारे वाकये को शूट किया गया है, क्योंकि किसी सड़क पर महिला सरेआम ऐसी हरकत करेगी तब उसे पकड़ा जाएगा तो वो शोर मचाएगी, जाहिर सी बात, और इसे सुनकर लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लिहाजा ऐसे में हमें वीडियो पर शक हुआ, हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। इस वीडियो का सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे मिलता जुलता वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो में भी वही महिला है, वही नारंगी बाइक है और वही लोकेशन है। दरअसल इस तरह के वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स अक्सर एक ही कहानी पर अलग अलग कलाकारों के साथ कई वीडियो शूट कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग अकाउंट से शेयर करते हैं ताकि सभी एक्टर्स के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को एंगेजमेंट मिल जाए। सर्च के दौरान हमें कई और वीडियो भी मिले जिनमें ठीक वही महिला एक्टर बुर्खा पहने हुए दिख रही है। बाइक तोड़ने वाले वीडियो से ठीक पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला जिसमें एक लड़की स्कर्ट टॉप पहने हुए उसी बाइक पर बैठी है। उसके जूते और फोन वायरल वीडियो वाली बुर्खा पहनी महिला से मेल खाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
12: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। कुछ ही पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्ची का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों ना की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों जापान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 1800 लोग मिलकर 360 टन वजनी एक विशाल ऐतिहासिक किले को रस्सियों से खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर पर तौलिया और टोपी पहने सैकड़ों लोग 30 मीटर लंबी रस्सियों को पकड़े हुए पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। पीछे एक बहुमंजिला विशाल जापानी किला पटरियों और रोलर्स पर टिका हुआ है। जैसे ही 80-80 लोगों की टीमें एक साथ सोरे सोरे के पारंपरिक जापानी नारा लगाते हैं, 360 टन का भारी भरकम किला धीरे धीरे आगे की ओर खिसकने लगता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में एक रेड पॉइंटर और स्केल दिखाई देता है, जिसमें मिलीमीटर दर मिलीमीटर किला आगे बढ़ते हुए साफ नजर आ रहा है। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना जापान के ओमोरी प्रांत में स्थित ऐतिहासिक हिरोसाकी किले की है। ये किला 1611 में बनाया गया था और इसे जापान की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। दरअसल भूकंप के कारण किले के निचले हिस्से की मुख्य पत्थर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दीवार की मरम्मत करने के लिए 2015 में किले के मुख्य टावर को उसकी मूल जगह से 70 मीटर से अधिक दूर खिसकाया गया था। 2185 पत्थरों को जोड़कर फाउंडेशन और पत्थरों की दीवार दोबारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो इस 360 टन के किले को वापस उसकी असली जगह पर स्थापित किया जा रहा है। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य, प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।
11: And I told my mama not to keep me anything. When I reached Indore to catch my bus to Delhi, my mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas. Because she knows that I can't have anything without namkeen.
12: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे, वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीखों के पुल बांध रहे हैं। इंदर में एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: रक्षाबंधन पर आपने कई तरह की राखियां जरूर देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में तैयार हुई ये शिव राखी आपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए 13 रुद्राक्षों से बनी इस राखी में सिर्फ कलाई सजाने की खूबसूरती नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था और सूक्ष्म चित्रकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चित्रकला जबरदस्त है और चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस खास राखी का जो है तैयार किया है, और राखी में 12 रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र उकेरे गए हैं। महाकाल से लेकर अगर आप देखेंगे केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ सहित सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग इन छोटे छोटे रुद्राक्षों पर अपनी पहचान के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस राखी की सबसे खास बात यह है कि इसका 13वां रुद्राक्ष यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के बीच से केंद्र में रखा गया है और इसी पर उकेरा गया है मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी एक ही राखी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान को भी खास जगह दी गई है। अब जरा गौर से देखिए इन रुद्राक्षों की सतह को, आकार बहुत छोटा है, सतह उभरी हुई है और जगह इतनी कम कि एक छोटी सी गलती पूरी कलाकृति को बिगाड़ सकती है। लेकिन राहुल ने इसी चुनौती को अपनी कला का माध्यम बनाया। राहुल की ये शिव राखी इस परंपरा में कला और आस्था का एक नया रंग जोड़ती है। 13 रुद्राक्ष, 12 ज्योतिर्लिंग और केंद्र में पशुपति महादेव, छोटी सी राखी में समाई ये बड़ी कलाकारी भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम पेश कर रही है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का वो पर्व जिसमें एक धागा रिश्ते को अटूट बंधन में बांध देता है। लेकिन जब यही रक्षा सूत्र आराध्य देवों की कलाई पर सजता है तो आस्था का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फीट की भव्य राखी तैयार की है, तो वहीं पर अयोध्या में भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता और की ओर से जो है विशेष राखी रामलला तक पहुंचाई गई है। दो शहर दो परंपराएं, लेकिन भाव केवल एक, भाई बहन का पवित्र प्रेम। भजनों की मधुर धुन के बीच महिलाएं राखी को आकार देती नजर आती हैं। बाबा के नेत्र, त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू, त्रिपुंड, ओम और स्वस्तिक, मोरपंख और मोतियों के साथ रेशमी कपड़े से इसे सजाया गया है। कहीं राजा महाकाल का स्वरूप है, कहीं पर श्रीनाथ जी की छवि। रामनगरी अयोध्या जहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से भेजी गई विशेष राखी रामलला तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालु राखी लेकर नाचते गाते रामनगरी पहुंचे और फिर ऐसे रामलला के पुजारी को सौंप दिया गया। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा के बाद श्रृंगार आरती के बाद रामलला को ये राखी धारण कराई जाएगी। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: इसीलिए खबर के
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
1: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशिष्ट 2 फीट की राखियां। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही हैं बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
4: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में आई आपदा के बाद वहां बचाव और राहत का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल सेना प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक कुल 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे। इस बीच भारत ने सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है और तत्काल करीब 50 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को $20 लाख की मदद भेजने का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के दूसरे देश भी इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

0: सुअर रड़ी से सुना यार मतलब नौ बजे करीब में इधर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पूछेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
1: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटी सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
2: नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके, मैं कहूँगी जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो है जिसमें नेपाली आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से खड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये कि ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे।
1: राहत कर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं।
2: जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते, देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा, अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ, अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है, आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया है, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी।
1: राहत और बचाव कार्य की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रिसवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं।
3: जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये पांच समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए।
1: हवाई तस्वीरों से भी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे। घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं।
2: जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान, क्या मकान, सब उसकी चपेट में आए। वहाँ देखिए, किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनके की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग।
1: इस बीच नेपाल की पुलिस और स्थानीय राहत कर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने भी पड़ोसी देश में राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को नेपाल भेजा। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था।
4: देखिए, कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में, तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटीरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
1: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई मुसीबत के बाद उसका सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से नेपाल को $5 लाख देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गृह मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आई इस आपदा के बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचना शुरू कर दिया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: पीएम मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू किया जाएगा और बच्चे की रुचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकार हर तरह का सहयोग देगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव पर प्याज की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। यह मौजूदा बाजार भाव से 44% कम है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बेच रही है। नेपाल और तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाखंग में आयोजित की गई। इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक पुंछ के दशनामी अखाड़ा से चलकर राजपुरा मंडी स्थित श्री बूढ़ा मरनाथ जी तीर्थस्थल पर पहुंच गई है। ये पवित्र छड़ी यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। छड़ी मुबारक के मंडी पहुंचने के साथ ही इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई है जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है ताकि उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना न पड़े। सलोनी की शादी जून में हुई थी। उन्होंने इससे पहले पंछियों के लिए यह घर बनवाया।
5: चलिए न्यूज वक्त पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर।
1: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसे आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखी सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
5: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही है। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से, इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं, अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
4: सिनेमाघरों के बाद अब एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा घर बैठे भी देख सकते हैं। वायरफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ पहली बार साथ नजर आई हैं। शिव रावल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों खतरनाक मिशन पर निकले स्पाई बनी हैं। 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली और कहानी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणाबाली। 16 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल संक्रेतायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है। नई पोस्टर में आग और धुएं के बीच विजय का रफ और खतरनाक अवतार दिखा। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रामायण की महाकथा बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाली है। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला गाना सियाराम रिलीज कर दिया गया है। हिंदी वर्जन को जावेद अली और छत्तीसगढ़ी वर्जन को अनुराग शर्मा ने आवाज दी है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्रीराम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। आशीष डोनाल्ड और देव चौहान ने संगीत दिया है। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में रिलीज होगी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई और 4 क्रांतिकारियों की कहानी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा राठौर और गुरफतेह पीरजादा अहम किरदारों में हैं। सीरीज 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में देखी जा सकेगी।
5: हमारी कहानी हम ही लिखेंगे।
3: चीन में सजा कांच के फूलों का अनोखा बागीचा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक चला पारंपरिक नदी उत्सव अब खत्म हो गया है। इस दौरान हजारों लोगों ने जेजियांग नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नतें मांगी। रात के वक्त नदी पर तैरती रोशन लालटेन का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। करीब 30 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव को पहली बार 3 से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक प्रस्तुतियां, खेल और खान पान के आयोजन भी हुए। परंपरा को तांग और सोंग राजवंशों से जुड़ा बताया जाता है। चीन में कांच से बने फूलों का खूबसूरत बगीचा लोगों का ध्यान खींच रहा है। इन फूलों को तैयार करने के लिए कांच को करीब 1400 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। कारीगरों के पास इसे आकार देने के लिए महज 5 सेकंड का समय होता है। जरा सी देरी होते ही कांच जम जाता है। कुछ फूलों को तैयार करने के लिए कांच को 100 बार तक गर्म करना पड़ता है। करीब 2000 साल पुरानी इस कला से इस साल 6 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है। इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल पर भी जोर है। इंडी गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता भी चर्चा में है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा। जापान के हिरोसाकी शहर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 400 टन का किला रस्सियों से खींच कर करीब 3 मीटर आगे बढ़ा है। किले को करीब 70 मीटर दूर उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाया जाना है। इसके लिए लोगों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया था। 2015 में भूकंप से किले की दीवार को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद इसे हटाया गया। मरम्मत के बाद अब इसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। जून से जारी इस प्रक्रिया में लोगों द्वारा किला खींचने का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम मशीनों से होगा। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स ने शानदार शुरुआत करते हुए सर्फिंग में परफेक्ट 10 अंक हासिल किया। वहीं फ्रांस की वाहिने फियरो ने दमदार वापसी करते हुए 14.17 अंक जुटाए और अगले दौर में जगह बनाई। कोस्टारिका की ब्रिसा हेनेसी ने कई बार गिरने के बावजूद इसराइल के अनाथ लेलियार को मात दी। फिजी से उनका खास कनेक्शन भी है। वहीं हवाई के साथ मोनिस भी मुकाबले के लिए लौटे हैं। बेटी के जन्म के बाद वो कुछ समय सर्फिंग से दूर रहे थे।
3: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली अंडर 19 टीम में एंट्री। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आई सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
4: श्रीलंका के साथ भारत का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सोनल दिनुषा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो गई थी और मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे, तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ कर लिया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, लिहाजा भारत ये सीरीज 1-0 से जीत गया है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके प्रति दीवानगी अभी से दिखने लगी है। वहां भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पहले 48 घंटे में 26,000 टिकट बिक चुके हैं। भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तीनों मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, यानी वनडे टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक साथ नजर आएंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक, उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशिष्ट 2 फीट की राखियां, अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी, 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही हैं पप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत, मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की।
8: फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी किसी वीडियो को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ की रेखा की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य होने के बाद मराठी न सीख पाने के चलते एक आदमी अपना ऑटो लेकर महाराष्ट्र छोड़कर जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक को ही धमकाने लगी। क्या है सच्चाई, जानिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। क्या है इसका सच, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

0: अनिवार्य कर दी है। आरटीओ के उड़न दस्तों ने पूरे महाराष्ट्र में जांच शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देशों पर जांच की जा रही है। नए नियमों के अनुसार जिन चालकों को मराठी का ज्ञान नहीं है उन्हें पहले नोटिस थमाया जाएगा और सीखने की मोहलत दी जाएगी। तय समय में अगर चालक मराठी नहीं सीख पाया तो 3 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद भी नियम न मानने पर परमिट पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमा रहे लाखों प्रवासी चालकों में डर पैदा हो गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के लगेज पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता के डर से ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को ट्रेन के पार्सल कोच में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई में आरटीओ की सख्ती और मराठी भाषा की अनिवार्यता से डर के ये ऑटो ड्राइवर मुंबई छोड़कर अपने राज्य वापस जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की तहकीकात की और सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य कर दिया है ताकि स्थानीय यात्रियों से संवाद आसान हो सके। अगस्त के महीने से प्रशासन विशेष अभियान चलाकर चालकों के मौखिक और व्यावहारिक मराठी ज्ञान की जांच भी कर रहा है और इस दौरान कई नोटिस भी जारी किए गए हैं और इसके बाद राजनीतिक नेताओं की मांग और बैठकों के बाद इस मामले पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई तुरंत सख्ती नहीं की जाएगी और चालकों को सीखने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे ट्रेन के एक नंबर पर गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक की बाइक तोड़ दी और इस बारे में सवाल पूछने पर बाइक मालिक से कहा सुनी की उसके साथ धक्का मुक्की की। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
2: लड़की ना मेरी बाइक में पता नहीं क्या कर रही, देख रहे तोड़ दी। अभी देखो मैं बहुत देर से इसको देख रहा हूँ, बहुत देर से इसके पास जा रहा हूँ, देख रहे हो क्या करती मेरी बाइक का पूरा सेंस सत्यानाश, देख रहे हो सत्यानाश कर दिया लड़की।
3: कुछ नहीं मैडम, हेलो इधर आना।
4: नारंगी रंग की एक बाइक को तोड़ती एक बुर्खाधारी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप भागने के फिराक में होती है कि एक युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है।
3: क्या करी तूने? ओ मैं यहाँ से जाना मत, यहाँ से घसक मत जाना। ये क्या करी तूने? ये क्या है, ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा?
5: पहले से टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ी।
3: पहले से टूटा हुआ था? मैडम तुमको क्या दिक्कत था इसमें क्यों लग रही थी बाइक में? तुम यहाँ पे टच कर रहे हो, बैठी थी तो मैंने कुछ बोल रहा था, मैं दूर से देख रहा हूँ मैडम। उसके बाद ये तोड़ दी तूने, यार दिमाग है या नहीं है, ये क्या कर रही हो तुम?
4: वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग आक्रोश जताते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हिंदू युवक ने ये सारा वाक्य रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो ये महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते लिखा कि वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला बाइक तोड़कर जिस प्रकार बाइक मालिक को ही धमका रही है, बाइक मालिक ने वीडियो नहीं बनाई होती तो क्या होता, ये मुस्लिम महिला अपने घर वालों को फोन कर बुलाती और इस बाइक वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाती, फिर इसे पीटा जाता। 2-4 सेक्युलर हिंदू भी बिना सच जाने इस युवक को कूट कर पुलिस के हवाले कर देते।
3: अभी बुला पुलिस को।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: तो 2 मिनट में पुलिस भी आ जाएगी, तुम अगर यहाँ से जाओ, नहीं आप जाओ, मैं पुलिस को बुला दूंगा, आगे ही पकड़े जाओगे, बता रहा हूँ तुमको। इसने तोड़ी है, तूने तोड़ी है।

0: नो बता दो,
1: नहीं तोड़ी है
0: तूने, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठी थी।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि बुरखा पहनी एक महिला बाइक के आगे का हिस्सा तोड़ने के बाद चुपचाप वहां से भागने की फिराक में होती है। तभी युवक आकर उससे सवाल जवाब करने लगता है और वीडियो को शेयर करने के बाद कई लोग आक्रोश भी जताते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हिंदू युवक ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर लिया, नहीं तो महिला उस पर अनाप शनाप आरोप लगा देती और फिर कोई गलती न होने के बावजूद वो पिट जाता। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो में एक जगह ये नजर आता है कि जब महिला बाइक के अगले हिस्से को तोड़ रही होती है तभी वहां पर एक बाइक सवार गुजरता है, लेकिन वो कुछ दूर पहले ही बाएं मुड़ जाता है, मानो उसे इशारा कर दिया गया हो कि यहां पर शूट चल रहा है। इसके लिए कैमरे की फ्रेम में आप मत आओ। वीडियो को देखने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि कहानी के हिसाब से सारे वाकये को शूट किया गया है, क्योंकि किसी सड़क पर महिला सरेआम ऐसी हरकत करेगी तब उसे पकड़ा जाएगा तो वो शोर मचाएगी जाहिर सी बात, और इसे सुनकर लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमें वीडियो पर शक हुआ, हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। इस वीडियो का सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे मिलता जुलता वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो में भी वही महिला है, वही नारंगी बाइक है और वही लोकेशन है। दरअसल इस तरह के वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स अक्सर एक ही कहानी पर अलग अलग कलाकारों के साथ कई वीडियो शूट कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग अकाउंट से शेयर करते हैं ताकि सभी एक्टर्स के व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को एंगेजमेंट मिल जाए। सर्च के दौरान हमें कई और वीडियो भी मिले जिनमें ठीक वही महिला एक्टर बुरखा पहने हुए दिख रही है। बाइक तोड़ने वाले वीडियो से ठीक पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला जिसमें एक लड़की स्कर्ट टॉप पहने हुए उसी बाइक पर बैठी है। उसके जूते और फोन वायरल वीडियो वाली बुरखा पहनी महिला से मेल खाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
2: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: बच्चों की दुनिया भी कितनी प्यारी होती है जहाँ खिलौने ही उनके लिए असली दुनिया बन जाते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने खिलौनों के बर्तनों के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्ची खिलौने वाले बेसिन में हाथ धोने का नाटक करती है और फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी मासूम हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बच्चे की क्यूटनेस से भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उसकी मासूम अदाओं की तारीफ कर रहे हैं। दो महीने की छुट्टी के बाद जब पापा दोबारा ड्यूटी पर लौटने लगे तो बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्मी के जवान जैसे ही बाइक पर बैठकर घर से निकलने लगे बच्चे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। पिता से दूर होने का दर्द बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। खुशी पलों का ये वीडियो रिश्ते की गहराई बयां कर रहा है। पापा को विदा करते बच्चों का ये भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखकर लोग भी भावुक हो रहे हैं। दादी का प्यार हो तो हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी अपने पोते की प्यार से मालिश करती नजर आ रही हैं। बच्चे को बैठाकर दादी हल्दी और तेल का लेप लगा रही हैं, जबकि बच्चा भी बड़े आराम से दादी से मालिश करवाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बच्चे की मासूम आवाज और दादी का स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखने वाले लोग इस प्यारे रिश्ते पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिलाती नजर आ रही है। बच्ची का मासूम अंदाज और पक्षियों के प्रति उसका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है और वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बारिश हो रही है, छत पर पानी जमा है, तो फिर मस्ती क्यों न की जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक बच्ची और छोटा सा बंदर बारिश के पानी में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चे जिस तरह पानी में फिसल रही है, बंदर भी उसकी नकल करता दिखाई दे रहा है। दोनों की ये मासूम और मजेदार जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर यूजर्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और बच्ची बंदर की इस दोस्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों जापान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 1800 लोग मिलकर 360 टन वजनी एक विशाल ऐतिहासिक किले को रस्सियों से खींचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर पर तौलिया और टोपी पहने सैकड़ों लोग 30 मीटर लंबी रस्सियों को पकड़े हुए पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं। पीछे एक बहुमंजिला विशाल जापानी किला पटरियों और रोलर्स पर टिका हुआ है। जैसे ही 80-80 लोगों की टीमें एक साथ सोरे सोरे के पारंपरिक जापानी नारा लगाते हैं, 360 टन का भारी भरकम किला धीरे धीरे आगे की ओर खिसकने लगता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में एक रेड पॉइंटर और स्केल दिखाई देता है, जिसमें मिलीमीटर दर मिलीमीटर किला आगे बढ़ते हुए साफ नजर आ रहा है। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना जापान के ओमोरी प्रांत में स्थित ऐतिहासिक हिरोसाकी किले की है। ये किला 1611 में बनाया गया था और इसे जापान की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। दरअसल भूकंप के कारण किले के निचले हिस्से की मुख्य पत्थर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दीवार की मरम्मत करने के लिए 2015 में किले के मुख्य टावर को उसकी मूल जगह से 70 मीटर से अधिक दूर खिसकाया गया था। 2185 पत्थरों को जोड़कर फाउंडेशन और पत्थरों की दीवार दोबारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो इस 360 टन के किले को वापस उसकी असली जगह पर स्थापित किया जा रहा है। ये वीडियो दिखाता है सच्चे भाईचारे और दोस्ती का अनोखा पल, जिसमें एक बच्चा अपने दोस्तों के भरोसे साइकिल पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे का भरोसा अपने दोस्तों पर कितना मजबूत है और दोस्त उसे सुरक्षित साइकिल चलाने में मदद कर रहे हैं। ये प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब सहारे की जरूरत होती है, तब इस बुजुर्ग ने अपने दोस्त का सहारा बनकर दिल जीत लिया। स्टेशन ट्रैक पार कराने का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि दोस्त ऐसा हो जो बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाए। सफर के दौरान अक्सर लोग अपने में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और गहरा कर देता है। हाल ही में एक फ्लाइट का ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला क्रू मेंबर ने एक बुजुर्ग यात्री की जिस अपनेपन से देखभाल की, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, उनकी मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट आगे आई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही धैर्य प्यार और मीठी मुस्कान के साथ उन बुजुर्ग को पूरे सफर में सहज और सम्मानित महसूस कराया। किसी की मदद के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता, कई बार बस रुक जाना, किसी परेशान आदमी के पास चले जाना और दो मिनट के लिए उसका बोझ बांट लेना ही बहुत होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वीडियो में एक बुजुर्ग साइकिल ठेले पर ढेर सारा सामान लादकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सामान ज्यादा है, उम्र ज्यादा है और सड़क भी आसान नहीं लग रही। वो बार बार ठेले को संभालते हैं, धक्का लगाते हैं, पर ठेला है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। तभी पीछे से एक सीआरपीएफ जवान आता है। उसने ये सब देखा, चाहता तो वो भी बाकी लोगों की तरह देख कर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधे बुजुर्ग के पास गया और बिना कुछ बोले ठेले को पीछे से धकेलने लगा। एक तरफ बुजुर्ग आगे से ठेला खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ जवान पीछे से पूरा जोर लगा रहा है। न कोई दिखावा, न कोई हंगामा, बस एक सच्ची कोशिश के सामने वाले का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। और यही तो इस वीडियो की सबसे सुंदर बात है।

0: Indore to catch my bus to Delhi. My mom calls me and she's like, open your trolley bag. I've kept your favorite ghee parathas. And I was not expecting anything else. But when I opened it, I found a moong dal ka packet with my favorite ghee parathas, because she knows that I can't have anything without namkeen.
1: घर से दूर रहने वालों के लिए बैग में रखा हुआ खाने का डिब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, वो घर की एक छोटी सी याद होती है, माँ के प्यार की निशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों इंटरनेट पर सबका दिल छू रहा है। दिल्ली जा रही बेटी के बैग में माँ ने चुपके से रखे घी के पराठे और उसकी फेवरेट मूंग दाल नमकीन। बैग खोलते ही बेटी इमोशनल हो गई। इस क्लिप को इंस्टा पर शेयर किया गया है, जो लोगों के बीच आते ही वायरल हो गया। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे, वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीखों के पुल बांध रहे हैं। इंदर में एक नन्हे हाथी का ऐसा ही प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। नन्हे हाथी की समझदारी और मासूम अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा हाथी का बच्चा छोटू नाम से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो रही है। आमतौर पर जानवर ऐसी स्थिति में पेड़ के तने, पत्थर या किसी दूसरी खुरदरी सतह से शरीर रगड़ कर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में छोटू जमीन पर पड़े लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को अपनी सूंड से उठाता है और उसके बाद वो बड़े आराम से उस लकड़ी को अपने शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहाँ उसे खुजली महसूस हो रही होती है। फिर वो लकड़ी को धीरे धीरे रगड़ कर खुजली मिटाने लगता है। खास बात यह है कि वो इस काम को बेहद सावधानी से करता नजर आता है। छोटू जिस तरह से लकड़ी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद ही समस्या का आसान सा हल खोज लिया हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: रक्षाबंधन पर आपने कई तरह की राखियां जरूर देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में तैयार हुई ये शिव राखी आपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए 13 रुद्राक्षों से बनी इस राखी में सिर्फ कलाई सजाने की खूबसूरती नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था और सूक्ष्म चित्रकला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चित्रकला जबरदस्त है और चित्रकार राहुल कुमार लोहार ने इस खास राखी का जो है तैयार किया है, और राखी में 12 रुद्राक्षों पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र उकेरे गए हैं। महाकाल से लेकर अगर आप देखेंगे केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ सहित सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग इन छोटे छोटे रुद्राक्षों पर अपनी पहचान के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस राखी की सबसे खास बात यह है कि इसका 13वां रुद्राक्ष, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के बीच इसे केंद्र में रखा गया है और इसी पर उकेरा गया है मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव का चित्र। यानी एक ही राखी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान को भी खास जगह दी गई है। अब जरा गौर से देखिए इन रुद्राक्षों की सतह को, आकार बहुत छोटा है, सतह उभरी हुई है और जगह इतनी कम कि एक छोटी सी गलती पूरी कलाकृति को बिगाड़ सकती है। लेकिन राहुल ने इसी चुनौती को अपनी कला का माध्यम बनाया। राहुल की ये शिव राखी इस परंपरा में कला और आस्था का एक नया रंग जोड़ती है। 13 रुद्राक्ष, 12 ज्योतिर्लिंग और केंद्र में पशुपति महादेव, छोटी सी राखी में समाई ये बड़ी कलाकारी भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम पेश कर रही है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का वो पर्व जिसमें एक धागा रिश्ते को अटूट बंधन में बांध देता है, लेकिन जब यही रक्षा सूत्र आराध्य देवों की कलाई पर सजता है तो आस्था का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फीट की भव्य राखी तैयार की है, तो वहीं पर अयोध्या में भगवान राम की बड़ी बहन माता शांता और की ओर से जो है विशेष राखी रामलला तक पहुंचाई गई है। दो शहर दो परंपराएं, लेकिन भाव केवल एक, भाई बहन का पवित्र प्रेम। भजनों की मधुर धुन के बीच महिलाएं राखी को आकार देती नजर आती हैं। बाबा के नेत्र, त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू, त्रिपुंड, ओम और स्वस्तिक, मोरपंख और मोतियों के साथ रेशमी कपड़े से इसे सजाया गया है। कहीं राजा महाकाल का स्वरूप है, कहीं पर श्रीनाथ जी की छवि। रामनगरी अयोध्या जहां भगवान श्री राम की बड़ी बहन माता शांता की ओर से भेजी गई विशेष राखी रामलला तक पहुंच चुकी है। श्रद्धालु राखी लेकर नाचते गाते रामनगरी पहुंचे और फिर ऐसे रामलला के पुजारी को सौंप दिया गया। रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा के बाद श्रृंगार आरती के बाद रामलला को ये राखी धारण कराई जाएगी। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: क्या रक्षाबंधन के पर्व पर सावधानियां रखना जरूरी है? क्या रक्षा सूत्र का रंग भी महत्वपूर्ण होता है? क्या बहन को उपहार देने में भी सावधानी रखनी चाहिए? क्या है रक्षाबंधन के पर्व की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहने भाई की कलाई पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में भी रक्षाबंधन की रौनक। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए विशिष्ट 2 फीट की राखियां। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए पहुंची बहन शांता की राखी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्र छात्राओं ने बनाई विशाल राखी। 65 फीट राखी की चौड़ाई, 75 फीट लंबाई, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान के अलवर में बनाई जा रही है बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां। डिजाइनर मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। महाराष्ट्र में खैर, मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मिली मोहलत। मराठी सीखने के लिए मिली 1 साल की छूट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
1: और अब बात करते हैं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की। नेपाल में आई आपदा के बाद वहां बचाव और राहत का काम तेजी से चल रहा है। नेपाल के रसुआ जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल सेना प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक कुल 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे। इस बीच भारत ने सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है और तत्काल करीब 50 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को $20 लाख की मदद भेजने का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के दूसरे देश भी इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

0: सुरगढ़ी से नया मोटामोटी नौ बजे करीब में, जब इधर से बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पहुँचेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
1: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान बचाव कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटी सेना के जवानों का जज्बा दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है।
2: नेपाल में ये अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है और सारा दारोमदार नेपाल की सेना और उसके साथ एयरफोर्स पर है कि वो व्यवस्था क्यों करे, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, वहां पहुंचना मुश्किल है। और ऐसे में जितने हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, इन सब की प्राथमिकता ये है कि दरअसल रोसोमो से लेकर के आगे के जो इलाके में कहूँगी, जरा आगे की देखिए, यहाँ से 14 से 15 हेलीकॉप्टर जो है, जिसमें नेपाली आर्मी और उसके जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको भी शामिल किया गया है। रास्ता खराब है तो कोशिश ये की जा रही है कि मलबे में जितने लोगों को ढूंढा जा सके, या वो लोग जो आसपास उन प्रभावित इलाकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे 50 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाही से खड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देती है वो ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे।
1: राहत कर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं।
2: जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की मालमत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा, अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ, अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है, आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पूरा दलदल आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी।
1: राहत और बचाव कार्य की इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रिसवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इसमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 900 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय हैं।
3: जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर, जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिसे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए।
1: हवाई तस्वीरों से भी तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे। घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं।
2: जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान, क्या मकान, सब उसकी चपेट में आए। वहाँ देखिए, किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनके की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग।
1: इस बीच नेपाल की पुलिस और स्थानीय राहत कर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं। आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत ने भी पड़ोसी देश में राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा भारतीय वायुसेना का ये विमान नेपाल में मिशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए रवाना हुआ। भारत सरकार ने वायुसेना के दो विमानों से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को नेपाल भेजा। आज सुबह हिंडन एयरबेस से C-17 विमान के जरिए 37 टन से ज्यादा सामग्री मानवीय सहायता के रूप में नेपाल भेजी गई। इससे पहले कल रात भी एक विमान से 10 टन से ज्यादा राहत का सामान नेपाल रवाना किया गया था।
4: देखिए, कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्रंट रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में। तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटीरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज स्पेशली NDRF के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। उसके अलावा अभी एक C-17 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तैयार हो रहा है। तो इन सब मिशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हमारा एम है।
1: काठमांडू एयरपोर्ट से भारत सरकार की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री को नेपाली सेना के ट्रकों में लादकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया। नेपाल में आई मुसीबत के बाद उसका सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कई और देशों ने भी तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से नेपाल को $5,00,000 देने की घोषणा की गई है। वहीं चीन ने भी नेपाल को तत्काल मदद देने का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस की ओर से भी वहां जरूरी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गृह मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालय लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं और नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में आई इस आपदा के बीच सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत भी राहत और बचाव के अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल के नुवाकोट से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचना शुरू कर दिया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: पीएम मोदी ने आज खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में देश भर के युवा एथलीटों को संबोधित किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट अभियान शुरू किया जाएगा और बच्चे की रुचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सरकार हर तरह का सहयोग देगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव पर प्याज की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। यह मौजूदा बाजार भाव से 44% कम है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बेच रही है। नेपाल और तिब्बत के बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये सामूहिक प्रार्थना धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर सुगलाखंग में आयोजित की गई। इसमें 2000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भी आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक पुंछ के दशनामी अखाड़ा से चलकर राजपुरा मंडे स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ जी तीर्थ स्थल पर पहुंच गई है। ये पवित्र छड़ी यात्रा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। छड़ी मुबारक के मंडी पहुंचने के साथ ही इस साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक लड़की ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसों को बचाकर पंछियों के लिए आलिशान आशियाना बना दिया। लड़की का नाम सलोनी जैन है। इन्होंने पंछियों के लिए खूबसूरत 6 मंजिला इमारत बनाई है जिसमें छोटे छोटे गोल दरवाजे लगे हैं। इस अनूठे आशियाने को तालाब के किनारे बनाया गया है ताकि उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना न पड़े। सलोनी की शादी जून में हुई थी। उन्होंने इससे पहले पंछियों के लिए यह घर बनवाया।
5: चलिए न्यूज पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर।
1: इंसान है लेकिन कुदरत भी तो है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था और उसी में एक शख्स फंस गया। पानी के बीच जिंदगी बचाने के लिए वो मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक हाथी उसके लिए सहारा बनकर सामने आया। हाथी बाढ़ के पानी में उतरा और शख्स उसके ऊपर चढ़ गया। हाथी उसे पानी से बाहर सुरक्षित ले आया। इंसान और जानवर के सनों के साथ की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक महिला और गिलहरी की ये बातचीत सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। मजेदार बात यह है कि महिला जो कहती है गिलहरी भी उसे मानती नजर आती है। कभी ताली बजाकर तो कभी इशारों से महिला गिलहरी से बात करती है और गिलहरी भी उनका साथ देती है। इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं माँ का प्यार हो तो कोई भी कंट्रोल में आ सकता है। दो मासूम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। वीडियो में एक छोटा बच्चा बकरी के बच्चे का पैर पकड़कर उसके साथ खेलता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बकरी का बच्चा भी बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ घुल मिल रहा है। दोनों के बीच का ये मासूम रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छुट्टी का दिन था, अब करें भी तो क्या करें, बस फिर क्या था, नमकीन के साथ ही खेल शुरू हो गया। किसी ने नमकीन के दानों को जोड़कर इंसान जैसे आकृति बना डाली। देखने में ये इतनी मजेदार लग रही है कि पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों की हंसी नहीं रुक रही। छुट्टी में टाइम पास का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृपया इसे खरीदें क्योंकि ये घास पर चलती है, इसे चार्ज करने में कोई वक्त नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी है। जी हाँ, ये कोई असली बाइक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का कमाल है। गधे के ऊपर बाइक की सीट रखकर उसे बाइक का रूप दे दिया गया है। वीडियो सामने आया तो लोग भी इस अनोखे सवारी को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर लोग इसे मजेदार देसी इंजीनियरिंग बता रहे हैं।
5: मुंबई समेत पूरे देश में गणेशोत्सव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। मुंबई में रोजाना गणपति प्रतिमाओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में गजानन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच मुंबई की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा काफी चर्चा में। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है गणेशोत्सव की तैयारी, आपको दिखाते हैं।

0: उल्लास था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम जब गणेशोत्सव के रंग से सराबोर हुआ तो हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेशोत्सव की रौनक है। गली मोहल्लों में पंडाल सज गए हैं। गजानंद के आगमन का उत्साह पूरे शहर में एक नया जोश भर रहा है। मुंबई में रोजाना अलग अलग इलाकों में गणपति का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश की हर प्रतिमा अपने आप में खास है। कहीं बाप्पा शंख चक्र के साथ दिख रहे हैं तो कहीं विग्रहर्ता किसान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। खेतवाड़ी गली नंबर 11 के गणपति अपनी ऊंची कद काठी के लिए चर्चा में है। महानगर गणपति बाप्पा की पहचान मुंबई की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के तौर पर भी हो रही है। यहाँ गणपति बाप्पा की ऊंचाई करीब 47 फीट है। इतनी ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन की अच्छी व्यवस्था की वजह से मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये मंडल इस बार अपना 65वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी की 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर संहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है।
0: इस बार यहाँ गजानंद ने नरसिंह का अवतार धारण किया है। पंडाल की विशेष सजावट के लिए इस विशाल प्रतिमा को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति बाप्पा के आगमन का उत्साह है। अमरावती में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार बाप्पा की प्रतिमाएं बेहद आकर्षक ढंग से बनाई जा रही हैं। हर प्रतिमा में बाप्पा का अलग और बेहद खास रूप दिख रहा है। कहीं गणपति लालबाग के राजा के स्वरूप में दिख रहे हैं तो कहीं उन्होंने भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर रखा है। कहीं माँ पार्वती की गोद में बैठे बाल गणेश का सुंदर स्वरूप दिख रहा है तो कहीं गजानंद भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। कहीं बाल गणेश तबले और अन्य वाद्य यंत्रों पर सवार दिख रहे हैं तो कहीं वो नारियल पर विराजमान है।
2: महाराष्ट्र में जो है गणपति बाप्पा का त्योहार आने वाला है और सभी जो बाप्पा के भक्त है उन्हें अब आस लगी है कि अपने बाप्पा को जो है वो अपने पंडाल में कब ले जाएंगे। उससे पहले जो है कलाकारों ने जो है कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई। हम फिलहाल अमरावती में हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये शंख पर बैठी ये सुंदर जो मूर्ति है वो इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर मोतियों से इंटीमेट ज्वेलरी से इसको सजाया गया है। तो महज यही नहीं अलग अलग प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बाप्पा की दिख रही है और सजावट का भी काम जो है वो कलाकार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं।
0: हर प्रतिमा की सजावट भी अलग अंदाज में की जा रही है। अमरावती के मूर्तिकार नरेश जोहारे खास तौर पर भव्य और खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वेल्लोर में भी मूर्ति कार्यशाला में एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। भगवान गणेश की यहाँ गदाधारी मूर्ति दिख रही है, वहीं एक मूर्ति में बाप्पा नंदी पर सवार दिख रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव की तारीख करीब आ रही है पूरे देश में गणेशोत्सव के रंग भी गहराते जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है 14 सितंबर की तारीख का, जब गणपति उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और भक्तों को 10 दिनों तक अपने प्रिय गजानंद की भक्ति और सेवा का अवसर मिलेगा। अकोला से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: सिनेमाघरों के बाद अब एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा घर बैठे भी देख सकते हैं। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी बाग पहली बार साथ नजर आई हैं। शिव रावल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दोनों खतरनाक मिशन पर निकली स्पाई बनी हैं। 3 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली और कहानी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है मैत्री मूवी मेकर्स की बिग बजट फिल्म राणाबाली। 16 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघर में रिलीज होगी। राहुल संक्रेतायन के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म अपने भव्य अंदाज और दमदार कहानी के लिए चर्चा में है। नई पोस्टर में आग और धुएं के बीच विजय का रफ और खतरनाक अवतार दिखा। फिल्म में इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वॉसलू भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रामायण की महाकथा अब बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाली है। फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला गाना सिया राम रिलीज कर दिया गया है। हिंदी वर्जन को जावेद अली और छत्तीसगढ़ी वर्जन को अनुराग शर्मा ने आवाज दी है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। आशीष डोनाल्ड और देव चौहान ने संगीत दिया है। फिल्म 25 सितंबर को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में रिलीज होगी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई और 4 क्रांतिकारियों की कहानी अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा राठौर और गुरफतेह पीरजादा अहम किरदारों में हैं। सीरीज 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में देखी जा सकेगी।
5: हमारी कहानी हम ही लिखेंगे।
3: चीन में सजा कांच के फूलों का अनोखा बागीचा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: चीन के गुआंगशी में 6 दिन तक चला पारंपरिक नदी उत्सव अब खत्म हो गया है। इस दौरान हजारों लोगों ने जेजियांग नदी में लालटेन छोड़ी और पूर्वजों को याद कर मन्नतें मांगी। रात के वक्त नदी पर तैरती रोशन लालटेन का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। करीब 30 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव को पहली बार 3 से बढ़ाकर 6 दिन किया गया। कार्यक्रम में लोक गीत, पारंपरिक प्रस्तुतियां, खेल और खान पान के आयोजन भी हुए। परंपरा को तांग और सोंग राजवंशों से जुड़ा बताया जाता है। चीन में कांच से बने फूलों का खूबसूरत बगीचा लोगों का ध्यान खींच रहा है। इन फूलों को तैयार करने के लिए कांच को करीब 1400 डिग्री तापमान पर पिघलाया जाता है। कारीगरों के पास इसे आकार देने के लिए महज 5 सेकंड का समय होता है। जरा सी देरी होते ही कांच जम जाता है। कुछ फूलों को तैयार करने के लिए कांच को 100 बार तक गर्म करना पड़ता है। करीब 2000 साल पुरानी इस कला से इस साल 6 महीने में करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग फेयर गेम्सकॉम की शुरुआत हो गई है। इस बार मेले में 1700 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां नए वीडियो गेम्स की झलक के साथ गेमिंग प्रेमियों के लिए कई खास इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लोग अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर का लुक बनाकर पहुंचे। मेले में गेमिंग इंडस्ट्री में AI के इस्तेमाल पर भी जोर है। इंडी गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता भी चर्चा में है। गेम्सकॉम 30 अगस्त तक चलेगा। जापान के हिरोसाकी शहर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर 400 टन का किला रस्सियों से खींच कर करीब 3 मीटर आगे बढ़ा है। किले को करीब 70 मीटर दूर उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाया जाना है। इसके लिए लोगों का चयन लॉटरी के जरिए किया गया था। 2015 में भूकंप से किले की दीवार को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद इसे हटाया गया। मरम्मत के बाद अब इसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। जून से जारी इस प्रक्रिया में लोगों द्वारा किला खींचने का काम पूरा हो चुका है, बाकी काम मशीनों से होगा। फिजी प्रो के पहले दिन कनाडा की एरिन ब्रुक्स ने शानदार शुरुआत करते हुए सर्फिंग में परफेक्ट 10 अंक हासिल किया। वहीं फ्रांस की वाहिने फियरो ने दमदार वापसी करते हुए 14.17 अंक जुटाए और अगले दौर में जगह बनाई। कोस्टारिका की ब्रिसा हेनेसी ने कई बार गिरने के बावजूद इसराइल के अनाथ लेलियार को मात दी। फिजी से उनका खास कनेक्शन भी है। वहीं हवाई के साथ मोनिस भी मुकाबले के लिए लौटे हैं। बेटी के जन्म के बाद वो कुछ समय सर्फिंग से दूर रहे थे।
3: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे को मिली अंडर 19 टीम में एंट्री। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
4: श्रीलंका के साथ भारत का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सोनल दिनुषा के शतक की बदौलत श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए। श्रीलंका की बढ़त 216 रन की हो गई थी और मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे, तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ कर लिया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत हुई थी, लिहाजा भारत ये सीरीज 1-0 से जीत गया है। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके प्रति दीवानगी अभी से दिखने लगी है। वहां भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। पहले 48 घंटे में 26,000 टिकट बिक चुके हैं। भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2019-20 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तीनों मुकाबले सितंबर में राजकोट में खेले जाएंगे। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, यानी वनडे टीम में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे एक साथ नजर आएंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज